आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है। एफएम 102, एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज, मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओ, आज शनिवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 20 जून सन 2026। इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:59 हुए हैं। हम आरंभ करते हैं हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा।

0: आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है, FM 102, FM 103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6 बजने को है दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार, अब आप सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। ओडिशा में वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोनों नेता एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की जा रही है। पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे। कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर

0: आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और स्वदेश में निर्मित 3 युद्धपोत दुनागिरी, अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवर ब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL की स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि तय फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी नागरिक का तय किए गए फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार प्राथमिक है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जाएगी। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। एक दुखद मोटर दुर्घटना के क्षतिपूर्ति मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। अपने 5 वर्षीय पुत्र को पिता द्वारा स्कूल ले जाते समय कथित दुर्घटना में बच्चे की मौत हो गई थी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रगति के साथ साथ भारत के हितों का भी विस्तार होगा और विविधता बढ़ेगी। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए एक बड़ी विजय बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की बात की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। श्री गाइस थॉमसन को कार्यबल का अगला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का निर्णय हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर में 4th स्थान पर रहे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है। FM 102, FM 103.6 मेगाहर्ट्ज, मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओ, लेकर उपस्थित हैं भक्ति संगीत अर्चना।

प्रातःकालीन बेला सहज ही हमें भक्ति की ओर उन्मुक्त करती है। आइए भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में ऐसे ही स्वर और शब्दों का मिश्रण हम करें कि हमारी ये दिशा और उन्नत हो जाए।

ये सर्वविदित है कि ईश्वर हम सब पर अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं, किंतु हम भूलवश ये मान बैठते हैं कि ईश्वर ने भी हमको भुला दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, और अगर ऐसा हमें लगता भी है तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम ईश्वर से विनती करें कि इस भवसागर से हमारी नैया पार लगा देना।

कोमल घास की रस्सी अपने घर्षण से शिला पर भी निशान छोड़ सकती है, फिर हमारे ईश्वर तो स्वयं ही कोमल हैं। बार बार उनका नाम स्मरण करने से वे सहज ही रीझ जाते हैं। अर्थात हमारे प्रभु अगर इतने कोमल हैं तो फिर हम क्यों ना उनका सुमिरन करते ही रहें।

जो आर्त होता है वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। आर्त भाव से ईश्वर को पुकारने पर ईश्वर प्रसन्न होते हैं, और आरती हम इसीलिए करते हैं कि हमारे ईश्वर को हम प्राप्त हो जाएं।

तो श्रोताओ, ये था आज के भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। इसमें स्वर थे कविता कृष्णमूर्ति, सुमन कल्याणपुर, ओम व्यास, जे एस आर मधुकर, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, और अंत में हरिओम शरण के।

भक्ति संगीत अर्चना चंबल चैनल पर अभी आपने सुना। आइए श्रोताओ, अब आपको सुनवाएं श्री रामचरितमानस गान। आज मुख्य स्वर श्रीकांत पारगांवकर का, संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का।

बेटियों की विदा का करुण हृदय विदारक दृश्य उपस्थित है। लगता है जैसे करुणा और विरह ने वहां डेरा डाल दिया है। सीता ने जिन पक्षियों को सोने के पिंजरों में पाल पोस कर सिखाया पढ़ाया था, वे मानो पूछ रहे हैं कि वैदेही कहां हैं। और यदि पशु पक्षी इस प्रकार विकल हैं, तो मनुष्यों की दशा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। राजा जनक परम वैराग्यवान पुरुष थे, किंतु इस अवसर पर सीता को देख उनका धैर्य भी साथ छोड़ गया। जानकी को हृदय से लगाकर वो फूट पड़े। भावना ने ज्ञान और वैराग्य के बांध तोड़ दिए। मंत्रीगण उन्हें धीरज बना रहे हैं। मुहूर्त देखकर सुंदर सजीव ही पालकियों में कन्याओं को बिठाया गया। पिता ने उन्हें स्त्री धर्म और कुल की रीति की सीख दी। ब्राह्मणों की चरण धूलि माथे पर लेकर राजा दशरथ ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और दल बल समेत अयोध्या के लिए चल पड़े। विदा के क्षणों में अधिक से अधिक समय तक उनके साथ रहने को आतुर राजा जनक उनके साथ हो लिए। विचित्र दृश्य है। देवता हर्षित हो पुष्प वर्षा कर रहे हैं, अप्सराएं मंगल गीत गा रही हैं। कुशलपति दशरथ बार बार जनक जी से लौट जाने का आग्रह करते हैं, किंतु प्रेमवश वो लौटना नहीं चाहते।

0: श्रीकांत पारगांवकर के मुख्य स्वर में ये था श्री रामचरितमानस गान। संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। चिंतन, आज लघु वार्ता का विषय अपराध। वाचन श्री कृष्ण शरद का।
1: मनुष्यों से जाने अनजाने अपराध होते ही रहते हैं। आचार विचार, आलाप संलाप, भोग उपभोग को अशुद्ध

0: करना, संत महात्माओं के आदेश निर्देशों की उपेक्षा, अपने ही अंतःकरण में अवस्थित यथार्थ सत्य ज्ञान का तिरस्कार अपराध नहीं तो क्या है? ज्ञाताज्ञात अपराधों का ही परिमार्जन तो होना ही चाहिए, इससे ही नरत्व नारायणत्व की ओर उन्मुख होगा। श्रेष्ठता की अनुकृति श्रेष्ठ का निर्माण करेगी और समाज के लिए यही एक अनुकरणीय आदर्श बन सकेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपराध पाप प्रदाता हैं। शास्त्रों के द्वारा पाप पुण्य का ज्ञान होता है। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति हुए बिना पाप से मोक्ष नहीं मिलेगा। प्रार्थना अपना संस्कार छोड़ती है। संस्कार प्रगाढ़ होकर निश्चय का संकल्प का रूप धारण करते हैं और ये प्रगाढ़ संकल्प नए अपराध नहीं होने देते हैं, साथ ही साथ पुराने अपराधों को क्षीण कर देते हैं। अधःपतन प्रायश्चित से निवृत्त हो जाता है। पाप पुरुष को सुखा देते हैं और पुण्य पुरुष में प्राण संचार करते हैं, उसमें जीवन देते हैं। लोक व्यवहार में शरीर में लगा हुआ मल, मिट्टी, पानी आदि मूल तत्वों से ही पूर्णतः शुद्ध होता है। वैसे ही निषिद्ध आचरण से उत्पन्न पाप प्रार्थना और उपासनाओं से नष्ट होते हैं। पाप पुण्य की उत्पत्ति केवल मनुष्य जीवन में ही होती है, अन्य जीवों में मात्र भोग होता है। मनुष्य जब अपने जीवन में किए हुए पापों के लिए पश्चाताप और प्रायश्चित करता है तब वो शुद्ध होता है। ये जीवन का अपना प्रयास है, किंतु जब वह दिव्य प्राकृतिक शक्तियों और देवताओं की सहायता लेने लगता है तब उसके स्वयं का अहंकार विगलित हो चुका होता है। स्वयं के अभिमान को क्षीण होते ही पाप की निवृत्ति होने लगती है। पापों की निवृत्ति के लिए शरणागति एवं दीन आर्त प्रार्थना पाप पंख से मुक्त करेगी ही। प्रार्थना का अन्य कोई महत्व हो अथवा न हो, किंतु ऊपर अवस्थित सत्ता का भान एवं उसकी कृपाकांक्षा से अपने कष्ट निवारण का आत्मनिवेदन अवश्य होता है। आर्त प्रार्थना अपने दोष देखना और उनकी पुनरावृत्ति न होने देने का संकल्प भी करती है। कहा भी तो गया है, पापो अहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभव त्राहिमाम पुनरिकाक्षा सर्व पाप हरो भाव। इसी भांति प्राणी के संकल्प उसको संस्कारित कर मल बुद्धि आचरण को शुद्ध करते हैं, अपराधों की आवृत्तियों का भी निरोध करते हैं। आज किसी का भाग या धन हरण करना चातुर्य भले ही कहकर कोई चैन की नींद सो जाता हो, किंतु सदैव ऐसा नहीं रहा। एक धर्मात्मा राजा अपनी प्रजा का बड़ा भारी हित चिंतक था और ऐसे ही उसके कर्मचारी थे। एक रात जब वो सो रहा था तब अचानक से उसकी नींद खुल गई। बेचैन सा हो वो इधर उधर घूमने लगा। रात्रि में अपने कोषागार में उसको प्रकाश दिखाई दिया। अर्ध रात्रि में वहां कौन हो सकता है कि सहज उत्सुकता ने उस ओर जाने को राजा को विवश कर दिया। वहां जाकर राजा ने देखा कि उसका कोषाध्यक्ष वहां अकेला बैठा कुछ हिसाब किताब मिलाने में व्यस्त है। राजा के पूछने पर उसने बताया कि महाराज हिसाब मिल नहीं पा रहा है। राजा ने कहा, थोड़ा धन कम है तो कल और मिला देंगे, अब विश्राम करो। कोषाध्यक्ष का उत्तर था, महाराज यदि राशि कम जमा हुई होती तो मैं मिला ही देता, लेकिन ये तो बढ़ रही है। पता नहीं किसी का भाग भूलवश अधिक आ गया है, इसको अलग करना आवश्यक है, अन्यथा इसकी हाय राज्य और हमारा कहां और कितना अनिष्ट करेगी, इसी का भय है।
1: अपराध। श्रोताओं, आज चिंतन में ये थी लघु वार्ता। वार्ताकार श्री कृष्ण शरद। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब जानकारी लें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत

0: श्रोताओ, आज है शनिवार और आज के दिन सुबह की सभा में 8:15 बजे से आप सुना करते हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी सेहत। आज इस कार्यक्रम में विषय होगा आयुर्वेद और योग पर। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर प्रवीण सिंह मीना। आप सभी श्रोता इस कार्यक्रम पर आधारित अपने प्रश्न करना चाहें तो टेलीफोन नंबर हम आपको बताएं 29411 42, एसटीडी कोड 0744। बहनों का कार्यक्रम महिला जगत होगा 9:30 पर, जिसमें संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए योग इस विषय पर होगी चर्चा। भेंट वार्ता होगी योग पर महिलाओं से बातचीत पर आधारित। इसी कार्यक्रम में महिलाओं के लिए बचत टिप्स पर जानकारी दी जाएगी। श्रोताओ, आज का विशेष कार्यक्रम होगा 3:55 पर। आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी किए जाने और इस अवसर पर संबोधन का सीधा प्रसारण। हमारे युवा साथी अपना कार्यक्रम युवाणी सुन पाएंगे 5:00 बजे से। आज इसमें आज का संवाद होगा युवाओं के लिए सहनशीलता और धैर्य के महत्व पर, देश हमारा के तहत स्वर्ण मंदिर अमृतसर। नॉलेज कॉर्नर के तहत विश्व शरणार्थी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में हमारे युवा श्रोता जानकारी ले सकेंगे। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ इसका प्रसारण होगा 5:10 से। चौपाल कार्यक्रम 7:00 बजे से होगा, जिसमें जीवन में योग के महत्व और विश्व शरणार्थी पर चर्चा की जाएगी हमारे किसान भाइयों के साथ। आज इसका मुख्य आकर्षण होगा आकाशवाणी गांव में के तहत नागदा की झोपड़ियां के किसानों और ग्रामवासियों से बातचीत पर आधारित ये कार्यक्रम होगा। इसी में पीएम सामाजिक सुरक्षा योजना पर जानकारी हमारे किसान भाइयों को मिलेगी। श्रोता, ये थी जानकारी प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। अब संस्कृत में समाचार दिल्ली केंद्र से।
1: शवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य ओडिशा पश्चिम बंगयोः प्रवासे भविष्यति। ओडिशायाः मयूरभंज मंडले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्यायाः 68वें जन्म दिवसोत्सवे प्रधानमंत्री तया सह पहाड़पुर ग्रामे सम्मिलितो भविष्यति। तदनन्तरं तौ नेतारो ओडिशा राज्ये मोहन चरण माझी प्रशासनस्य वर्षद्वयस्य कार्यकाल पूर्त्यवसरे एकां विशाल जनसभां संबोधयिष्यतः, यत्र हि 47,000 कोटितोप्यधिक रूप्यकाणां विकासात्मक परियोजनानां शुभारंभो भविष्यति। पश्चिम बंगे प्रधानमंत्री पश्चिम बंग दिवसावसरे भागं ग्रहीष्यति, यत्र हि अनेकासां प्रणालीनां शिलान्यासम् उद्घाटनं च विधास्यति। अस्मिन्नेव अवसरे प्रधानमंत्री पीएम कृषि सम्मान निधिं प्रसारयिष्यति, येन देशस्य 9.44 कोटि कृषकेभ्यः 80+8,18,000 रूप्यकाणि साक्षात् तेषां वित्तकोशेषु स्थानान्तरितानि भविष्यन्ति। एनटीए इति राष्ट्रिय परीक्षा संघटनेन प्रख्यापितं यत् श्वः आयोज्यमानायाः नीट यूजी 20-26 पुनः परीक्षायाः निष्पक्षं पारदर्शं च संचालनाय वयं पूर्णरूपेण सज्जाः। परीक्षेयं भारतस्य 150+500 नगरेषु, विदेशस्य च 14 नगरेषु आयोज्यन्ते। इत्यन्तराले एनटीए संस्था परीक्षार्थीनां साहाय्यार्थम् एकाम् आधिकारिक व्हाट्सएप वाहिनीमपि निरमात्। संघटनेन स्पष्टीकृतं यत् सर्वे आधिकारिकाः सन्देशाः केवलं

0: तस्य प्रमाणीकृत संख्यातः एव प्रेषयिष्यन्ते। सा संख्या वर्तते 9178279802877 इति। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः प्रत्यपादीत् यत् अशांत जगति भारतेन स्वकीय राष्ट्रहितस्य रणनीतिक स्वायत्ततायाः अथ बहुध्रुवीयतायाः रक्षणं कुर्वता सहैव विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रैः सह स्वसंबंधाः इतोपि सुदृढाः करणीयाः। नवदिल्ल्यां भारत अमेरिका मञ्चस्य गोष्ठ्याः सत्रं संबोधयन् डॉक्टर जयशंकरः अवोचत् यत् अनेक जटिलतासु सत्सु अपि भारत अमेरिका देशयोर सहभागित्वं विभिन्नेषु क्षेत्रेषु अविरतं वर्धमानमस्ति। तेन सविशेषं प्रकटीकृतं यत् यथा यथा भारतस्य वैश्विक उत्कर्षो भविष्यति तथा तथा तस्य राष्ट्रीय हितानि अपि विशालानि विविधानि च भविष्यन्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः नवदिल्ल्याम् आयोजितस्य एकस्य कार्यक्रमस्य अन्तर्गतं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजनायां 400,000,000,000 रूप्यकाणां प्रोत्साहन राशिं वितरितवान्। एकस्मिन् महत्वपूर्णे निर्णये सर्वोच्च न्यायालयः उदघोषयत् यत् निर्धारिते पदपथि चलनस्य अधिकारः नागरिकस्य मौलिकाधिकारो वर्तते। न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा अथ न्यायमूर्ति ए एस चंद्रूरकर इत्यनयोः प्रतिपादितं यत् निर्धारित पदपति चलनस्य नागरिकस्य मौलिको अधिकारः प्राथमिकः अस्ति, सहैव यन्त्रीकृत वाहनानां गमनागमनस्य अपेक्षया अस्य प्राथमिकता भविष्यति। फीफा विश्व कप प्रतियोगितायां मैक्सिको दलेन दक्षिण कोरिया दलम 1-0 अंकांतरालेन पराजितम्। क्रिकेट क्रीडायां भारत अफगानिस्तान योर्मध्ये तृतीया अंतिमा च एक दिवसीय स्पर्धा अद्य अपराह्णे चेन्नई नगरस्य एमए चितंबरम क्रीडांगणे भविष्यति। अवधेयं यत् एषः द्वन्द्वः अपराह्णे 1:30 वादनतः समारप्स्यते। इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं ट्यून इन हैं आप FM 102, FM 103.6 मेगाहर्ट्ज, मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR और ऑल इंडिया रेडियो लाइव मोबाइल ऐप पर भी। लेकर उपस्थित हैं सुबह सवेरे का कार्यक्रम नमस्कार कोटा।

नमस्कार नमस्कार कोटा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। श्रोता कार्यक्रम लेकर आया हूं मैं राजेश महावर अपने आकाशवाणी की पूरी टीम के सहयोग से। तो एक बार फिर से अभिनंदन करते हैं आप सभी का। श्रोताओ, इस विचार को गहराई से समझना बहुत जरूरी है कि अक्सर जब लोग लंबे समय तक पढ़ाई करते हैं और तुरंत उसका कोई आर्थिक लाभ जैसे नौकरी या फिर पैसा नहीं उन्हें दिखाई देता तो कुछ लोग इसे समय की बर्बादी समझने लगते हैं, लेकिन ये सोच जरा अधूरी है। आइए श्रोताओ, इस बारे में कुछ और बातें करें। श्रोताओ, अज्ञानता के अंधकार को मिटाती है हमारी शिक्षा। शिक्षा लेने की आदत हमारी होनी चाहिए। शिक्षा हमारे दिमाग की खिड़कियां खोल देती हैं। एक अशिक्षित या कम पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति केवल उतनी ही दुनिया देख पाता है जितनी उसके सामने है। सही और गलत की पहचान पढ़ाई हमें तर्क करना सिखाती है। हमारे पास जब ज्ञान होता है तब हम किसी भी बातों को आसानी से समझ सकेंगे। हम अंधविश्वासों से दूर रह पाएंगे। अफवाहों से दूर रहकर सही और गलत का अंतर हम समझ पाएंगे। आइए श्रोताओं, इसी तरह की बातें

नमस्कार कोटा कार्यक्रम में कुछ और सुनेंगे। आइए लेकिन पहले गीत संगीत का भी जरा आनंद ले लें, क्योंकि गीत के बिना, संगीत के बिना जिंदगी में वैसी ही स्थिति होती है जैसे बिना फुलवारी का कोई बगीचा हो।

0: श्रोताओ, आज है 20 जून। आज भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का जन्मदिन है। उनका जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के ऊपर बेड़ा गांव में हुआ था। वे भारत की 15वीं राष्ट्रपति और देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं और इस पद पर आसीन होने वाली दूसरी महिला हैं। महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं चंबल चैनल की ओर से। चंबल चैनल पर उनके लिए शुभकामना कि महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी अपने जीवन के संघर्ष, सेवा, सादगी और समर्पण, साथ ही उनका जीवन सभी के लिए प्रेरणादायक बने। ईश्वर उन्हें उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे, दीर्घायु और निरंतर राष्ट्र सेवा की शक्ति प्रदान करे। पुनः महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को नमन, आकाशवाणी कोटा के चंबल चैनल की ओर से भी। श्रोताओ, चंबल चैनल का प्रसारण आप सुन रहे हैं।
1: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: श्रोताओ, हमारा जीवन एक बेहतरीन दिनचर्या के साथ अगर हो तो हम ऊर्जावान रह सकते हैं, हम स्वस्थ रह सकते हैं। हमारी जिंदगी की जो दिशा होती है सुबह की, वो सकारात्मक बनाती है हमारे पूरे दिन को। श्रोताओ, अपने दिन को जीने की राह में बदलने के लिए हमें सुबह जल्दी उठना होगा, पौष्टिक नाश्ते से अपने आप को तंदुरुस्त करना पड़ेगा, तंदुरुस्ती के लिए नियमित व्यायाम करना पड़ेगा। और एक दिन पहले जब हम सोते हैं, जब हमारी सुबह होती है, उस समय भी हमें जल्दी सोकर जल्दी जागने का प्रण लेना पड़ेगा। बस इस तरह के छोटे मोटे सकारात्मक जो बदलाव होंगे वो हमें तनाव मुक्त करेंगे और हमें एनर्जी का संपूर्ण एहसास देंगे। आइए श्रोताओ, इसी विषय पर एक भेंटवार्ता हम आपको सुनवाएं। जीने की राह एक बेहतरीन दिनचर्या के साथ, इसके वार्ताकार डॉक्टर प्रवीण कुमार चचैया। आइए सुने चंबल चैनल पर नमस्कार कोटा कार्यक्रम में ये वार्ता।
4: जीने की राह एक बेहतरीन दिनचर्या के साथ, आप सभी श्रोताओं को नमस्कार। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी जिंदगी की गाड़ी को सही पटरी पर रखता है। हम बात कर रहे हैं हमारी रोजमर्रा की दिनचर्या, यानी हमारे डेली रूटीन की। अक्सर लोग कहते हैं, यार सुबह से शाम कैसे गुजर जाती है पता ही नहीं चलता, काम पूरे नहीं होते और थकान पहले हो जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो यह बातचीत आपके लिए है, क्योंकि आज हम सुबह की पहली किरण से लेकर रात के अंधेरे तक एक ऐसा सफर तय करेंगे जो हमारी जिंदगी में अनुशासन भी लाएगा और मुस्कान भी। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में हमारे पास सब कुछ है, गाड़ियां हैं, गैजेट्स हैं, सुख सुविधाएं हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो वो है वक्त और सुकून। दोस्तों, हम सब जीने की राह में कहीं ना कहीं भटक गए हैं। ऐसे में जीवन को एक सही दिशा के देने के लिए खूबसूरत काव्यात्मक पंक्ति याद आती है, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, क्यों ना इस उम्र के सफर को सजाएं, चलो आज फिर से एक बेहतरीन दिनचर्या बनाएं। श्रोताओं, जब हम दिनचर्या की बात करते हैं तो हमारे मन में इतिहास के पन्ने खुद ब खुद खुलने लगते हैं। आइए जरा पीछे मुड़कर देखें उस बेहतरीन पुराने युग को, और जिसे हम वैदिक काल

अपने दादा दादी नाना नानी का दौर भी कह सकते हैं। उस युग में न तो अलार्म घड़ियां थी और न ही स्मार्टफोन के रिमाइंडर, फिर भी हर काम समय पर पूरा होता था। लोग सूर्य की पहली किरण के साथ जागते थे और पंछियों के घोंसले में लौटने के साथ ही विश्राम की ओर बढ़ जाते थे। हमारे प्राचीन ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त का बड़ा महत्व बताया गया है। सूर्योदय से ठीक पहले का वह समय जब प्रकृति अपने सबसे शांत और शुद्ध रूप में होती है। पुराने युग के लोग शारीरिक रूप से जितने स्वस्थ थे, मानसिक रूप से उतने ही शांत थे, क्योंकि उनका जीवन प्रकृति के सुर और ताल के साथ बंधा हुआ था। वे प्रकृति के खिलाफ नहीं, प्रकृति के साथ जीते थे। लेकिन आज क्या स्थिति है? आज हमने देर रात तक जागने को मॉडर्न होना मान लिया है और सुबह देर से उठना हमारी मजबूरी या आदत बन चुका है। हम प्रकृति के चक्र से दूर हो चुके हैं। नतीजा यह है कि तनाव, अवसाद और अनगिनत बीमारियां। हमने अपनी दिनचर्या को इतना अस्त व्यस्त कर लिया है कि हमारे पास खुद से बात करने का भी समय नहीं है। हम स्क्रीन पर दूसरों की जिंदगी देखने में इतने मशगूल हैं कि अपनी खुद की जिंदगी की राह भूल गए हैं। दोस्तों, सवाल उठता है कि आज के इस आधुनिक युग में हम पुराने युग जैसी श्रेष्ठ दिनचर्या कैसे अपनाएं? रास्ता मुश्किल नहीं है, बस थोड़े से संकल्प की जरूरत है। तो आइए कदम दर कदम एक आदर्श दिनचर्या का निर्माण करते हैं। शुरुआत करते हैं सुबह 4:30 से 6:30 बजे के उस खूबसूरत वक्त से जिसे हमारे बुजुर्ग ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। दोस्तों, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब प्रकृति आपको एक नई ऊर्जा दे रही होती है। जैसे ही आपकी आंखें खुले, भागम भाग मत शुरू कीजिए। बिस्तर पर ही 2 मिनट शांत बैठिए, अपनी हथेलियों को देखिए और उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए कि उसने आपको एक और खूबसूरत दिन दिया है। इसके बाद रसोई की तरफ कदम बढ़ाइए और कम से कम 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। आयुर्वेद में इसे उषापान कहते हैं, जो हमारे शरीर की अंदरूनी इंजन को साफ और एक्टिव करता है। फिर फ्रेश होकर अगर आपके घर में छोटी सी छत या बालकनी है तो वहाँ जाइए, उस ठंडी हवा को महसूस कीजिए। अगर हरी घास है तो नंगे पैर चलिए। यकीन मानिए, जो सुकून आपको वहाँ मिलेगा वो दुनिया के किसी महंगे लाउंज में नहीं मिल सकता। पुराने जमाने में लोग खेतों में काम करते थे, पैदल चलते थे, जिससे उनका व्यायाम स्वतः हो जाता था। आज हमें इसके लिए भी समय निकालना होता है। कहते हैं ना श्रोताओं, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है। इसलिए खुली हवा में बैठकर 15 मिनट प्राणायाम जरूर करें। लंबी सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें। अनुलोम विलोम और भ्रामरी आपके दिमाग के सारे स्ट्रेस को वैसे ही उड़ा देंगे जैसे तेज हवा बादलों को उड़ा देती है। इसके बाद शरीर को थोड़ा एक्टिव करने के लिए 4 से 5 बार सूर्य नमस्कार या फिर हल्की सी जॉगिंग जरूर करें। जब पसीना बहेगा तो आलस से अपने आप बोरिया बिस्तर समेटकर भाग जाएगा। आयुर्वेद में कहा गया है कि जैसा अन्न वैसा मन। हमारा भोजन ही हमारी औषधि है। पुराने युग में लोग ताजा और शुद्ध भोजन करते थे। आज की दिनचर्या में हमें डिब्बाबंद और जंक फूड से दूरी बनानी होगी। सुबह का नाश्ता भारी और पौष्टिक, दोपहर का भोजन संतुलित और रात का भोजन बेहद हल्का और सूर्यास्त के आसपास होना चाहिए। दिनचर्या का अगला और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारा कार्य क्षेत्र। चाहे आप छात्र हो, कामकाजी हो या गृहिणी, अपने काम को बोझ समझकर नहीं बल्कि कर्मयोग समझकर करें। और हाँ, काम के बीच में अपने इस छोटे से मोबाइल जी को थोड़ा आराम करने दें, इसे साइलेंट मोड पर कर दें। हर 1 घंटे के काम के बाद अपनी सीट से उठें, 5 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग करें या पानी पिएं। इसे पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं, जो आपकी आंखों और रीढ़ की हड्डी दोनों को बचाकर रखेगी। पुराने समय में हर काम में एक कला होती थी, एक समर्पण होता था। जब आप अपने काम से प्यार करते हैं तो तनाव पैदा ही नहीं होता। दोपहर का भोजन हमेशा संतुलित होना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद काम पर मत लग जाइए। कम से कम 10 मिनट वज्रासन में बैठिए और मुमकिन हो तो 15 से 20 मिनट की एक छोटी सी झपकी ले, जिसे कॉरपोरेट की भाषा में पावर नैप कहते हैं।
यह आपके दिमाग को रिबूट कर देती है, जैसे हैंग हो रहे कंप्यूटर।

मोटर को हम रिस्टार्ट करते हैं। शाम को जब आप घर लौटे तो दफ्तर की चिंताओं को दरवाजे के बाहर ही छोड़ आए। अपने परिवार को, अपने बच्चों को समय दें। अपनों के साथ बैठकर हंसना आज के दौर की सबसे बड़ी थेरेपी है। श्रोताओं, जितनी जरूरी दिनचर्या है उतना ही जरूरी है रात्रिचर्या। सोने से कम एक घंटे पहले अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप और टीवी से दूरी बना लें। इसे आज की भाषा में डिजिटल डिटॉक्स कहते हैं।

गहरी और चैन की नींद आती है जो अगले दिन की ऊर्जा का आधार बनती है। दोस्तों, जीने की राह कोई कठिन रास्ता नहीं है, यह सिर्फ हमारे छोटे छोटे आदतों के सुधार से बनती है। पुराने युग का अनुशासन और आधुनिक युग की तकनीक, अगर इन दोनों का सही संतुलन बन जाए तो हमारा जीवन स्वर्ग बन सकता है। दिनचर्या सिर्फ समय की पाबंदी नहीं है, यह खुद के प्रति सम्मान है। तो चलिए आज से ही, बल्कि इसी पल से संकल्प लेते हैं कि हम अपनी दिनचर्या को सुधारेंगे, प्रकृति के करीब लाएंगे और जीवन को एक नई उमंग के साथ जिएंगे। दोस्तों, यह थी एक आदर्श दिनचर्या। यह कोई बंधन नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को खुलकर जीने का खूबसूरत रास्ता है। प्रकृति भी तो अनुशासन में रहती है, समय पर सूरज उगता है और समय पर ही चांद, तो हम क्यों पीछे रहे हैं? श्रोताओं, अब तक मैं सुबह की पहली किरण से लेकर रात की शांत गोद तक जाने के सफर की बात की, लेकिन एक आदर्श दिनचर्या का एक और बेहद महत्वपूर्ण स्तंभ है जिसके बिना हमारी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा अधूरी है, वो है सकारात्मक स्वास्थ्य और ऋतुचर्या। हमारे प्राचीन आयुर्वेद में सिर्फ दिनचर्या का ही नहीं, बल्कि ऋतुचर्या का भी विस्तृत वर्णन मिलता है। जैसे जैसे मौसम बदलता है, हमारे शरीर की जरूरतें भी बदलती है। पुराने समय में लोग जानते थे कि सावन में क्या खाना है और कार्तिक में क्या छोड़ना है। आज हम 12 महीने एक ही जैसा पैकेट बंद खाना खाते हैं, जो हमारी सेहत को अंदर से खोखला कर रहा है। दोस्तों, जब हम अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव मौसम के अनुकूल करते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम प्राकृतिक रूप से मजबूत हो जाता है। उदाहरण के लिए, सर्दियों में गुनगुना पानी और गर्म तासीर की चीज़ें, जबकि गर्मियों में मिट्टी के घड़े का शीतल जल और पुदीना मिश्री का सेवन। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि हमारे घर में दादा दादी नाना नानी के नुस्खों में छुपा हुआ विज्ञान है। इसके साथ ही दिनचर्या में मौन का एक विशेष स्थान होना चाहिए। पूरे दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट ऐसे निकालें जब आप पूरी तरह शांत हो, न कोई स्क्रीन हो, न कोई किताब, न किसी से बातचीत। इस मौन के समय में आप अपने भीतर की आवाज़ को सुन पाते हैं। आज की दुनिया में बाहर का शोर इतना ज़्यादा है कि हम अपने अंदर के संगीत को भूल चुके हैं। दिनचर्या में यह छोटा सा मौन का ठहराव आपको मानसिक अवसाद और एंग्जाइटी से कोसों दूर रखेगा। आइए अब बात करते हैं हमारी दिनचर्या के सामाजिक और पारिवारिक पहलू की, जिसे हम संबंधों की दिनचर्या कहते हैं। पुराने दौर में शाम को चौपालों पर या घर के आंगन में सब बैठते थे, सुख दुख बांटे जाते थे, जिससे मन का बोझ हल्का हो जाता था। आज स्थिति यह है कि एक ही सोफे पर परिवार के चार सदस्य बैठे होते हैं, लेकिन चारों के हाथ में अलग अलग स्मार्टफोन होते हैं। हम दुनिया भर से कनेक्टेड हैं, लेकिन अपनों से ही डिसकनेक्टेड हैं। अपनी दैनिक दिनचर्या में एक नियम अनिवार्य रूप से जोड़े, नो गैजेट फैमिली टाइम। रात के भोजन के समय या उसके बाद के 30 मिनट घर के सभी सदस्य अपने फोन को एक टोकरी में रख दें, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बात करें, बच्चों के स्कूल के किस्से सुने, बुजुर्गों के अनुभवों को जाने। यकीन मानिए, यह वह निवेश है जिसका मुनाफा आपको जीवन भर असीम मानसिक शांति के रूप में मिलेगा। इस पारिवारिक जुड़ाव को बयां करती ये खूबसूरत पंक्तियां आपके दिल को जरूर छुएगी। दिलों की दूरियां मिटाओ, जरा पास बैठकर तो देखो, मोबाइल की स्क्रीन छोड़ अपनों को तककर तो देखो, ये जो खिलखिलाहट गूंजेगी तुम्हारे आसियाने में, वो सुकून नहीं मिलेगा तुम्हें इस सारे जमाने में। इसके अलावा हमारी दिनचर्या में स्व अध्याय का होना भी उतना ही जरूरी है जितना कि भोजन करना। रोज रात को सोने से पहले या सुबह उठने के बाद कम से कम 2-3 पन्ने किसी अच्छी प्रेरणादायक किताब के जरूर पढ़ें। जब हम अच्छे विचार पढ़ते हैं तो हमारे अवचेतन मन को सही खुराक मिलती है, जिससे नकारात्मक विचारों का आना अपने आप बंद हो जाता है। श्रोताओं, याद रखिए, दिनचर्या कोई जेल या बंधन नहीं है जिसमें आपको खुद को कैद करना होता है। यह तो एक ऐसा ढांचा है जो आपको अपनी जिंदगी को और ज़्यादा आज़ादी, ऊर्जा और खुशी के साथ जीने का अवसर देता है। अनुशासन शुरुआत में कड़वा लग सकता है,
लेकिन इसका फल हमेशा अमृत जैसा मीठा होता है।

0: है। प्रकृति हमें हर पल यही सिखाती है कि नदियां बिना रुके बहती है, ऋतुएं अपने समय पर बदलती है और पेड़ अपने समय पर फल देते हैं। जब ब्रह्मांड का कण कण एक खूबसूरत नियम और अनुशासन में बंधा है, तो हम मनुष्य होकर क्यों इस व्यवस्था से भाग रहे हैं? आप सभी का जीवन ऊर्जा से भरा रहे, आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: श्रोतव, ये बहुत सुंदर वार्ता जीने की राह एक बेहतरीन दिनचर्या के साथ हमारे वार्ताकार डॉक्टर प्रवीण कुमार चचैया ने बहुत ही सुंदर बात कही। श्रोतव, अपनी बातचीत के दौरान उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, पोमोडोरो टेक्निक। ये टेक्निक है कि यदि हम आधे घंटे निरंतर काम करें तो 25 मिनट तक हम पूरा काम बड़े ध्यान से करें और उसके बाद 5 मिनट का छोटा सा अंतराल हम ले लें। इससे हमें रेस्ट मिलता है, आराम मिलता है और फिर हमारी उत्पादकता है वो बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी मानसिक थकान कम हो जाती है। वैसे पोमोडोरो जो ये शब्द है, ये इटालियन शब्द है और उसका अर्थ होता है टमाटर। तो जब भी कभी आप टमाटर देखें तो पोमोडोरो इस शब्द का आपको स्मरण हो जाए और आप अपने कार्य को बेहतर तरीके से कर पाएं। इसलिए आधे घंटे में 25 मिनट काम और 5 मिनट आराम। चंबल चैनल पर नमस्कार कोटा कार्यक्रम आप सुन रहे हैं।

श्रोताओं कार्यक्रम नमस्कार कोटा आप सुन रहे हैं चंबल चैनल पर। अपने अंतिम पड़ाव पर है ये कार्यक्रम। श्रोताओं कुछ बातें हम करें इस कार्यक्रम में आपको, जैसा कि इस वार्ता में आपने सुना था कि हमें कार्य को अच्छे से करना चाहिए, दिन की शुरुआत बेहतर तरीके से करनी चाहिए, शुरुआत ऐसी होनी चाहिए कि हमारा पूरा दिन सार्थक सिद्ध हो। श्रोताओं इसी काम के लिए हमें गर्मी के इस मौसम में एक और काम करना चाहिए कि हमें हाइड्रेट

0: रहना चाहिए। और हाइड्रेट रहने के कुछ तरीके ये हैं श्रोताओं, कि पानी पीने के अलावा अपने आप को, अपने आप की डाइट में हमें ताजे फल, नारियल पानी, हर्बल चाय, इनका इनका शुमार रखना चाहिए अपने खाने पीने में, और यही अपनी पानी की कमी को पूरी कर सकते हैं। श्रोताओं, पानी पीने की आदत हमें होनी चाहिए, दिन की शुरुआत करें। सुबह उठते ही कहते हैं कि एक दो गिलास पानी हमें पीना चाहिए, जिससे कि हमारे वार्ताकार ने कहा था कि उषापान इसे आयुर्वेद में कहा जाता है। अगर हम कहीं जाएं तो बोतल अपने साथ रखें पानी की, और थोड़ा थोड़ा पानी समय समय पर जैसे ही जरूरत पड़े हमें पीते रहना चाहिए। प्यास लगने का इंतजार न लगे हमें। कई बार अपने काम में इस तरह का रहता है कि हमें प्यास नहीं लगी है, हमें ध्यान नहीं रहता, लेकिन हमें थोड़े थोड़े अंतराल के बाद में पानी पीते ही रहना चाहिए। तो श्रोता, भी कुछ बातें जिसको हम अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
0: तो श्रोता, इन्हीं बातों के साथ आज का नमस्कार कोटा कार्यक्रम अब यहीं संपन्न करते हैं। चलते चलते आपको बता दें श्रोता, इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग निहाल सिंह और सुरेंद्र कुमार तंवर का था। इस कार्यक्रम के लिए संयोजन तेजराम मीणा का था। इस कार्यक्रम में श्रोता, यदि आप कुछ कहना चाहें तो हमारा ईमेल है enjoyairkota@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर 95301 2020। अब राजेश महावर चाहता है अनुमति। नमस्कार।

श्रोता अभी सुन रहे थे सुबह सवेरे का कार्यक्रम नमस्कार कोटा, चंबल चैनल का यह प्रसारण। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाएं फिल्म संगीत कार्यक्रम में आगाज इस गीत के साथ।

अपनापन फिल्म से ये दो गाना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में था। आनंद बख्शी के ये शब्द और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का ये संगीत था। श्रोताओं, फिल्म संगीत चंबल चैनल पर आप सुन रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम के बारे में आपको जानकारी दें, बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम आपकी सेहत आप सुनेंगे आज सुबह 8:15। विषय होगा आयुर्वेद और योग। हमारे अतिथि विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर प्रवीण सिंह मीना। कार्यक्रम पे विषय पर आधारित प्रश्न आप कर सकेंगे। टेलीफोन नंबर 29411 42, एसटीडी कोड 0744। कार्यक्रम का समय याद रखिएगा, सुबह 8:15 से

0: 9 बजे तक अवश्य सुनिएगा ये कार्यक्रम आपकी सेहत।
1: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: श्रोताओ, हम आपको कार्यक्रम के बारे में एक और जानकारी दें। रात 11:10 से आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष पूर्व पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम की श्रृंखला में आज 20वीं कड़ी होगी, जिसकी थीम संस्कृति। सुनिएगा जरूर 11:10 पर। श्रोताओ, आज अपराह्न 3:55 पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी किए जाने और इस अवसर पर संबोधन का प्रसारण होगा। समय पुनः बताएं 3:55 से। फिल्म संगीत चंबल चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: मन्ना डे और साथियों की आवाज सफर फिल्म के इस गीत में संगीत कल्याण जी आनंद जी का और शब्द इंदिवर के थे। श्रोताव कार्यक्रम के बारे में जानकारी ये है, युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे शाम 5 बजे से 6 बजे तक। इस दरमियान 5:10 से 5:25 तक प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगा। श्रोताओं को जानकारी दें, शाम 7:30 से 8 बजे तक परिचर्चा होगी स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, अर्थात योगा फॉर हेल्दी एजिंग। इसके प्रतिभागी होंगे डॉक्टर अंजना शर्मा, डॉक्टर हरिओम मीणा, पवन सोनी। ये संचालन होगा रामनारायण मीणा का। सुनेगा कार्यक्रम शाम 7:30 से 8 बजे तक। एक और जानकारी श्रोताओं, हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9 बजे से रात 10 बजे तक, और इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत चंबल चैनल पर।
1: Hey guys, hey, आज तो पार्टी चाहिए,
2: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक PM आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
5: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित
0: फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं चंबल चैनल पर। कार्यक्रम का यह है अगला गीत।

दिन तेरे मेरे ख्वाब होंगे पूरे, ऐसी कोई बात कर चल लो जमूरे, रह जाए सब दिल थाम कर प्यारे।

हाथी मेरे साथी। इस फिल्म से किशोर कुमार का गाया ये गीत आपने सुना। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, इस गीत के लिए संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, कार्यक्रम के बारे में जानकारी आपको दे दें, आपकी सेहत ये सजीव फोन इन कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:15 बजे से। आज इस कार्यक्रम में विषय होगा आयुर्वेद और योग पर आधारित। हमारे अतिथि विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर प्रवीण सिंह मीना। श्रोताओं, कार्यक्रम में शिरकत आप भी कर सकेंगे इस टेलीफोन नंबर के जरिए। टेलीफोन नंबर है 29 4 11 42, STD कोड 0744। याद रखिएगा, विषय योग और आयुर्वेद।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
2: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: रात 11 बजे 11:10

मिनट से आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला की आज 20वीं कड़ी होगी, जिसकी थीम संस्कृति। सुनिएगा जरूर 11:10 से। श्रोताओ, अपराह्न 3:55 पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी किए जाने और इस अवसर पर संबोधन किए जाने का सीधा प्रसारण आप सुनेंगे। सुनेगा अवश्य 3:55 से। यह हमारे दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति है। इस समय चंबल चैनल पर आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। पलकों की छाओ में इस फिल्म से कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार और वंदना शास्त्री की आवाजों में।

सफर फिल्म का यह गीत कार्यक्रम की अंतिम पेशकश थी। ये संगीत कल्याण जी आनंद जी का था, ये शब्द इंदिवर के। श्रोताओं, फिल्म संगीत अब आप सुनेंगे 9:10 पर। चंबल चैनल का ये प्रसारण है। अब हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात प्रसारित होंगे।

0: का प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इक्कीस जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यही से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: का प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य

0: सबका प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: आया खुशियों का पैगाम, पीएम किसान,
3: पीएम किसान।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
0: अन्नदाता का बढ़ता मान, पीएम किसान।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज चेन्नई में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
6: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
5: पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी।

0: ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे और कलकत्ता में रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। इसी अवसर पर वे 3 स्वदेशी युद्धपोत INS दुनोगिरी, INS संशोधक और INS अग्रय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कृषि क्षेत्र में श्री मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। संदीपन दासगुप्त के साथ काशफिन नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं था चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
3: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें NVIDIA और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
2: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर $40 से $45 अरब तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
4: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
2: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी

0: उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में सेबी ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। और अब खेल खबरें। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद विशाल। टेलीग्राम पर केंद्र सरकार की रोक पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है टेलीग्राम पर प्रतिबंध सही। फुटपाथ पर पैदल चलना लोगों का मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय, दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों में है। इस खबर पर नवभारत टाइम्स ने पहला हक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, सुरक्षित फुटपाथ केवल सड़क सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं, ये पर्यावरण और लोगों के सेहत से भी जुड़ा है। पाकिस्तान अपने ही भस्मासुरों का शिकार, आतंकियों की है खुली पनाह। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि अनुपमा सिंह का ये बयान अमर उजाला में है।
0: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। वरिष्ठ भारतीय नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। और सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है। श्रोता एफएम 102, एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज पर ट्यून किया आपने। साथ ही न्यूज ऑन AIR और ऑल इंडिया रेडियो लाइव मोबाइल ऐप पर भी आप हैं चंबल चैनल के साथ। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाएं बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम आपकी सेहत। इस कार्यक्रम में आज का विषय आयुर्वेद और योग पर है। विशेषज्ञ आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रवीण सिंह मीना जी। कार्यक्रम शुरू करेंगे लेकिन कुछ विधिवत शुरुआत भी हो जाए।
3: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग जिला कोटा। एक अपील।
4: मैं डॉक्टर प्रवीण सिंह मीना उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग जिला कोटा सभी कोटा वासियों से अपील करता हूं कि 21 जून 2026 को मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी नागरिक अपने नजदीकी विद्यालयों आयुर्वेदिक औषधालयों में जाकर योग दिवस का हिस्सा बने और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना विश्व स्तर पर साकार करने के लिए आगे बढ़े। योग सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि मन को भी सशक्त बनाता है। मन प्रश्न उपायों योग इति भीड़ियते, यानी मन की शांति का उपाय ही योग है। धन्यवाद।
5: दूर हुआ रोगों का
2: श्रोताओं, फिर से बहुत स्वागत करते हैं आपका। सजीव फोन इन प्रोग्राम है ये। कार्यक्रम का नाम आपकी सेहत और आज हमारे अतिथि हैं उनका नाम डॉक्टर प्रवीण सिंह मीना जी। आप उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग जिला कोटा पर पदस्थ हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
6: बहुत बहुत नमस्कार। आकाशवाणी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस मंच पर बुलाया आपने।
2: जी
6: बहुत बहुत धन्यवाद
2: डॉक्टर साहब। जब से ये कार्यक्रम इसका विषय निर्धारित किया गया तब से हमें लगता है आपको भी बड़ी चिंता थी और बहुत इंतजार था कि इस कार्यक्रम में आप जाएंगे और श्रोताओं से मुखातिब होंगे।
6: बिल्कुल सर, ये एक मंच हमें प्रदान करता है ताकि हम जनता के एक बिल्कुल तृणमूल पीछे तक के नागरिक से हम जो है बात कर सकते हैं और वहां तक पहुंच सकते हैं सर, और हम एक उनको जागरूक करने के लिए हमें बहुत अच्छा मंच प्रदान करता है।
2: बहुत ही खूब। जैसा कि आज का विषय है आयुर्वेद और योग, और ये भारत की विश्व भर को देन है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम योग दिवस मना रहे हैं कल, तो डॉक्टर साहब आज इसी विषय पर जो हम बातचीत करेंगे, तमाम हमारे श्रोता भी इंतजार कर रहे हैं कि योग के लिए वो बिल्कुल कटिबद्ध हैं कि योग पिछले काफी अरसों से वो कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं वो भी प्रण ले रहे हैं कि हमें योग करना है। डॉक्टर साहब आयुर्वेद और योग, इसका आपस में एक नाता है, नाता ये कि इसकी डगर

0: एक ही है कि व्यक्ति को ये स्वस्थ रख सके। डॉक्टर साहब, छोटा सा परिचय आयुर्वेद का, उसके बाद योग से हम नाता जुड़ेंगे।
1: बिल्कुल सर, आयुर्वेद जो है हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है और हमारी परंपरा है। आयुर्वेद हमें जीवन जीना सिखाता है। और सबसे मेन बात यह है कि आयुर्वेद हमारी जड़ों से जुड़ा हुआ है। हम देखते हैं हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको पहले वो आधे वेद कहे जाते हैं।

0: आयुर्वेद हमारी जड़ों से जुड़ा हुआ है। हम देखते हैं हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको पहले वो आधे वेद कहे जाते थे, उनको सारे नुस्खे सारी बीमारियों का पता रहता था, लेकिन आज के इस जमाने में हम उस चीज को भूल चुके हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने विश्व स्तर पर हमें एक बहुत अच्छी पहचान दी है, आयुर्वेद को बढ़ाया है, योग को बढ़ाया है। आयुर्वेद और योग दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं सर। एक्चुअल में योग दिवस की जो पहल हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है उससे हम पूरे विश्व में मतलब आयुर्वेद का परचम फैल गया है,
1: गौरवान्वित भी है,
0: गौरवान्वित हुए हैं सर बिल्कुल
1: जी।
0: और आयुर्वेद अभी अभी हमने देखा है कि सर ये जो कोविड महामारी जो फैली थी
1: जी,
0: उसके बाद आयुर्वेद को जन जन हर व्यक्ति जानने लगा है और हमारे पास लोग आते हैं, इवन डॉक्टर्स भी आते हैं, वो हमसे आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं सर।
1: वाह,
0: क्योंकि जो समझदार आदमी है वो सोचता है कि हमें जो है देसी नुस्खे और हर्बल मेडिसिन ही चाहिए,
1: क्योंकि हमें ऐसी चीजें चाहिए जो एक्शन करें, रिएक्शन नहीं।
0: जी सर
1: जी। डॉक्टर साहब, तमाम श्रोता आपको सुनने के लिए बड़े बेताब हैं, आपसे बात करने के लिए भी बेताब हैं, तो क्या हम उन्हें आपकी अनुमति ले लें कि उनके फोन कॉल्स आना शुरू करें?
0: बिल्कुल सर, स्वागत है
1: जी,
0: मुझे बड़ा हर्ष होगा।
1: क्या बात है। तो श्रोताओं, डॉक्टर साहब की अनुमति मिली है और हम सब आपसे ये गुजारिश करना चाहेंगे कि इस टेलीफोन नंबर का आप इस्तेमाल करें ताकि डॉक्टर साहब तक आपकी पहुंच बन जाए। टेलीफोन नंबर है 29-4-11-42, एसटीडी कोड 0744। डॉक्टर साहब एक श्रोता हमसे जुड़े भी हैं। नमस्कार
2: जी। नमस्कार।
1: नमस्कार साहब, नाम बताएं अपना।
2: मैं राकेश बात कर रहा हूँ।
1: राकेश जी।
2: जी जी।
1: हाँ जी, अपना स्थान बताएं, कहाँ से आप बोल रहे हैं और फिर बात करें।
2: जी मैं बात कर रहा हूँ शिमला से।
1: जी राकेश जी, प्रश्न कीजिए।
2: तो सबसे पहले तो मेरा डॉक्टर साहब को नमस्कार और प्रणाम।
0: नमस्कार राकेश जी।
2: जी जी, तो मैं आपसे ये मेरे दो प्रश्न आपसे ये है, जैसे कि आयुर्वेदिक से जैसे कि भूख ना लगना, उसके लिए कौन से जो है हमें आयुर्वेद का इस्तेमाल करना पड़ता है? और दूसरी बात ये है कि जैसे कि आजकल लोगों को कम सुनाई देना मतलब देता है कई बार, कई का क्या क्या लोग करते हैं।
1: आप राकेश जी अपना प्रश्न कीजिए।
2: जी जी।
1: हाँ जी।
2: तो और कान के लिए उसमें आयुर्वेदिक की दवाई कौन सी जैसे हमारा कान भी साफ रहे, ये दो प्रश्न मेरे।
0: आवाज कम आ रही है राकेश जी।
1: राकेश जी आपकी आवाज जरा कम मिल रही है।
2: जी जी जी।
1: आप तो एक बार
2: भूख ना लगना एक ये, एक और कान की समस्या के लिए कौन कौन सी जो है आयुर्वेद का इस्तेमाल करना चाहिए, ये मेरे।
1: भूख ना लगना और कान में क्या समस्या है आपको?
2: जैसे मेरे कान में एक समस्या ये है कि जैसे कि मेरा कान में जो है अंदर जो है पीक जो है सूखा पड़ता है, लेकिन मैं दवाई भी लाया था लेकिन दवाई से नहीं निकलता है, तो आयुर्वेदिक से मेरे को सलाह दी गई थी।
1: जी जी,
2: ये प्रश्न मेरा।
1: हाँ तो सुनिए।
0: बिल्कुल राकेश जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और ये जो आपने दो बातें बताई है, भूख ना लगना और कान की समस्या, तो सर इसमें आयुर्वेद का बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। भूख ना लगना जो है हमारी जठराग्नि मंद पड़ जाती है, उस वजह से ये होता है, हमें भूख नहीं लगती, क्योंकि हमारी आजकल लाइफ स्टाइल इतनी गलत चल रही है सर कि हम कब सोते हैं, कब उठते हैं, कभी भी हम कुछ खा लेते हैं तो वो डाइजेशन प्रक्रिया पूरी बिगड़ जाती है। आपकी उम्र जान सकता हूँ?
2: मैं तो 36 साल होने वाला हूँ।
0: हाँ तो अभी तो आप बिल्कुल यंग हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक तो आप अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा मैनेज करें, तला गला मिर्च मसाला जो है ये अनावश्यक ना लें, और समय पे भोजन लें, अल्प भोजन लें, तो निश्चित तौर पे आपको भूख लगेगी। साथ ही सर ये अभी योग चल रहा है, आप अभी एक महीने से हम योग प्रोटोकॉल से करवा रहे हैं, काउंटडाउन चल रहा है, अगर आपने किया हो तो बिल्कुल इसमें लाभ मिलेगा। और मैं मानता हूँ कि अगर आपने योग अभी तक नहीं किया है तो आप उसको कंटिन्यू कर लें। योग करने से आपके समस्त शरीर के सारे अंग अपने सुचारू कार्य करने लग जाएंगे और आपको भूख भी बराबर लगेगी, कब्ज भी नहीं रहेगी, पेट भी साफ होगा। और रही बात आपकी कान की जो समस्या है, वो तो जो है कान में प्रॉब्लम क्या है वो अभी हम यहाँ से पता नहीं कर सकते कि भाई क्या प्रॉब्लम है, लेकिन कान के लिए भी आयुर्वेद में बहुत अच्छा इलाज है। आप नज़दीकी औषधालय

0: में जाकर अपने कान को दिखा सकते हैं।
1: जी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
2: आपका भी, बहुत धन्यवाद राकेश जी। श्रोताओ, कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए फिर से आपको टेलीफोन नंबर बता दें, 29-4-11-42, STD कोड 0744। आशा करते हैं योग और आयुर्वेद पर आज के इस विषय का भरपूर लाभ लेंगे। नमस्कार नमस्कार नमस्कार
3: नमस्कार जी।
2: हाँ जी, आवाज पहुंच रही है आप तक?
3: जी बिल्कुल जी।
2: जी तो फिर अपना नाम बताइए, प्रश्न कीजिए, स्थान बताइए।
3: जी, मेरा नाम रामलाल बिश्नोई, गांव केलावा कला से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि एक योगी के लिए RVR और जीवन शैली क्या होनी चाहिए, और दूसरा मेरा ये सवाल है कि हम आयुर्वेद को अपनी जीवन शैली से जोड़ना चाहते हैं, जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री इस बात का बल दे रहे हैं, तो हम क्या किस प्रकार जोड़ सकते हैं?
2: रामलाल जी कहाँ से बोल रहे हैं, एक बार फिर बताएंगे।
3: जी मैं गाँव केलावा कला जिला जोधपुर से बोल रहा हूँ।
2: जोधपुर से जी। आपके प्रश्न के लिए और आपने जो आकाशवाणी से अपनी शिरकत की जुड़ाव लिखा, उसके लिए बहुत धन्यवाद, हम आपको पहले ही दे दें। जी सुनिए डॉक्टर साहब से।
0: नमस्कार रामलाल जी, जैसा कि आपने बताया कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस पे जोर दे रहे हैं, वो बिल्कुल सत्य है। सरकार का पूरा मोटो है कि हमारे देश के नागरिक स्वस्थ रहें, और अभी अभी जो है बहुत बीमारी और विषाक्तता हमारे देश में देखने को मिली है, तो जो है आप इसको जो है योग से लेकर, योग और आयुर्वेद से जोड़कर अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। नियमित योग करें, ज्यादा नहीं, सुबह उठकर 15 मिनट अगर आप सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, और जो हमारे प्रोटोकॉल में जो योग बताए गए हैं उनका, जैसे शरीर का चालन क्रिया है, प्राणायाम है, इसको अगर आप कंटिन्यूएशन रख लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपको किसी बीमारी से बचाव रहेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। और सर, प्राणायाम तो एक ऐसी विधा है हमारे पास, हमारी परंपरा है, हमारी विरासत है, कि इसमें कुछ नहीं लगता। सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में या सुबह जब भी आप सहज हो, उठकर प्राणायाम करें। प्राणायाम करने से हमारे पेट के अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब की मसाज हो जाती है, वो अपना वर्क करने लगते हैं, और उन्हीं की वही जब ऑर्गन बिगड़ने लगते हैं तो उसी से ही रोग उत्पन्न होते हैं। एक्चुअल में सर रोग कुछ नहीं होता, ये हमारी जो है गलत आहार विहार, गलत सोना उठने की जो अभी चल रहा है, उसकी वजह से रोग ज्यादा डेवलप हो रहे हैं।
2: जी और डॉक्टर साहब, वैसे कहते हैं कि हमारा जो शरीर है वो प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है, और प्रकृति कभी बीमार नहीं होती।
0: बिल्कुल सर बिल्कुल,
2: है ना। और आपने एक और बात कही कि रोग कुछ नहीं होता, यानी जब बीमार ही नहीं होगी प्रकृति तो फिर रोग किस बात का?
0: एक सर आपकी बात बहुत अच्छी बताई आपने, हमें देखो कहीं चोट लग जाती है
2: जी,
0: उस पर आप कोई दवाई मत लगाइए, सिर्फ उसकी केयर कीजिए, हमारी बॉडी अपने आप उसको हील कर लेती
2: है। वाकई,
0: तो ये ईश्वर की देन है हमारे शरीर में कि हम अपने आप को हील कर सकते
2: जी। लेकिन हमारी जो कार्यविधि है दिन भर की, वो इस तरह की है कि हम उससे हील करने के लिए रोकते हैं।
0: बिल्कुल सर,
2: तो हमें उस रोकने के लिए रुकावट लगानी पड़ेगी। डॉक्टर साहब बड़ी सीधी बात है जी, लेकिन हम उल्टे होकर इसे देख लेते हैं। एक श्रोता हमसे जुड़े हैं। नमस्कार। हेलो नमस्कार, आपका फोन लग गया है जी। नमस्कार, आशा करते हैं फिर से आप हमें कॉल करेंगे। श्रोताओं, इस कार्यक्रम से जुड़ाव के लिए टेलीफोन नंबर है 29-4-11-42, STD कोड 0744। जी नमस्कार।
4: हेलो।
2: हाँ जी नमस्ते।
4: नमस्ते साहब, नमस्ते।
2: नाम बताइए साहब।
4: चीतरलाल मरमिट बोल रहा हूँ, ग्राम पायला जिला बालाघाट।
2: चीतरलाल जी कैसे हैं आप?
4: बैठे ही करीब
2: जी जी जी।
4: योग प्रणाम कर रहा है।
2: हाँ जी, क्या आपका नियमित है?
4: हाँ नियमित
2: जी। चीतरलाल जी, इससे पहले कि आप हमसे प्रश्न पूछें, हम एक प्रश्न आपसे करें।
4: हाँ करो।
2: योग जो दुनिया भर को भारत ने दिया, इस पर आपको कितना गर्व है?
4: मुझे तो पूरा विश्वास है, मेरे फायदा दिए।
2: फायदा भी है जी।
4: फायदा दिए, पूरा विश्वास है, पूरा गर्व भी है। ये भी गर्व मैं योग कर रहा हूँ।
2: क्या बात है।
4: 2013 से नियमित हूँ मैं।
2: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
4: 2013 ड्यूटी पे था ना, जो टाइम नहीं मिलता था।
2: अच्छा, अब चीतर जी आपके शब्द दूसरों को भी बहुत प्रेरणा देंगे, अब आपका प्रश्न कीजिए।
4: मेरा दो प्रश्न है, एक तो ये है कि उधर खाए हैं या
2: बंद? आपकी आवाज नेटवर्क की वजह से जरा कम हो गई थी।
4: अंकुरित, अंकुरित अनाज,
2: अंकुरित अनाज खाएं या न खाएं?

0: नाज रेगुलर खाएं या बीच बीच में उसको तो बंद करें?
1: डॉक्टर साहब नमस्कार, शीतल लाल जी आपकी बातें सुनी, बहुत खुशी मिली मुझे कि आप नियमित योग कर रहे हैं 2013 से
2: जी,
1: और आपको उससे लाभ भी प्राप्त हो रहा है, बहुत बहुत खुशी की बात है ये हमारे लिए और आप सभी हम सभी के लिए।
0: उम्र 70 साल में भी।
1: अच्छा, अरे वाह,
2: बहुत बढ़िया, बहुत
1: बहुत खूबसूरत सर, बहुत बढ़िया। आप, मैं आपसे एक निवेदन और करूंगा चितरलाल जी, कि आप जो ये अमल में ला रहे हैं इसको समाज में भी दें। अगर आप नियमित योग कर रहे हैं तो आप तो बहुत महारत हासिल कर ली होगी इतने सालों में, तो आप जो है इसकी क्लासें भी लगाएं अपने गांव में, क्षेत्र में, और इस विद्या को जो है आप बांटें, मेरे आपसे अनुरोध है।
2: क्या बात। और
1: रही बात आपने जो पूछा है कि अंकुरित अनाज हमारे शरीर में क्या फायदा करता है, तो निसंदेह है
0: इसको रेगुलर खाएं या बीच में बंद करना चाहिए?
1: नहीं सर, इसको आप अल्प मात्रा में रेगुलर ले सकते हैं, बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कोई हार्म नहीं पहुंचा रहा है कुछ, ऐसे कई लोगों को गैसेस क्रिएट करता है कुछ लोगों को, तो अगर आप इसको सहज हैं तो आप इसको रेगुलर ले सकते हैं अल्प मात्रा में रोजाना। प्रोबायोटिक का काम करता है ये, हमारी आंतों को जो है बहुत नरम मुलायम और अच्छा रखता है। और चितरलाल जी योगासन में आप क्या क्या करते हैं थोड़ा मुझे बताएंगे?
0: आठ लोग क्रिया है उसकी करता हूँ।
1: बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया।
0: और आठ दिन आप लोग दूसरे दूसरे करता हूँ।
1: देखिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। योग प्राणायाम, ये जो है योग जो है सर, एक प्रथम पॉइंट है हमारे स्टार्ट होने का। इसमें जो है सर, आगे हम जो है योग से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि तक जाते हैं। लेकिन ये एक पहल है, क्योंकि लाइन जब हम खींचते हैं तो पहली बिंदु से ही खींची जाती
2: है। क्या बात है साहब, क्या बात।
1: तो ये योग से अगर हमारे देशवासी अगर नियमित हो रहे हैं, अपने अनुशासित हो रहे हैं, तो निसंदेह वो आगे और भी अपने आप को अनुशासित करेंगे और बहुत अच्छा हमारा समाज डेवलप होगा।
2: जी चितर जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं मिल पा रही है, लेकिन आपका जो भाव है वो डॉक्टर साहब तक और तमाम श्रोताओं तक पहुंचा है। आशा करते हैं कि आप शतायु हों और स्वस्थ जीवन आप बिताएं। नमस्कार।
3: हाँ जी नमस्कार सर।
2: जी साहब नमस्कार, कौन साहब?
3: मैं राजसमंद जिले से बोल रहा हूँ।
2: जी नाम बताएंगे?
3: BL दवे।
2: BL दवे साहब, बहुत स्वागत करते हैं आपका। कैसा लग रहा है चंबल चैनल का कार्यक्रम आपको?
3: बहुत बहुत अच्छा, मैं डेली सुनता हूँ।
2: जी बहुत सुंदर।
3: तो आपको डॉक्टर साहब को नमस्कार, बहुत बहुत
1: बहुत बहुत नमस्कार दवे साहब,
3: और ये योग दिवस की भी आपको शुभकामनाएं।
1: बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सर, योग दिवस हमारा जो है गर्व है, गर्व की बात है सर।
3: हाँ जी, तो मैं ये पूछना चाहता था
1: जी
3: कि सर मैंने अभी तक कोई योग किया नहीं है, मेरी उम्र है करीब 65 साल की
1: जी,
3: तो अब मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा?
1: बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छी पहल है आपकी। हाँ, किसी भी अच्छी बात की शुरुआत करने की कोई उम्र नहीं होती सर।
2: ऐसा कहते हैं ना साहब, शुभस्य शीघ्रम।
1: बस जब आपका मन करे अच्छे काम के लिए, वो बहुत स्वागत योग्य कदम है। आपकी 65 साल की उम्र बताइए, तो ये तो बहुत अच्छी, अभी कोई इसको वृद्धावस्था नहीं कहेंगे, इसमें आप कर सकते हैं। अगर आपका मन,
3: क्या स्टार्ट करना, कैसे क्या करना, मेरे को इस बारे में अभी तक कुछ आइडिया नहीं है।
1: हाँ दवे साहब, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो जो है आप योग के लिए नियमित प्रातःकाल शौच इत्यादि से निवृत्त होकर चालन क्रिया का अभ्यास करें कुछ दिनों तक। चालन क्रिया में हमारे जो भी ज्वाइंट्स हैं उनको घुमाया जाए, जैसे कि उंगलियों को, हथेलियों को, कोहनी को, कंधे को, गर्दन को, कमर को, जितना आप महसूस कर सकें, जितना आप सहज हो उतना चालन क्रिया का अभ्यास करें शुरू के जो है एक सप्ताह तक, है ना। उसके बाद आप धीरे धीरे बैठकर योगासन प्रारंभ करें। योगासन के सारे जो है गवर्नमेंट के द्वारा बताए गए प्रोटोकॉल CYP 45 मिनट का है हमारा कॉमन योगा प्रोटोकॉल। तो आप कहाँ रहते हैं सर, ये बताएं पहले।
3: मैं अपने राजसमंद जिले में केलवा करके एक मार्बल मंडी है पूरी।
1: बिल्कुल सर, वहाँ पे एक आयुर्वेदिक औषधालय भी होगा।
3: हाँ है सर, हमारे गांव में है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप उन वेद जी डॉक्टर साहब के पास जाकर संपर्क करें और उनसे आप योगा का प्रोटोकॉल ले लें कि सर मुझे कैसे करना है, तो वहाँ पे वो आपको एक पेपर दे देंगे, उसके अनुसार आप नियमित उनसे संपर्क करके योग करें। और प्राणायाम करें सर नियमित, सांसों का जो गति को हम जो है अपने स्थिर करते हैं शरीर में, सांस लेना छोड़ना ये

0: प्राणायाम की विधा है, इसको आप अपने डॉक्टर साहब से संपर्क करके ले। और योग करने के लिए सर कोई उम्र का वो नहीं है, सभी लोग कर सकते हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: और अच्छा लगा दवे साहब आप इस योग करने पे आ रहे हैं, तो बिल्कुल मैं आप समझता हूँ कि आप अगर नियमित करेंगे तो 2-4 महीने में ही आप इसके बहुत अच्छे हो जाएंगे।
1: बहुत अच्छी बात है सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपसे बात कर।
2: जी बीएल दवे साहब, इसी तरह से प्रेरित आप रहें और औरों को भी प्रेरित करें कि शुरुआत की कोई उम्र नहीं होती, किसी काम को शुरू करने के लिए हमें उम्र नहीं देखनी चाहिए। डॉक्टर साहब, यहाँ एक बात करने का मन कर रहा है। स्वामी शिवानंद जी, उन्होंने लगभग 125 से भी ऊपर की अवस्था में योग के द्वारा अपने आप को स्वस्थ रखा और आप पद्मश्री भी हुए, और योग की ही देन है कि वो इस अवस्था तक भी जब पुरस्कार प्राप्त करने गए तो साष्टांग दंडवत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने किया। और इस अवस्था में जबकि लोग ऐसा मानते हैं कि हलचल में भी बड़ी दिक्कत आती है, उन्होंने अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रखा। तो ये सब कुछ योग की ही देन है, प्रकृति के साथ चलने की देन है।
0: बिल्कुल सर, ये जो आपने शब्द कहा प्रकृति के साथ चलना, प्रकृतिमय हो जाना, ये बहुत 105 साल आप बता रहे हैं,
2: 125 से भी ऊपर,
0: 125 बहुत बढ़िया, बिल्कुल योग से ही हो सकता है
2: जी।
0: इसके ऊपर मैं आपको एक छोटा सा श्लोक सुनाना चाहता हूँ महर्षि पतंजलि का
2: जी।
0: योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्थ च वेदकेन यो पाक रोक्तम प्रवरम मुनिना पतंजलि प्रांजलि रानतो अस्मित। मतलब चित्त की जो है विकृति हम योग से रोक सकते हैं, शरीर की विकृति हम वेद की मतलब चिकित्सा से रोक सकते हैं, और पदों की विकृति हम व्याकरण से रोक सकते हैं।
2: वाह।
0: तो इसी तरह सर हम महर्षि पतंजलि को प्रणाम करते हैं और उनका आह्वान करते हैं कि वे उन्होंने हमें योग दिया है, और योग से हम आयु को भी रोक सकते हैं। योग सिर्फ शरीर को ही नहीं सर, मन को भी सशक्त बनाता है। जैसा कि आपने बताया 125 वय अवस्था में वे योग कर रहे हैं, योग गुरु हैं
2: जी।
0: तो बिल्कुल सर ये हो सकता है और ये है, सिद्ध है, अगर हम योग को नियमित करें। एक्चुअल में सर आजकल हो क्या रहा है, मैं आपको छोटी सी मन की बात बताता हूँ
2: जी।
0: योग को लेकर कई दुकानें चल रही हैं सर, है ना
2: जी।
0: वो योग क्यों करें, हम शरीर बनाने के लिए करना चाहते हैं, हम सुडोल बनना चाहते हैं, आकर्षक दिखना चाहते हैं
2: जी, जी।
0: ये योग नहीं है सर।
2: हाँ।
0: योग स्वार्थ के लिए कभी नहीं किया जाता।
2: क्या बात है।
0: योग समाज और हमारी अंतर आत्मा के लिए किया जाता है। अष्टांग योग में एक प्रकार बताया गया प्रत्याहार
2: जी। जी,
0: प्रत्याहार का मतलब होता है इंद्रियों पे काबू करना।
2: वाह।
0: हम दूसरों के प्रति किस नजरिया रखते हैं, दूसरों को हम हार्म नहीं पहुंचाना चाहते हैं, ये सब योग का पार्ट है।
2: बहुत सुंदर।
0: लेकिन आज के जमाने में जो योग की जो दुकानें चल रही हैं, वो सिर्फ अपने आप को सुडोल दिखना, सुंदर बनाना, आकर्षित करना, उसका ये नहीं, इसको योग नहीं कहते सर।
2: आकर्षण हमारे मन के भीतर का भाव
0: होना चाहिए, आत्मा से जुड़ना, परमात्मा से जुड़ना योग।
2: बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब आपसे और तमाम बातें करेंगे। श्रोताओं को बता दें, श्रोताओं आज आपकी सेहत कार्यक्रम में जो विषय है वो है आयुर्वेद और योग। इस विषय पर अभी तक हमारे आज के अतिथि विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सिंह मीना, उन्होंने बहुत ही सुंदर बातें कही। आशा हमें यह है कि आपको भी बहुत ही सुंदर अभी तक की बात लगी होगी। और यदि आप डॉक्टर साहब से जुड़ना चाहें तो टेलीफोन नंबर है 29-4-11-42, STD कोड 0744। हमारे आज के अतिथि के बारे में हम आपको परिचय एक बार फिर दे दें। आप उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग जिला कोटा में पदस्थ हैं। डॉक्टर साहब एक श्रोता हमसे जुड़े हैं। नमस्कार।
1: हाँ जी,
2: नमस्कार।
1: नमस्कार जी
2: साहब, आपने बहुत धैर्य रखा, उसके लिए हम आपको विनम्र प्रणाम करते हैं।
1: हाँ, बूंदी कोटा से बोल रहा हूँ।
2: नाम बताएं।
1: सर मैं भी जुड़ा रहता हूँ।
2: हाँ, लेकिन नाम तो होगा आपका?
1: लक्ष्मी नारायण मीणा।
2: लक्ष्मी नारायण जी, बहुत स्वागत है आपका, कीजिए अपना प्रश्न।
1: हाँ जी, बहुत आपका भी
2: जी।
1: मैं कोटा आता हूँ दूध देने।
2: अच्छा, दूध देते हैं आप?
1: हाँ।
2: क्या बात है। और आप आज फोन के माध्यम से जुड़ गए?
1: दिन में भी आपका प्रोग्राम होता है तो मैं सुनता हूँ सर।
2: अच्छा, तो आज इस प्रोग्राम को सुनकर अभी तक कैसा लगा आपको?
1: बहुत अच्छा।
2: तो फिर कुछ प्रश्न है मन में?
1: सर प्रश्न तो है, मेरे फादर हैं जो उनके ये पैर है ना जो घुटने में क्या है उनको

0: थोड़ा दिक्कत है, पैर भी टेढ़े हैं
1: जी,
0: और दर्द भी है। वो डॉक्टर से करवाया था अपने चेकअप, जो उन्होंने बोला कि वो घिस गए हैं।
1: अच्छा,
2: कार्टिलेज घिसना जिसे शायद।
1: जी जी जी, समझ रहा हूँ मैं लक्ष्मी नारायण जी, आपकी बात समझ रहा हूँ
0: जी सर।
2: आप चाहते हैं योग किस तरह से किया जाए कि उन्हें लाभ मिले
0: जी,
2: है ना?
1: उनकी उम्र क्या है पिताजी की? 70 है, और घुटनों में तकलीफ है उनको
0: काफी टाइम से सर, वो 50 से चल रहे हैं।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो 55।
1: हाँ लक्ष्मी नारायण जी, इसके लिए आप सबसे पहले तो एक आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श लें, उनसे ट्रीटमेंट।
0: अपने अपने नयापुरा सब्जी मंडी वाला है ना?
1: जी हाँ जी हाँ जी,
0: उसमें जाते हैं सर।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप उनका ट्रीटमेंट कराएं, और अगर घुटनों में तकलीफ है तो वो योग जो करेंगे ना, वो प्राणायाम वगैरह बैठकर करें, उससे शुरुआत करें, और घुटनों में ज्यादा जोर जबरदस्ती वाला योग ना करें। मैं तो ये सलाह दूंगा कि उनकी तकलीफ कैसी है, कितने ग्रेड की है, वो मैं अभी रेडियो पर रह के समझ नहीं पाऊंगा, तो आप अपने चिकित्सक से सलाह लें। वो बैठने वाला योग जो है, प्राणायाम है, गर्दन के ऊपर की चालन क्रियाएं कंधों की हैं, उनको आप नियमित पिताजी को करवा सकते हैं जितना वो कर सके।
0: सर वो ऑपरेशन के भी बोलते हैं बहुत से तो।
2: लक्ष्मी नारायण जी, यहाँ पर आपको हम एक सलाह देना चाहेंगे कि अपने डॉक्टर से जाकर के ये पूछें कि उन्हें किस तरह का व्यायाम करना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या ये बात सही है?
1: जी सर बिल्कुल, क्योंकि हम अभी बता नहीं पाए,
2: यहाँ नहीं बता सके,
1: लेकिन हाँ प्राणायाम वगैरह वो बिल्कुल कर सकते हैं, सांसों का कर सकते हैं।
2: ठीक है लक्ष्मी नारायण जी,
0: सुबह सुबह का वॉकिंग वगैरह।
2: हाँ जी हाँ जी, ठीक है,
0: धन्यवाद
2: आपका भी, बहुत धन्यवाद। रेडियो सुनकर आपने प्रश्न किया, और आपके माध्यम से जन जागरूकता भी ऐसे ही व्याप्त होगी। डॉक्टर साहब, कितनी सहज बात है कि आम व्यक्ति एक चिकित्सक जो कि आकाशवाणी में आते हैं, उनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं।
1: बहुत बहुत खुशी की बात है सर कि हम जो है एक आम व्यक्ति तक अपनी पहुंच आकाशवाणी के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। और मैं सभी लोगों को एक बात और कहूंगा
2: जी,
1: कि योग जो है, अगर हम अपने बच्चों को बचपन से ही अगर इसमें सिखाएं और इस क्षेत्र में उतारते हैं, तो वो बच्चे जो हैं योग के साथ साथ एक अनुशासित समाज हम पैदा कर सकते हैं। क्योंकि हम तो देखो वयस्क हो गए, बड़े हो गए, हमारे बुजुर्ग हैं, उनको हम एकदम से मोल्ड नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम आने वाली पीढ़ी को अनुशासन समाज दे सकते हैं, और वो हमारे हाथ में है। तो मैं चाहता हूं कि जो भी 6th क्लास से ऊपर के बच्चे हैं, उनके लिए योग की क्लासें हों, नियमित उनको सिखाया जाए। अभी अभी जो है सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है सर हमारे पास, हमारे कोटा जिले में 31 जो है वेलनेस सेंटर खोले गए हैं।
2: वेलनेस
1: जी सर जी, आयुष्मान आरोग्य मंदिर
2: जी। एक श्रोता हमसे जुड़े,
1: बिल्कुल बिल्कुल सर,
2: नमस्कार। हाँ जी नमस्कार।
3: हाँ नमस्कार सर।
2: हाँ जी, नाम बताएं साहब।
3: बेरूलाल बोल रहा हूँ, लीलड़ा बेसन।
2: क्या नाम बताया?
3: बेरूलाल, लीलड़ा बेसन।
2: ढोलूलाल जी,
1: भेरूलाल जी,
2: भेरूलाल जी,
3: भेरू बेरूलाल,
2: भेरूलाल जी जी, कीजिए अपना प्रश्न। हाँ।
3: सर वहाँ प्रोग्राम देने आया था आपके पास भी।
2: अरे अरे साहब, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा हमें जी।
3: अब आप प्रोग्राम दिया था।
2: हाँ जी, अब आप इस कार्यक्रम में क्या प्रश्न करना चाहेंगे?
3: अब तो इसी दिन चालू करना है ना सर।
2: आप ये बताइए, इस कार्यक्रम में कोई प्रश्न है आपके लिए?
3: हाँ प्रश्न भी है सर।
2: हाँ प्रश्न कीजिए,
1: पूछिए।
3: क्या गुरु माँ के नीचे मेरा पैर टूट रहा है सर?
1: पैर टूट रहा है?
3: हम्म,
1: घुटने के नीचे
3: पाड़ी टूट रही है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा,
2: आप समझ सके डॉक्टर साहब?
1: हाँ बता रहे हैं कि पैरों में चोट है शायद, है ना आपको?
3: हाँ टूट रही है,
1: हड्डी टूट गई
3: है। आवाज आती है सर।
1: अच्छा अच्छा, बाकी चलते फिरते हैं आप, चल सकते हैं?
3: हाँ चलते तो है ना, पर दुखती है ना सर।
1: हाँ तो सर ये विषय जो है अपने चिकित्सक से परामर्श ले लें आप, कि भाई वही बात है जो मैं पहले बताया है
2: जी,
1: और उसमें आप जो है पैरों वाला योग, घुटने वाला योगासन ना करें अगर इस तरह की समस्या है, और आप अपने नजदीकी औषधालय में आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिलकर इस बारे में परामर्श ले लीजिए।
2: आप कहीं मिले हैं कभी?
1: घास काट रहा था।
2: आप कभी मिले हैं चिकित्सक से आयुर्वेद औषधालय में?
3: हाँ मिले था।
2: अच्छा ठीक है, तो उन्हीं की परामर्श आप लीजिएगा। कहाँ से बोल रहे हैं भेरूलाल जी?
3: लीलड़ा व्यसन।
1: लीलड़ा व्यसन, अच्छा अच्छा अच्छा,
2: ठीक है
3: जी। खेत के पास में खेत में काटने गया था, वो धान काट रहा था
2: जी।
3: हाँ चारों निर्भर सर, एक जना
1: बिल्कुल।

0: बिल्कुल आप इसका इलाज कराए।
1: ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और सभी के साथ अच्छा व्यवहार होगा तो हमारे प्रति भी लोगों का अच्छा व्यवहार होगा।
0: अच्छा लगा
1: इस बात का ख्याल रखिएगा। बहुत बढ़िया लगा आपने बात की जी। डॉक्टर साहब, वेलनेस सेंटर्स की आप बात कर रहे थे।
0: सर बिल्कुल, वेलनेस सेंटर्स सरकार ने खोले हैं सर, और इतनी अच्छी पहल है गवर्नमेंट की कि उसमें जो है प्रत्येक वेलनेस सेंटर में योग प्रशिक्षक लगाए हैं, एक पुरुष और एक महिला
1: जी।
0: और साथ में सर हमें हमने जो है वहाँ के जो बच्चे हैं स्कूल के जो जागरूक बच्चे हैं उनको आयुष मित्र और आयुष सखी के नाम से हमने उनको प्रेरित किया है, बनाया है।
1: बहुत सुंदर,
0: ताकि बच्चों के अंदर इस भावना को हम पैदा कर सकें।
1: बहुत ही खूब,
0: सरकार की बहुत अच्छी पहल है सर। गवर्नमेंट बहुत अच्छा सोचती है, बस उसको अमल में लाना हमारा काम है।
1: वाकई,
0: और निसंदेह हम एक अच्छा समाज का निर्माण करेंगे सर।
1: और ये तो हमारे स्वयं के भले के लिए भी है।
0: बिल्कुल।
1: डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में एक छोटा सा अंतराल हम लेते हैं।
0: बिल्कुल।
2: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग जिला कोटा। एक अपील।
3: मैं डॉक्टर प्रवीण सिंह मीना, उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग जिला कोटा, सभी कोटा वासियों से अपील करता हूं कि 21 जून 2026 को मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी नागरिक अपने नजदीकी विद्यालयों, आयुर्वेदिक औषधालयों में जाकर योग दिवस का हिस्सा बने और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना विश्व स्तर पर साकार करने के लिए आगे बढ़े। योग सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि मन को भी सशक्त बनाता है। मन प्रश्नोपायो योग इति विधीयते, यानी मन की शांति का उपाय ही योग है। धन्यवाद।
4: दूर हुआ रोगों का।
1: सजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी सेहत, श्रोताओ आप सुन रहे हैं चंबल चैनल पर। आज का विषय आयुर्वेद और योग। हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सिंह मीना, उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग जिला कोटा।
5: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं सुवी नेत्र चिकित्सालय एवं लेसिक लेजर सेंटर तलवंडी कोटा। फोन नंबर 9351412449।
6: अब लेसिक लेजर से पाए चश्मे से आजादी। विश्व की सबसे आधुनिकतम अमेरिकन सिग्नेचर फेको मशीन द्वारा बिना इंजेक्शन, बिना टांके और बिना पट्टी बांधे मोतियाबिंद ऑपरेशन और लेंस प्रत्यारोपण।
5: आपके पर्दे की सभी बीमारियों की जांच एवं ऑपरेशन सुविधा उपलब्ध। लेसिक लेजर सर्जरी, फेकिंग लेंस इम्प्लांटेशन, डिजिटल फंडस कैमरा से आंखों के पर्दों की जांच एवं एंजियोग्राफी, पानी ग्रिल लेजर मशीन से मधुमेह रोगियों के पर्दे की सिकाई,
6: जटिल भेंगापन एवं काला पानी जांच और ऑपरेशन सुविधा।
5: सुवी नेत्र चिकित्सालय एवं लेजिक लेजर सेंटर तलवंडी कोटा।
1: डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका अभिनंदन करते हैं। अभी तक आपने बहुत ही सुंदर बातें बताई, हमारे श्रोता भी इससे बहुत प्रभावित होंगे ऐसा हम मानते हैं। श्रोता, आज का विषय कार्यक्रम में आयुर्वेद और योग पर है। विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सिंह मीना जी, उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग जिला कोटा में, और डॉक्टर साहब एक श्रोता हमसे जुड़े हैं।
0: बिल्कुल सर।
1: नमस्कार साहब।
7: हाँ भैया नमस्ते, योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़।
1: योगेश जी बहुत स्वागत है आपका, क्या प्रश्न है आज?
7: हमारी जी ज्ञासा ये है भैया, जैसे एक सामान्य व्यक्ति है जो सामान्य जीवन शैली जी रहा है और एक जैसे कुछ छोटी मोटी रोगों से ग्रसित है, तो आयुर्वेद और योग का जो सामंजस्य है ये किनको ज्यादा फायदेमंद रहेगा?
1: प्रश्न अति उत्तम है।
0: बहुत अच्छा प्रश्न है योगेश जी। देखिए, इस शरीर के ऊपर तो रोग मंडराते ही रहते हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ होता ही रहता है, और अगर हम अच्छा सामान्य शैली से जीवन जी रहे हैं, अच्छा खान पान रख रहे हैं, उसका ध्यान रखते हैं, तो उन रोगों से जो है हम बिल्कुल बचाव कर सकते हैं। और आपका प्रश्न है कि आयुर्वेद और योग से
1: इस सामंजस्य से हम किस तरह से बेहतर
0: हो सकते हैं? सर, आयुर्वेद जो है अगर आप जुड़ के रहेंगे आयुर्वेद से तो निश्चित, जैसे कि अभी सर ने बताया कि एक मुनि है जो 125 वर्ष की अवस्था में भी उन्होंने प्रधानमंत्री जी से पुरस्कार लिया है
1: जी।
0: ये आयुर्वेद का चमत्कार है, ये इसको हमें अपनाना चाहिए। और नियमित योग करें जांगड़े जी आप, और अच्छा आहार विहार लें, उससे आपका शरीर ही नहीं मन भी बहुत प्रसन्न रहेगा, और जब मन प्रसन्न रहेगा तो उत्तम विचार आएंगे, उत्तम विचार आएंगे तो हम समाज में जो है उसको फैला सकेंगे, और उसको जो है अपने समाज को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, आप योग से जुड़े रहें, आयुर्वेद से जुड़े रहें। मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में भी आयुर्वेदिक औषधालय तो होंगे ही वहाँ पे
7: जी,
0: तो वहाँ भी योग होता है। अभी 21 तारीख को आप जरूर योग दिवस

0: के दिन वहाँ जाएं जहाँ भी योग हो रहा है और उसका हिस्सा बने। साथ ही सर मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि एक योग संगम पोर्टल का हमने बहुत प्रचार किया है
1: जी,
0: उस पे सभी नागरिक अपने योग संगम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करें अपने मोबाइल नंबर से, एक ओटीपी आएगा, उसके बाद आप जहां भी योग करने जाते हैं 21 तारीख को उसको अपलोड करें और वहां की फोटो भी अपलोड करें, उससे आपको एक सर्टिफिकेट ऑनलाइन मिलेगा, तो उससे भी जुड़िए आप सब लोग।
2: जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: आपका भी शुक्रिया योगेश जी। डॉक्टर साहब, ये जो आपने संगम पोर्टल का जो जिक्र किया है उसमें ये कि सर्टिफिकेट मिलेगा, उससे हम प्रेरित होंगे और भी प्रेरित।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, ये आयुर्वेद मंत्र आयुष मंत्रालय भारत सरकार की पहल है। उसमें जैसे हम खोलते हैं गूगल पर आयुष मंत्रालय, तो योग संगम करके एक लिंक आता है
1: जी,
0: उसको आप उसमें जाएंगे और उसके अपना नाम मोबाइल नंबर लिखेंगे, मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, आप कहाँ रहते हैं, योग कहाँ कर रहे हैं उसके बारे में अपनी जानकारी लिखेंगे, उसके बाद आपको जो है योग दिवस के बाद एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा, उसको आप निकलवा के अपने लगा सकते हैं, जड़ा सकते हैं और लोगों को प्रेरित कर सकते हैं।
1: क्या बात है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न है कि जिस तरह से एक अवस्था के बाद में कुछ तकलीफें लोगों को महसूस होने लगती है, जिस तरह से जोड़ों का दर्द, खासतौर पर घुटनों का, जो यहाँ तक कि नी रिप्लेसमेंट तक की उन्हें नौबत आ जाती है, डॉक्टर साहब ये आपके जो प्रेरक शब्द हैं हमारे तमाम श्रोताओं के लिए उपयोगी रहेंगे कि क्या ये संभव है कि अगर वो, जैसे आपने बताया कि जो बच्चा छठी क्लास में है वहीं से अगर वो योग शुरू कर देता है या बाद की अवस्था में भी शुरू करता है, तो काफी ये संभव है कि इस तरह की तकलीफें उनके जीवन में ना आए?
0: बिल्कुल सर, बिल्कुल संभव है। योग अगर नियमित करें, आहार विहार का पालन करें, तो इस तरह की तकलीफ नहीं आती है। देखिए सर, मैं छोटी सी बात बताता हूँ कि ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो हैं, इन्होंने हमें घेर रखा है सर
1: जी, जी।
0: और एक छोटे संक्षेप में बताऊंगा, इन बीमारियों का नाम है ABCD।
1: ओ, ABCD।
0: ए फॉर अस्थमा, बी फॉर ब्लड प्रेशर, सी फॉर कैंसर और डी फॉर डायबिटीज
1: जी।
0: ये बीमारियां नहीं है, ये हमारी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है
1: जी।
0: और अगर ये किसी को है तो मैं उनसे कहता हूं कि ये बीमारी नहीं है, इसको आप रिवर्स कर सकते हैं। आप अभी भी मौका है अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके अपने आयुर्वेद जीवन शैली और प्राकृतिक के नजदीक आए, आप इस बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं, ये बिल्कुल सत्य है।
1: आपने बता दिया लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर
0: है,
1: हमें ये ऑर्डर में लानी पड़ेगी।
0: हाँ बिल्कुल, ऑर्डर में लानी पड़ेगी, अनुशासन में लानी पड़ेगी। ये कोई बीमारी नहीं है, ये सिम्टम है, हमारी बॉडी को बता रहे हैं कि आप गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो,
1: वार्निंग है,
0: वार्निंग है सर
1: जी जी।
0: और अगर किसी को ये है भी तो वो वापस रिवर्स हो सकता है।
1: क्या बात है डॉक्टर साहब, आपके शब्दों की जो दृढ़ता है वो वाकई में जीवन में अमल में लाने की है
0: जी,
1: और इससे बिल्कुल सकारात्मक हमें जीवन शैली मिल जाएगी और हमें स्वस्थ शरीर मिल जाएगा। एक श्रोता जुड़े हैं हमसे, नमस्कार
3: जी। नमस्कार,
1: हाँ जी, प्रश्न करें साहब, नाम बताएंगे अपना?
3: जी, मैं अर्जुन जाट बोल रहा हूँ।
1: अर्जुन जी
3: जी,
1: प्रश्न कीजिए अपना।
3: जी मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि मेरी वाइफ को पहले कम से कम 3-4 महीने ये हुआ था, क्या बोलते हैं वो, टाइफाइड
1: हुआ था जी।
3: हाँ, तो तब से वो तो ठीक हो गया बिल्कुल, लेकिन वो गले में खराश है, वो मिट नहीं रही है।
1: हाँ जी, सुनिए।
0: बिल्कुल अर्जुन जी, ये जो बीमारियों के बाद जो हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, उससे जो है सेकेंडरी डिसीजेज वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम होती है हमको, तो उसके लिए अगर आप बीमारी से निवृत्त हो गए हैं टाइफाइड से, तो आप उनको सलाह दें कि नियमित जो है प्रातःकाल उठकर प्राणायाम का अभ्यास करें। प्राणायाम करने से गले की समस्त बीमारियां से ठीक होंगी और आवाज भी ठीक होगी, खराश भी ठीक होगी। तो मेरा तो ये मानना है कि आहार विहार मौसम के अनुसार लें, जो उनके शरीर को सूट हो रहा है वो लें और प्राणायाम करें, आप देखिए 15 दिन में ही आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। और सिर्फ आपकी वाइफ ही नहीं, आप भी सभी घर भर के बैठ के प्राणायाम को कंटिन्यू करें सर।
1: ठीक है अर्जुन जी
3: जी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपके शब्दों की दृढ़ता के लिए हम एक बार फिर से आपको साधुवाद देना चाहेंगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। डॉक्टर साहब, आप उपनिदेशक हैं आयुर्वेद विभाग जिला कोटा में, इस नाते हम आपसे दो खास बातें और करना चाहेंगे। एक तो ये कि आपकी अपनी जीवन शैली क्या है, क्योंकि जब हम कोई शब्दों का प्रयोग करते हैं और उसे खुद पहले अपनाते हैं तब उनका असर बहुत होता है। तो हम यही चाहेंगे हमारे श्रोताओं को इस ओर आकर्षित किया जाए। दूसरा प्रश्न हम इसके उत्तर के बाद आपसे पूछेंगे।

0: बिल्कुल सर, क्योंकि पहले हम सुधरेंगे तभी हम समाज को सुधार सकते हैं। यह आपका बिल्कुल कहना सोचना बिल्कुल सही है। देखिए, मेरी जीवन शैली यही है कि प्रातः काल उठकर मैं जो है अपने शोष निवृत्त आदि से फ्री होकर जो है थोड़ा सा मैं व्यायाम करता हूँ। नियमित नहीं कर पाता, कई बार जो है इतने काम होते
1: हैं।
0: बिल्कुल सर, तो मैं सुबह नहीं कर पाता तो शाम को जरूर करता हूँ। मैं जिद करता हूँ कि मैंने आज क्यों नहीं किया। और अगर मेरा एक दिन स्किप हो जाता है सर, तो दूसरे दिन मैं डबल करता हूँ, अपने आप को ज्यादा मेहनत करता हूँ।
1: क्या बात है,
0: बिल्कुल
1: क्या बात है।
0: और सैटरडे संडे को तो मेरा एक एक घंटा जो है व्यायाम में निकलता ही है।
1: बहुत सुंदर,
0: बिल्कुल सर,
1: बहुत सुंदर। क्या बात है डॉक्टर साहब, ये हमारा पहला प्रश्न जिसका आपने उत्तर दिया, और हमारे श्रोताओं को ये आपने बताया कि जिद करना चाहिए बेहतर काम के लिए।
0: बिल्कुल सर, अपने बॉडी को आप जितना तड़पाएंगे उतनी वो आपकी आज्ञा मानेगी
1: जी,
0: और जितना आप उसको रिलैक्स कर देंगे वो आप पे हावी हो जाएगी।
1: बिल्कुल, तब कर ही कुंदन मना जाएगा
0: जी।
1: डॉक्टर साहब, अब आपसे हमारा दूसरा प्रश्न जो है खास, वो ये कि आप उपनिदेशक हैं आयुर्वेद विभाग में, इस नाते कल का जो विशेष आयोजन हमारे कोटा शहर में हो रहा है, कोटा जिले में हो रहा है, वो कहाँ कहाँ हो रहा है और वहाँ कौन कौन जा सकते हैं, किस तरह से जा सकते हैं, उन्हें वहाँ जाने के लिए, वहाँ एंट्री लेने के लिए किसी तरह की प्रमाण पत्र की, किसी टिकट की या कोई परमिशन की आवश्यकताएं हैं?
0: सर बिल्कुल, कोटा जिला जो है इस मामले में पहले भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है 2018 में
1: जी।
0: वो कोटा के नागरिकों को मैं बहुत हार्दिक बधाई, तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि वे लोग आयुर्वेद और योग से जुड़े हुए हैं। हमारे माननीय कलेक्टर साहब श्रीमान जी पीयूष सामरिया साहब का आयुर्वेद और योग के प्रति बहुत लगाव है, मैं अभी उनके संपर्क में आया हूं, और उन्होंने कोटा शहर में 11 जगह योग दिवस के दिन पॉइंट निश्चित किए हैं,
1: 11 स्थानों
0: जी, जो कि धार्मिक और पर्यटक स्थान है जहाँ लोग आते हैं, घूमने आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं। ये उनकी सोच बहुत अच्छी है, और हम हमेशा जो है श्रीनाथपुरम स्टेडियम में योग कराते थे, लेकिन इस बार कलेक्टर साहब ने कहा कि क्यों ना हम रिवर फ्रंट या कोई ऐसी जगह कराएं जो कि वर्ल्ड लेवल पे फेमस है, हमारे कोटा में बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं।
1: बहुत बढ़िया,
0: तो उनका आदेश था कि रिवर फ्रंट पे कराएं, हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं।
1: लेकिन वो स्थान ऐसा है जहां टिकट की जरूरत है।
0: हाँ बिल्कुल सर, वही तो बताना चाह रहा था सर, कलेक्टर साहब की सोच देखिए सर कि हमें 21 तारीख को 6 बजे से 9 बजे तक उस स्थान को बिल्कुल निःशुल्क करवा लिया गया आम जनता के। बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि आम जनता जो भी है बिल्कुल आए, 6 से 9 तक निःशुल्क है। रिवर फ्रंट का शौर्य घाट जो कि थर्मल कॉलोनी के गेट से है, और वहां योग हो रहा है, और आप बिल्कुल निःशुल्क है सर, आम जनता उसमें आ सकती।
1: बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, ये आपकी ओर से इस तरह की बात है जो कि हमारे श्रोताओं तक पहुंचे।
0: एक बात और सर,
1: अवश्य,
0: ये सिर्फ कोटा शहर की बात बताइए, उसके अलावा कोटा जिले में सर हमारे जितने आयुर्वेदिक औषधालय हैं वहाँ सब पॉइंट पर योग हो रहा है। विद्यालयों में भी योग हो रहा है, माननीय कलेक्टर साहब ने सब दूर निर्देश दे दिए हैं। तो जो ग्रामीण जनता है जो शहर में नहीं आ सकती, वो अपने विद्यालय या पंचायत समिति में, पंचायत में जाकर योग का लाभ उठाएं और इससे जुड़े
1: जी। डॉक्टर साहब, और ऐसे व्यक्ति जो कहीं दूर नहीं जा सकते, आप उन्हें अपनी ओर से क्या संदेश देंगे कि वो अपनी कॉलोनी के स्तर पर भी कल इस तरह का आयोजन कर सकें?
0: सर ये बहुत अच्छा प्रश्न है, जो लोग घर से दूर नहीं जा सकते उनके लिए भी सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है सर, आयुष मंत्रालय में एक एप्लीकेशन है, उससे जुड़कर आप जो है YouTube पे एक लिंक आएगा आपके पास, और घर पे बैठकर आप रोजाना योग कर सकते हैं। मोरारजी देसाई योग संस्थान नई दिल्ली का है वो सर
1: जी,
0: उससे जो है आप रेगुलर जो है घर पे भी योग कर सकते हैं YouTube पर देखकर
1: जी। जी डॉक्टर साहब, आज आपके माध्यम से तमाम इतनी काम की बातें हुई है कि कल हम अपना अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, और आज आपने कल के खास दिन के लिए लोगों को बहुत चेताया है डॉक्टर साहब, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे। इसके अलावा कार्यक्रम में अब चलते चलते आपके लिए क्या, आप की ओर से हमारे श्रोताओं को क्या संदेश होगा?
0: सर मेरा तो यही संदेश होगा, मेरी यही विनती है और यही मेरी जीत होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग योग दिवस के दिन योग करें, और योग को एक दिवस का कार्यक्रम ना समझ के उसको जीवन में अपनाएं, कंटिन्यूएशन रखें, फिर देखिए हमारा समाज
1: क्या बात है। जिस तरह से हम सांस लेते हैं वैसे ही योग हमारे जीवन।
0: बिल्कुल सर, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ प्रत्येक नागरिक से कि योग जैसे योग दिवस को कभी मिस ना करें, इससे जुड़े और आगे बढ़े।
1: क्या बात है। हाँ जी नमस्कार
2: जी, सर मैं बोल रहा हूँ गिरिराज, पाटन तहसील गिरिराज
1: जी, क्या प्रश्न है आपका?
2: ہماری گردوں میں درد ڈھونڈی بھی درد کرتی ہے, عمر 55 سال.
1: جی اب آپ نے بہت لیٹ فون کیا ہے, جلدی سے سنیے اتر.
0: ہاں

0: गिरिराज जी, घुटनों में जो दर्द है ये आपके एक्सरसाइज नहीं करने का नतीजा रहा है सर। आप अगर इसको कंटिन्यू करते तो नहीं होता, और अभी भी आप उसको वापस रिवर्स कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आप नजदीकी औषधालय से इसकी औषधि लें और नियमित योग करें।
1: क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने सजीव फोन इन कार्यक्रम में अपनी शिरकत देकर श्रोताओं पर भी ये बहुत ही सुंदर बात का एक वजन डाला है कि कल वो जाकर और योग करें, और अगर योग जीवन में नहीं अपनाया तो उसको अपनाएं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नजर धुंधली हो या नंबर हाई, चश्मा हटाना हो या मोतियाबिंद, सुवी आई हॉस्पिटल पर आपको मिलेगा आंखों की समस्या का हर इलाज।
3: अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से आए ट्रेन डॉक्टर्स आप कोटा में एडवांस मशीन्स के साथ आंखों की हर समस्या की जांच और उपचार। लेसिक लेजर से पाए चश्मे से आजादी और फेकिक लेंस प्रत्यारोपण से मोटे चश्मे से छुटकारा।
2: विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा कैटरिक सर्जरी, रेटिना केयर और कॉर्निया उपचार।
3: सुवी आई हॉस्पिटल एवं लेसिक लेजर सेंटर, तलवंडी कोटा।
2: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे सुवी नेत्र चिकित्सालय एवं लेसिक लेजर सेंटर, तलवंडी कोटा।
3: फोन नंबर 9351412449।
1: तो श्रोताओ, कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आपको जानकारी दे दें, इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग निहाल सिंह और सुरेंद्र कुमार तंवर का, संयोजन तेजराम मीणा का और राजेश महावर भी हमारे आज के आमंत्रित अतिथि डॉक्टर प्रवीण सिंह मीणा जी के साथ में आपसे चाहता है अनुमति, स्वीकार कीजिए। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। चंबल चैनल है अब जयपुर केंद्र से प्रादेशिक समाचार।
4: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल से किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। देश भर के 9,44,00,000 किसानों के लाभान्वित होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज जयपुर में प्रदेश के बीएलओ और सुपरवाइजरों के साथ संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कारोबारियों को डिजिटल बाजार से जोड़ने के लिए डिजी दुकान ऐप का शुभारंभ किया, और सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़ को आरपीएससी का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की जाएगी। वे इस अवसर पर विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। प्रदेश में विभिन्न जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में किसानों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पाली के सुमेरपुर में होने वाले राज्य स्तरीय पीएम किसान उत्सव में शिरकत करेंगे। गौरतलब है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 2,000 रुपए की 3 किस्तों के जरिए 6,000 रुपए सालाना की आर्थिक सहायता दी जाती है। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज जयपुर में प्रदेश के लगभग 700 बूथ लेवल अधिकारियों और सुपरवाइजरों के साथ सीधा संवाद करेंगे। ये कार्यक्रम सीतापुरा स्थित जेईसीसी में आयोजित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य बीएलओ के जमीनी अनुभवों, चुनौतियों और सुझावों को गहराई से समझना है। इस दौरान मतदाता सूची अपडेट और निर्वाचन जागरूकता में उनकी भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गौरतलब है कि राजस्थान ने एसआईआर के दौरान 98% तक शानदार मैपिंग कर देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। राज्य सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 178 राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के तबादले किए हैं। कार्मिक विभाग ने देर रात इस संबंध में आदेश जारी किए। इस सूची में कई जिलों के अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी और विभिन्न विभागों के सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं। प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए इन तबादलों में सभी अधिकारियों को बिना कार्य ग्रहण काल का उपयोग किए तुरंत प्रभाव से अपने नए पदों का कार्यभार संभालने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

0: उत्तर पश्चिम रेलवे ने कल आयोजित होने वाली री नीट परीक्षा को देखते हुए 7 परीक्षा स्पेशल रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय किया है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने आकाशवाणी को बताया कि विद्यार्थियों की सुगम आवाजाही के लिए रेवाड़ी बठिंडा, बाड़मेर भगत की कोठी, रेवाड़ी जयपुर जोधपुर सांगानेर और बीकानेर डहर के बालाजी जयपुर के बीच स्पेशल ट्रेनें दोनों दिशाओं में चलेंगी। इसके अलावा भगत की कोठी से जयपुर और मदार से रेवाड़ी के लिए एक तरफा परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन सभी रेलगाड़ियों का विभिन्न छोटे बड़े स्टेशनों पर ठहराव किया जाएगा।
1: 21 तारीख को होने वाली नीट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इसलिए स्पेशल मूवमेंट और राजस्थान के एग्जामिनेशन सेंटर्स को ध्यान में रखते हुए उसी डायरेक्शंस में ये ट्रेनें प्लान की गई हैं। इसके अलावा स्टेशन पे अदर तैयारियां भी की गई हैं। स्टेशन पे लोगों को डेपुट किया गया है ताकि स्टूडेंट्स को अपने सेंटर पे पहुंचने के लिए वो गाइड कर सकें और स्टूडेंट आराम से अपने सेंटर पे पहुंच सकें।
0: प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में दवाओं की खरीद और उनकी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से एक विशेष कमेटी का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल जयपुर में हुई राज उन्नति की बैठक में अधिकारियों को इसके निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने कहा बिजली प्रशासनिक शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। आगामी मॉनसून के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टर्स को नालों की सफाई, सड़कों के पैचवर्क और मौसमी बीमारियों से बचाव की तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के व्यापारियों को एक बड़े डिजिटल बाजार से जोड़ने के लिए ONDC डिजि दुकान ऐप शुरू की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित जयपुर व्यापार महासंघ के कार्यक्रम में इस ऐप का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ये नई डिजि ऐप दुकान पहल छोटे दुकानदारों, किराना व्यापारियों और उद्यमियों को डिजिटल वाणिज्य से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापारी विभिन्न ब्रांड्स, वितरकों और थोक विक्रेताओं से जुड़कर अपनी खरीद और आपूर्ति प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बना सकेंगे। श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान सदियों से व्यापार और उद्यम की भूमि रहा है। आज देश दुनिया के हर कोने में राजस्थान के व्यापारी अपनी पहचान बना रहे हैं
2: और इस बात की मुझे खुशी होती है कि देश के किसी भी प्रदेश के किसी भी राजधानी किसी भी बड़े शहर में जाता हूं, दुनिया के किसी देश में जाता हूं तो वहां मेरे प्रवासी राजस्थान भाइयों को देखता हूं, मन प्रफुल्लित हो जाता है कि वो राजस्थान की मिट्टी की खुशबू वो व्यापारी पूरी देश और दुनिया में फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं आज के कार्यक्रम के माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने राजस्थान के मस्तिष्क को गर्व से ऊंचा कर देते हैं जो वहां जाकर के हम सुनते हैं कि इस शहर में या इस देश में सबसे बड़े व्यापारियों में नाम राजस्थान के 4, 6, 10 होते हैं, यह गर्व से ऊंचा हो जाता है।
0: सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़ को राजस्थान लोक सेवा आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी किए। श्री राठौड़ को यह दायित्व वर्तमान अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू की सेवानिवृत्ति के बाद दिया गया है। नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक वे इस पद का कार्यभार संभालेंगे। इसके साथ ही राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आयोग में 2 नए सदस्यों की भी नियुक्ति की है। इनमें भीलवाड़ा के MLV कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर संतोष आनंद और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उच्च शिक्षा के प्रदेश संगठन मंत्री डॉ दीपक कुमार शर्मा शामिल हैं। इन दोनों नए सदस्यों का कार्यकाल उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक निर्धारित किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल प्रदेश भर में मनाया जाएगा।

इसके लिए सुबह 6 बजे से राज्य के सभी जिला, ब्लॉक और उप ग्राम पंचायत स्तरों पर योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अजमेर और डॉ प्रेमचंद बैरवा भीलवाड़ा में योगाभ्यास कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा सभी कैबिनेट और राज्य मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिलों में आमजन के साथ योगाभ्यास करेंगे। आयोजन की इसी कड़ी में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की ओर से जयपुर स्थित जंतर मंतर पर कार्यक्रम होगा। इसमें 18 देशों के विद्यार्थी भाग लेंगे। संस्थान के वाइस चांसलर प्रोफेसर संजीव शर्मा ने बताया कि संस्थान द्वारा योगा डे 100 दिवसीय काउंट डाउन के तहत देश भर में 30 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनके माध्यम से सेना, पुलिस और विभिन्न संस्थानों में योग और तनाव प्रबंधन का प्रचार प्रसार किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल से किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। देश के 9 करोड़ 44 लाख किसान लाभान्वित होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज जयपुर में प्रदेश के बीएलओ और सुपरवाइजरों के साथ संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कारोबारियों को डिजिटल बाजार से जोड़ने के लिए डिजिदुकान ऐप का शुभारंभ किया और सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़ को आरपीएससी का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। FM 102, FM 103.6 मेगाहर्ट्ज़, मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।
1: अब दुनिया के किसी भी हिस्से में सुनिए आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
2: ओ ढोला जी, ओ पिव जी, थोड़ी सी ना जा दे।
1: प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर गूंज रहा है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR। इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद रेडियो आइकन का चुनाव करिए और अब आकाशवाणी कोटा को अपने मोबाइल पर सुनने का आनंद लीजिए।

0: अपनी बोली, अपना संगीत, कभी भी, कहीं भी, आकाशवाणी कोटा के चंबल चैनल पर।
1: आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर अब फिल्म संगीत कार्यक्रम का यह है पहला गीत।

0: फिल्म संजू से सुखविंदर सिंह, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजें आपने सुनी। शिखर अस्तित्व के ये शब्द थे और विक्रम मॉन्ट्रोस के संगीत में निबद्ध थे। फिल्म संगीत चंबल चैनल पर आप सुन रहे हैं।
1: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: श्रोतव कार्यक्रम का अगला गीत सुनवाएं, उसके पहले ये जानकारी। सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम की श्रृंखला में 20वीं कड़ी के रूप में संस्कृति थीम पर कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 11:10 से। ये हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगा। अपराह्न 3:55 पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी किए जाने और इस अवसर पर संबोधन का प्रसारण आप सुनेंगे। समय फिर बताएं 3:55।

0: चंबल चैनल पर इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत प्रेरक था कि हम योग के मैदान में कल जाएं, और अब गीत ये
1: mm-hmm.

0: विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: श्रोताओं कार्यक्रम में जानकारी दें, बहिने अपना कार्यक्रम सुनेंगी महिला जगत 9:30 बजे से, जिसमें चर्चा होगी आज संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए योग। भेंट वार्ता होगी योग पर महिलाओं से बातचीत पर आधारित। महिलाओं के लिए बचत टिप्स जानकारी का कारण होंगे। महिला जगत कार्यक्रम में ये सभी जानकारियां बहनें सुन सकेंगी। पीपल्स पद्मन आकाशवाणी 3:10 पर दिल्ली केंद्र से प्रसारित यह कार्यक्रम होगा। 3:55 से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी किए जाने और इस अवसर पर संबोधन के प्रसारण की जानकारी सीधे दिल्ली केंद्र से आप तक पहुंचेगी 3:55 से। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ 5:10 पर दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित ये कार्यक्रम होगा। श्रोताओं आज शाम 7:30 पर परिचर्चा होगी स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, सुनिएगा अवश्य 7:30 पर। आपके फोन कॉल्स पर रिकॉर्डेड फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी 9:00 से आप सुनेंगे। इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत चंबल चैनल पर।
2: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
3: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: कार्यक्रम का अंतिम गीत सुदेश भोसले का स्वर, फिल्म का नाम इंद्रजीत, और इस गीत के साथ आप प्रेरित होइए कि योग निरंतर किया जाना चाहिए।

0: भाग मिल्खा भाग। इस फिल्म से दिव्या कुमार और साथियों की आवाजों में गीत आपने सुना। शब्द प्रसून जोशी के थे, शंकर एहसान लॉय का ये संगीत था।
1: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जन

फिल्म इंद्रजीत के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोता ट्यून के आपने FM 102, FM 103.6 मेगाहर्ट्ज़, मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR और ऑल इंडिया रेडियो लाइव मोबाइल ऐप पर भी आप हैं चंबल चैनल के साथ। अब बहनों का कार्यक्रम होगा महिला जगत।

आकाशवाणी सुनने वाली सभी सखियों को मीनाक्षी शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, जून का महीना अब थोड़ा सा खुशनुमा होने लगा है, थोड़ी सी गर्मी अब कम होने लगी है, क्योंकि कभी कभार जो है अब बारिश की फुहारें जो है हमारे मौसम को खुशनुमा बना रही है। और सबसे खूबसूरत होती है गर्मियों की सुबह, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ही जल्दी जो है हमें सूर्य भगवान के दर्शन हो जाते हैं। सुबह की हल्की हल्की धूप और उसमें सूर्य भगवान के दर्शन और उसके साथ ही ठंडी ठंडी हवाएं। सखियों, इस खूबसूरत सुबह को आप और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं योग करके, क्योंकि योग हमारे जीवन के लिए बहुत ही कारगर साबित होते हैं। योगतः लभते स्वास्थ्यम दीर्घायुष्मम बलम सुखम आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। अर्थात योग से स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्त होती है, शरीर आरोग्य और बलशाली रहता है और निरोगी होना परम भाग्य है। स्वास्थ्य से सभी कार्य सिद्ध होते हैं, ये है इस श्लोक का अर्थ। सखियों, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए योग एक वरदान ही है। नियमित योगाभ्यास से न केवल शारीरिक बीमारियां दूर होती है बल्कि मानसिक तनाव और चिंता भी दूर होती है। सखियों, हमारे वेदों पुराणों में योग के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। 3000 वर्ष पूर्व जब पतंजलि ऋषि ने योग सूत्र की रचना की थी तो उसकी रचना के साथ ही हमें योग का मार्ग दर्शाया था। सखियों, योग का अर्थ होता है, जो हम जानते हैं, हम सोचते हैं कि योग का अर्थ केवल योगासन करना है या प्राणायाम करना है। सखियों, हम योग के बारे में जानते तो हैं लेकिन हमें उनकी पहचान नहीं कि कौन कौन से योग के नियम होते हैं। सखियों, योग जो है अष्टांग योग होते हैं, पतंजलि ने दिए थे अष्टांग योग, और उन योगों को हम अपने जीवन में अगर उतार लेते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। सखियों, ये जो नियम है ये है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम का मतलब होता है कि हम अपने जीवन के अंदर सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, प्रेम और स्वाध्याय को अपनाएं। सखियों, ये जो नियम होते हैं ये हमारे जीवन में हमें जीवन के सही मूल्यों का दर्शन करवाते हैं, हमारा चारित्रिक निर्माण करते हैं। और दूसरा जो प्राणायाम योगा योग होता है वो होता है नियम, जिसमें हम व्यक्तिगत जीवन शैली और आत्मिक रूप से साफ रहें, यानी शौच स्नान करें जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, शरीर साफ रहे, स्वाध्याय करें जिससे हमारी आत्मा, हमारा मानसिक स्तर जो है वह बढ़ता रहे, और ईश्वर का ध्यान करें जिससे हमारा आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता रहे। इसके साथ ही आसन और प्राणायाम, उसके बारे में तो हम लोग सब जानते ही हैं कि विभिन्न प्रकार के योगासन होते हैं जो हमारे शरीर को बल देते हैं, और प्राणायाम जो है श्वास पर नियंत्रण करना ही प्राणायाम है। सखियों,

इसका महत्व यूं भी समझ सकते हैं कि कहते हैं ना कि हमारी सांसें जो हैं भगवान ने जितनी लिख दी है बस उतनी ही होगी। तो प्राणायाम जो है हम जब सांसों का अभ्यास करते हैं, श्वास को रोकते हैं काफ़ी देर के लिए, तो हमारी श्वास की गति कम होती है और यही हमें दीर्घायु प्राप्त करवाती है। सखियों, इसके साथ ही जो अगला आसन, अगला योग होता है वो होता है प्रत्याहार, जिसमें बाहर भटकती हुई इंद्रियों को वापस हमें अपने हृदय की ओर मोड़ना होता है, जिसमें हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया में जो हमारी इंद्रियां फंसी हुई है उससे को शांत करवाना ही प्रत्याहार है। और धारणा, चित्त को किसी विशेष बिंदु, लक्ष्य या आंतरिक विषय पर केंद्रित करना कहलाता है धारणा। और जब धारणा की जो अपर स्थिति होती है वो होती है ध्यान। जब बिना किसी अभ्यास के, रुकावट के हम लगातार ध्यान करते हैं, लगातार एक स्थिति में बैठ करके ईश्वर का ध्यान करते हैं, तो वह ध्यान की अवस्था है। और उसके बाद आती है समाधि की अवस्था, जिसे प्राप्त करना बहुत कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि समाधि की अवस्था में रहते हैं, समाधि की अवस्था में जाते हैं और उन्हें आत्मबोध हो जाता है, ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है। तो सखियों, ये अष्टांग योग हैं जिन्हें बोलते हैं। इनको हमें अपने जीवन में अगर हम उतार लेते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बलशाली बन सकता है। तो सखियों, बातें हमारी यूं ही जारी रहेंगी। फिलहाल आपको सुनाते हैं खूबसूरत सी प्रार्थना।

0: साथियों, योग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और कल योग दिवस है और योग दिवस के मौके पर हमने अपनी कुछ सखियों से, यानी कि आप लोगों में से चुनकर कुछ सखियों से बात की है और उनसे जाना है कि उनके जीवन में योग ने क्या प्रभाव लाया है। और इसके साथ ही हमने एक सखी से बात की है जो योग सिखाती भी हैं, उनसे भी हमने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां ली हैं जो आपके साथ साझा करते हैं। तो चलिए सुनते हैं स्थल रिकॉर्डिंग योग दिवस पर। सखियों, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सपना बीरवाल, ये योग सिखाती हैं। सपना जी नमस्ते।
1: नमस्कार, हरिओम।
0: सपना जी, आपके पास किस उम्र की महिलाएं योग सीखने आती हैं?
1: मेरे पास हर आयु वर्ग की महिलाएं आती हैं, जैसे आप मानो कि स्कूल की छात्राएं हैं, कॉलेज की छात्राएं हैं, गृहिणियां हैं, जो हाउसवाइफ हैं, जो कामकाजी महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट लेडीज भी आती हैं, कुछ ओल्ड एज महिलाएं भी आती हैं जो अपने हेल्थ इश्यूज के साथ आती हैं, जैसे किसी को स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, किसी को नींद की समस्याएं हैं, किसी को बैक पेन है, किसी को पीसीओडी पीसीओएस की दिक्कत है, किसी को बॉडी स्ट्रेंथनिंग चाहिए, किसी को अपना वेट कम करना है। तो इस प्रकार की बहुत सारी समस्याओं के साथ महिलाएं मेरे पास आती हैं।
0: मतलब आपका कहने का मतलब ये कि आपने जितनी भी समस्याएं बताई उन सबका निवारण जो है योग के द्वारा मौजूद है?
1: बिल्कुल बिल्कुल है।
0: तो जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान भी महिलाएं योग कर पाती हैं?
1: बिल्कुल, लेडीज की जो प्रेगनेंसी होती है कईयों की बिल्कुल नॉर्मल होती है, उनको किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं होती, और कुछ लेडीज होती हैं जिनको प्रेगनेंसी में कुछ समस्याएं होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है 9 मंथ का, इनको हम 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं, स्टार्टिंग के 3 मंथ, मिडल के 3 मंथ और लास्ट के 3 मंथ। तो उनके अकॉर्डिंग उनको आसनों का अभ्यास करवाया जाता है उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, डॉक्टर की सलाह के साथ,
0: डॉक्टर की सलाह से। और ये मेनोपॉज के समय जैसे हॉट फ्लैशेस होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, इसमें भी योग कुछ हेल्प कर सकते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। तो जब ये मेनोपॉज स्टार्ट होता है, प्री मेनोपॉज या मेनोपॉज की जो में अपने कुछ हॉट फ्लैशेस हैं, मूड स्विंग्स की जो समस्याएं होती हैं, हमारी बोन्स जो वीक होने लग जाती हैं, हमारी बॉडी की स्ट्रेंथनिंग कम हो जाती है, तो सबसे पहले हमें अपनी डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ज्यादा। डाइट के साथ साथ हमें रेगुलर कुछ न कुछ एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, जिसमें आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, उसके साथ अपन कुछ योगा का अभ्यास भी कर सकते हैं, जिसमें हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करते हैं जिससे हमारे जॉइंट की मोबिलिटी बढ़ती है, स्ट्रेंथनिंग बढ़ती है। कुछ हम आसनों का अभ्यास कर सकते हैं जिससे हमारी बॉडी का बैलेंस इंप्रूव होता है, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर इंप्रूव होता है। जैसे कुछ आसनों का मैं नाम लेना चाहूंगी, जैसे ताड़ासन है, त्रिकोण आसन है, भुजंग आसन है, सेतुबंध आसन हो गए, कुछ विपरीत करनी है, कुछ प्राणायाम जिससे हमारा स्ट्रेस लेवल भी कम होता है, हमारा फिजिकली और मेंटली शांति के लिए भी बहुत जरूरी है। जैसे हम नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे हम अनुलोम विलोम के नाम से भी जानते हैं, भ्रामरी प्राणायाम हो गया, जो अपने स्ट्रेस को बहुत कम करता है, जिनको नींद की समस्याएं होती हैं उनके उस लेवल को भी बहुत कम करता है। जिनको नींद की समस्याएं होती है वो सुबह शाम कभी भी भ्रामरी प्राणायाम कर सकता है, ध्यान मेडिटेशन कर सकता है, 5 मिनट का ध्यान लगा सकता है, अपनी सांसों के ऊपर फोकस कर सकते हैं, ब्रीदिंग के ऊपर। और इस प्रकार योग निद्रा है जो स्ट्रेस लेवल को कम करता है, जिनको नींद की समस्या है उसके लिए योग निद्रा का अभ्यास भी बहुत जरूरी है। इस पर रिसर्च भी हो चुकी है कि योग निद्रा के अभ्यास से अपने तनाव को हम कर सकते हैं, नींद की समस्याओं को भी हम कम कर सकते हैं, जिससे हमारे हार्मोन बैलेंस होते हैं, हमारी जो बोन्स डेंसिटी है, हमारी बोन की जो स्ट्रेंथनिंग है वो इम्प्रूव होती है।
0: जी, तो मतलब कुल मिलाकर के बहुत सारी बीमारियों का इलाज तो इससे संभव है ही, और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी हो सकता है, और रात में अगर नींद की समस्या है तो वो समस्या भी योग से
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल क्योर कर सकते हैं।
0: जो अपनी क्वालिफिकेशन है वो थोड़ा सा बता दीजिए हमारी महिलाओं को।
1: जी, मैंने योग में 2019 से जुड़ी हुई हूँ, और मैंने इसके अंदर मैंने डिप्लोमा किया हुआ है 1 साल का, साथ में मैंने MSc की हुई है, और मैं UGC नेट क्वालिफाइड हूँ, और अभी वर्तमान में मेरी PhD भी चल रही है साथ के साथ।
0: हमारी जो सखियां हैं उनके लिए भी अगर आप कुछ संदेश दे सकें कि भाई योग का कौन कौन सा स्कोप है महिलाओं के लिए, अगर वो योग सीख करके सिखाएं या कुछ करें।
1: बिल्कुल, आज के टाइम में योग अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले तो अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट है योग, कि सबसे पहले हम अपने स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं, अपने फैमिली के मेंबर्स के स्वास्थ्य का हम ध्यान रख सकते हैं, अपने आसपास की महिलाओं को भी जागरूक कर सकते हैं योग के माध्यम से। और इसमें स्कोप की बात हम करें, अगर हम इसको हम सीखते हैं तो आज के टाइम में स्कूल कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत अच्छा स्कोप है, पोस्ट निकली हुई होती हैं। आप अगर कहीं जॉब नहीं करें, आप अपनी खुद की क्लासेस अपने स्टूडियो स्टार्ट कर सकते हैं, वेलनेस सेंटर में।

0: आजकल जो अपने डिस्पेंसरीज हैं, वेलनेस सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, हमारे कुछ योग इंस्टीट्यूट हैं, कुछ ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम योग सिखा सकते हैं। और रिसर्च और थेरेपी के अंदर भी योग का बहुत बड़ा योगदान है कि आज थेरेपी भी इसके अंदर सिखाई जाती हैं, ताकि हर एक बीमारी के लिए थेरेपी, अलग अलग थेरेपीज होती हैं जिससे हम उन बीमारियों को क्योर कर सकते हैं। योग टीचर मतलब महिला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और समाज को स्वस्थ बनाने में हम महिलाएं अपना योगदान दे सकती हैं। तो
1: जी
0: बहुत जगह स्कोप है हर एक फील्ड में। आप प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ, आप एज ए काउंसलर के रूप में आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप
1: जी
0: बच्चों को उनके भविष्य के लिए, क्योंकि जो आज का टाइम है बच्चे डिजिटल डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे मोबाइल की तरफ बहुत ज्यादा, ये स्क्रीनिंग टाइमिंग उनका बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से बच्चों का स्वभाव चिड़चिड़ापन है, उनको स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया है। तो उनको भी हम क्योर कर सकते हैं। अगर हम खुद एक योग शिक्षिका होंगे, हमें योग का नॉलेज होगा, तो हम अपने परिवार, अपने बच्चों का स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं और हम दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक कर सकते हैं।
1: जी। कल योग दिवस है, तो हमारी जो सखियां हैं जो आपका कार्यक्रम सुन रही हैं, उन्हें क्या
0: जी,
1: संदेश देना चाहेंगी आप?
0: मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि महिलाएं सबके लिए टाइम निकालती हैं, अपने फैमिली के लिए टाइम निकालती हैं, बच्चों के लिए टाइम निकालती हैं। प्लीज अपने लिए भी टाइम निकालें, अपने लिए 1 घंटा नहीं, आधा घंटा जरूर निकालें। अगर आधा घंटा भी नहीं निकाल सकते तो 20 मिनट तो जरूर निकालें, जिसके अंदर आप योग का कुछ सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास कर सकते हैं, कुछ आसनों का अभ्यास कर सकते हैं, जिसमें हम सूर्य नमस्कार, तो सूर्य नमस्कार अपने आप में एक ऑल ओवर पूरी बॉडी का एक्सरसाइज उसके अंदर हो जाती है। कुछ प्राणायाम कर सकते हैं जिसमें भ्रामरी प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, कुछ 5 मिनट का हम ध्यान लगा सकते हैं। तो इस प्रकार अगर हम अपने लिए 20 मिनट भी निकालते हैं तो वो भी सफिशियंट है, लेकिन आपको वो रेगुलर, आपको नियमित वो टाइम निकालना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि आप मॉर्निंग में ही टाइम निकालें, आप शाम को भी टाइम निकाल सकते हैं अपने लिए, लेकिन जरूर निकालें अपने लिए 20 मिनट अपने स्वास्थ्य के लिए। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपका परिवार स्वस्थ है, क्योंकि जब आप खुद खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी हम आप अपने परिवार का ध्यान रख पाएंगे, उनको खुश रख पाएंगे।
1: जी सपना जी, आप हमारे साथ जुड़ी और हमारी सखियों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपका भी जो आपने मुझे मौका दिया सखियों से रूबरू होने का।
1: नमस्ते सोनाक्षी।
2: नमस्ते,
1: क्या करती हैं आप?
2: मैं एक स्टूडेंट हूँ बीएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी की।
1: क्या आप योगा करती हैं?
2: हाँ जी, मैं योगा करती हूँ। मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन की छात्रा रह चुकी हूँ, तो मैं वहाँ प्रतिदिन योगा कराया जा रहा था, तो वहाँ से मेरी योगा करने की आदत है।
1: कौन कौन से योगा आप नियमित रूप से करती हैं?
2: मैं नियमित रूप से कपालभाति, अनुलोम विलोम और सूर्य नमस्कार की 12 मुद्राएं करती हूँ।
1: ये करने पर आपको कैसा महसूस होता है?
2: ये करने पर मेरे पूरे बॉडी में तंदुरुस्ती रहती है, सकारात्मकता रहती है एंड ऊर्जा रहती है।
1: कल योगा डे है, इंटरनेशनल योगा डे, तो आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: मैं आपके श्रोताओं को ये संदेश देना चाहूंगी कि बच्चा हो, बूढ़ा हो, काफी जवान हो, उसको योगा नियमित रूप से करना चाहिए। और वो ज्यादा योगा ना कर पाए तो कपालभाति, अनुलोम विलोम और सूर्य नमस्कार तो प्रतिदिन करना ही चाहिए। सूर्य नमस्कार की 12 मुद्राएं तो करनी ही चाहिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।
2: धन्यवाद।
1: नमस्ते मैम।
3: नमस्ते,
1: आपका क्या नाम है?
3: मेरा संजू जैन।
1: आप क्या करती हैं?
3: मैं हाउसवाइफ हूँ।
1: कल इंटरनेशनल योगा डे है, तो आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ कि क्या आप योगा वगैरह कुछ करती हैं अपनी हेल्थ के लिए?
3: मैं करती हूँ ना।
1: अच्छा जी, कब से कर रही हैं आप?
3: मेरे को 1.5 साल हो गया।
1: तो योगा करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
3: हमारी कॉलोनी में औरतें जाती है, तो उसके साथ में भी गई तो मेरे को अच्छा लगा। मेरे थोड़े हेल्थ ज्यादा है, तो उसके हेल्थ की वजह से मैं बहुत परेशान रहती थी, तो वहाँ जाके थोड़ा पैरों का दर्द कम हुआ, एड़ी बाहर निकली हुई थी, इस हड्डी निकल जाती है बाहर जो हड्डी निकली हुई थी, तो उससे फायदा मिला, तो अच्छा लगता है, थोड़ी एनर्जी रहती है।
1: कुल मिलाकर के योगा करने से आपको आपके शरीर के अंदर बहुत जो परिवर्तन महसूस हुए हैं?
3: योगा तो करना ही चाहिए सभी को, सुबह 1 घंटा अपने शरीर के लिए सभी को निकालना चाहिए।
1: अच्छा जी, तो कौन कौन से आसन आप कर लेती हैं?
3: वहाँ हमारे सूर्य आसन करवाते हैं, मंडूक आसन करवाते हैं।

0: हैं, मरकटासन करवाते हैं, सूर्यासन से जैसे एड़ी एड़ी के ऊपर वजन लगाना होता है तो उससे क्या है, एड़ी जो अपने निकली हुई होती है एड़ियां हड्डियां निकल जाती है, वो ठीक हो जाती है, धीरे धीरे ठीक होती है। ऐसा आसन में ऐसा नहीं है कि एकदम से ठीक हो जाएगी,
1: जी,
0: धीरे धीरे ठीक हो जाती है।
1: अच्छा, तो अब आपको अच्छा महसूस होता है,
0: अच्छा महसूस होता है।
1: तो अंत में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: सभी को योगा करना चाहिए, 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालना जरूरी है।
1: जी, आपने हमारे श्रोताओं से बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सखियों, अभी आपने सुना हमारे कुछ सखियों को, जिन्होंने साझा किए अपने अनुभव कि किस प्रकार योग से उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। तो सखियों, अगर आप भी थकान से, बीमारियों से, तनाव से जूझ रहे हैं तो शुरू कीजिए योग, प्राणायाम और अष्टांग योग को अपने जीवन में उतारिए, तो हमारे जीवन को हम फिर से खूबसूरत तरीके से, नए तरीके से जी सकते हैं। बातें हमारी यूं ही जारी रहेंगी, फिलहाल आपको सुनवाते हैं एक खूबसूरत सा गीत।

0: आज तो पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: इस पार्टी ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सखियों, 2008 में वैश्विक मंदी आई थी और विदेशों में लोगों ने बहुत लोन ले रखे थे और वो लोन चुका नहीं पा रहे थे। उनके घर और उनकी बचत सब खत्म हो गई और बैंक भी दिवालिया हो गए थे। लेकिन इस वैश्विक मंदी का असर भारत पर सबसे कम पड़ा था। इसका कारण आप जानते हैं, इसका कारण है हमारे देश की महिलाएं।

हमारे देश की महिलाओं में शुरू से ही बचत करने की आदत रही है और यही बचत जो है हमारे मुश्किल समय में काम आती है। सखियों, पूरे विश्व में जितना सोना नहीं है ना, उससे ज्यादा सोना तो हम महिलाओं के पास अपने घरों में है। वो ऑन रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि बहुत पुराना सोना है, हमारे दादी नानियों का सोना है, हमारे मंदिरों में इतना सारा सोना है। तो हमारी भारत जो है वो सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहलाता था, और इसका कारण था कि हमारे यहाँ पर बचत का शुरू से ही प्रावधान रहा है। लेकिन सखियों, आधुनिकता की ओढ़ में आज की तारीख में अगर हम लोगों से बात करते हैं तो सबकी यही शिकायत रहती है कि कुछ बचत नहीं होती है, पैसा नहीं बचता है। सखियों, बचत करने के लिए बस आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए। बचत करने के लिए आपको अपने घर का एक अच्छा सा बजट बनाना चाहिए। बजट में बचत के लिए भी स्थान रखना चाहिए, इमरजेंसी फंड के लिए भी स्थान रखना चाहिए, और वो निश्चित रूप से आपको किसी न किसी तरह से बचाने ही चाहिए। इसके साथ ही ऑनलाइन पेमेंट करने से कई बार जो है हमें बहुत सारी छूट मिलती है, तो हम जो है कैश पेमेंट करने की जगह ऑनलाइन पेमेंट करें तो भी हमारे कई बार पैसे बहुत बच जाते हैं। लेकिन डायरी मेंटेन करें ताकि अनावश्यक खर्चा ना करें हम। ऑनलाइन पेमेंट के चक्कर में कई बार हमें पता नहीं चलता कि कितना खर्च हो गया, तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी यूपीआई पेमेंट मोड या जो भी मोड हम यूज करते हैं तो हम अपने उस अकाउंट में कुछ निश्चित अमाउंट रखें कि 20,000-25,000 रुपये कि हम इससे ज़्यादा हम महीने में खर्च नहीं करेंगे, और उसी में से अपना सारा खर्च जो है निकालने की कोशिश करें। इसके अलावा सखियों, शॉपिंग करते समय जो रेट्स होती हैं उनको भी आप कंपेयर कर लें। आजकल ऑनलाइन भी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, रेट्स भी अवेलेबल हैं। हमें ये पता रहना चाहिए कि कोई चीज़ कहाँ पर सस्ती मिल रही है। जहाँ सस्ती मिल रही है तो आप हर चीज़ घर बैठे ही आजकल आ जाती है तो आप उसको मंगवा सकते हैं ताकि आपकी बचत अधिक से अधिक हो। इसके साथ ही जब आप ट्रैवलिंग करते हैं तो ट्रैवलिंग के लिए आप पूल सिस्टम को अपनाएं, जिससे कि हमारे देश के पेट्रोल की ऊर्जा की बचत होगी, साथ ही हमारे लिए भी वो बहुत ही किफायती सिद्ध होगा। तो सखियों, बातें हमारी यूं ही जारी रहेंगी, और ये छोटी छोटी सी बचत जो है कल का भविष्य है, सुखद भविष्य है, कल का मीठा फल है, और इस सुखद भविष्य से आप अपनी छोटी छोटी आशाओं को पूरा कर सकते हैं। तो बचत करें, खुश रहें।

0: है छोटा।
1: तो सखियों, अपने जीवन को खुलकर जिए और स्वस्थ रहने के लिए अष्टांग योग को अपनाएं। और अगर आप अभी तक योग करती हैं तो बहुत बहुत बधाई।

और योग नहीं करते हैं तो आज ही योग करने का संकल्प लें, क्योंकि कल है योग दिवस। तो आपको योग दिवस के एडवांस में बधाइयां, और इसी वादे के साथ कि फिर से होगी मुलाकात, अपनी सखी मीनाक्षी शर्मा को दीजिए इजाजत।

0: बहिने अभी अपना कार्यक्रम सुन रही थी महिला जगत। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओ, अब विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों के लिए हम आपको लिए चलते हैं।
1: योगीराज भारत भूषण भारतेंदु, जो आपको बताएंगे कैसे योग बदल सकता है आपका जीवन।
2: बूढ़े बच्चे जवान सभी को करना चाहिए। पहला तो है श्वास से रिलेटेड, श्वास के एक्सरसाइज प्राणायाम तो सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑफिस वाले हैं तो उनके लिए 10 से 15 सूर्य नमस्कार अच्छे से हर पोज को मेंटेन करते हुए करें तो
1: काफी होता है,
2: काफी होता है।
1: मैटिनी शो 20 जून सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
4: गीतों भरी कहानी, आइए सुनते हैं निवेदिता श्रीवास्तव की लिखी गीतों भरी कहानी ज्वालामुखी। वाचन स्वर निवेदिता श्रीवास्तव का ही है।
5: ऑफिस जाने के लिए लैपटॉप बैग लंच बॉक्स संभालते हुए कार की चाबी लेने के लिए अनुभा ने हाथ बढ़ाया ही था कि दही शक्कर की कटोरी लिए अपनी माँ विभा को सामने देखते ही हंसी की सुनहरी चमक उनके चेहरे पर खिल उठी। अरे वाह माँ, आपको याद है कि आज मेरा नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है और मुझे आपके इस आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। माँ के पूरे व्यक्तित्व में ही जैसे एक अलग ही तरह की संतुष्टि व्याप्त हो गई। बिटिया, मुझे तो आज भी तुम्हारे जन्म की वो घड़ी याद है जब मैं पूरे समय यही गाती थी।

अनुभा भी खिलखिला उठी। माँ अब मैं चलती हूँ, नहीं तो ये मुंबई का ट्रैफिक मुझे मीटिंग के लिए देर ना करवा दे। शाम को आप तैयार रहिएगा, हम लोग मरीन ड्राइव चलेंगे और उधर से ही प्ले देखते हुए वापस आएंगे। और हाँ, हम लोग उधर से ही डिनर करते हुए आएंगे, इसलिए आज किचन की पूरी छुट्टी और आपका आज रेस्ट डे है। आज आपके लिए पार्लर में मसाज बुक कर देती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। विभा मुस्कुरा उठी। बेटी तूने तो मेरी दुनिया ही बदल दी, वरना। अनुभा ने माँ को गले से लगा लिया। माँ मुझको वो गाना याद आ रहा है जो आप अक्सर गुनगुनाती थी, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। गुनगुनाते हुए ऑफिस से निकलने से पहले ही अनुभा ने माँ को फोन करके तैयार रहने की याद दिला दी थी। घर के गेट पर बजते हॉर्न और फोन पर लगातार बजती घंटी आज की शाम के लिए उसके उत्साह को जैसे रेखांकित कर गई। और माँ भी दरवाजों पर ताला लगाकर उसके बगल की सीट पर बैठ गई। माँ का बैठना था कि अनुभा सड़क के बेतहाशा बेलगाम ट्रैफिक से अपनी गाड़ी को पानी की तरह निकाल ले गई। मरीन ड्राइव पर कुछ बातें करते करते ही डूबते सूरज को देखती हुई विभा अचानक ही चुप हो गई। टोकने पर बोली कि सागर की लहरों के साथ बीत रही ये शाम उस शाम की याद दिला रही है जब हम सब साथ थे।

माँ के साथ ही अनुभा भी उन पुरानी छोड़ दी गई गलियों में पहुंच गई। बचपन से लेकर कॉलेज फेयरवेल तक के दिन हंसते खिलखिलाते मानो पंख लगाकर उड़ते चले गए थे। मम्मी पापा के साथ की बेशुमार खुशनुमा यादों से सज्ज ना जाने कितने पल उसकी यादों के आसमान पर चांद तारों से झिलमिला उठे थे। दुर्गा पूजा की छुट्टियों में घर आई अनुभा रोज ही अपनी किसी न किसी सहेली अथवा पुराने स्कूल के शिक्षकों से मिलने निकल जाती थी। बचपन के दिनों और शरारतों को याद करते करते समय कितनी जल्दी बीत जाता था उन सबको पता ही नहीं चलता था।

अक्सर ही अनुभा अपनी माँ विभा को भी ले जाना चाहती थी, परंतु वह तो कभी किसी काम का तो कभी किसी अतिथि के आने का बहाना बनाकर टाल जाती थी। उसको तो लग रहा था कि आजकल माँ कुछ अनमनी सी हैं, परंतु घर परिवार और उनके दोस्तों में भी सब पूर्ववत व्यवस्थित प्रतीत होने से कोई कारण समझ नहीं आने पर वह उसको अपने मन का भ्रम समझ अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हो जाती थी। एक शाम घर जल्दी वापस आने पर अनुभा ने देखा कि उसकी माँ विभा तकिए में मुंह छुपाकर अपनी मुखर होती सिसकियों को दबाने का प्रयास कर रही थी, पर उनके वेग से हिलता हुआ शरीर असलियत की चुगली दे रहा था। अनुभा से रहा नहीं गया और उसने माँ के कंधों पर हाथ रख दिया। माँ क्या हुआ, आप इस तरह क्यों रो रही हैं? विभा खुद को समेटते हुए उठने का प्रयास करते करते जैसे टूटे हुए बांसी बिखर गई। क्या करूं बिट्टो, मैं क्या करूं, लाख कोशिशों के बाद भी मैं उस लम्हे से निकल ही नहीं पा रही हूं। अनुभा एकदम चौंक गई और कुछ भी नहीं समझ पाने की स्तब्ध मनस्थिति में उनका हाथ थामे बैठी बस सांत्वना देती पीठ ही सहलाती चली गई। मरुथल की वीरानी समेटे सखारापन उन दोनों माँ बेटी की आंखों से बहता हुआ ना जाने कहाँ जज्ब होता चला गया। बहुत प्रयास के बाद भी अनुभा कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके इन कुछ महीनों के ही हॉस्टल प्रवास में ऐसा क्या घट गया जिसने उसकी इतनी दृढ़ मना माँ को इतनी बुरी तरह तोड़ दिया है कि वह टूटे हुए कांच की किरचों जैसी बिखर गई हैं।

उसने खुद को संभालते हुए माँ का मुंह धुलवाया और उनको शांत करती वहीं पास ही बैठ गई। माँ, सबसे पहले तो आप शांत हो जाइए और धैर्य रखिए कि आप अकेली नहीं हैं। आपने अपने बच्चों को इतना सशक्त बनाया है कि वह चीजों को समझ और सुलझा सकें। आप स्वयं को संभालिए और सारी बातें बिना किसी झिझक के एकदम स्पष्ट बताइए कि समस्या है क्या, ऐसा क्या अघटनीय घट गया

संभालिए और सारी बातें बिना किसी झिझक के एकदम स्पष्ट बताइए कि समस्या है क्या। ऐसा क्या अघटनीय घट गया जो आपकी आंखों में इतने आंसू दे गया है? आपकी आंखों से बहते ये आंसू मुझको भी भिगो रहे हैं। विवाह के मन में जैसे विचारों के बवंडर उठ रहे थे, मानो वह सोच रही हो कि क्या बताएं और कैसे बताएं। कभी उससे अपना रिश्ता सामने खड़ा हो संकोच की बाढ़ खड़ी कर देता, तो कभी सामाजिकता चोटिल कदमों को और भी घाव मिलने की आशंका दे जाती। खुद की बेबसी का अनुभव करती उसने कुछ नहीं के भाव में सिर को हिला दिया, मानो वह उस पल को हटाना चाहती हो। शायद बेबसी की भाषा खामोशी के वीरान सन्नाटे में होते हुए भी बहुत कुछ अनकहा भी कह जाती है। अनुभा ने उसके हाथों को पकड़कर अपने विश्वास और सामर्थ्य की ऊर्जा सी उनमें भरी। नहीं माँ, ऐसे तो नहीं चलेगा, आपको मुझको तो बताना ही पड़ेगा। आइए बातें करते हैं और उससे ही आपकी इस पीड़ा का कुछ हल निकालते हैं। बेटी के स्नेहिल स्पर्श की ऊर्जा पाकर विभा जैसे दुगने वेग से फफक पड़ी। तू ही बता कि अब तुझको या किसी को भी बता के क्या होगा, और क्यों ही बताऊं, क्या कर लेगा कोई भी, क्या कर लेगी तू भी ये जानकर कि मेरा दम घुटता है इस घर में। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहती हूँ, पर मैं अब उम्र के इस मोड़ पर जाऊं कहाँ, सिर्फ अपने लिए कोई अलग सा स्थान भी तो नहीं बनाया कभी। अब तो तेरे नाना जी और नानी माँ भी नहीं रहे कि उनके पास ही चली जाऊं। कुछ पल उखड़ती सांसों को अपनी चुप्पी से थामने का प्रयास करती हुई विभा फिर से सिसक पड़ी। जब मैं भी अपने लिए कुछ कर सकती थी या इस समाज में स्वयं को स्थापित कर सकती थी, तब तो मैं इस घर को संभालती रही, और अब तेरे पापा के दिए इस धोखे को संभाल रही हूँ।

रोती हुई विभा के कंधों पर हाथ रख दिए। आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि कुछ बातों के जवाब तो पापा को देने ही पड़ेंगे। आपको चाहे नहीं, परंतु मुझको तो चाहिए उनके जवाब। विभा ने अपनी सहेली दिवी को फोन करके बुलाया और अनुभा को उनके साथ उनकी सहेली शशि मौसी के पास भेज दिया और अपने पापा अरुण का इंतजार करने लग गई। अरुण ने देर शाम को ऑफिस से आते ही अपना बैग और लंच बॉक्स दरवाजे पर ही छोड़ दिया कि विभा आकर सब वहां से हटाकर सही जगह व्यवस्थित कर ही लेगी। फ्रेश होकर आने के बाद भी उसने बैग को दरवाजे पर ही पड़ा देख आक्रोशित होकर विभा को आवाज देने लगे, विभा विभा कहाँ हो तुम? तुमने सब सामान अभी तक हटाया क्यों नहीं और पानी तक ला कर नहीं दिया? अनुभा जो पास के कमरे से सब देख रही थी वहां आ गई। क्या हुआ पापा, इतनी तेज आवाज में क्यों बोल रहे हैं? अनुभा की बात से सकपकाते हुए से अरुण ने विभा के बारे में पूछा, पर उसने उसकी बात का जवाब न देकर पूछ लिया, आपसे कुछ बात करनी है, कुछ पूछना चाहती हूँ, आपके पास समय है क्या? अरुण चिंतित हो उठा, क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या तुमको? मुझसे तो कभी भी कुछ भी बात कर सकती हो, इसके लिए पूछने की क्या आवश्यकता है?

अनुभव उसके सामने इत्मीनान से बैठ गई। घर, परिवार, समाज सभी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभा चुकी स्त्री को यदि उसका पति धोखा दे तो उसको क्या करना चाहिए। अरुण ने एक सुकून महसूस किया और बोला, ये तो गलत है, उसके पति को ऐसा तो हरगिज नहीं करना चाहिए। ऐसा कौन मिल गया तुमको? अनुभा ने स्वयं पर नियंत्रण बनाए रखते हुए बोलती चली गई कि पति की गलत आदतों और समय समय पर टोकने के बाद भी जीवन की हर चुनौती पर, हर सुख दुख में उसका साथ देने पर, उम्र के इस ढलान वाले दौर में उसकी सहेली के पापा का किसी अन्य स्त्री से संबंध है, ऐसे में सहेली की माँ को क्या करना चाहिए? अरुण ने जवाब दिया, विश्वास की हत्या करने वाले ऐसे पति को तुरंत तलाक दे देना चाहिए। ऐसा धोखेबाज पति जिंदगी के किसी भी मोड़ पर और भी बड़ा धोखा दे सकता है। शायद तब तुम्हारी उस सहेली की माँ के पास संभलने का समय ही नहीं होगा। अरुण ने देखा कि अनुभा कुछ सोचती सी गुमसुम होकर बैठी रह गई। वह आकर उसके पास बैठ गया। बेटे, सहेली के बारे में सोचकर परेशान मत हो, क्योंकि परेशान होना तो किसी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। अनुभा उनकी ओर देखती हुई बोली, नहीं पापा, मैं सहेली के बारे में नहीं, उसकी माँ के बारे में सोच रही हूँ कि अपने जीवन के इतने अनमोल और खूबसूरत साथ देने के बाद भी उनको धोखा क्यों मिला? क्या ईमानदारी से घर का ध्यान रखना और परिवार के प्रति समर्पित रहना गलत होता है? आखिर उन्होंने अपने लिए कुछ करने की अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ा, तभी तो घर के सभी सदस्य इतने निश्चिंत होकर जिंदगी में खुद को कुछ साबित कर पाए। मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि वो गलत कहाँ थी।

अनायास ही अनुभा की आवाज में एक आक्रोश उभरने लगा था। पापा, ये सब देखकर मुझे लगता है कि मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए। नहीं जीना मुझे एक संशय के विश्वासघात के माहौल में। कहीं बाहर जाकर नौकरी न करने की एक बात छोड़ दें तो मेरी सहेली की माँ रूप, व्यवहार, गृह कौशल, सामाजिकता निभाने वगैरह सभी बातों में अव्वल थी, जबकि मैं तो ऑफिस में काम करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानती। तब मेरा साथ कोई क्यों देगा? अरुण तड़प कर उसके सिर पर हाथ फिरने लग गया। ऐसा क्यों बोल रही हो बेटा, तुम अकेली कहाँ हो? मैं हूं ना, तुम्हारे साथ में कभी कुछ गलत होने ही नहीं दूंगा। अनुभा शांत भाव से उसको देख रही थी। अमर होकर तो इस धरती पर कोई नहीं आया है, फिर जब आप नहीं रहे तब मिले धोखे का सामना मैं कैसे करूंगी? अरुण उसके मन की उलझनों को समझता हुआ बोला, बेटे कोई भी कभी भी एकदम अकेला नहीं होता, कोई न कोई अवश्य होता है साथ देने को। ईश्वर न करे, परंतु यदि कभी ऐसा हुआ भी तब भी कोई न कोई तो तुम्हारा साथ देगा ही, जैसा अभी मैं तुम्हारी सहेली की माँ का साथ दूंगा। लाओ मुझे उसके पापा को फोन नंबर दो, मैं बात करता हूँ। पूरे जीवन साथ देने वाली पत्नी के साथ वह इतना गलत काम कैसे कर सकते हैं? अनुभा ने एक सुकून की सांस भरी। हाँ पापा, आप जरूर बात कीजिए, मैं उनको कॉल करती हूँ। उसके नंबर मिलाते ही उसके फोन पर अरुण का ही नाम चमकने लगा। वह चौंक गया, अरे तुमने तो गलती से मेरा ही नंबर मिला दिया, उसके पापा को कॉल करो ना। अनुभा खड़ी हो गई। नहीं पापा, मैंने नंबर सही मिलाया है, मैं आपकी और मम्मी की ही बात कर रही थी।

चौंक गया। क्या कहना चाहती हो, तुम्हारी मम्मी ने कुछ कहा है क्या? अनुभा की आवाज में तल्खी आ गई। अभी भी आपने यह नहीं कहा कि यह बात गलत है या मैं क्या बकवास कर रही हूँ, बल्कि आप यह प्रश्न कर रहे हैं कि मम्मी ने कुछ कहा है, क्या समझूं इससे? अरुण की आवाज लड़खड़ा गई। मैं तो चौंक गया था कि यह तुमको क्या हुआ है, कैसी बातें कर रही हो, इसलिए। ऐसा कुछ नहीं बेटा, तुम मेरी बात तो सुनो। अनुभा के पूरे अस्तित्व से मानो घृणा क्रोध बनकर बरसती जा रही थी। आप झूठ मत बोलिए, मैंने आपके सारे फोटो और चैट सब देख लिए हैं। पड़ोसियों ने तो पहले भी एक आध बार इशारे में कहा था कि जब मम्मी कहीं शहर के बाहर होती हैं तो कोई आपके साथ ही घर आती थी, और तब आप कार बाहर खड़ी नहीं करते थे, कार सीधे अंदर पोर्टिको में ही खड़ी करते थे। और अरुण यह सुनते ही बौखला गया। क्या बकवास कर रही हो, तुमको होश भी है कि क्या बोल रही हो, वो भी अपने ही पापा को? कोई कुछ भी बोल देगा तो तुम सच मान लोगी? आत्मवंचना मानो उसके शब्दों में मूर्तमान हो उठी। आपसे ज्यादा गुस्सा मुझको आया था, और उन डांटी से लड़कर मैंने बोलना ही छोड़ दिया था कि वो आपके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं। पर आज अफसोस हो रहा है कि मैंने उनकी बातों पर भरोसा करके उसी समय आपका कॉलर क्यों नहीं पकड़ा। काश मैंने पूछा होता तो मम्मी को इतनी पीड़ा से नहीं गुजरना पड़ता।

अरुण को लगा कि जिस पल की आशंका से वह सब छुपाने का प्रयास कर रहा था वही पल सामने आ खड़ा हो गया है। उसने स्वयं को स्थिरचित्त कर लिया। तुम्हारी माँ को कभी कोई कमी होने दी थी क्या? उसकी कौन सी जरूरत पूरी नहीं की? समाज में उसकी प्रतिष्ठा में कभी कोई कमी नहीं आने दी। फिर वो आखिर चाहती क्या है? क्या कुछ पल अपने मन से नहीं जी सकता मैं? अनुभव चीख ही तो पड़ी थी, आखिर आ ही गई आपकी असलियत सामने। कुछ पल अपने मन से यदि ऐसा ही जीवन उन्होंने जिया होता तब क्या करते आप और आपकी आधुनिकता? अरुण का क्रोध विस्फोट कर उठा। तुम होश में हो? अपने पिता से तुम कैसी बातें कर रही? तुम्हारी हिम्मत कैसे? अनुभा उनके सामने सीधी खड़ी हो गई। मेरी हिम्मत तो आप अब देखिएगा। और हाँ, जिस बात को आप सुन भी नहीं पा रहे हैं, उस सच के साथ मेरी माँ को अपना पूरा जीवन जीना है। इतना विश्वास दिलाती हूँ कि टूटने तो उनको बिल्कुल नहीं दूंगी, ना तो मैं और ना ही भाई। बस वो भी पहुंचता ही होगा। अनुभा की आवाज को दबाने के प्रयास में उसका पौरुषीय अहंकार मानो उसके मर्म को चोटिल करने के लिए चिंघाड़ उठा। जिस सामर्थ्य की धमकी दे रही हो उसको पाने की फीस की रकम मैंने ही भरी है। अनुभा पलट कर उसके सामने खड़ी हो गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, यह सब बोलने का साहस और अभी भी आपको आप बोलने का संस्कार मम्मी ने दिया है। आप यह मत सोचिएगा कि हम यह घर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। हम वापस यहीं आएंगे और रहेंगे। अपना सामान समेट कर गेस्ट रूम को अपने हिसाब से ठीक कर लीजिएगा। वह क्रोध में पागल ही होता जा रहा था। हम घूमने जा रहे हैं, तुम लोगों को घर पर ताला बंद मिलेगा। अनुभा पीड़ा में भी हंस पड़ी। अब तो समझ जाइए कि मुझको ताला तोड़ना भी आता है और तोड़वाना भी।

दरवाजे की ओर बढ़ते बढ़ते वह अचानक से उसकी ओर घूम गई और हाँ, सुबह दादाजी और दादी माँ आ रहे हैं यहाँ, उनको सुनाने के लिए कोई कहानी तैयार रखिएगा। अरुण के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। तुम्हारे दादाजी और दादी माँ, उन लोगों से क्या कह दिया तुमने? उस पीड़ा में भी अपने पिता की हड़बड़ाहट देखकर अनुभा हंस पड़ी। कुछ खास नहीं, बस जो सच है वही कहा है। और यह तो आप भी जानते हैं कि माता पिता अवश्य वो आपके हैं, परंतु आपसे कहीं ज्यादा प्यार वो अपनी बहू यानी मेरी माँ से करते हैं। पिता की स्तब्ध करती शक्ल देखकर वह बोल उठी, आपको शायद गलतफहमी हो गई थी कि नाना जी और नानी माँ के ना रहने से माँ एकदम अकेली और असहाय हैं। उनके साथ हम सब हैं जो उनकी तरफ उठने वाली हर उंगली को तोड़ना भी जानते हैं और आपकी सच्चाई को खोलना भी। वह दृढ़ कदमों से बाहर निकल गई, पर अरुण की उलझने मानो उसको न जाने की अंधेरी कंदरा में ले जा रही थी।

ज्वालामुखी। अभी आप सुन रहे थे निवेदिता श्रीवास्तव की लिखी गीतों भरी कहानी उन्हीं के स्वर में। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग काजल भदरगे का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर

छूकर मेरे मन को, याराना फिल्म से। अभी ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। अनजान ने इस गीत को लिखा था और राजेश रोशन की तर्ज थी।

0: द ग्रेट गैम्बलर इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजों में। आप सुन रहे हैं इस वक्त विविध भारती से चित्रपट संगीत।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ

0: any GI problem is education, nutrition, exercise, and when do you get self-tested and see a doctor. ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी.
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने.
0: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है. और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं.
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर.
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत.

बड़े दिल वाला, ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था। आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत।

फिल्म पड़ोसन से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, आशा भोसले और सखियों की आवाजों में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा था, आर डी बर्मन की तर्ज थी।

मन दौड़ने लगता है। और ये गीत अभी आप सुन रहे थे रजनीगंधा फिल्म से मुकेश की आवाज में, योगेश ने इसे लिखा था, सलिल चौधरी का संगीत था। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम चित्रपट संगीत यहीं समाप्त होता है।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आप सुन रहे हैं मैटिनी शो। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं पालघर पीठाधीश्वर योगीराज भारत भूषण भारतेंदु। विश्व योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से विश्व योग दिवस के दिन पर। हमारे विद भारती के तमाम भारत के सभी श्रोताओं को योगीराज भारत भूषण की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।
1: क्या बात है। मुझे ये बताइए भारत भूषण जी कि इस बार की जो थीम है वो है बढ़ती उम्र के साथ योग। तो बढ़ती उम्र के साथ योग का क्या महत्व है, यहाँ से हम अपनी बातचीत को शुरू करते हैं।
0: बढ़ती उम्र के लिए ही योग के सानिध्य में जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है
1: जी।
0: जैसा कि हम सभी लोग पहले शतायु हुआ करते थे, सभी लोग कम से कम 100 साल तक उम्र होती थी, लेकिन जो हम लोगों की सोसाइटी, हम लोग जैसे जैसे बढ़ते गए, जो एक तरह से मिलावट होता गया लाइफ में, सोसाइटी में, हमारे खान पीन में, सब में, जिसके कारण लोगों की उम्र जो है दर पदर थोड़ा कम होता गया। तो ये जो अभी का जो मिशन चल रहा है हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 100 दिन का योग महोत्सव चल रहा है पूरे भारत में
1: जी।
0: तो जैसे 100 दिन का योग महोत्सव चल रहा है तो हम लोग का पूरा प्रयास है कि लोग शतायु हों, 100 साल जिए इस योग को सीख करके, तो उम्र को बढ़ाया जाए
1: और स्वास्थ्य को भी बढ़ाया जाए, है ना। अच्छा मुझे बताइए कि 40 पार के बाद के जो लोग हैं, जो 40 बरस पार करके अब थोड़ा आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उनके जीवन में योग कितना जरूरी है और वो अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच कितना समय निकालें कि वो रोज योग कर पाए।
0: देखिए रही बात जो 40 के ऊपर वाले उम्र के जो भी लोग हैं, हम तो सदा से ही पूरे भारत में ही योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो मैक्सिमम लोगों को पूछने पता चलता कि आप अपने लिए कुछ करते हैं कि नहीं करते। तो जो अपने उम्र बताई कि 40 वर्ष के ऊपर वालों के लिए, तो उन लोगों के लिए समय नहीं रहता, बोलते हमारे लिए समय ही नहीं मिलता खुद के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 40 के ऊपर वालों को 24 घंटे में अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना योग के लिए बहुत ही आवश्यक है।
1: ये जो थोड़ा सा है इसमें कितनी मात्रा है ये समय?
0: थोड़ा सा मात्रा में कम से कम 20 मिनट
1: जी, कम से कम 20
0: कम से कम 20 मिनट।
1: और अगर बहुत दिल से निकालें तो कितना हो जाएगा?
0: दिल से निकालें तो 45 मिनट, एक घंटे कर लें तो सोने पे सुहागा है।
1: क्या बात है
0: जी
1: जी। तो क्या क्या करना चाहिए, जैसे 20 मिनट का समय जिस व्यक्ति के पास वो क्या क्या करे, और जो व्यक्ति थोड़े बड़े दिल वाला है 45 मिनट निकाल रहा है वो क्या क्या करे?
0: देखिए सबसे फर्स्ट जो पहला है
1: जी,
0: 40 ही नहीं, बूढ़े बच्चे जवान सभी को करना चाहिए, पहला तो है श्वास
1: जी
0: से रिलेटेड।
1: हाँ,
0: श्वास के एक्सरसाइज प्राणायाम तो सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है
1: जी।
0: और 40 को देखा जाए तो उनको युवा में माना जाता है, यंग हमारी जो पावर है, यूथ भी कह सकते हैं हमारे देश के, तो उनके लिए आप प्राणायाम के साथ साथ सूर्य नमस्कार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 10 राउंड 15 राउंड सूर्य नमस्कार आवश्यक है। उसके अलावा आप स्टैंडिंग में है, सिटिंग में है, लाइन डाउन में है, इसमें बहुत से आसन हैं जो कि करके 40-45 मिनट में अपने को एकदम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। और इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान भी करना जरूरी है, मेडिटेशन
1: जी। तो मेडिटेशन हो गया, प्राणायाम हो गया। प्राणायाम में कौन कौन से प्राणायाम जो है वो बहुत जरूरी है? भ्रामरी, शीतली
0: जी जी जी,
1: है ना।
0: हाँ, प्राणायाम में शुरू में तो जैसे रोदन क्रिया कर लीजिए, भस्त्रिका करके अपने फेफड़े
1: सबसे पहले भस्त्रिका करना है,
0: कपालभाति
1: सबसे पहले कपालभाति जी,
0: देन उसके बाद में भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली, शीतकारी, उज्जयी,
1: इतने सारे कर रहे हैं।
0: हाँ, अंत में ओम चैंटिंग कर लीजिए।
1: अच्छा,
0: ये पूरा पैकेज हो गया
1: जी।
0: ये
1: जी, जी।
0: महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, सभी के लिए कॉम्बो है।
1: ये जो आपने प्राणायाम बताए इतने सारे
0: जी,
1: इनका हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है और इनसे क्या चीजें बैलेंस होती हैं?
0: इनसे सबसे पहले तो जो शुरुआत है
1: जी,
0: कपालभाति से अपने फेफड़े की शुद्धि होती है।
1: अच्छा,
0: जो दिन भर चलते हैं, पोल्यूशन है अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्लीन होता है, ये शुद्ध हो जाता है फेफड़ा। और भस्त्रिका है, उसकी कैपेसिटी बढ़ाती है, उसको मजबूत करता है, स्ट्रांग करता है, कैपेसिटी उसकी क्षमता बढ़ाती है लंग्स को। और अनुलोम विलोम, ये नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा गया इसको।
1: अच्छा,
0: हम लोगों के शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं
1: जी जी,
0: जिसमें 3 प्रमुख नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो इन तीनों को बैलेंस रखने के लिए इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम अनुलोम विलोम कहा गया है
1: जी,
0: जिससे नाड़ियां सब बैलेंस रहती हैं
1: जी।
0: और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आता है भ्रामरी प्राणायाम, जो कि मस्तिष्क के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जैसे आप सुनते भी होंगे कि लोग बोलते हैं आज मूड अच्छा नहीं है, कभी होता है कि बहुत अच्छा मूड है, कभी ऑफिस का काम पेंडिंग है, किसी से तकझक भी हुआ है, लेकिन मूड अच्छा रहता, चलो जो होगा देखा जाएगा। और कभी ऐसा होता है कि सारे काम सब हुए हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मन उदास रहता है, पता नहीं क्या हो गया। तो मूड ऑफ और ऑन है।

0: तो ये जो मूड अच्छा रखने के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: अच्छा।
0: जो हमारे सिर में पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं, भ्रामरी करने से उसमें एक सिक्रीशन टाइप का होता है, जिससे मूड अच्छा रहता है, मस्तिष्क में लुब्रिकेशन बनाते हैं। जैसे इंजन में व्हील ऑयल होता है ना, इंजन में ऑयल बराबर है तो अच्छे से चलती है
1: जी।
0: इसी तरह हमारे मस्तिष्क में भी वो जो सिक्रीशन होता है उससे मूड अच्छा रहता है।
1: अब देखिए ना, हम रेडियो पर हैं
0: जी,
1: तो सब कुछ हमको बोलकर ही बताना है,
0: हाँ,
1: करके दिखा नहीं सकते,
0: दिखा नहीं सकते।
1: पर भ्रामरी प्राणायाम वही है ना जिसमें उंगलियों से आंखों को
0: बंद करते हैं और अंगूठे से दोनों कानों को बंद करना है
1: जी,
0: मुंह बंद रखना है,
1: हाँ,
0: पूरा सांस नाक से अंदर लेना है
1: जी,
0: और मुंह बंद करके ही नाक से सांस को छोड़ना है और हमिंग करना है, बटरफ्लाई की तरह।

0: जी, और उससे जो कंपन होते हैं,
1: कंपन होगा अपने सिर में, तो जब वहाँ कंपन होता तो वहाँ से फिर वो श्री कृष्ण होता है
0: जी,
1: माइंड कूल रहता है।
0: क्या बात है, तो प्राणायाम की बात हुई, ध्यान की भी बात करेंगे, लेकिन आपने ना सूर्य नमस्कार की बात की है
1: जी।
0: मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो शुरुआत करते हैं वो 12-25 है ना, 50 ऐसा करते हैं, लेकिन जो धाकड़ लोग होते हैं वो तो बहुत सारे सूर्य नमस्कार करते हैं। जो बंदा अभी अपने लिए जरा भी वक्त नहीं निकाल रहा है, वो शुरू करे तो कितने से करे कि वो अगले दिन के लिए खड़ा हो पाए?
1: देखिए, जो कभी नहीं किया है
0: जी,
1: हाँ, तो उसको आप शुरू में एक राउंड से शुरू करिए।
0: अच्छा,
1: योग का मतलब ही है जोड़ना
0: जी,
1: योग प्लस है जोड़ना। तो अपने शरीर में, अपने लाइफ में अगर स्वास्थ्य को लाना है, जोड़ना है, तो उसको धीरे धीरे धीरे धीरे स्वतः स्वतः पहले एक राउंड, मतलब दो स्टेप, लेफ्ट एंड राइट, जैसे 12 काउंटिंग का एक सूर्य नमस्कार होता है, 12 लेफ्ट लेग से, 12 राइट लेग से, तो एक राउंड आप पहला दिन करिए।
0: अच्छा,
1: फिर दूसरे दिन 2 राउंड करिए, एक हफ्ते तक आप 2 राउंड 3 राउंड ऐसे करिए, जैसे जैसे आपको अच्छा लगे धीरे धीरे धीरे धीरे उसको
0: बढ़ाइए,
1: बढ़ाते जाइए।
0: नहीं, कई लोग जोश में आते हैं तो फिर किसी की कमर, किसी का कुछ
1: ये सही कर रहे हैं
0: जी।
1: तो जोश में आकर होश नहीं खोना है,
0: बिल्कुल।
1: योग हम कर रहे हैं तो ये हमें ध्यान में रखना है कि हम योग कर रहे हैं
0: जी,
1: योग को धीरे धीरे जोड़ना है
0: जी। सामान्य रूप से कितने सूर्य नमस्कार सवेरे सवेरे कर लेना एक अच्छी जीवन शैली की निशानी है?
1: देखिए, जो ऑफिस वाले हैं, वर्किंग में हैं, तो उनके लिए 10 से 15 सूर्य नमस्कार अच्छे से हर पोज को मेंटेन करते हुए करें तो
0: काफी होता है,
1: काफी होता है।
0: अब मैं आपको आपके पसंदीदा विषय की तरफ लेके जाता हूँ। ये जो सूर्य नमस्कार है, इसके फायदे बताइए कि क्या क्या है। इसको संपूर्ण योग कहा जाता है ना?
1: जी जी जी, सूर्य नमस्कार में कई आसन एक साथ हो जाता है
0: जी,
1: हाँ? तो उससे क्या होता है कि आपको अलग अलग कई आसन करने की आवश्यकता नहीं, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड लेटने का भी हो जाता है, इसमें कई आसन हो जाते हैं, भुजंग आसन से लेके पर्वतासन, ऐसे कई आसन उसमें हो जाते हैं, तो जिससे आपको अलग अलग आसन करने की आवश्यकता नहीं है। एक तरह से काम्बोज सूर्य नमस्कार किया जाता है, वो बेनिफिट आपको पूरा हेड टू टोज तक
0: मिल जाता है जी।
1: ये
0: तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है
1: सूर्य नमस्कार,
0: और पूरे दिन आप बहुत ज्यादा जोश में रहते हैं।
1: और जिनको ये भी ध्यान रखना है कि इसी योग इंस्ट्रक्टर के सानिध्य में ही करें। कभी कभी क्या है, कोई प्रॉब्लम रहते हैं तो फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना है, जो दिक्कतें हैं
0: जी,
1: तो उसको उसके हिसाब से धीरे धीरे क्या करना है, कितना करना है, उसी हिसाब से,
0: और आपकी जो शारीरिक परिस्थितियां हैं
1: उसके अनुसार
0: बाकायदा ईमानदारी से बताना है।
1: हाँ, जिनकी एज ज्यादा है उनको ध्यान में रखना है।
0: मैं वही पूछने आ रहा था बिल्कुल, कि बुजुर्गों के लिए सूर्य नमस्कार, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 50-60 की उम्र या उससे ज्यादा की उम्र का है और वो करना चाहता है
1: जी,
0: तो वो क्या करे और क्या ना करे?
1: कि बुजुर्गों के लिए सूर्य नमस्कार, पहली बात तो किसी योग गुरु के सानिध्य में रह करके धीरे धीरे करें। बुजुर्गों में बहुत से हमारे शिष्य ऐसे हैं जो कि एज उनकी काफी है, बहुत अच्छा सूर्य नमस्कार करते हैं
0: जी।
1: क्यों कर लेते हैं? कि वो शुरू से ही
0: नियमित रूप से करते आए हैं,
1: रूप से योग और सूर्य नमस्कार आसनाज वगैरह खूब अच्छे से करते हैं, तो बहुत अच्छे कर लेते हैं। लेकिन जो अभी नए हैं, जिन्होंने कभी किया नहीं, तो उनको बहुत ही ध्यान में रहकर उनको सभी जो आसन से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके उनको फिर अपने रूटीन में लाना है सूर्य नमस्कार।

0: और बहुत तनाव या प्रेशर दे करके जोश में नहीं करना है।
1: जी मैं समझ गया
0: जी।
1: मुझे ये बताइए कि मनाही नहीं है ना बुजुर्गों को सूर्य नमस्कार करने के लिए?
0: कोई भी चीज इसमें ऐसा मनाही नहीं, लेकिन हर योग को कोई अगर रोगी है, कोई व्याधि से व्याधित है, तो उसको उसके अनुसार योग को करना चाहिए और योग गुरु की सानिध्य में करना चाहिए। बहुत सी चीजें जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको क्या नहीं करना है पहले। कोई व्याधि से ग्रस्त है तो उनको उस व्याधि में कौन से आसन नहीं करने हैं वो ध्यान रखना है। तो वो ना करते हुए फिर उसके बाद में क्या करना है वो करना चाहिए।
1: बिल्कुल। अच्छा अब मैं इस बात की तरफ आ रहा हूँ कि आजकल क्या हो गया है कि सब जगह कंप्यूटर हैं, लोग जो हैं वो अपने दफ्तरों में अपने लैपटॉप पर या अपने सिस्टम पर बैठे हैं
0: जी।
1: और दिन दिन भर बैठे हैं, बीच में थोड़ा ब्रेक लिया है चाय वाय पी, उसके बाद फिर बैठे तो पता चला पूरे दिन का बैठना जो है वो 12 घंटे 15 घंटे हो गया। ऐसे लोगों के लिए कौन कौन सी सावधानियां हैं और उनको, क्योंकि देखते ये हैं कि किसी की गर्दन दुख रही है, किसी की कमर दुख रही है, किसी की कूल्हे दुख रहे हैं, टेल बोन की समस्या हो गई है, बहुत तरह तरह की जो लाइफस्टाइल की डिजीजेस हैं वो बढ़ रही हैं। तो ये ऑफिस वर्किंग पीपल के लिए आप खास तौर पर क्या कहेंगे?
0: देखिए ऑफिस वर्कर्स ही नहीं
1: जी,
0: आज का जो समय चल रहा है यूनिजी, लोगों का हर चीज पर्सनलाइज की तरफ जा रहे हैं। सबका अपना होना चाहिए सब कुछ, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सबको अपनी चीज चाहिए, अपना मोबाइल, अपना गाड़ी, अपना घर, अपना कमरा, अपना लैपटॉप, सारे पर्सनल चीजें होती जा रही हैं। तो उसमें हमने योग को पर्सनलाइज किया है, जैसे ऑफिस में जो काम करते हैं उनके लिए ऑफिस योगा, स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट योगा, गृहिणियाँ जो अपने घर में रहती हैं, सुबह बच्चों का स्कूल है, हस्बैंड का ऑफिस है, सास ससुर उनकी सेवा करना है तो किचन में ज़्यादा समय रहती हैं तो उनके लिए किचन योगा है, किसानों के लिए किसान योगा है, पत्रकारों के लिए पत्रकार योगा है, पुलिस वालों के लिए पुलिस योगा है, यंग्स के लिए योगा 2020 है। तो ऐसे ऐसे पर्सनलाइज हमने योग का पैकेज रखा है। तो जो ऑफिस में जो काम करते हैं उनका, क्योंकि कारण क्या है कि वो ज्यादातर लैपटॉप पर रहते हैं, कंप्यूटर पर रहते हैं 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे, वो उनको ख्याल नहीं रहता कि हमारा पोस्चर किधर है क्या है, वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं। तो जिसके तनाव के कारण उनके शरीर में किसी भी पोस्चर में कोई भी कभी भी खिंचाव आ गया तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं
1: जी
0: ऑफिस वालों के लिए। तो ऑफिस वालों के लिए समय दूर से आते हैं तो उनको समय भी नहीं मिलता है, तो अपनी कुर्सी पर बैठ करके कुछ चीजें हैं जो वहाँ टाइम टाइम पे 1-2 घंटे बीच में रेस्ट गैप ले करके वो योग करके, ऑफिस योग का करके वो स्वस्थ रह सकते हैं, उनको बैक का प्रॉब्लम नहीं होगा, स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा मेंटली। तो वो ऑफिस के लिए ऑफिस योगा बहुत
1: ही इस तरह से वर्गीकरण कर लिया
0: जी,
1: अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग
0: सब सभी स्वस्थ रहे
1: तय कर लिया
0: जी।
1: अच्छा अब मुझे ये बताइए कि आपका तो बहुत बड़ा अनुभव है और आप न केवल कई बड़ी हस्तियों को सिखाते हैं बल्कि जनता के बीच योग की जो लोकप्रियता है उसको बढ़ाने का काम आप कर रहे हैं।
0: जी, जी।
1: विश्व योग दिवस तकरीबन 2015 से मनाया जा रहा है, बीते इन 11 सालों में आपने क्या देखा है, क्या योग की लोकप्रियता और इसके प्रति लोगों का रुझान अब बढ़ता जा रहा है?
0: अब कुछ बहुत ही बढ़ता जा रहा है, हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में योग के प्रति, और जब से कोरोना का समय आया
1: जी
0: उसके बाद से लोगों में जागरूकता बढ़ी है, स्वयं अपने स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूक हुए हैं, और जिसका कारण है कि आज हम देखते हैं कि हर पार्क में लोग इकट्ठा होते हैं, जो योग कर सकते हैं योग करते हैं, टहलने का काम करते हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ें जो कि अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो करके लोग अपने स्वास्थ्य के लिए लाभ उठाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो लोगों की जागरूकता बहुत बड़ी है अपने स्वास्थ्य के प्रति, लोग अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छी लिविंग स्टाइल, और योग के प्रति, योग ध्यान प्राणायाम साधना इसके प्रति तो लोगों की रुचि बहुत ही बढ़ी है, और हम लोग अनवरत प्रयास कर रहे हैं कि घर घर योग, सभी रहे निरोग।
1: वाह। अच्छा एक बड़ा जो लोगों का रुझान है वो है वजन घटाने की तरफ, क्योंकि अमूमन अब लोग ओवरवेट होते हैं
0: जी जी,
1: पर बहुत कोशिशें करते हैं और वजन घटता ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या बताएंगे कि केवल योग करना ही काफी है या उसके लिए एक संपूर्ण पैकेज होता है कि किस तरह से आप क्या खाए पिए कैसे जिए?

0: हैं कि वजन भी नियमित रूप से कम हो और एक संतुलित जीवनचर्या बन सके।
1: जी, रही बात वजन कम करने की, तो आप देखते हैं कि अमूमन लोग चाहते हैं कि हम योग से बहुत कम समय में वजन को कम कर लें, तो ऐसा
0: चमत्कार
1: चमत्कार और संभव नहीं है,
0: जी।
1: क्योंकि जितने समय में जो वजन बढ़ा है,
0: हाँ, कई लोग तो बहुत जल्दी बढ़ा लेते हैं
1: हाँ,
0: जंक फूड
1: 5 साल में, दो साल में,
0: खा
1: हाँ, इतने टाइम में बढ़ा है, तो उसको कम करने में भी समय लगेगा,
0: के जी
1: और योग से जो वजन आपका कम होगा वो ज्यादा दिनों तक मेंटेन रहेगा। तो योग ही नहीं, योग के साथ आपको अपने आहार विहार पर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, उसके साथ में वर्कआउट जो आप करेंगे, योग का सबसे अच्छा रिजल्ट आता है आपका सूर्य नमस्कार से, उसके साथ साथ सब जितने भी अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन से आप केवल फिजिकली नहीं, मेंटली भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण फायदे होते हैं ध्यान से, क्योंकि
0: अच्छा
1: सब कुछ ब्रेन से ही संचालन होता है।
0: जी
1: हाँ, जैसे रोगों का शुरुआत होता है स्ट्रेस से होता है, लोगों को पता नहीं, लेकिन स्ट्रेस हो गया तो कहाँ से होता है, ब्रेन से ही होता है, तो उसके बाद ही तरह तरह की बीमारियां अमीनों की तरह जुड़ती जाती हैं। तो ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिटेशन।
0: बिल्कुल। तो मेडिटेशन तो कहीं भी किया जा सकता है, चाहे वो आप अपने ऑफिस में हो,
1: कहीं भी कर
0: स्कूल में
1: सकते
0: हो,
1: हैं
0: कॉलेज में हो,
1: आप,
0: घर पे हो।
1: कभी भी कहीं भी कर सकते हैं मेडिटेशन,
0: जी
1: और हम लोग तो हमेशा मेडिटेशन में रहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। आपने आहार विहार की बात की, आजकल जंक फूड का चलन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लोग कहीं भी
1: जी
0: खड़े हो जाते हैं
1: जी
0: और
1: जी
0: सड़क के किनारे के किसी भी चीजों को खा लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि सेहत की समस्याएं होती हैं और वजन बढ़ रहा है वगैरह वगैरह। क्या योग करने वाले व्यक्ति की जीवनचर्या के तहत आप ये इजाजत देते हैं कि वो इस तरह से मजे से बाहर खाता पीता रहे?
1: देखिए, सब कुछ हमारे ब्रेन से ही सब कुछ संचालन होता है,
0: जी
1: मस्तिष्क से ही,
0: जी
1: और अपने को ध्यान में रखते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या खा रहे हैं, किस भाव से खा रहे हैं। तो वो बहुत जरूरी है। अगर आप योग ध्यान से अपने जीवनचर्या को, आहार विहार को संतुलित किए हुए हैं, तो आप बाहर की चीजों को आप ज्यादा कंज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अपने सेहत के प्रति आप जागरूक हो रहे हैं। और रही बात बाहर की खाने की, तो आप अच्छे भाव से खाएंगे, तो भगवान शिव ने विष को भी धारण कर लिया था, लेकिन वो उनको नुकसान नहीं किया, तो कहने मतलब कि जबरदस्ती जानबूझ के नहीं खाना पीना है, लेकिन कभी हो गया तो
0: जरूरत से ज्यादा नहीं।
1: जी, जरूरत से ज्यादा नहीं।
0: जी, आज के नौजवानों का क्या रुझान आप देख रहे हैं योग के प्रति, और क्या कुछ ऐसे नौजवान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपना बहुत सारा नुकसान कर लिया था और उन्हें आप सही रास्ते पर लाए?
1: ऐसे बहुत से नवयुवक हमसे मिलते हैं, बहुत से मिले हैं, जो कि बॉडी बिल्डिंग भी करते थे और अनियमित दिनचर्या के कारण उनके फिजिकल सिस्टम भी चेंज हो गए थे, बेडोल हो चुके थे, लेकिन उनको सही मार्ग मिलने पर, जैसे हमसे मिलते हैं तो बोलते हैं, गुरु जी आप जैसे 20 साल पहले थे वैसे ही अभी भी हैं। हाँ, तो उनको एक प्रेरणा भी मिलती है कि कोई भी जैसे योग फील्ड में है, आप देखेंगे तो फिट ही रहते हैं,
0: जी
1: तो उससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। और युवा शक्ति भी, अब हमारी जेंजी, जो आजकल जेंजी बोलते हैं, बहुत ही समझदार और बहुत ही होनहार बच्चे हैं, और वो सब चीज़ों को समझते हैं और हमसे आपसे ज़्यादा वो जागरूक हैं, और उनको क्या आवश्यकता है, क्या जरूरी है लाइफ के लिए, वो कर रहे हैं, सही दिशा में वो जा रहे हैं, अपने भविष्य को भी लेकर हमारे देश को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो बच्चों में और नवयुवकों में तो बहुत परिवर्तन आया, और मैंने देखा है कि जिम भी करते हैं और योगा भी करते हैं, मेडिटेशन प्राणायाम भी करते हैं। तो
0: बिल्कुल। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, आज की दुनिया ऐसी है जहां स्क्रीन की तरफ रुझान बहुत ज्यादा है, इसलिए उनका जो ध्यान बहुत भटकता है पढ़ाई में, क्योंकि
1: जी
0: मोबाइल हाथ में है। अगर एक बार सोशल मोबाइल मीडिया में घुस गए तो कई घंटे चले जाते हैं और उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती। ये जो फोकस है,
1: जी
0: इसके लिए किस तरह के योग करने चाहिए, ये छात्रों की बात कीजिए।
1: सबसे पहले तो हम छात्रों की बात आती है, और मैं योगी ही योगी राज हूँ, तो हमारे जो छात्र हैं, चाहे वो जूनियर कॉलेज के हों चाहे कॉलेज के, पहला तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और उनसे आशा भी करेंगे, तो पहला कि जीवन में ब्रह्मचर्य को अपनाएं,

0: जीवन का जो मूल है वो शक्ति का, वीरवान बने और शौर्यवान बने। और उसके साथ साथ जो मोबाइल की जो स्क्रीनिंग है, मोबाइल है, लैपटॉप, स्क्रीन का जो जमाना चला है, तो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो हमारा योग और मेडिटेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज के इस स्क्रीनिंग से। तो उसके लिए भी मोबाइल चर कह लीजिए कि मोबाइल स्क्रीन को भी अपने लाइफ में जितनी आवश्यकता है सीमित करना है, और किस फील्ड में उसे में क्या लाभ है उसको जोड़ना है, और खुद से उनको समझ करके उनके लाइफ में क्या जरूरी है। स्टडी, बच्चों को पढ़ना भी स्क्रीन के अलावा हो नहीं रहा है, तो जो इम्पोर्टेंट है जितना समय सीमित है उतना ही उसको उपयोग करें, और फिजिकली वर्क में भी अपने को ध्यान दें, खेल कूद भी करें, योग करें, प्राणायाम करें, वो बहुत इम्पोर्टेंट है
1: जी। एक और बहुत जरूरी बात और एक बहुत बड़ा वर्ग जिसकी बात मैं करना चाहता हूँ वो है हमारी महिलाएं। उनमें से कुछ हैं जो गृहिणियां हैं
0: जी,
1: और बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो बाहर काम करने जाता है, उनके जिम्मे बहुत सारे काम हैं, तो वो घर भी संभालती हैं
0: जी,
1: बच्चों को भी ध्यान देना है, और ऊपर से फिर अपना जो काम है वो भी नियमित रूप से करते रहना है। ऐसे में वो अपने स्वास्थ्य को अमूमन नजरअंदाज करती हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
0: पहले तो हम अपनी देश की नारी शक्ति को हम प्रणाम करना चाहेंगे कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी शायद ही कोई उठा सकता है। और रही बात उनको खुद की, अपने स्वास्थ्य की, तो हम तो कह रहे हैं कि मैक्सिमम जो हमारी गृहिणियां हैं, हमारी नारी शक्ति है, वो अपने पर ध्यान नहीं रखती हैं, ध्यान ही नहीं दे पाती, क्योंकि कितना उनका व्यस्त जीवन रहता है सुबह से शाम तक का। बहुत से हमारे नारी शक्ति हैं जो कि घर का भी काम करती हैं, ऑफिस का भी काम करती हैं, उनको भी हम कहना चाहेंगे कि 24 घंटे में 20 मिनट अपने लिए समय कैसे भी निकालें, क्योंकि इस शरीर से ही पूरा संसार है, इस शरीर से ही पूरा घर परिवार है, समाज है, सोसाइटी है, इस शरीर से ही है। तो अपने शरीर के लिए थोड़ा समय निकालकर सुबह या शाम जब भी समय मिले, नहीं कुछ तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, 5 मिनट ध्यान शुरू करें, तो उससे क्या है कि उनको, महिलाओं को बहुत ज्यादा चैलेंजेज होते हैं तरह तरह के,
1: मन भी कई बार अशांत रहता है,
0: अशांत रहता है मन, और सब मन से ही सारी चीजें होनी है, और बहुत से ऐसी जो व्याधियां हैं कि उनको बहुत जल्दी परेशान करती है, गायनोलॉजिकल हुआ या इससे बहुत सी चीजें हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है जो योग मेडिटेशन।
1: और क्या महिलाएं सूर्य नमस्कार कर सकती हैं?
0: क्यों नहीं कर सकती है, बहुत अच्छे से कर सकती है, करती हैं
1: जी,
0: लेकिन ज्यादा एज के हैं उनको सावधानी रखनी पड़ेगी, और जो भी करें सीख करके योगा इंस्ट्रक्टर या गुरु के सानिध्य में करके करें, करती हैं सब, यंग है नारी शक्ति, तो सूर्य नमस्कार भी कर सकती है, 20 मिनट 25 मिनट करके पूरे दिन स्फूर्ति से काम कर सकती है,
1: लेकिन किसी इंस्ट्रक्टर की निगरानी में करना ज्यादा अच्छा,
0: हाँ, सीख लें तो वो बेहतर है, क्योंकि योग अगर सही किया गया तो गुणनफल में फायदा होता है
1: जी,
0: अगर गलत किए तो गुणनफल में उसका नुकसान भी हो सकता है
1: जी,
0: तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि गुरु के सानिध्य में रह करके सीख के करें।
1: चलते चलते आप हमारे श्रोताओं से विश्व योग दिवस पर क्या कहना चाहते हैं, और उसके बाद क्योंकि आप बांसुरी भी बजाते हैं तो हम सबसे अंत में आपका संगीत भी सुनेंगे, पहले विश्व योग दिवस पर आप अपनी बात कहिए जो हमारे श्रोताओं से आप कहना चाहते हैं।
0: हम अपने सभी विविध भारती के सभी श्रोताओं को हम ये कहना चाहते हैं, ये जो योग महोत्सव का जो पर्व चल रहा है हमारे देश में 100 दिन का, और 21 जून को हम लोग अंतिम महोत्सव का मनाएंगे, और ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि लोग 21 जून को ही ज्यादातर लोग योग करते हैं, उसके बाद बहुत से लोग छोड़ देते हैं,
1: मतलब हर साल 21 जून को करते हैं
0: 21 जून को साल में एक बार ही करते हैं, पूरे जोश से सब बढ़िया टी शर्ट खरीदेंगे, बढ़िया ट्रैक वगैरह खरीद के,
1: हाँ,
0: योगा मैट भी खरीद लेते हैं,
1: हाँ,
0: तो एक दिन करते हैं उसके बाद फिर रख देते हैं
1: जी।
0: तो हम अपने विविध भारती के तरफ से हम सभी श्रोताओं को, पूरे विश्व के सभी लोगों से आह्वान करना चाहेंगे, केवल 21 जून को ही न करें
1: जी,
0: पूरे वर्ष भर करें, हर दिन योग अपने जीवन में अपनाएं और स्वस्थ और सुंदर बने रहें, यही हमारी श्रोताओं से हमारा निवेदन है। और
1: अब हम आपसे बांसुरी सुनना चाहेंगे
0: जी, हम बांसुरी सुनाएंगे श्रोताओं को, और इस बांसुरी धुन के साथ में हमारे श्रोता आराम से बैठ जाएंगे, अपनी अपनी आंखें बंद करेंगे, तो थोड़ा सा मेडिटेशन हमारी बांसुरी की धुन पर, आंखें बंद करके श्वास लें, श्वास अंदर श्वास बाहर, अपने श्वास को देखना है
1: जी।
0: और इस मधुर बांसुरी के साथ

0: बहुत ही मीठी बांसुरी की धुन आपने सुनाई और हमारे जो श्रोता हैं उन्होंने इस धुन के सहारे ध्यान जरूर किया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पालघर पीठाधीश भारत भूषण भारतेंदु जी, आप विविध भारती में आए और आपने योग के इतने सारे गुर हमें बताए और उसके महत्व पर प्रकाश डाला। फिर से योग दिवस की शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हमारे विविध भारती के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, आप विश्व योग दिवस पर ये विशेष प्रस्तुति सुन रहे थे जिसमें योगीराज भारत भूषण भारतेंदु से आपके इस दोस्त यूनुस खान ने बातचीत की और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जुबैर खान ने। इसी के साथ आज का मैटिनी शो यहीं खत्म होता है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में अपने पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंची। ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय

0: लोगों ने राष्ट्रपति के आगमन पर उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज अपना 68वां जन्मदिन मना रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज पहाड़पुर गांव पहुंचेंगे। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने गांव का दौरा करेंगी। वे पवित्र संथाली जहेरा और हो जहेरा उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही कौशल विकास केंद्र और पहाड़पुर स्कूल का दौरा भी करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े जनसभा कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे ऊर्जा अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सिंचाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारी पुख्ता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज पश्चिम बंगाल दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन दावों को खारिज किया है जिनमें कहा गया था कि कुछ मीम्स को लेकर विरोध दर्ज कराने के लिए चीन ने भारत के राजदूत को तलब किया था। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ये दावा पूरी तरह से झूठा और निराधार है। अमेरिका और ईरान के बीच अगले दौर की वार्ता के लिए अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। ये वार्ता कल शुरू होनी थी लेकिन लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच जारी संघर्ष के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। बाद में दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमरीका और ईरान के बीच होने वाली इस नई वार्ता में संभावित परमाणु समझौते पर चर्चा होने की उम्मीद है। विश्व भर में कल 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। संस्कृति मंत्रालय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और योग परंपराओं को दर्शाते हुए देश भर में 100 स्थानों पर विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के MH चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

पराया धन, ये था फिल्म का नाम। किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे, आनंद बख्शी ने इसे लिखा, आरडी बर्मन की तर्ज थी। आज यादों की महफिल में आपको वो गीत सुनवा रहे हैं जहां कहीं ना कहीं इंतजार है, मुलाकात है।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल, और अंतराल पर जाने से पहले आप सुन रहे थे खानदान फिल्म से गीत। लता मंगेशकर की आवाज में नक्श लायलपुरी ने उसे लिखा और खयाम का संगीत था।

अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे विजय पथ फिल्म से। जमीर काजमी ने इसे लिखा था, अनु मलिक का संगीत। यादों की महफिल में आज वो गीत जहां कहीं इंतजार।

0: फिल्म पाप से इस गीत को अभी आप सुन रहे थे, अनु मलिक ने संगीत दिया था।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना,

0: जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था। मैं रूम पे गया और लेट गया। मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं। और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
0: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

हरिहरन और सुखविंदर सिंह की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे ताल फिल्म से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और एआर रहमान का संगीत। अगला गीत आपको सुनाने जा रहे हैं दिल्ली सिक्स, इस फिल्म से एश किंग की आवाज, प्रसून जोशी ने इसे लिखा, एआर रहमान का संगीत।

विशाल मिश्रा और रूप कुमार राठौड़ की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे बॉर्डर 2 से। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, अनु मलिक और मिथुन का संगीत।

अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। समीर ने इसे लिखा, अंजाम फिल्म से इसे लिया गया था। इसके साथ ही ये प्रोग्राम यादों की महफिल यही संपन्न होता है।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी। प्रदेश में विभिन्न जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में किसानों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पाली के सुमेरपुर

0: में होने वाले राज्य स्तरीय पीएम किसान उत्सव में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री ने आज जयपुर के जनपद से 29 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन आधुनिक ई बसों के संचालन से राजधानी में प्रदूषण घटेगा और शहरवासियों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने इसे विकसित भारत के संकल्प की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि आने वाले समय में प्रदेश के विभिन्न शहरों के लिए 1100 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे राज्य में स्वच्छ और सुगम परिवहन व्यवस्था को और अधिक मजबूती मिलेगी।
1: हमारी सार्वजनिक परिवहन से शहरी क्षेत्रों में होने वाली प्रदूषण कम होगा और हमारा निश्चित रूप से पर्यावरण की क्षेत्र में एक नया कदम होगा। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा, अलवर, अजमेर का चयन इसमें हुआ है। 675 इलेक्ट्रिक बसें स्वीकृत की गई है जिनका आना प्रारंभ हो गया है। 475 ई बसें स्वीकृत और हुई है जो स्कूल में ला करके 1150 बस की सौगात मिलने जा रही है।
0: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज जयपुर में प्रदेश के लगभग 700 बूथ लेवल अधिकारियों और सुपरवाइजरों के साथ सीधा संवाद कर रहे हैं। ये कार्यक्रम सीतापुरा स्थित जेईसीसी में आयोजित किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य बीएलओ के जमीनी अनुभवों, चुनौतियों और सुझावों को गहराई से समझना है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल प्रदेश भर में मनाया जाएगा। इसके लिए सुबह 6 बजे से राज्य के सभी जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तरों पर योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम आबू राज में आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अजमेर में और डॉ प्रेमचंद बैरवा भीलवाड़ा में योगाभ्यास कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा सभी कैबिनेट और राज्य मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिलों में आमजन के साथ योगाभ्यास करेंगे। इस बीच प्रदेश में जगह जगह सामूहिक योगाभ्यास के आयोजन हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री ने अपने जयपुर स्थित आवास पर योगाभ्यास कर प्रदेशवासियों को स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। इस दौरान महिला पुलिस और कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के कार्मिकों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री शर्मा ने कहा कि योग केवल एक व्यायाम नहीं है, बल्कि ये स्वस्थ शरीर, शांत मन और संतुलित जीवन का आधार है। जोधपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कैंसर उपचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा नई पीढ़ी के ऐसे विशेष बायोमार्कर्स विकसित किए जा रहे हैं जिनकी मदद से उपचार शुरू होने से पहले ही ये सटीक अनुमान लगाया जा सकेगा कि किसी मरीज की कीमोथेरेपी पर कितना असर होगा। और अधिक ब्यौरा हमारे जोधपुर संवाददाता से।
2: शोध में सिंगल सेल सीक्वेंसिंग, मल्टीकलर हाई पैरामीटर फ्लो साइटोमेट्री और आधुनिक आणविक तकनीकों का उपयोग कर कैंसर कोशिकाओं का सूक्ष्म अध्ययन किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये शोध भविष्य में कैंसर उपचार को अधिक व्यक्तिगत, सटीक और प्रभावी बनाने के साथ ही मरीजों की जीवित रहने की संभावना भी बढ़ाएगा। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। तेज गेंदबाज हर्षित राणा घुटने की चोट से उभरने के बाद अंतिम एक दिवसीय मैच के लिए टीम में है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

रिमझिम गिरे सावन। जी हाँ, लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत, योगेश का लिखा हुआ, आरडी बर्मन की तर्ज और मंजिल फिल्म से अभी मैंने आपको सुनवाया। और सबसे ज्यादा चाहने वाला, सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला ये गीत आपके कमेंट्स में भर भर के था। और भी गीतों की बारी आएगी लेकिन आपके संदेश ले लेते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की छोटी सी सुंदर सी इबारत, जब रिमझिम बारिश बादलों और आसमान के बीच एक खूबसूरत एहसास जन्म लेता है, रिमझिम गिरे सावन, वो तो हम ले चुके हैं। बारिश याद दिलाती है बचपन की, जब बेफिक्र से बारिश के बादलों के साथ उड़ने को जी चाहता था। और प्रकृति में हर तत्व का संतुलन है, मौसम तब तक अधूरा है जब तक झमाझम बारिश ना हो जाए। लेकिन बारिश की कमी अभी थोड़ी लग रही है, थोड़ा इंतजार ज्यादा करवा रही है बारिश। लेकिन आपके जो मैसेजेस हैं वो भी एक खूबसूरत बरसात लेकर आई है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि सबसे पहले तो मैं विविध भारती का वो फेमस गीत जो हर समय हर मौसम में बजता है, बहुत ही लाजवाब सुंदर गीत है, रिमझिम गिरे सावन, उसके बारे में लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता है, वो लिखते हैं कि बारिश शुरू नहीं हुई लेकिन विविध भारती के सुरीले सफर में बारिश और गीतों के बौछार की बारिश बड़ी तेज हवा के साथ आगे चल रही है और ये सफर पूरा करना चाहते हैं हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। रिमझिम बारिश और भीगा आसमान छाएगा सुरीला सफर में। और एक और श्रोता हमारे हैं जिन्होंने लिख भेजा है कि आपकी इबारत ने सचमुच बरसात की बूंदों की तरह मन को भिगो दिया है। ये पंक्तियां प्यार, प्रकृति और संकोच के खूबसूरत मिलन की तस्वीर दर्शा रहा है। बारिश का मौसम और जमीन आसमान का जुड़ाव एक रूहानी माहौल बनाता है। शब्दों की ये रूहानी बुनावट और मोहब्बत का मुकम्मल एहसास दिल को छू लेने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, शुरुआत इस खूबसूरत गीत के साथ और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, बारिश की बात हुई है तो इसी से जुड़ा कुछ सवाल लेते हैं। जब बात बारिश की आती है, बरसात की आती है, पहली बरसात की आती है किसी खास के साथ, तो वो एहसास ही बहुत स्पेशल, बहुत खास होता है। तो आपकी कुछ पहली बरसात की यादें आप ताजा करना चाहें तो लिख भेजें बहुत ही कम शब्दों में, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा आपके संदेश पढ़ सकूं। तो बारिश के रूहानी एहसास, पहली मुलाकात या कुछ ऐसा जो बारिश में आपको याद रह गया हो, मुझे लिख भेजिए।

फिल्म दर्द से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, नक्श लालपुरी ने इसे लिखा और खयाम का संगीत था। बारिश बरसात से जुड़े आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच चुके हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि कल तो हमारे यहाँ इतनी रिमझिम बारिश हुई, सुबह 8 से 10 तक मूसलाधार वर्षा हुई और पानी चारों तरफ भर गया। एक तरह से रेनी डे ही हो गया और कोई कहीं ऑफिस ही नहीं जा पाया। अच्छा है ना, आपको छुट्टी मिल गई इसी बहाने। एक और श्रोता लिखते हैं कि जैसे ही ये पहला गीत बजाया हमने, वैसे ही बहुत मजा आ गया क्योंकि रिमझिम से यही गीत उन्हें सबसे पहले याद आता है।

हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन, इसी गीत पर पिछली बारिश के दिनों में हम मुंबई आए हुए थे। मरीन ड्राइव और समंदर किनारे में और मेरी धर्मपत्नी एक छाता लेकर चल रहे थे। बारिश हो रही थी और इस गीत पर बेटी ने वीडियो भी बनाया था और हमारी हाइट भी लगभग वैसी है जैसी इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और मौसमी चैटर्जी की है। जी हाँ, ये छोटे छोटे से पल हमेशा याद रहते हैं और कहीं ना कहीं ये वीडियो बनाना, फोटोज खींचना, कहीं ना कहीं ये याद बहुत ही मीठी यादें रहती है और ऐसा जरूर करना चाहिए जब भी वक्त मिले। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि मंजिल फिल्म का गीत बजाकर बस एक आस जगा रही है, एक आस जग रही है। यहाँ पर 44 डिग्री तापमान में झुलस रहे हैं और आसमान देखते हैं, बादल तो नहीं दिख रहे, बस आग बरस रही है। कहाँ से आपने ये मैसेज संदेश भेजा है हमें ये भी लिखिए और वहाँ का मौसम कैसा है हमें ये भी लिखिए। एक और श्रोता करते हैं, लिखते हैं कि बूंदों से भिगोने वाली शानदार गीत से आपने आरंभ किया है और ये विविध भारती का बहुत ही फेमस गीत है, हमेशा बजता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बारिश हो या ना हो लेकिन ये गीत सुनते ही बारिश के बूंदों से हम भीग जाते हैं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज तो मौसम और प्रकृति से संबंधित विषय पर ही चर्चा होगी और इन्हें लगता है कि बारिश, जमीन, खुशी, अपनापन ये विषय हो सकते हैं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि बचपन में गांव में जब वे थे तो पहली बारिश में खेतों से उठती सौंधी खुशबू मदमस्त मादक माहौल बना देती थी। जी हाँ, ये सौंधी खुशबू बहुत कुछ याद दिलाती है। तो आप मुझे लिख भेजिए कि आप कहाँ से हमें संदेश भेज रहे हैं, वहाँ का मौसम कैसा है, बारिश हुई है, कुछ छींटे बरसे हैं या फिर कैसा तापमान है और आपकी बारिश से जुड़ी यादें ज़रूर मुझे भेजिए। लेकिन साथ ही साथ कई यादें बहुत अच्छी भी होती है और कई यादें थोड़ा सा परेशान भी कर देती है, तो आप इस तरह के किस्से भी लिख सकते हैं मुझ तक।

अमित कुमार की आवाज में गीत तेरी कसम फिल्म से आनंद बख्शी ने लिखा, आर डी बर्मन का संगीत था। और आपके बारिश में भीगे खत मुझ तक पहुंचे हैं, या यूं कहें मैसेजेस पहुंचे हैं, डिजिटल खत कह सकते हैं इसे, जो संदेश आप मुझ तक पहुंचा रहे हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिमझिम गिरती बूंदों और मिट्टी की सौंधी महक के बीच बारिश में हुई वो हमारी पहली मुलाकात आज भी जहन में ताजा है। अचानक आई तेज बौछार से बचने के लिए हम दोनों एक ही छोटे से शेड के नीचे आकर खड़े हुए थे और एक तरफ आसमान से बरसता पानी था, दूसरी तरफ हमारे बीच की वो अनकही झिझक। हवा के ठंडे झोंकों के साथ जब हमारी नजरें मिली तो बिना कुछ कहे ही एक अनजाना सा जुड़ाव महसूस हो गया। बहुत ही खूबसूरती से आपने उस मुलाकात को लिखा है और सचमुच एक कहानी जो है वो नजर आ रही है, इस कहानी को और आगे बढ़ाया जा सकता है। बहुत ही खूबसूरत संदेश है ये। हमारे दूसरे श्रोता लिखते हैं कि आजकल बारिश सिर्फ नाम की होती है, रिमझिम बारिश नहीं होती, एक झटके में आंधी तूफान के साथ आती है और चली जाती है। हमारे श्रोता एक और हैं जो लिख रहे हैं कि ये कागज की कश्ती, ये बारिश का पानी, जब भी बारिश की बात आती है तो कागज की कश्ती चलाने का बचपन में अपना एक महत्व रहता था वो उन्हें याद आता है। और गजल सुनना चाहते हैं, देखते हैं आज की लिस्ट में क्या क्या गीत शामिल है। एक और श्रोता हमारे हैं जो इस वक्त सफर कर रहे हैं और वो कह रहे हैं हम सफर में चल रहे हैं, बेटी कार चला रही है और हेडफोन से सुरीला सफर का आनंद ले रहे हैं। हमारे एक श्रोता अपनी परेशानी अपनी चिंता यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वैज्ञानिक लोग ना जाने किस किस चीज की भविष्यवाणियां कर रहे हैं और ऐसे में हमारे प्राण अटक जाते हैं। कई सालों बाद ऐसे होने जा रहा है और बरसात बहुत कम हो रही है, किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, और ये जो मानसून अटका पड़ा है आगे बढ़ ही नहीं रहा है, इससे खेती को बहुत ज्यादा उस पर प्रभाव पड़ेगा और न जाने क्या होगा। देखिए कुछ चीजें हमें छोड़ देनी चाहिए भगवान के ऊपर, है ना, बस जैसे जो आ रहा है उसे उसी तरीके से उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बस यही है। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं सूरत गुजरात से, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बारिश नहीं हुई है और ऊपर से चिलचिलाती गर्मी है, आपके बारिश के गाने अलग हैं तो अब हम क्या करें। आप गीत सुनिए और आनंद लीजिए। हमारे को श्रोता कहते हैं कि मैं नागपुर महाराष्ट्र से लिख रहा हूं और यहां तक अभी बारिश का लेश मात्र स्पर्श तक नहीं है, मानो आसमान से आग बरस रही है। एक और श्रोता हमारे बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां लिखते हैं कि एक खत लिखा था बादलों को, भीगा भीगा सा जवाब आया अभी। बहुत ही खूबसूरत। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और ये जो बारिश का मौसम है जिसने हमें दीवाना बना रखा है उस पर ये गीत।

हमारे श्रोता लिखते हैं कि पुणे में तो अब तक बारिश का नाम ही नहीं है और बाहर चिलचिलाती धूप है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन साथ ही एक दूसरे श्रोता लिखते हैं कि मौसम चाहे कैसा भी हो, सुरीला सफर में जो मौसम होता है वही आसपास हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता हमारे हैं जो लिखते हैं कि बारिश के दिनों में मेरी बेटी और मेरी देवरानी की बेटी दोनों छोटी थी, दोनों हाथ पकड़कर छत पर जा रही थी, उनको बारिश में भीगना है पर सब उनको मना कर रहे थे। वो छाता लेकर बड़ा सा और भीगती गई और बहुत देर तक आनंद लेती रही और थोड़ी देर के बाद छतरी बंद करके खूब भीगी और फिर खूब मजे किए। ये बचपना उनका देखकर हम सब हंस दिए। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के पुंज से लिख रहे हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पर मौसम बहुत सुहावना है, बारिश भी होती है, गर्मी भी होती है, लेकिन तापमान 27-28 के बीच ही रहता है। कुल मिलाकर प्रकृति का भरपूर आनंद लेते हैं। हमारे एक और श्रोता है जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां लिखी है, जाने कैसी ये बारिशों की मनमर्जियां हैं, कहीं जमकर बरसना कहीं बस अर्जियां हैं, है बेबस सब इनके आगे। मेरे गांव के आसमां से यूं तो रोज गुजर रहे हैं बिना बरसे ही बादल, न जाने कैसी ये बारिशों की खुदगर्जियां हैं। बहुत ही खूबसूरत संदेश है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी श्रोता लिखते हैं कि अभी तक संदेश नहीं लिख पाए क्योंकि कहीं बाहर थे और अभी घर पहुंचे हैं, अभी माँ ने भोजन दिया है और साथ ही साथ संदेश भी लिखेंगे। साथ ही एक और श्रोता है वो लिख रहे हैं कि मैं गा रहा हूँ, मेरी श्रीमती जी गा रही हैं, रेडियो के सभी श्रोता गा रहे हैं, विविध भारती गा रही है और ये सुहाना सफर में उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे एक और श्रोता है वो अयोध्या से हमें संदेश भेज रहे हैं कि यहाँ पर तापमान चढ़ा हुआ है, मई में एक दो बार बारिश हुई, जून का 20 दिन इंतजार में गुजर चुका है लेकिन बारिश नहीं हो रही है, कभी कभी एक दो बार आंधी की कुछ फुहारे पड़ी है, जून के बराबर है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि लव स्टोरी फिल्म से ये जो गीत उन्होंने सुना, इसमें जब ये रिलीज हुई थी उसके बाद नायक और नायिका की लोकप्रियता कुछ इस कदर बढ़ चुकी थी, इतने लोकप्रिय हो गए थे वो, ऐसा जादू चल गया था कि लड़का लड़की शब्द आम बोलचाल भाषा का हिस्सा बन गया था और ये बहुत ही खूबसूरत गीत उन्हें लगता है उस दौर की मासूम मोहब्बत और कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर जाता है। हमारे एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि ये गीत बहुत ही पसंद आ रहा है उन्हें और अभी उनके शहर में बारिश नहीं आई है, बारिश के गीत तो बहुत सारे हैं और कुछ गीत उन्हें याद नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, आप गीत सुनिए जो हम आपको सुनवा रहे हैं और आनंद लीजिए इस प्रोग्राम का जिसका नाम है सुरीला सफर।

मैंने प्यार किया, ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे थे आप ये गीत। असद भोपाली ने इसे लिखा और राम लक्ष्मण का संगीत था। हमारे श्रोता लोग जो हैं वो हमें मौसम के बारे में बता रहे हैं। जालंधर सिटी में तापमान 37 डिग्री है इस वक्त। एक और श्रोता है, वो लिखते हैं कि मेरे बेटी, दामाद, बेटा और नाती वैष्णो देवी घूमने गए हैं और सूचना मिली है कि वहां का मौसम बहुत ही हसीन, सुंदर और ठंडक से भरा हुआ है। जी हाँ, वहां पे गर्मी के वक्त भी बहुत अच्छा मौसम होता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि चिलचिलाती धूप में बारिश के गाने सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे फिजिक्स के एग्जाम में केमिस्ट्री के प्रश्न आ गए हों। हमारे एक श्रोता ने अपना किस्सा साझा किया है कि धुआंधार बारिश में एक बड़ी ही दर्दनाक घटना हो गई थी। वो नए नए डाक विभाग में सिलेक्ट हुए थे और नासिक शहर से थोड़ी दूरी पर एक गांव में उन्हें जाना था। बाइक से अप डाउन करते थे, बीच में एक नदी थी जिस पर एक पुल हुआ करता था और

बारिश के दिनों में ऑफिस की छुट्टी होने पर वो निकल पड़े, ऑफिस की छुट्टी होने पर, अच्छा जब ऑफिस खत्म हुआ तो निकल पड़े और जोर से बारिश हो रही थी और पुल पानी पर चढ़ चुका था और ऐसे में जब वो क्रॉस करना चाह रहे थे उसे तो बहाव इतना तेज आया कि बाइक समेत पानी में धकेल दिया गया पानी के बहाव ने उनको। और गनीमत है कि अच्छा तैराक होने के नाते वो किनारे तक पहुंच गए लेकिन बाइक बह गई। जी हाँ, ये परेशानी तो होती ही है लेकिन अच्छी तैराकी ने आपको बचा लिया। और सचमुच कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर इंसान को सीखना ज़रूरी होता है और होना चाहिए, शौक के तौर पर भी और एक पैशन भी होता है जो ऐसी ऐसे जब सिचुएशन आती है तो ऐसे में हमको बचा भी लेता है। एक और श्रोता है, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखी है कि शायद कोई ख्वाहिश रोती रहती है, मेरे अंदर बारिश होती रहती है। अहमद फराज की लिखी पंक्तियां हैं ये। एक और श्रोता है, वो कहते हैं कि 10 गीतों की लिखी हुई इबारत में से 8वें नंबर पर ये गीत शामिल हुआ है और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। और इस गीत में लता मंगेशकर ने ये पगला है इन शब्दों को बहुत ही अलग अलग तरीके से गाया है और गौर से सुनने लायक है। जी हाँ, अजमेर से हमारे श्रोता लिखते हैं कि बारिश तो नहीं है, रिमझिम बारिश, हल्की फुल्की बारिश ही हो रही है और काले बादलों का समा है आसमान में बन रहा है और थोड़ी बहुत खुशी आती है पल भर की लोगों के चेहरे पर कि बारिश होगी लेकिन काले बादल टाटा बाय बाय करते हुए निकल लेते हैं। इंदौर से हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिमझिम गाने सुनने के लिए बादल आ गए हैं, सुबह धूप थी लेकिन अभी अचानक मौसम में बदलाव आ गया है और ऐसा लग रहा है कि वो भी हमारा मौसम, हमारे जो प्रोग्राम है वो सुन रहा है और इसीलिए तब्दीली आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इस प्रोग्राम में अगला गीत।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म बेताब से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और आरडी वर्मन की तर्ज थी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे हमसफर के साथ में पहली बारिश बारा खंबा गया था और वहां दोनों भीग गए थे। दोनों ने एक साथ चाय पी और सचमुच ही वो पहली बारिश मुझे हमेशा याद रहेगी। अभी उनकी हमसफर उनके साथ नहीं है लेकिन विविध भारती का साथ सदैव ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि धूप ने धरती को कितना तपाया है, अब हर नजर ने बादलों को बुलाया है। खंडवा की राहों में बस यही अरमान है, बरसे मेघ झूम कर, यही सबका इंतजार है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत संदेश। सुरीला सफर का अंदाज बहुत कुछ बयां कर रहा है। इस खूबसूरत गाने के साथ शुरू हुआ आज का कार्यक्रम। सचमुच बारिश आने वाली है और हमारे यहाँ तो पहली बारिश हो चुकी है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है और प्रकृति को झूमते हुए देख मन भी बड़ा प्रसन्न हो जाता है। और ये हमें संदेश भेज रहे हैं इच्छावर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश का। एक और श्रोता लिखते हैं कि बारिश से मच्छर बहुत आते हैं रात को और दिन में मक्खियां, और दोनों में कंपटीशन लगा हुआ रहता है और इंसानों को परेशान करने का, तो इन सभी से जरूर बचें। बिल्कुल, जो भी जरूरी एहतियात है उसे बरतें और जरूर जरूर बचें इन सब चीजों से, क्योंकि बारिश तो है ही लेकिन साथ में बीमारियां भी इस मौसम में बहुत ज्यादा आती है, तो अपना ध्यान रखें। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के जो गीत हैं ये लोगों को सुकून दे रहे होंगे कहीं ना कहीं, ऐसा उन्हें लगता है क्योंकि गीत उन्हें पसंद आ रहे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि भीगना तो तय है, चाहे बारिश में हो या गर्मी में। अभी दुकान पर काम करते करते हमारी बातें सुन रहे हैं वो, और बाहर घने बादल छाए हैं, दुकान के अंदर पसीने से भीग रहे हैं वो। 2019 की एक बात कहते हैं एक श्रोता, और उन्होंने लिखा है कि अगस्त महीने में पटना में इतनी बारिश हुई थी कि पूरा पटना बारिश से डूब चुका था, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था और सबसे दिक्कत हुई, सबसे

ज्यादा दिक्कत जो हुई वो पानी पीने की हुई, पीने का जो पानी था उसकी बहुत दिक्कत हुई, वो नहीं मिल पा रहा था और जहाँ तहाँ कैसे करके इंतज़ाम किया गया मोहल्ले में और कोई गाड़ी भी नहीं आ पा रही थी उस वक्त। तो ऐसे में ये कुछ चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं परेशानी देती है। जी हाँ, इन सब का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही एक और श्रोता लिखते हैं कि बारिश के फुहारों के साथ हंसी के सुरीले फुहारे तब निकले थे जब साथ में मेरी हमसफर थी और पैदल चलते हुए फोल्डिंग छतरी तेज हवा के कारण आधी ऊपर की तरफ हो गई थी। हम भीग भी रहे थे और हंस भी रहे थे। बहुत ही खूबसूरत संदेश और अब ये गीत इस फेरिस्त में।

मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में गीत बीवी हो तो ऐसी इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। समीर ने इसे लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। इसके साथ ही हम बढ़ चले हैं इस प्रोग्राम की समाप्ति की ओर। आपके मैसेजेस मुझ तक बहुत से आए हैं, मैंने कोशिश की है कि सबके मैसेजेस पढ़ूं, सबके संदेश पढ़ूं, लेकिन हमारे श्रोता लिखते हैं कि एक बार ओले बरस रहे थे, साइज भी उनका ठीक ठाक था, फोन से वो पिक ले रही थी और उनकी गर्दन पर एक ओला आकर गिरा जो कि बहुत पेनफुल था। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि उन्हें अपने जीवन साथी के साथ बाइक पर बारिश में भीगते हुए घूमना बहुत पसंद था, लेकिन अभी वो ऐसा नहीं कर सकती हैं। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि आपके गीतों के साथ बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही यहाँ पर बारिश भी हो जाएगी। जी हाँ, बहुत खूबसूरत संदेश है। और लेकिन अब समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। आपने आज का ये सफर तय किया अनुराधा के संग। इजाजत चाहती हूँ इस प्रोग्राम से जिसका नाम है सुरीला सफर।

मिलेंगी विवाह पर। एक बिटिया घर में जन्म लेती है और धीरे धीरे बड़ी होती है। माता पिता का दिल हर मोड़ पर उसकी बलाएं लेता है। छोटे छोटे हाथों से रोटी बनाती बिटिया, गुड़ियाओं से खेलती बिटिया धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। बचपन की पायल की वो छुन छुन धीरे धीरे लुप्त हो जाती है और बिटिया के विवाह का समय आ जाता है। जिन गालों में अब तक दूध का उजाला भरा था, अब सिर पर चुनर डालते ही वो गाल सुर्ख लाल हो जाते हैं। सजती संवरती दुल्हन रस्म दर रस्म किसी और की होती चली जाती है। माता पिता के मन में अनेकों सवाल उभरने लगते हैं कि नया घर हमारी बिटिया को उतने ही प्यार से तो अपनाएगा ना, लाड़ों का वर ढूंढने में हमने कोई कमी तो नहीं रखी ना, हमारी बिटिया खुश तो रहेगी ना। ऐसे तमाम सवालात के बीच बारात आ जाती है।

विवाह के समय लोग कई सारी तस्वीरें खींचते हैं, पर माँ पिता और दुल्हन के मन की तस्वीर अगर कोई ले पाता तो जान जाता कि उनके मन में कितनी उथल पुथल चल रही है। कहीं उम्मीद की धूप है तो कभी अनजाने भय का कोहरा, कभी भीगी भीगी से जुदाई की फुहार है तो कभी आंखों में नमी, कभी अपने कलेजे के टुकड़े को विदा करते माता पिता कई सवालों से घिरे होते हैं। इन तमाम बातों के बीच बिटिया नए घर के लिए विदा होती है। जाते समय आशीष की पोटली भी उसके साथ जाती है, जिसमें होती है कई सारी सीख और नसीहतें। उस घर को अपना बनाने की सीख, मान और प्रतिष्ठा को सहेजने की सीख, सबको अपना बनाने की सीख। भावों की लहरों पर सवार होकर वो बाबुल का घर

विवाह यानी एक जीवन का प्रारंभ, एक नया संसार। ये जितना स्त्री के लिए नया है उतना ही पुरुष के लिए भी होता है। दोनों के मन में कई सपने और कई अपेक्षाएं होती है। शादी के बंधन में दो परिवारों का मिलन होता है। खुशहाल शादीशुदा जीवन के लिए सभी के स्नेह और सामंजस्य की जरूरत होती है। ये बंधन बना रहे और आगे चलकर सुखद परिणाम दे, इसके लिए घर के अन्य लोगों का सहयोग भी अपेक्षित होता है, नहीं तो ये बंधन टूटने में देर नहीं लगती। समझदारी और सहजता के साथ साथ सात फेरों के इस बंधन को प्रेम से लबरेज रखा जा सकता है। हाँ ये संभव है, हाँ ये संभव है।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिला स्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू अपने 68वें जन्मदिन के अवसर पर अपने गांव में हैं। ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरिबाबू कंबमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने उनके आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया।

0: पता चलता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब रायरंगपुर के डांडा बेस में उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहां प्रमुख क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
1: इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस समय प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: प्रगति परिदा जी, उड़ीसा के मंत्री गणेश जी खुंटिया जी, कृष्णचंद्र महापात्र जी, सांसद नवाचरण माझी जी, मनमोहन सामल जी, बैजन पांडा जी, अन्य महानुभाव भाई और बहनों, हमारा ओडिशा इन दिनों उत्सवों के आनंद में डूबा हुआ है। यहां का गण पर्व रज पिछले हफ्ते ही धूमधाम से मनाया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारियां भी पुरजोश चल रही है। मयूरभंज के बारीपदा रथ यात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों INS धुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा, सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। ये भारत की रक्षा और जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया।
3: मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर आज अपनी भगवी ध्वजा के साथ खड़ा हुआ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो औरंगजेब ने तो

0: क्या का कॉरिडोर बन रहा है और अब अंबाबाई का कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू होगा।
1: इसके बाद गृह मंत्री इचल करंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सर्वोच्च

0: विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसे विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग और एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
2: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें और इस बार के योगा के ऊपर डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उनको हम बहुत अच्छे की तरह से मैनेज कर सकते हैं और ये प्रूव हो चुका है।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2,500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्लोवाकिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्लोवाकिया गणराज्य में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि स्लोवाकिया में योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय दूतावास और अन्य संगठन राजधानी ब्रातिस्लावा और अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
3: स्लोवाक रिपब्लिक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारतीय दूतावास का मुख्य कार्यक्रम ब्रातिस्लावा शहर में आयोजित किया जाएगा। दूतावास मशहूर ब्रातिस्लावा कैसल में भी एक योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने बताया कि दूतावास परिसर में हर दिन 2 योग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं और अब पूरे स्लोवाकिया में सैकड़ों योग प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई स्लोवाकिया यात्रा के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से स्लोवाकिया में योग को और मजबूत करने के रास्ते खुलने की उम्मीद है। स्मृति एस पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
4: लोग दिन भर चेयर पे बैठे काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान

0: लोगों में आए, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाले है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल नई सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों सिक्किम में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। क्रिकेट में चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 12वें ओवर में 4 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण,
3: ये है विविध भारती। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: मोहम्मद रफी और नंदा की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे, जब जब फूल खिले फिल्म का नाम था। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।
1: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।
4: जाने

गीता दत्त की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे प्यासा फिल्म से। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और एसडी बर्मन की तर्ज थी। आप इस वक्त सुन रहे हैं विविध भारती से प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

0: लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजों में गीत आप मधुमती फिल्म से सुन रहे थे। शैलेंद्र ने इसे लिखा था, सलिल चौधरी का संगीत था।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

मेरे महबूब इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, शकील बदायूनी ने इसे लिखा और नौशाद का संगीत था। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे यहीं संपन्न होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहेगी,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

निजी प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। पहली पेशकश आपको सुना रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। आंखें फिल्म से हमने इसे लिया है। रवि का संगीत है, साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा।

0: कभी कभी।
1: फिल्म आंखें से लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को सुनना चाहा था इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री, जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत सीमा साहू, सूर्यकांत राकेश साहू, शुभम सावित्री साहू ने। साथ ही शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन, परवीन, रोजी, बिट्टू, साजदा और हिना ने। और उल्लास, माफ कीजिए, अहिल्या।

मोहम्मद रफी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे धरती फिल्म से। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। इसे सुनना चाहा था रमाकांत शर्मा, मीनाक्षी रवि और अक्षय शर्मा ने जालंधर से, मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, सुनीता शर्मा और माया कुमार ने।

शर्मा, मीनाक्षी, रवि और अक्षय शर्मा ने जालंधर से, मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, सुनीता शर्मा और माया कुमार ने।

0: कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाजों में गीत आप सुन रहे थे हम है राही प्यार के इस फिल्म से। इस गीत को सुनना चाहा था छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, केआर साहू, अश्विनी कुमार, गणेश राम ने, अमर सिंहपुरा बीकानेर राजस्थान से सिकंदर अली खान और उनके परिवार ने, और भिलई छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या हेमलता और डिम्पल देवांगन ने। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम मन चाहे गीत यही समाप्त होता है।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे

नाट्य तरंग। श्रोताओ, आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं आलोक भट्टाचार्य के मूल बांग्ला नाटक का हिंदी अनुवाद, मृत्युहीन प्राण। हिंदी अनुवादक दीप नारायण मिठोलिया, निर्देशक सुदर्शन कुमार। आइए आज सुनते हैं इस नाटक का पहला भाग।

0: सांझ होती जा रही है। इस पार्क में अकेले अकेले लगता है सचमुच बेंजामिन का सिर फिर गया है। पता नहीं उसकी ऐसी कौन सी गुप्त खबर है जिसे वो मुझसे ही भिजवाना चाहता है। आखिर ये गुप्त खबर हो क्या सकती है? वो अभी तक किसी का भी कोई पता नहीं, और भैया झूठ मूठ। चली ही जाओ अब।
1: जिनी।
0: हाँ
1: जिनी।
0: कौन? बेंच।
1: खामोश।
0: हाँ?
1: आहिस्ता इधर इस तरफ।
0: लेकिन
1: इस झाड़ी के पीछे।
0: आखिर मामला क्या है बेंच, इतना छिपा? मुझे तो डर लगने लगा है।
1: तुम्हारे डरने की कोई बात नहीं है जिनी। हमारे यहाँ पहुँचने की खबर पुलिस को पहले लग गई है, इसलिए प्रोग्राम में कुछ चेंज करने पड़े हैं।
0: बेंच, डर सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, तुम्हारे लिए भी है।
2: उस तरफ, उधर, जाओ आगे।
1: जिनी,
0: हाँ?
1: तुम फौरन उस बेंच पर जाकर बैठ जाओ।
0: अच्छा।
1: हाँ।
2: जुडू, बात क्या है? इसी पार्क के पश्चिम वाले गेट की बाईं ओर उनकी मीटिंग होने की बात है। वक्त शाम के 4 बजे का था, पर अब तो सांझ हो चुकी है, कहीं कोई एक भी बदमाश नजर नहीं आया।
3: सर, फिलिप्स ने कहीं हमें गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं दी?
2: नहीं, फिलिप्स गलत इंफॉर्मेशन देने वाला आदमी नहीं है। मुझे लगता है जुडू, हमें जो इंफॉर्मेशन मिली है शायद उसकी भनक उन्हें पहले ही लग चुकी है। सच, इन्हें गिने कुछ काले कुत्तों पर अभी तक हम काबू नहीं पा सके हैं। This disgraceful on our part.
3: उस बेंच पर कौन बैठा है? कोई लड़की है शायद, क्यों?
2: हाँ, वही तो देख रहा हूँ।
3: हाँ, बड़ी हिम्मत वाली मालूम पड़ती है छोकरी।
4: ए लड़की, यहाँ अकेली क्या कर रही हो?
2: लुक छिप कर कुछ प्यार मोहब्बत करने आई हो शायद? हाँ
0: नहीं नहीं, मतलब यूं ही जरा घूमने आई थी, बस मैं घर ही जा रही हूँ।
2: ठहरो।
0: हाँ?
2: कितनी देर से तुम यहाँ बैठी?
0: जी बस थोड़ी देर से, मतलब सांझ से।
2: सांझ से, बस जी थोड़ी देर से, और अब इस सांझ ठेले तक।
0: जी मैं घर जा रही हूँ।
3: तुमने यहाँ कोई मीटिंग होती देखी है?
0: मीटिंग नहीं तो नहीं देखी।
2: मीटिंग मतलब ऐसी कोई खास बात नहीं है, कुछ लुच्चे लफंगे छोकरों की जमात, और क्या।
0: नहीं नहीं, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं देखा यहाँ। अच्छा तो अब मैं चलूं?
2: हाँ हाँ, जाओगी?
0: जी
2: जाओगी, क्यों नहीं। अच्छा क्या तुम कॉलेज में पढ़ती हो?
0: जी हाँ।
2: कविताएं पढ़ती हो? मान लो जैसे बेंजामिन मोलाइज की कविताएं पढ़ती हो?
0: हाँ पढ़ती हूँ, बहुतेरे पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा लिखते हैं।
2: उसे जानती भी हो?
0: बेंजामिन को? अब बेंजामिन को भला जानूंगी कैसे,
3: वो ऐसा कोई खास रिप्यूटेड कवि नहीं है शायद।
0: अच्छा तो अब मैं चलूं?
2: हाँ जाओ जाओ।
3: मिस्टर थॉमसन, बेंजामिन मॉलेज क्या बहुत ही डेंजरस एलिमेंट है?

0: आदमी के हिसाब से डेंजरस है कि नहीं नहीं मालूम, बट हिज पेन, उसकी कलम बंदूक से भी ज्यादा खौफनाक है, और कविताएं तो जबरदस्त खतरनाक।
1: ओह,

0: हाँ, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है, मृत्यु के अधरों छिपी है, सही शब्द नहीं सूझ रहा, मृत्यु के अधरों छिपी। हाँ माँ, माँ
1: क्यों रे बेंच, क्या बात है, क्यों बुला रहा है?
0: माँ जल्दी से जरा इधर तो आना,
1: सूप उतार कर अभी आती हूँ, जरा रुक।
0: मुझे सही शब्द चाहिए ही, समय बहुत कम है, बस कुछ एक दिनों के बाद सोयोटो दिवस स्मरण का प्रोग्राम है, इसी बीच से प्रेस में भी देना है।
1: क्या बात है बेंच, क्यों बुला रहा था?
0: माँ सुनो, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधूरों छिपी है, ये मृत्यु के अधूरों छिपी है के बाद क्या शब्द होगा?
1: इसके बाद क्या होगा, अरे किसका क्या होगा?
0: माँ सुनो ना, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधूरों छिपी है, ये छिपी है के बाद क्या शब्द होना चाहिए?
1: मुझे नहीं मालूम, जाने क्या ऊटपटांग बके जा रहा है।
0: ऊटपटांग नहीं है माँ, सुनो, मृत्यु का मतलब नहीं है अंत सृजन का, मृत्यु में है सार्थकता सार जीवन का, मृत्यु देती प्रेरणा प्रतिकार करने की, जुल्म का अन्याय का संहार करने की।
1: चुप कर चुप कर, दीवारों के भी कान होते हैं।
0: नहीं माँ, अब चुप रहने से काम नहीं चलेगा, अब तो मजबूत गले से अपनी आवाज बुलंद करने का वक्त आ गया।
1: नहीं बेंच, ऐसी बातें मुंह से ना निकाल, देखता नहीं देश भर में दिन पर दिन कैसी कैसी घटनाएं घटती जा रही हैं।
0: मैं तो देश के बाहर नहीं हूं माँ, घटनाएं जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे हमें भी। खैर छोड़ो इन बातों को, पहले मेरी कविता के लिए जरा शब्द तो बताओ।
1: कविता के लिए शब्द?
0: हाँ।
1: अच्छी बात है, तो फिर अपनी लाइन और एक बार बोल।
0: सुनो, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है, इसके आगे
1: मृत्यु के अधरों छिपी है श्वास जीवन की।
0: श्वास, कोई और शब्द बोलो माँ, कोई दूसरा शब्द बोलो ना।
1: संतरास।
0: संतरास, इस शब्द में जाने कैसी भीरुता मिश्रित नीचता की गंध है माँ, ये तो कायरों की निशानी है।
1: अधरों प्यास शब्द जोड़ता है। हाँ तो फिर इसे लिखो, मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की।
0: ओ राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल ठीक शब्द है माँ, सच माँ, माँ हो माँ, तुम कभी बेंजामिन मालवेस की सचमुच की माँ हो, एक बहुत बड़ी कवित्री, बहुत बड़ी माँ।
1: अरे अब छोड़ भी, पागल कहीं
2: का। मासी,
0: जीनी,
1: आ बेटी अंदर आ जा। बता क्या खबर है, तेरे माँ बाप सभी अच्छे हैं ना?
2: हाँ मौसी, सभी अच्छी तरह से हैं। वो परीक्षा नजदीक आ पहुंची है, तभी बेंच से इकोनॉमिक्स के चैप्टर को समझने के लिए आई हूँ।
1: अच्छी बात है, तुम लोग पढ़ाई लिखाई करो, मैं जरा रसोई घर में जाती हूँ।
2: जी अच्छा।
0: जीनी, कौन सी परीक्षा तुम्हारे नजदीक आ पहुंची है?
2: बहुत ही भयंकर परीक्षा बेंच, उसे अग्नि परीक्षा भी कह सकते हो।
0: अच्छा, होगी कोई।
2: हाँ?
0: पर इतना जरूर है कि तुम्हारी पहेलियों को समझ पाना मेरे लिए टेढ़ी खीर है। खैर, इस कविता को सुनो। मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की, गीत जीवन का सुनाने की लिए अभिलाष, संधि क्षण में पहुंचकर वे हुए घोर हताश, क्रूर निर्मम दानवी निर्लज्ज पंजों में, जकड़कर सीसा उंडेला गर्म आंखों में, यह नहीं प्रतिवाद या संवाद की वेला, ये असह्य अन्याय हमने किस

0: कदर झेला। रक्त रंजित राह पर बढ़कर करो जय घोष, सुप्त मन में रह न जाए उबलता आक्रोश। मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की।
1: वाह वाह, क्या बात है बेंच, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। यू आर नाउ अ पोएट एंड इन टाइम यू विल बी अ ग्रेट पोएट बेंच।
0: हाँ, वो पढ़ते हैं मेरी कविताओं को, इसीलिए तो मुझे छुप छुप कर भागते रहना पड़ रहा है।
1: हाँ
0: हाँ, हकीकत यही है। खैर, अच्छा बताओ, इकोनॉमिक्स का कौन सा चैप्टर पढ़ोगी?
1: कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ूंगी, पढ़ने नहीं आई हूँ।
0: अरे, पढ़ने नहीं आई हो तो फिर किस लिए आई हो?
1: किस लिए आई हूँ, क्यों आती हूँ, क्या तुम नहीं जानते?
0: नहीं,
1: कुछ भी नहीं समझते।
0: बताओगी नहीं तो समझूंगा कैसे?
1: सारी बातें मुंह से कही नहीं जा सकती बेंच, समझ लेनी पड़ती है। क्यों तुम्हारी बातें सुनने के लिए भागी चली आती हूँ? क्यों तुम्हारी कविताएं मुझे बेचैन कर डालती हैं? क्या तुम मेरी आंखों की भाषा पढ़ नहीं पाते?
0: जिनी, तुम्हारी दृष्टि मेरे सीने में एक अजीब लहर सी पैदा कर देती है, मेरी कविताओं को अनुप्रेरित करती है, पर केवल इस तरह की अनुभूतियों को लेकर झूठ मूठ समय बर्बाद करने का वक्त अभी नहीं है जिनी।
1: झूठ मूठ समय बर्बाद क्यों करेंगे बेंच? पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम एक दूसरे की अनुभूतियों को सच कहकर स्वीकार ही ना करें।
0: देखो, दिल की बात दिल में ही रहे तो ठीक है, क्या जरूरत है उसे बाहर सबके सामने खड़ी कर स्वीकृति जताने की?
1: बेंच,
0: तुम तो जानती हो मैं खतरनाक राहों का राही हूं, मेरी स्वीकृति का मतलब ही है तुम्हारे ऊपर अतिरिक्त खतरे का बोझ लाद देना। मैं वैसा कतई नहीं करना चाहता जीनी।
1: बेंच, तुम्हारे लिए डर से दिन रात मेरा कलेजा कांपता रहता है, भारी बूटों की आवाज कानों में आते ही मैं चौंक चौंक जाती हूँ।
0: मेरे लिए तुम्हारी छाती डर से कांपती है, तभी तो मेरा सीना हिम्मत से फूल उठता है जीनी।
1: जरा सावधानी के साथ चला फिरा करो, भेड़िए तुम्हारे चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। तुम ही तो मेरी आंखें हो बेंच, तुम्हें अगर कुछ हो गया तो मैं बिल्कुल अंधी हो जाऊंगी, मैं बिल्कुल अंधी हो जाऊंगी बेंच।
0: जिनी हाथ छोड़ो, शायद मां आ रही हैं।
1: अच्छा, तो मैं जा रही हूँ मौसी, अब मैं चलती हूँ।
2: लिखाई पढ़ाई हो गई?
1: हाँ मौसी हो गई।
2: अरे, थोड़ी चाय तो पी कर जा।
1: नहीं, आज रहने दो मौसी, कुछ जल्दी में हूँ, मैं चलती हूँ।
2: बड़ी प्यारी लड़की है,

0: जेम्स, इतनी रात में भला कौन आया होगा?
1: मैं तो तुमसे कहना ही भूल गया बाबू, आज जोहान्सबर्ग गणतंत्र फ्रंट की एक मीटिंग होगी यहाँ, लगता है वही सब आए हैं, देखता हूँ।
0: तो जेम्स तुम भी?
1: हाँ बापू, मेरे जैसे हजारों हजार लड़के अपनी जिंदगी को दांव पर लगाए जूझ पड़े हैं जिस स्वाधीनता की लड़ाई में, उस लड़ाई में मैं भी शरीक हूँ बापू। आइए आइए मिस्टर जैकब। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार मिस्टर खापड़कर।
2: नमस्कार।
1: बेंस अंदर आ जाओ ना।
2: माँ, हम तुम्हारे वही बेटे हैं, इस बार जीवन की आशा को लौटा लाए हैं, अटल विश्वास का एक कमल खिलाया है माँ।
3: ये क्या तुम्हारी कविता है बेंज?
2: नहीं, एंगोला के प्रसिद्ध कवि ऑगस्टिनो नेटो की है।
1: अरे तुमसे परिचय तो करवा दूं, ये मेरे पिता मिस्टर जोसेफ पिस्से हैं, और आप हैं हमारे संगठन शाखा के नेता टॉम्स जैकब।
2: नमस्कार।
4: नमस्कार।
1: और आप रॉबिन खापड़कर हैं, इनके जिम्मे ही नाटाल प्रदेश का नेतृत्व है।
2: नमस्कार।
4: नमस्कार। खापड़कर माने भारतीय वंश के?
1: हाँ बापू, ये भारतीय वंशोद्भूत हैं।
4: अच्छा अच्छा, बैठिए आप लोग, बैठिए।
1: बापू जी, बेंजामिन को तो तुम जानते ही हो।
4: अरे इसे भला नहीं जानूंगा मैं। अच्छी तरह से जानता हूँ। यही तो है हमारा कवि सिपाही, जिसके कलम से फूट निकलती है काले लोगों के रुदन खून पसीने से लिखी कविताएं।
2: नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए, भला मुझमें इतनी ताकत कहाँ?
5: अरे भाई, किसकी ताकत कितनी है और वो कहाँ छिपी रहती है, इसे वो खुद भी नहीं जानता।
2: देखिए, आप इस तरह से मुझे ऊपर ना उछालिए मिस्टर जैकब, मैं तो मातृभूमि का एक मामूली अदना सा सेवक हूँ।
4: अच्छा भाई, तुम लोग बातें करो, मैं जरा चाय का पानी चढ़ा।
1: ठीक है बापू। बापू पानी जरा ज्यादा ले लेना, और भी चार पांच जने आएंगे।
4: अच्छा।

0: आज भी नहीं आया बेंच। आज 5 दिन होने को आए और बेटे को घर लौटने की फिक्र तक नहीं। इधर शहर भर में पुलिस वालों ने उथल पुथल मचा रखी है। ईश्वर जाने बेंच क्या करता है, क्या सोचता है, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता।
1: मौसी, मौसी
0: जिन्नी, आ बेटी, आओ इस कमरे में चलो, आओ बैठो।
2: बेंच की कोई खबर मिली मौसी?
0: अरे मुझे कैसे खबर मिलेगी बेटी, मैं तो तेरे भरोसे ही बैठी हूँ। कोई खबर मिली?
2: मुझे तो कोई खबर नहीं मिली,
0: पर क्या
2: न जाने, वो पूछो।
0: जिनी बता बेटी, क्या खबर है मेरे लाल की, बेंच कहाँ है, कैसा है?
2: ऐसी कोई बात नहीं है मौसी, जरूर ठीक ठाक ही होगा। वो एक मीटिंग।
0: मीटिंग? किसकी मीटिंग?
2: अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की गुप्त शाखा की एक मीटिंग है, शायद बेंच वहीं गया होगा।
0: ये मीटिंग कहाँ है?
2: अब ये तो नहीं मालूम मुझे मौसी।
0: मीटिंग गुप्त समिति?
2: हाँ।
0: इधर उस पुलिस जासूस फिलिप्स के खून होने के बाद से भेड़ियों की नजरें चारों ओर घूम रही हैं। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ होगा, कैसा होगा।
2: जरूर अच्छा होगा, ठीक होगा मौसी, निश्चित रूप से सही सलामत होगा, उसे कुछ नहीं हो सकता, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जरूर अच्छी तरह से होगा, जरूर राजी खुशी होगा, है ना मौसी?
0: तुम ठीक कहती हो बेटी, मेरा बेंच जरूर राजी खुशी है, राजी खुशी ही रहेगा। हाँ।

0: इस वक्त हमारी स्वाधीनता की लड़ाई जनयुद्ध में बदल चुकी है, और यही वजह है कि स्वाभाविक रूप से हमारी जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई।
1: इसी सिलसिले में मिस्टर जैकब, मेरा ये निवेदन है कि आज अपनी गुप्त शाखा गठन के पूर्व इतिहास की जानकारी सबको दे दी जाए, क्योंकि हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, हालांकि उनके लिए भी ये सब कुछ जानना जरूरी है। मैं समझता हूँ इसी क्षण इस बात को भी निपटा लेना उचित होगा। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है?
2: बिल्कुल, मिस्टर रॉबिन खापालकर का सुझाव एकदम सही है,
3: लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि हम स्वाधीनता संग्राम के मूल स्रोत से कहीं कट ना जाएं, खासकर आम जनता से कहीं दूर ना हो जाएं।
0: तो फिर सुनिए, सन 1952 में चंद काले लोग पैदल चलकर श्वेत आदमियों के खेलकूद के लिए सुरक्षित इलाके में घुसे थे, रंग भेद नीति के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। उस दिन की उस घटना ने धीरे धीरे आगे चलकर सारे राष्ट्र में अहिंसक प्रतिवाद का रूप ले लिया,
1: और उस प्रतिवाद के कंठों को दबोचने के लिए शार्पेविले की सरकार ने एक जघन्य तरीका अपनाया था।
0: हाँ, 700 राउंड गोली चली, 67 लोग मरे और 186 घायल हुए। उसके बाद ही केवल अफ्रीका की राष्ट्रीय कांग्रेस ने उमखंटो उई सिजुई अथवा राष्ट्रीय बख्तरबंद के नाम से एक सशस्त्र वाहिनी गठित करने का प्रस्ताव पारित किया।
3: कौन? कौन हो सकता है?
4: कौन है?
3: कौन कौन है? अरे, ये तो जोन्सबर्ग के एक नेता मिस्टर रोयंगा की आवाज है। जेम्स, जल्दी से दरवाजा खोलो।
2: अरे, कैसे हुआ ऐसा?
3: क्या बात है?
2: क्या हुआ?
3: खून, खून ये क्या है? किसने ऐसा किया?
5: पुलिस ने? यहाँ आने के लिए निकला था, बाद में मालूम हुआ कि कर्फ्यू लग गया, चक्कर काट कर गलियों से आ रहा था कि अचानक देखा अफसर टॉमसन अपने दलबल के साथ सामने मेरी ओर चला आ रहा है।
2: ओ, तब तो उन्होंने आपको जरूर देख लिया होगा।
5: हाँ, देख ही लिया था, तभी तो चेस किया मुझे। मैं कुछ दीवार फांद कर इस ओर भागाया, लेकिन इसके पहले एक गोली लगी मेरे पैर में।
2: ठहरिए, पहले मैं ये बैंडेज
3: बांधो। देखो, जैसे भी हो, रोयंगा को अभी इसी वक्त डॉक्टर मॉरिस के पास ले जाना होगा।
2: कंधे के सहारे चल सकेंगे ना?
5: जरूर चल सकूंगा।
3: तो फिर बस अब चलिए, और देर करना ठीक नहीं। आइए,
6: पीछे वाले दरवाजे से निकलकर बाईं ओर नहर के रास्ते से चले जाइए। देखो, ईश्वर इनकी रक्षा करे। जेम्स, अब हमें क्या करना चाहिए?
2: बाबू, दरवाजा जरा देर से खोलना।
6: अच्छा, आता हूं।
7: हैंड्स अप।
2: आप लोग
7: जुलूम अंदर देखो, ये जल्दी क्विक, कहां जा रहे ये सब?
8: तो आप ही जोसेफ पिस्से हैं?
6: जी हाँ सर।
8: ये कौन है? सर, लड़का है, क्या नाम है तुम्हारा?
2: जी, जेम्स पिस्से।
9: ताले का दरवाजा खुला है, लगता है उसी ओर से भागे।
6: आखिर मामला क्या है सर? कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा है।
8: हाथ नीचे कीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। बताइए, अभी अभी पैरों में गोली खाकर जो छोकरा आया था कहां गया?
6: यहां तो कोई भी नहीं आया सर।
8: शट अप, झूठा कहीं का। किधर है वो शैतान?
9: नहीं सर, उस तरफ कोई नहीं है।
2: मैं सच कह रहा हूं सर, यहां कोई नहीं है।
8: मैं भी तो सच ही जानना चाहता हूं। तुम्हारे दोस्त के खून के दागों ने हमें ठीक जगह पर पहुंचा दिया।
9: मिल गया सर।
8: क्या मिल गया?
9: जब पर पट्टी नहीं बांधी गई है, ये तभी खून के दाग और पीछे की ओर दिखाई नहीं पड़ रहे।
8: यू आर राइट
9: सर। इसके अलावा इस कमरे में इन दोनों को छोड़कर और भी कम से कम 5 जने थे। अभी कुछ एक मिनट पहले उन लोगों ने यहाँ बैठकर चाय की चुस्कियां ली।
10: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं, FM 102, FM 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी किए जाने और इस अवसर पर संबोधन का प्रसारण।
11: आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल जिला हुगली के तारक

0: ईश्वर में आयोजित एक समारोह में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही कई अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही में माननीय प्रधानमंत्री इस अवसर पर किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त भी जारी करेंगे। आइए आपको सीधे कार्यक्रम में लिए चलते हैं। विवरण दे रहे हैं सिद्धार्थ कुमार सिंह और वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
1: श्रोताओं, आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज है पश्चिम बंगाल दिवस और ये दिन 1947 में बंगाल विधानसभा द्वारा पारित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की याद दिलाता है, जिसके तहत बंगाल के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना। और आज पश्चिम बंगाल दिवस के दिन देश के किसानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज पीएम किसान उत्सव दिवस भी मनाया जा रहा है, जिसके मुख्य कार्यक्रम का आयोजन तारकेश्वर में किया गया है। आपको बता दें कि तारकेश्वर, जो कि पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित है, इसे बाबा धाम या शिव का शहर भी कहा जाता है, जहां पश्चिम बंगाल दिवस के साथ साथ आज का दिन पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर अब से कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री महोदय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करेंगे। और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ सिंह, और मेरे साथ हैं मेरे साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
2: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, अ ग्रेट डे फॉर द स्टेट ऑफ बंगाल, अ ग्रेट डे फॉर द फार्मर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द कंट्री, अ विकसित बंगाल, अ विकसित भारत, अ डेवलप्ड बंगाल, अ डेवलप्ड इंडिया, द रिजॉल्व टू मेक द कंट्री अ विकसित भारत, अ डेवलप्ड इंडिया बाय 2047, टू मेक द लाइव्स ऑफ द पीपल ऑफ आवर ग्रेट नेशन सेफ, सक्सेसफुल एंड सस्टेनेबल, to help and assist our farmer brothers and sisters have the lives that they have always dreamt of. This is the mission of the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, who has made a vow to make India world-class, the India of our dreams and aspirations. Prime Minister Sri Narendra Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, PM Kisan scheme, to the eligible beneficiaries on the 20th, that is today, which is also the West Bengal Day, because it was this day that the West Bengal state was founded. From Tarkeshwar, located in Hooghly district in West Bengal, the event will be organized by the Ministry of Agriculture, Government of India, with the support of the Government of West Bengal. An amount exceeding 18,880 crore will be transferred directly into the accounts of over 9.44 crore farmers in the 23rd installment. Over 2.18 crore women farmers will receive the benefit during the 23rd installment. Siddharth, truly a day to celebrate India of tomorrow, truly a day to celebrate the vow that the Prime Minister had made to the people of the nation that yes, India will be developed, India will be the India of our dreams, and we will never ever leave our farmer brothers and sisters behind.
1: बिल्कुल वैभव, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में जैसा कि संकल्प लिया है माननीय प्रधानमंत्री ने, और जिस तरह की बात चल रही है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। और आज जबकि अब से कुछ देर में माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करने जा रहे हैं, और आपको बता दें कि इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। और खास बात वैभव यहाँ की यह है कि इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसान लाभान्वित होंगी। तो ये एक वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं वैभव, या महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसमें भी एक बड़ा कदम है। और आपको बता दें कि जैसा कि पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, अकेले पश्चिम बंगाल में ही 45,00,000 से अधिक लाभार्थियों के खातों में 900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जा रही है, जिसमें राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के अंतर्गत कुल जो वितरण राशि यहां पर है वो 15,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी। और ये भी बता दें कि 2019 में योजना के शुभारंभ के बाद देश से भर में कुल वितरण राशि जो थी 4.46 लाख करोड़ थी, और उससे ज्यादा हो गई। अब तक 22 किस्तों के माध्यम से लगभग 4,28,000 करोड़ रुपए देश के करीब 9.5 करोड़ किसानों के खाते में सीधे हस्तांतरित किए जा चुके। चुके हैं। तो वैभव, ये एक जहां एक ओर हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वहीं

0: पश्चिम बंगाल के लिए बेहद खास है क्योंकि पश्चिम बंगाल दिवस हर साल 20 जून को मनाया जाता है। ये दिन 1947 में बंगाल विधानसभा द्वारा पारित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की याद दिलाता है जिसके तहत बंगाल के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना। और तारकेश्वर का भी ऐतिहासिक महत्व रहा है। वैभव अगर तो देखते हैं इसमें तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से 1947 में बंगाल विभाजन की रूपरेखा और निर्णय से जुड़ा है। ये 15 अप्रैल 1947 को तारकेश्वर में ही बंगई हिंदू महासभा का एक महत्वपूर्ण 3 दिन का अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पश्चिम बंगाल के गठन के लिए कदम उठाने के लिए आधिकारिक रूप से अधिकृत किया गया था और इसी ऐतिहासिक जनादेश के आधार पर डॉक्टर मुखर्जी ने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा था। और आज पूरे पश्चिम बंगाल में ये दिवस पारंपरिक रूप से मनाया जा रहा है।
1: सिद्धार्थ, इन द ग्रेट वर्ड्स ऑफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, रेजिस्ट ऑप्रेशन एंड इफ नेसेसरी रिटेलिएट, दीज वर द वर्ड्स ऑफ दिस ग्रेट मैन हु गेव विजन टू द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल दैट यस, वी एज पार्ट ऑफ इंडिया हैव टू मेक इंडिया a Soni ki chidiya, that golden bird again. We have fought a long battle against the British Raj, against the colonial rule, and now it's time that we take things into our own hands and we make not just Bengal but the country great. And today's occasion, brethren, we remember all those great years during the critical years of 1946 to 1947. Dr. Shyama Prasad Mukherjee exerted a powerful voice for safeguarding the interests of Bengal and its people. Strong public opinion emerged, demanding that the western part of Bengal remain within India. Tarkeshwar stands as a silent witness to that momentous chapter of history. On June 20th, 1947, this historic decision, as told by Siddharth, was taken, determining the future of Bengal, which later laid the foundation stone for the formation of West Bengal. This is a glorious history. This is a pride of heritage. This is a commitment to progress.
0: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने प्राइड की बात करी तो इस वर्ष के पश्चिम बंगाल दिवस का विषय है पश्चिम बंगाल, विरासत, सद्भाव और विकास। राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि, सामाजिक एकता और विकासात्मक आकांक्षाओं को ये दिवस दर्शाता है। और अब से आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंग दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिवस उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्म, विज्ञान, व्यापार एवं वाणिज्य, सामाजिक सुधार सहित अनेक क्षेत्रों में अपने अमूल्य योगदान से भारत के इतिहास को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल ने अनगिनत तरीकों से भारत की राष्ट्रीय चेतना को समृद्ध बनाया है। और जिस तरह की बात आज बंगाल के लिए बेहद खास है, और ये दिन उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला को एक नई दिशा दी वैभव। और बंगाल की जब भी बात होती है तो इस तरह से जिस तरह का पूरा बंगाल का हम देखते हैं कि वहाँ का साहित्य, वहाँ की कला, वहाँ की संस्कृति, और बंगाल अब विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है।
1: Absolutely, Siddharth. This is the promise with which the government has been formed in Bengal after years and years of injustice. Now we see that the government, and this will be a government which will be a government of double engine. And today's function, Siddharth, is not just something that we are seeing for the first time. This is the 23rd installment. This is a direct transfer. We don't just see one promise. We see many promises together. We see an actual execution of the digital Bharat. We see no middlemen. We see direct transfers, financial benefits going into the hands of brother and sister farmers throughout the country. This is a place where an amount exceeding 907.21 crores will be transferred to over 45.35 lakh beneficiaries in West Bengal alone in the 23rd installment. Imagine the mammoth scale on which this PM Kisan Samman Nidhi is operating right now, and the mammoth scale on which which it is benefiting the farmer brothers and sisters in the country, along with the release of the 23rd installment, Siddharth, of PM Kisan Nidhi. Mm-hmm. The following schemes or the programs that will be launched will be Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, that is the restructured weather-based crop insurance scheme. The next one will be a digital agriculture mission. There will also be a national mission on natural farming, NNNF, and the Pradhan Mantri Dhan Dhan Krishi Yojana, which

0: vouchers, and which was approved by the Union Cabinet in the July of 2025 and launched on the 11th of October 2025, an initiative aimed at accelerating agricultural growth in 100 districts characterized by low productivity, low cropping intensity and limited credit flow. Imagine, we are taking so many steps. It's not just the credit flow that is going to the farmers, it's not just the money that is going to the farmers, it is also fertilizers, it is also the good quality of seeds, it is also the scientific research that is going on continuously in the country, which is helping the farmers gain momentum and be a part of this development journey.
1: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने बताया कि ये जो यात्रा है, ये ना सिर्फ योजनाओं की यात्रा है बल्कि किसानों को हर तरीके से सशक्त बनाने की यात्रा है. और आज प्रधानमंत्री जी कई केंद्रीय कृषि योजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं. योजनाओं में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत एग्री स्टैक, प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शामिल है. प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे हम PMFBY का नाम देते हैं, इसका शुभारंभ करेंगे, जिससे विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना का लाभ राज्य के किसानों तक पहुंचेगा. 2026-27 के दौरान इस पहल का उद्देश्य पश्चिम बंगाल राज्य में लगभग 14 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर लगभग 50 लाख किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करना है, जिससे लगभग 28,140 करोड़ रुपए के अनुमानित बीमित मूल्य की फसलों की सुरक्षा हो सकेगी और किसानों को पर्याप्त प्रीमियम सब्सिडी के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी. और इसके अलावा, जैसा कि वैभव हम जानते हैं कि डिजिटल जमाना है और जिस तरह से अभी ये सारी चीजें चल रही हैं, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत क्या होने वाला है, प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में एग्री स्टैक का शुभारंभ कर रहे हैं. इसके अंतर्गत उर्वरक वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली के अंतर्गत खरीद जैसी सत्यापित कृषि संबंधी सेवाओं के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा. और ये पहल कृषि क्षेत्र में डिजिटल शासन को मजबूत करेगी और किसान केंद्रित सेवाओं के कुशल वितरण को सुगम बनाएगी. तो अब चीजें डिजिटली लोगों के पास पहुंच जाएंगी बहुत फास्ट.
0: एब्सोल्युटली, एज यू सेड, चीजें बहुत जल्द लोगों के पास पहुंच जाएंगी. एंड आई वांट टू से दैट इट वोंट जस्ट बी द प्रोक्योरमेंट ऑफ थिंग्स दैट विल हैपन इन अ वेरी स्मूथ एंड अ वेरी फंक्शनल वे, बट द होल लाइन ऑफ क्रेडिट. Once you get the raw material, which is of a good quality, which has been backed by scientific research, which has been done by great government institutions, huge amounts of money that has been invested into those, you get those raw materials into the soil, which is being continuously made fertile by more fertilizers, again, through natural and organic ways, then you get the produce of those farms, you get them to the markets at a good rate, again, benefit to the farmers. And then when you get those rates and when you have to improve, or let's say you have to develop your farms, you have to expand your farms, you get the credit facilities. So at each and every level of this whole line flow, you're getting support from the government. The kisan or the farmer brothers and sisters are getting support from the government, and that is exactly what should happen. That is the feeling, that is the concept of Antyodaya. When you include each and every person who is there in the nook and corner of the country, when you include everyone together in the development journey, that is exactly when you get a developed Bharat. That is exactly when you get a Vikasit Bharat.
1: बिल्कुल, विकसित भारत की बात आपने की है. और एक सरकार की एक जो नई पहल है, देश में जिस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज का निर्माण किया जा रहा है, जो मिडिल मैन की भूमिका है उसको खत्म किया जा रहा है ताकि किसानों को सीधे मार्केट में एक अवसर मिल सके. आप ऐसा सोचिए कि वैभव, किसी गांव में बना हुआ कोई उत्पाद या देश के किसी सुदूर क्षेत्र में किसी किसान का जो प्रोड्यूस होता है या वो प्रोडक्ट होता है, उसको एक बाजार को उपलब्ध कराना सरकार की मंशा है कि देश में ज्यादातर जो कोऑपरेटिव को हम डेवलप करें, इस फॉर्म को डेवलप करें और ज्यादा से ज्यादा किसानों को इससे जोड़ें ताकि एक एक जो व्यवस्था है वो डिजिटल रूप में उनको एक टेक्नोलॉजी मिले. जैसे आपने आज आपने टेक्नोलॉजी की बहुत बात करी है कि उत्कृष्ट तकनीक के साथ एक उत्कृष्ट उत्पाद की बात हम करते हैं वो किसानों का लोगों तक पहुंचने के लिए. और जितनी भी सारी उसमें इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में, जहां जहां किसानों को, चाहे हम किसान की सॉइल की बात करनी हो, चाहे फर्टिलाइजर की बात करनी हो, चाहे हमें अन्य टेक्नोलॉजी की बात करनी हो. आज ड्रोन दीदी की बात होती है तो किस तरीके से, आज वेदर फोरकास्टिंग की बात होती है, हम हर तरीके से वैज्ञानिक रूप से किसान

0: जी हाँ, और इस समय हम देख पा रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का मंच पर आगमन हो रहा है और वो मंच पर पहुंच गए हैं और चारों तरफ से ये लोगों की आवाजें उनको अभिवादन करते हुए उनका स्वागत करते हुए लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है और
1: समर्पण करेंगे।
2: The Honorable Prime Minister on the stage sitting along with the Governor of West Bengal Shri Arun Ravi and the Chief Minister of West Bengal Shri Suvendu Adhikari, people craning their necks now, the national anthem and the national song.

0: धन्यवाद।
1: Listen to that roar, Siddharth. Listen to those voices coming from Tarkeshwar. Look at those faces, happy faces, craning necks. So excited to see the Honorable Prime Minister. So excited to see their Chief Minister. I'm so excited for the fact that all the promises that were being made, that have been done, are now coming true, are now being seen, the face of execution. They know that all these things are coming true, and the Honorable Prime Minister getting up from his seat along with the Governor of West Bengal and the Chief Minister of West Bengal.
2: जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री, इस समय उनका स्वागत किया जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं इस समय, और
0: प्रधानमंत्री जी के साथ अभिनंदन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी,
2: माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री माननीय शुभेंदु अधिकारी जी,
0: और सम्मान का प्रतीक है पहले बाबा तारकनाथ जी की प्रतिकृति।
2: जी हाँ, बाबा तारकनाथ जी की प्रतिकृति, उनको भेंट करते हुए, और बंगाल में माँ दुर्गा का
0: शैली में
2: बहुत महत्व है और माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट देते हुए
0: के और आइकॉनिक मिठाई रसगुल्ला यानी रसगुल्ला,
2: और वह बंगाल का जो रसगुल्ला है वो तो पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उसको भेंट दे रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को।
0: जल भरा संदेश यानी संदेश के अंदर रस से भरा हुआ एक अनमोल मिठाई।
1: Siddharth, you should remember that this is not just a culmination of religion, it's not just a culmination of tradition, of legacy, of heritage, of sweetness, of all the things that now people are expecting from the government, the sweetness of those dreams and aspirations that the people have from the Honorable Prime Minister.
2: और वैभव, उसकी मिठास यहाँ जो जन समुदाय है उसमें दिख रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी लोगों को संबोधित, और इस समय मुख्यमंत्री महोदय जो है वो संबोधित करने के लिए आए हैं।
3: डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी लौह प्रणाम, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी लौह प्रणाम, भारत केसरी लौह प्रणाम, स्वामी प्रणवानंद लौह प्रणाम, सम्मानीय देशेर

0: Nidhi, the 23rd installment being done by the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi with a smile on his face and a confident handshake. Now, this has been released. Various beneficial scheme for the people of the country. Various schemes including infrastructure of railways, of roadways, of port developments, of fisheries, of highways. So many things together being released by the Honorable Prime Minister.
1: जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री ने कई सारी योजनाओं का शुभारंभ किया आज, और किस तरीके से लगातार यहाँ पे आप देख रहे हैं, और हम आपको बताना चाहते हैं कि इस रंगारंग कार्यक्रम के तुरंत बाद ये जो कई विकास जो परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं की शुरुआत की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने.
0: इट रिलेट्स टू द गुड प्रोडक्शन, द लेबोरेटरीज दैट आर देयर, इट रिलेट्स टू द पोर्ट्स दैट आर बीइंग डेवलप्ड, इट रिलेट्स टू द farmer producers that will be given a fair share in the market. All these things have been released now by the Honorable Prime Minister. The people craning their necks, happy to see the Prime Minister and happy to see the fact that the Prime Minister has delivered on each and every promise that he had made. And the one vision that is in mind is, of course, of Viksit Bharat, for developed India by 2047.
1: Ji haan, Pradhan Mantri, अभी लगातार कई सारी परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं, और अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की जो 23वीं किस्त का हस्तांतरण माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने रिमोट का बटन दबाकर किया, और इसके साथ ही ये किसानों के खाते में ये रकम पहुंच गई. आज 9,44,00,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए वो उनके खाते में पहुंचे हैं.
0: एंड सिद्धार्थ, मोर देन 2 crore वुमेन बेनिफिशरीज आर अमंग्स दोज फार्मर्स हु विल बी गेटिंग दिस डायरेक्ट ट्रांसफर, दिस इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान सम्मान निधि. इमेजिन द लेवल एट विच दिस scheme is now operationalized, is functional, is being executed. Imagine what is happening. And now the moment that everyone has been waiting for, everyone is now waiting for the fact that yes, the Honorable Prime Minister will speak his heart out. And there he is on stage, Prime Minister Modi.
2: Mahadev. मंच पर विराजमान राज्यपाल आर एन रवि जी, यहां के लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, अन्य सभी महानुभाव, और बंगाल के मेरे भाई और बहनों, बाबा तारकनाथ और बंगाल की पुण्य भूमि पश्चिम बंग दिवस की ऐतिहासिक तारीख और इतनी बड़ी संख्या में आप सभी की उपस्थिति आज चुनाव और शपथ ग्रहण के बाद मुझे पहली बार आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है. बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है. यहां के कण कण से एक नई खुशबू आ रही है. ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है. जैसे बंगाल का गौरव लौटने का आरंभ हो गया है. आज का ये कार्यक्रम साक्षी है. इन परियोजनाओं का शुभारंभ गवाह है कि हमारा बंगाल अपने नए भविष्य के निर्माण में जुट गया है. बंगाल के लोगों के चेहरों की चमक गांव गांव में खुशी और विश्वास का भाव, मैं आपके इस आनंद में भागीदार बनने के लिए आया हूं.

0: अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे कृपया विभिन्न मंत्रालय की कुछ विशेष परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन तथा राष्ट्र को समर्पण करने की कृपा करें।
1: The release of the PM Kisan

आपका एक वोट, एक चुनाव कितना कुछ परिवर्तन कर सकता है ये बंगाल में साफ साफ नजर आ रहा है। परिवर्तन भालो लागे छे तो मैं इस अवसर पर बंगाल के लोगों को और सभी देशवासियों को इस आयोजन की, पश्चिम बंग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज आप सभी की मैं स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए भी सराहना करना चाहता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। जहां स्वच्छता होगी वही विकास भी उतना ही सुंदर दिखेगा। मैं आपको स्वच्छता से स्वागत के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बार पश्चिम बंग दिवस की यह तारीख और भी खास है। आजादी के बाद बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए जो सपना देखा गया था, बंगाल की महान आत्माओं ने जो परिकल्पना की थी, आज एक तरह से पहली बार हम पश्चिम बंग दिवस पर उन सपनों को सच्चाई में बदलते देख रहे हैं। ये ऐतिहासिक तारीख पश्चिम बंगाल के विकास की प्रेरणा बने, हम एक नया और गौरवशाली इतिहास रचे। आज बीजेपी एनडीए सरकार में इसके लिए विकास के महाअभियान की शुरुआत हो रही है। साथियों, बंगाल में दशकों तक पहले लेफ्ट और फिर टीएमसी ने जो गड्ढे बनाए उन्हें भरने के लिए डबल इंजन सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं, रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में आज यहां सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूं। आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, गुलामी के दौर में हमारे बंगाल ने क्या कुछ नहीं सहा,

कितने बलिदान दिए, कितने त्याग किए। 1946 में कोलकाता में हुई हिंसा, नोआखली के दंगे, कितने निर्दोष बंगाली मानुष, बंगाल के लोग उसकी भेंट चढ़ गए। भाइयों बहनों, बंगाल ने रक्तपात सहा, बंगाल ने अपनों को खोया, अपनी मातृभूमि के टुकड़े होते देखे, लेकिन बंगाल ने अपनी अस्मिता और पहचान को नष्ट नहीं होने दिया। इसी का परिणाम था जब पूरे बंगाल को भारत से अलग करने की साजिश हो रही थी, तब अलग पश्चिम बंगाल बनाकर उन मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया गया। हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति, यहां की मूल आस्था और परंपरा, तब अनेक संघर्षों के बाद बच गए थे, और आज भी वो मूल्य, इस धरती के संस्कार आज पश्चिम बंगाल के रूप में न केवल सुरक्षित है बल्कि जीवंत भी है। इसलिए पश्चिम बंग दिवस के रूप में हम केवल एक तारीख को याद नहीं कर रहे हैं, हम पूरे इतिहास को याद कर रहे हैं। हम हजारों साल पुरानी बंगाल की विरासत को नमन कर रहे हैं। साथियों, आज की पीढ़ी को हमें बार बार पश्चिम बंग दिवस की अहमियत बताने की जरूरत है। उस दौरान क्या हो रहा था, ये युवा पीढ़ी को जानना जरूरी है। जब पूरे बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाए जाने की कोशिशें हो रही थी, तो कांग्रेस उन षड्यंत्रकारियों के सामने घुटने टेके पड़ी थी, और यही वो समय था जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। अप्रैल 1947 में उन्होंने ऐतिहासिक रिजोल्यूशन पास कराया। उन्होंने घोषणा की पूरा बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। इसके लिए बंगाली हिंदू होमलैंड मूवमेंट शुरू किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेघनाथ साहा, इतिहासकार आरसी मजुमदार, इतिहासकार जदुनाथ सरकार, सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय, बंगाल के ऐसे कितने प्रबुद्ध और प्रसिद्ध लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बने। जीडी बिरला जैसे उद्यमियों ने इसे आगे बढ़ाया। मतवा लीडर पीआर ठाकुर ने आगे आकर इस मूवमेंट को समर्थन दिया। अखबारों में लेख लिखे गए, इससे कहानियां लिखी गई। वंदे मातरम की भावना को एक बार फिर स्फुरित किया गया। बंगाल की जिस आवाज को मजहबी एजेंडों से दबाया जा रहा था, इस जन आंदोलन से वो स्वर फिर से मुखर हो उठे।

इसी का नतीजा था भारत विरोधी लोगों को ये पता चल गया पूरे बंगाल को भारत से तोड़ना नामुमकिन होगा और पश्चिम बंगाल के रूप में ये हिस्सा मां भारती के साथ रह गया। साथियों, जिस भावना से पश्चिम बंगाल को बचाया गया था आजादी के बाद, उसी भावना पर इसे आगे बढ़ाने की जरूरत थी, लेकिन दुर्भाग्य से ठीक इससे उलट काम हुआ। पश्चिम बंग दिवस और इसकी भावना को भुलाने की कोशिश हुई, सियासी एजेंडों के कारण इतिहास का व्हाइट वॉश किया गया। भाइयों बहनों, विभाजन के समय जो कांग्रेस बंगाल को लावारिस छोड़ना चाहती थी, विभाजन के बाद उसने बचे हुए पश्चिम बंगाल में भी तुष्टीकरण के खेल खेलने शुरू कर दिए। पश्चिम बंगाल के इस इतिहास को दबाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक बने, इसलिए उनके योगदान को नकारा गया। जिस भावना को लेकर उन्होंने बंगाल के लिए लड़ाई लड़ी थी, उस विचार को भी खत्म करने की कोशिशें होती रही। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे जिस धरती का ऐसी महान संतानों से नाता रहा हो, उस पर विदेशी विचारधारा थोपी गई। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी दशकों तक पश्चिम बंगाल को सहेजने और संवारने की जगह इसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया गया। जो बंगाल भारत के विकास का नेतृत्व कर सकता था, वो आगे बढ़ने की जगह पिछड़ता चला गया। साथियों, आज पश्चिम बंग दिवस पर हमारा कर्तव्य है, हम संकल्प लें अब इतिहास की वो गलतियां दोहराई नहीं जाएगी। अब पश्चिम बंग दिवस से प्रेरणा लेकर नया इतिहास रचा जाएगा। साथियों, दशकों के कुशासन ने पश्चिम बंगाल को मीलों पीछे पहुंचा दिया है। आप सबने देखा है, पुरानी सरकारों के समय में कैसे हालात हो गए थे। यहां से बड़े उद्योगों का पलायन हुआ, छोटे उद्योग धंधे ठप पड़ते चले गए, युवाओं का रोजगार छिनता गया, संसाधनों पर घुसपैठियों का कब्जा होता चला गया। जो पश्चिम बंगाल कभी अवसरों की भूमि होती थी, वो पलायन का केंद्र बनती चली गई। इसी माहौल में आपने एक संकल्प लिया, टीएमसी सरकार को पलटने का, उसे हटाने का। आपने बीजेपी को आशीर्वाद दिया, रिकॉर्ड सीटों के साथ हमें विजयी बनाया और आज पूरा देश देख रहा है कैसे तुरंत ही इसका नतीजा भी बंगाल को मिलने लगा।

जिन अधिकार से आपको बरसों तक दूर रखा गया, आज वो हक आपके द्वार तक पहुंच रहा है। मैंने चुनाव के समय आपको आयुष्मान भारत योजना की गारंटी दी थी। जब बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत का लाभ मिलना तय हो गया है, माताओं बहनों को अन्नपूर्णा योजना का सीधा लाभ मिलना शुरू हो गया है, हर घर स्वच्छ पानी पहुंचे, इसके लिए भी पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच जल जीवन मिशन को लेकर एमओयू साइन हो गया है। हमने चुनाव के समय बंगाल के युवाओं से वादा किया था, वो वादा पूरा करते हुए नौकरियों में आयु की सीमा में ढील दी गई है। महिलाओं को फ्री बस यात्रा का वादा भी पूरा हो चुका है। साथियों, सालों साल राजनीतिक दुश्मनी में जिन योजनाओं को रास्ते में ही अटकाया गया, लटकाया गया, आज उन सारी बंदिशों को तोड़कर जन कल्याण शिविरों के जरिए हर सरकारी योजना का लाभ सीधे आप तक पहुंचाया जा रहा है। अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ आपके अधिकार पर फोकस है, बंगाल के विकास पर फोकस है, बंगाल और देश की सुरक्षा पर फोकस है। आपने देखा होगा सीमा पर फेंसिंग के लिए पिछली सरकारों ने जमीन ट्रांसफर का जो काम दशकों से रोक रखा था, नई सरकार बनते ही वो काम भी पूरा करने का काम शुरू हुआ है। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि पश्चिम बंगाल में औद्योगिक प्रगति की नींव फिर से बननी शुरू हो गई है। इस नींव के दो अभिन्न अंग है, ईमानदार और पारदर्शी शासन, और दूसरा कानून का राज। पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरा देश आज इस बदलाव को देख रहा है। जिन्होंने आपको लूटा, वो खुद आकर लूट के पैसे लौटा रहे हैं। बड़े बड़े लुटेरों को जेल भेजा जा रहा है, सिंडिकेट वाले जनता से माफी मांग रहे हैं, टोल नाकों पर अवैध वसूली करने वाले गुंडे नाके छोड़कर भाग गए हैं। बंगाल के लोग बिना रोक टोक के आ जा रहे हैं। एखन काट मानी शेष का शुरू होए गए छे। साथियों, जो बंगाल अभी तक खराब सड़कों और खस्ताहाल इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहा था, वहां अब वर्षों से लटके अटके प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ने लगे। आप देखिए, चिंगरी घाटा क्रॉसिंग पर कोलकाता मेट्रो की ऑरेंज लाइन का रुका हुआ काम पूरा भी हो गया है। हावड़ा में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से नए डिविजनल रेलवे अस्पताल की नींव भी रखी गई है। यहां इमरजेंसी सेवाएं होगी और गंभीर बीमारियों के इलाज की व्यवस्था होगी। पूर्व मेदिनीपुर में हौर और राधामोहनपुर के बीच रोड ओवर ब्रिज

संक्रेल संतरागाची लिंक लाइन, ऐसे प्रोजेक्ट से यहां के लोगों को सुविधा होने वाली है। साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम

किसान पर बोझ नहीं पड़ेगा। साथियों, अब पश्चिम बंगाल डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन से भी जुड़ रहा है। एग्री स्टैक के माध्यम से किसान रजिस्ट्री बनेगी, गांवों के नक्शे और बोई गई फसल की जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी। खाद की खरीद, किसान क्रेडिट कार्ड, डीबीटी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जैसी सेवाओं में इससे आसानी होगी। साथियों, कृषि क्षेत्र में जो सबसे पिछड़े जिले हैं उन्हें आगे लाने के लिए सरकार ने पीएम धनधान्य कृषि योजना शुरू की है। इसमें पश्चिम बंगाल के चार जिले पुरुलिया, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और झाड़ग्राम शामिल है। इन जिलों में खेती की उत्पादकता बढ़ाने, स्टोरेज की सुविधा बनाने और किसानों के लिए लोन आसान करने पर काम होगा। बंगाल में मछली पालन से किसान, मछुआरे, व्यापारी सब जुड़े हैं। इसे दक्षिण 24 परगना के फेसरगंज फिशिंग हार्बर की क्षमता बढ़ाई गई है। वीरभूम में आधुनिक फिश मार्केट बनाने का भी काम हुआ है। अब बंगाल थमेगा नहीं, बंगाल अब इतिहास रचेगा। ए बार बांग्ला थामबे ना, एखन इतिहास गोरबे। साथियों, आज इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों के लाखों किसान साथी भी जुड़े हुए हैं, वहां के मुख्यमंत्री गवर्नर भी जुड़े हुए हैं, देश भर की सरकारों के मंत्री भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ लाखों किसान भी आज हमारे इस दिवस को मनाने में वो वहां भी भागीदार बने हैं। ये सभी किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। आज अपने इन सभी किसान भाइयों बहनों से मैं एक आग्रह भी करना चाहता हूं, और मेरे किसान भाई बहन मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, क्योंकि हमें अपने बच्चों को बर्बाद होते खेत नहीं देने हैं। हमें अपने बच्चों को उपजाऊ खेत देने हैं। हमें हमारी धरती माता को बचाना है। इस समय भारत सरकार खेत बचाओ अभियान चला रही है। इसके तहत मिट्टी की सेहत बचाने, केमिकल खाद का इस्तेमाल कम करने और प्राकृतिक खेती अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में खेत बचाओ अभियान से जुड़े, खुद का खेत बचाने का संकल्प करें, आसपास के किसानों को खेत बचाने के लिए प्रेरित करें और हम सब मिलके हमारी धरती मां की रक्षा करें। वो हमारी मां है। हम केमिकल से हमारी मां को मारने का पाप नहीं कर सकते हैं। हमें हमारी धरती मां को बचाना होगा। साथियों, भारत 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। विकसित भारत के संकल्प का सबसे बड़ा आधार है पूर्वी भारत का विकास। इसके लिए हम मिशन पूर्वोदय पर काम कर रहे हैं। इसमें बंगाल की भूमिका बहुत बड़ी है। बंगाल की प्रगति से पूर्वी भारत की गति बढ़ेगी। भाइयों बहनों,

0: विकास के इस अभियान में हमें एक और बात का ध्यान रखना है। विकास की पहली शर्त है जिसे हमें कभी भूलना नहीं है और वो है शांति, सौहार्द और सामाजिक स्थिरता। हमें बंगाल की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक ताने बाने को और मजबूती देनी है। हमें सबको साथ लेकर चलना है। साथियों, कल देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाना है। इस बार मैं बंगाल में ही योग दिवस का हिस्सा बनूंगा। स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसे योगियों की भूमि, यहां से जो संदेश जाएगा उससे पूरे विश्व का मार्गदर्शन होगा। मैं चाहूंगा इस बार बंगाल कोने कोने में योग दिवस के आयोजन हो। आप सब योग करें, योग दिवस का हिस्सा बने, इसी अनुरोध के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जब हम उत्साह और उमंग के साथ पश्चिम बंगाल दिवस मना रहे हैं तो मेरा आप सबसे आग्रह है, अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए और हम सब मिलकर के आज ये बंग दिवस मनाएं। सबके मोबाइल फोन की लाइट चालू हो, मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Moving towards a future, towards a Viksit Bharat, developed India by 2047, we hope and pray that the resolve and the vow of the Prime Minister bears fruit and we see all those great results in our lives, in the lives of the country, in the lives of everyone to be there in the future.
2: धीरे धीरे कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। अब समय है आपसे विदा लेने का। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में प्रस्तुति सहयोग दिया श्री एस वाई खान ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्री प्रमोद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह अपने साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव के साथ आपसे अनुमति लेता हूँ। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी किए जाने और इस अवसर पर संबोधन का प्रसारण। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। एफएम 102, एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युवाणी।

0: हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने मनपसंद कार्यक्रम युवाणी में। और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त मुनमुन।
1: और मैं हूं रजत।
0: रजत, आज दुनिया में सब कुछ कितना फास्ट हो रहा है ना।
1: हाँ।
0: और हम सब चाहते हैं कि मेहनत करें और तुरंत रिजल्ट मिल जाए।
1: हाँ, ये तो है।
0: लेकिन जीवन में हर अच्छी चीज को पाने में समय लगता है, चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो या कोई बड़ा सपना। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, इसलिए जीवन में सहनशीलता और धैर्य रखना बहुत जरूरी है।
1: ये तो बिल्कुल सही कहा मुनमुन, क्योंकि सहनशीलता का मतलब है जीवन में कैसी भी सिचुएशंस आ जाए, उस सिचुएशंस को समझदारी से स्वीकार करना और दूसरों के विचारों का सम्मान करना।
0: बिल्कुल रजत, और वही जो धैर्य होता है ना, उसका मतलब है कि कठिन समय में भी शांत रहकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना।
1: और दोस्तों, कोई भी बड़ा स्टार्टअप या अच्छी नौकरी या फिर गेम्स में मेडल रातों रात नहीं मिलता। महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों असफल प्रयास किए थे। दोस्तों, हर बड़ी सफलता के पीछे सालों का धैर्य छुपा होता है।
0: बिल्कुल, ये तुमने सही कहा रजत। लेकिन आजकल जो यूथ्स है ना, उनमें डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं। और ऐसे समय में जो पेशेंस है ना, वो मेंटल डिप्रेशन को कम करता है। और जो धैर्य यानी पेशेंस है, वो हमें सिखाता है कि बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता, क्योंकि ये भी गुजर जाता है।
1: हाँ, और मुनमुन, इसी से जुड़ा हुआ एक उदाहरण भी है मेरे पास।
0: अच्छा, बताओ बताओ।
1: आपने धोनी के बारे में तो सुना होगा।
0: धोनी तो बहुत बड़ा नाम है।
1: हाँ दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में धोनी का सबसे शांत खिलाड़ी माना जाता है। उनके करियर की शुरुआत में कई मुश्किलें आई थी। वे एक रेलवे स्टेशन में टीटी की नौकरी करते थे, लेकिन उन्होंने अपने क्रिकेट के सपनों को छोड़ा नहीं। मैच के आखिरी ओवर्स में जब करोड़ों लोगों की सांसें थमी होती है ना, तब भी धोनी शांत रहकर सही फैसले लेते हैं। मैदान हो या जिंदगी, जो आखिरी समय तक अपना धैर्य नहीं खोता, जीत हमेशा उसी की होती है।
0: रजत, और मैं भी तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊं?
1: अच्छा हाँ, सुनाओ।
0: बिल्कुल। बात करें कलाम साहब की, यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, जो देश के राष्ट्रपति और मिसाइल मैन बनने से पहले ना, वो एयरफोर्स में पायलट बनना चाहते थे। उनका सपना था कि वो पायलट बने। और जानते हो तुम कि वो जब उन्होंने पायलट बनने के लिए जो एग्जाम दिया था ना, उसमें फिर नवे स्थान पर आए थे।
1: अच्छा,
0: मतलब 9th रैंक उनकी आई थी, लेकिन सीटें थी सिर्फ 8। ले आप सोचो तुम कि 9th रैंक आई है और सीटें हैं 8। लेकिन वो निराश नहीं हुए, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने अपनी असफलताओं को सहन किया, खुद पर काम किया। और उन्होंने उसके बाद तो हम जानते हैं कि हमें देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक और राष्ट्रपति मिले। इसलिए दोस्तों, आपका कोई एक सपना टूट जाए तो धैर्य रखें, जिंदगी ने आपके लिए उससे भी बड़ा कुछ सोच रखा है।
1: वाह मुनमुन, बिल्कुल सही कहा। और दोस्तों, स्पीड लाइफ के लिए जरूरी होती है, लेकिन डायरेक्शन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सहनशीलता और धैर्य हमें सही दिशा देते हैं। और याद रखिए दोस्तों, कच्चा फल जल्दी टूट जाता है, लेकिन उसका स्वाद कड़वा होता है, जबकि धैर्य से पका हुआ फल हमेशा मिठास देता है।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: तो श्रोता हूँ, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी में। और आज आपके साथ है आपके दो रेडियो साथी, मैं रजत
1: और मैं मुनमुन।
0: दोस्तों, स्वस्थ शरीर, शांत मन और पॉजिटिव सोच के साथ जीवन जीने का सबसे सरल रास्ता है योग। और यही कारण है कि 21 जून यानी कल पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा।
1: बिल्कुल रजत। और दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

0: की शुरुआत 27 सितंबर 2014 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को 177 देशों का समर्थन मिला और 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिया और पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया।
1: अच्छा मुनमुन, तुम्हें पता है कि 21 जून को ही क्यों चुना गया?
0: हाँ, कुछ थोड़ा थोड़ा, चलो डिटेल में बता दो।
1: हाँ, मैं बताता हूँ, क्योंकि 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, जिसे समर सोल्स्टिस भी कहा जाता है। भारतीय परंपरा में इस दिन का विशेष आध्यात्मिक महत्व माना जाता है और इसीलिए दोस्तों योग दिवस को मनाने का दिन 21 जून ही चुना गया।
0: और रजत योग दिवस आज दुनिया के 190 से अधिक देशों में मनाया जाता है और वर्ष 2026 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि कल का जो मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम है वो कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा, जहां माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देशवासियों के साथ योग करेंगे।
1: अरे वाह। और हर साल योग दिवस एक विशेष थीम के साथ मनाया जाता है और मुनमुन इस वर्ष की थीम रखी गई है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, मतलब स्वस्थ और सुखद वृद्धावस्था के लिए योग।
0: बिल्कुल दोस्तों, योग भारत की प्राचीन और अमूल्य धरोहर है जिसे आज पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई है। कल योग दिवस पर हम सभी संकल्प करें कि योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाकर स्वस्थ जीवन जीने की ओर कदम बढ़ाएंगे। दोस्तों आइए बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम में और आपको सुनाते हैं एक युवा दोस्त को जिन्होंने योग को अपने जीवन में अपनाया है। आइए सुनते हैं तपेश मीणा को।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी, आपके दो रेडियो साथी रजत मेहरा और मुनमुन चौधरी के साथ। लेकिन आज हमारे साथ एक और खास गेस्ट मौजूद है जो पिछले 2 साल से योग कर रहे हैं, तो चलिए उनका परिचय भी आपसे करवा देते हैं।
3: नमस्कार, मेरा नाम तपेश मीणा है, मैं कोटा शहर के छावनी क्षेत्र से रहने वाला हूँ और मैंने पढ़ाई में आर्ट्स से ग्रेजुएशन कर रखी है और अभी पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी चल रही है। दूसरा, मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहा हूँ साथ में, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आकाशवाणी का जो उन्होंने मुझे अवसर दिया अपने विचार व्यक्त करने के लिए।
2: जी तपेश, आप बताइए कि योग आपने शुरू कब किया था, मतलब आपकी रुचि कैसे बढ़ी योग करने के लिए?
3: जी, मेरी कॉलेज लाइफ का फर्स्ट ईयर निकला तब मैंने उसके बाद गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। तब से काफी स्ट्रेस, तनाव बहुत कुछ रहने लगा, तो मैंने सोचा कि ना फिजिकल एक्टिविटीज में टाइम लगता है और उसके बाद में शरीर भी थोड़ा थोड़ा दर्द सा रहने लगा, तो मैंने इसकी जगह योगा स्टार्ट किया।
2: अच्छा, आप मुझे ये बताइए तपेश कि आजकल जो युवाओं की लाइफस्टाइल है वो बहुत ही बदल चुकी है, हम सोशल मीडिया इंटरनेट इसके प्रति बहुत ज्यादा निर्भर हो चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि योग अब एक चॉइस नहीं बल्कि एक नीड बन चुका है ऐसी लाइफस्टाइल में?
3: जी, आजकल के जो जिस तरीके की लोगों की दिनचर्या हो चुकी है वो एक तरीके से अनियमित है। हम दिन रात फोन चला रहे हैं, सुबह लेट उठ रहे हैं, ना योग कर रहे हैं, ना कुछ व्यायाम कर रहे हैं, ना ज्यादा चलते फिरते हैं, ना घूमते फिरते हैं, तो इससे हमारे शरीर में अनियमितता बढ़ती है। ऐसे में हमें अपनी इस अनियमितता को सुधारने और अपनी दिनचर्या को बढ़िया करने के लिए हमें कम से कम सुबह उठकर आधे से एक घंटे कम से कम प्राणायाम और बाकी सब योग क्रियाएं करनी जरूरी है।
2: हाँ, और बहुत से युवा सोचते हैं कि योगा ना सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए होता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
3: योग केवल शरीर नहीं बल्कि मन और श्वास पर भी कार्य करता है। योग से है हमारी शारीरिक क्षमता ही नहीं बल्कि मानसिक क्षमता, मानसिक शक्ति ये सब विकसित होती है। मैं खुद योग करता हूँ, मुझे पता है जब जब मुझे स्ट्रेस होता है तब तब मैं प्राणायाम जैसी एक्टिविटीज करता हूँ ताकि मेरे मन को शांति मिले और मेरा ध्यान पर लगा रहे।
2: मतलब फोकस के लिए आपने मेनली इसको स्टार्ट?
3: जी बिल्कुल, फोकस। एक पढ़ने वाले बच्चे को क्या चाहिए अपनी लाइफ में, वो अच्छे से ध्यान केंद्रित करके पढ़ाई करे, किसी इधर उधर मन ना भटके, इससे अच्छा और उसे क्या चाहिए? तो इसके लिए सबसे बढ़िया है योग। आप जितने अच्छे प्राणायाम करेंगे आपके मन को और मस्तिष्क को शांति मिलेगी।
2: बिल्कुल तपेश, मुझे ये बताइए कि अगर किसी बिगिनर को योगा शुरू करना हो तो वो सबसे पहले किन बातों का ध्यान रखे? आपने जब शुरू किया तो आपने किन बातों का ध्यान रखा था?
3: जी, अगर मैं मेरा अनुभव बताऊं तो मैं बचपन में फिजिकल एक्टिविटी बहुत करता था और 3rd-4th क्लास से ही मैं बाहर घूमने करने जाना, खेलना कूदना, हमारे टाइम पे फोन कम थे तो हम घूमा करते और फोन ना चला करके बाहर

0: खेला करते थे। मेरी तरफ से अगर मैं बताना चाहूं कि किसी बिगिनर को स्टार्ट या कैसे करना है, तो वो आसान आसनों से शुरुआत करें, श्वास क्रियाएं करना स्टार्ट
1: मतलब
0: करें।
1: शुरुआत में ही कॉम्प्लेक्सिटी में ना जाए।
0: हाँ, सीधा सीधा बस वो आसन देखे, आसन पर बैठना सीखे, कैसे बैठते हैं, कैसा कौन सा आसन करते हैं, किस आसन में कौन सी क्रियाएं करते हैं। मतलब ज्यादा हार्ड ना करें, सीधा इजी पर स्टार्ट करें, नियमित अभ्यास करें, जल्दबाजी ना करें, प्रशिक्षित योग शिक्षक के मार्गदर्शन से सीखें।
1: तो तपेश, आपने बताया कि आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से, तो मैं आपसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहूंगा
0: जी
1: कि एग्जाम और करियर और कंपटीशन के दबाव में जो बहुत से स्टूडेंट रहते हैं, तो उनके लिए योग कितना मददगार हो सकता
0: जी पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए योग
1: है?
0: एकदम मददगार है। मतलब मैं अपना बताऊं तो आप जिम वगैरह या फिर बाकी सब एक्टिविटीज करते हैं, तो इसमें आपके शरीर के थकने की और बाकी सब निद्रा आने की बहुत सारी संभावनाएं होती है। लेकिन योग जो है उसमें आपका ध्यान केंद्रित होता है, तनाव और चिंता जैसी तो बहुत सारी चीजें मतलब खत्म ही हो जाती है। अगर मैं मेरा बताऊं, मैं डेली 15 मिनट प्राणायाम करता हूँ, जिससे मेरे मन को संतुष्टि मिलती है, दिमाग को एक नई ऊर्जा मिलती है, जिससे मेरा ध्यान और याद करने की क्षमता बढ़ती है। योग करने से आत्मविश्वास, धैर्य ये सब बना रहता है। अगर देखा जाए तो हर स्टूडेंट को मिनिमम कम से कम 10 मिनट सुबह उठकर ताजा हवा में जाकर छत पर आराम से योगा करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, ताकि उससे उसका मन शांत रहे, मस्तिष्क अच्छा काम करे।
1: तो तपेश, आप योग 2 साल से कर रहे हैं,
0: जी
1: तो आपको अष्टांग योग के बारे में तो पता ही होगा।
0: जी जी योग के 8 अंग होते हैं, जिन्हें अष्टांग योग कहते हैं। इनमें जी यम आता है, नियम आता है, आसन आता है, प्राणायाम आता है, प्रत्याहार आता है, धारणा है, और फिर ध्यान, और फिर समाधि है।
1: तो अष्टांग योग के 8 अंगों में से प्रत्याहार का स्थान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है,
0: जी
1: तो इसको आप एक सिंपल तरीके से समझा सकते हैं कि प्रत्याहार क्या होता है?
0: जी प्रत्याहार का मतलब है अपनी इंद्रियों को वश में रखना। जो भी आप क्रिया करते हैं, शारीरिक क्रिया, उन्हें वश में कर करके उन क्रियाओं को अपने आंतरिक मन से जोड़ना, बाहरी क्रियाओं को आंतरिक मन से जोड़ना, इसे ही प्रत्याहार कहते हैं। यह मन को बाहरी शोर से हटाकर भीतर की ओर ले जाता है। ध्यान ध्यान की तैयारी करवाता है, महत्वपूर्ण है हमारे एक शरीर के लिए।
1: तो आज के समय में मोबाइल, सोशल मीडिया और लगातार आने वाले नोटिफिकेशंस के बीच क्या हम ये कह सकते हैं कि प्रत्याहार पहले से भी अधिक प्रासंगिक यानी रिलेवेंट हो गया है?
0: हाँ, क्योंकि यह आत्मनियंत्रण और सजगता सिखाता है, डिजिटल डिस्ट्रेक्शंस को संतुलित करने में मदद करता है, इससे फोकस और मानसिक शांति बढ़ती है।
1: बिल्कुल सही। अगर किसी युवा के पास बस 20 मिनट हो तो वो योग का मैक्सिमम बेनिफिट कैसे उठा सकता है?
0: 5 मिनट प्राणायाम कर सकता है, 10 मिनट सरल योगासन, जो भी वो चाहे, वो उस हिसाब से, उनके हिसाब से उन्हें जो भी अच्छा लगता है, जो आसन जो उन्हें लगता है कि उन्हें शारीरिक और मानसिक संतुष्टि प्रदान करता है, वो आसन कर सकते हैं। 5 मिनट शीतलीकरण या ध्यान ध्यान लगा सकते हैं। वो ध्यान सबसे महत्वपूर्ण है योगा में।
1: तपेश, कई लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, क्या ये बात सच में समय की है या फिर प्रायोरिटी की?
0: अक्सर ये प्रायोरिटी की बात होती है। दिन में 15-20 मिनट बहुत पर्याप्त होते हैं। कोशिश कीजिए कि सुबह जल्दी उठ सके, आप सूर्य नमस्कार से कर सकें, सुबह उठ करके सूर्य नमस्कार योगा आप सूर्य के सामने कर सकें। हम सुबह उठकर कम से कम 15 से 20 मिनट योग करके अपने शरीर को दिन भर के लिए एक्टिव और चुस्त और हमेशा मस्त बना सकते हैं। और ये तो साइकोलॉजिकल फैक्ट भी है कि आप जो सुबह सुबह योग करेंगे, वही उसका असर आपकी दिनचर्या पर दिखाई देगा। अगर आप सुबह अच्छा कुछ अच्छा काम करेंगे तो उसके तो आपकी दिनचर्या पर बहुत प्रभाव पड़ता है।
1: जैसे योग,
0: जैसे योग, अगर आप सुबह उठकर किसी चीज को रिवाइज भी करते हैं तो आपने देखा होगा आपको अच्छे से रिवाइज होता है, अगर आप पढ़ाई में भी ध्यान देते हो।
1: आप ये एक एस्पिरेंट्स का एंगल जोड़ रहे हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: तो तपेश, ये बताइए कि अगर किसी युवा को जिम और योगा में से एक चुनना हो तो आप क्या सलाह देंगे?
0: दोनों के उद्देश्य अलग अलग है। योग शरीर, मन और सांस तीनों पर काम करता है, संतुलन के लिए दोनों का संयोजन भी अच्छा विकल्प है।
1: मतलब हमें दोनों का बैलेंस बना के रखना चाहिए।
0: हाँ, अगर आपके पास टाइम कम है, जैसे कि आपने पहले पूछा था कि अगर आपके पास टाइम कम है तो आप योगा कीजिए, योगा आपके लिए बहुत फायदेमंद है।
1: तो तपेश, अब एक और लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या योग एक व्यक्ति की पर्सनालिटी और बिहेवियर में भी बदलाव ला सकता है।
0: जी बिल्कुल, योग से इंसान में धैर्य और आत्मविश्वास बढ़ता है, गुस्से स्ट्रेस वगैरह ये सब तनाव वगैरह नियंत्रण होते हैं, इनमें मदद मिलती है, उसे सब पे काबू कर सकता है वो। आजकल की युवा बहुत सी बार रिजल्ट आने पर, रिजल्ट अच्छा ना आने पर नकारात्मक विचारों की ओर

0: प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे में उन्हें योग मदद करता है कि वो सकारात्मक विचार बनाए रखें। कुछ भी हो तो हो जीवन में, उसमें सकारात्मकता को ढूंढकर, नकारात्मकता विचारों को निकाल करके आगे बढ़कर अपने ध्यान को केंद्रित करके और अच्छा करने की कोशिश करें।
1: तपेश, कल यानी 21 जून को दुनिया भर में विश्व योगा दिवस मनाया जाएगा,
0: जी
1: इसके लिए आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: जी मेरी तरफ से आपके श्रोताओं को एक ही संदेश है कि कल से ही जो भी जो पहले से करते आ रहे हैं प्राणायाम और योग, वो निरंतर करते रहें, और जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं की है वो हो सके तो कल से स्टार्ट करें अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए, अपना मन संतुष्ट करने के लिए, मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए। कम से कम 20 मिनट योग को अपनाएं और योग के जो फायदे हैं उन्हें अपने जीवन में उतारें। और ये जरूरी नहीं कि मैं युवाओं के लिए ये संदेश है, ये सभी वर्गों के लिए, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, सबके लिए योग फायदेमंद है और वह किसी भी एज में इसे स्टार्ट कर सकते हैं।
1: तो तपेश, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना तपेश को और इनसे बात कर रहे थे रजत।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवाणी। दोस्तों, आज की रात थोड़ी खास है क्योंकि कल है नीट का एग्जाम, और अगर दिल में थोड़ा डर या घबराहट है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि हर स्टूडेंट आज यही महसूस कर रहा है ना रजत?
1: बिल्कुल मनमुन। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, ये सिर्फ एक एग्जाम है, पूरी जिंदगी का फैसला नहीं है। आपने जितनी भी मेहनत की है वो कभी बेकार नहीं जाती।
0: बिल्कुल, इसलिए डर को अपने ऊपर हावी मत होने देना। कल एग्जाम हॉल में बस एक सोच लेकर जाना, मुझे अपना बेस्ट देना है, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा।
1: हाँ, और सुनो दोस्तों, ये आखिरी एग्जाम नहीं है, जिंदगी में आगे कई एग्जाम आएंगे, कुछ कागज वाले और कुछ लाइफ वाले। इसलिए घबराना नहीं, बल्कि हर स्थिति में खुद को मजबूत बनाना सीखो।
0: बिल्कुल दोस्तों, खुद पर भरोसा रखें, अपनी तैयारी पर विश्वास रखें, और सबसे जरूरी, शांत रहें, एक गहरी सांस लें और मुस्कुराएं, और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना पेपर दें।
1: तो दोस्तों, हमारी तरफ से बस एक ही संदेश कि डर को दूर रखो, अपनी मेहनत को याद करो और कल अपना बेस्ट देना।
0: बिल्कुल, सभी नीट के एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स को हम सभी की तरफ से दिल से ऑल द बेस्ट। दोस्तों, आप जरूर चमकोगे, बस खुद पर यकीन रखना।

0: दोस्तों, आपसे बातें करते करते वक्त का पता ही नहीं चला ना रजत।
1: हाँ बिल्कुल,
0: और आज का तो मौसम भी बहुत सुहाना हो रहा है।
1: हाँ, और इस मौसम में योग और कल नीट के एग्जाम्स के बारे में जो हमने स्टूडेंट्स को संदेश दिया है तो वो भी बहुत अच्छा है।
0: बिल्कुल दोस्तों, कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो योग को अपने जीवन में अपनाएं और स्वस्थ जीवन शैली जिए। और इसी के साथ साथ जिनका नीट का एग्जाम है वो भी कॉन्फिडेंट रहें, क्योंकि जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। इसी के साथ दीजिए अनुमति आपके दोनों रेडियो दोस्त मुनमुन और
1: रजत को,
0: फिर मिलेंगे। आज के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। उन्होंने आज कहा कि श्री मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर आदिवासी समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। श्री मोदी ने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का उल्लेख किया।
1: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके 68वें जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
1: आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, इससे जुड़ी परियोजनाएं बंगाल को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त भी जारी की। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की गई। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ने योगदान दिया है। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के तहत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ ये अभ्यास पूरे दिन जारी रहा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी शामिल रहे। भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। बोलीविया के राष्ट्रपति रोड्रिगो पाज ने देश भर

0: में ईंधन की कमी, रिकॉर्ड महंगाई और लगभग 50 दिनों से जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों और सड़कों की नाकेबंदी के बाद पूरे देश में आपातकाल की घोषणा की है। चेन्नई में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 219 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने चौथे ओवर में बिना किसी नुकसान के 35 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102, FM 103.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। फिल्म संगीत

सोनू निगम, स्वानंद किरकिरे और शान के सोरों में फिल्म थ्री इडियट्स का ये गीत अभी आपने सुना। शब्द स्वानंद किरकिरे के और संगीत शांतनु मोइत्रा का।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म जब हैरी मेट सेजल का ये गीत अभी आपने सुना। इस गीत को लिखा था इरशाद कामिल ने और संगीत दिया था प्रीतम ने।

आइए श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म कहो ना प्यार है से। आवाजें हैं उदित नारायण और रेखा यागिंग की, शब्द इब्राहिम अश्क के और संगीत राजेश रोशन का।

तो श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे जयपुर अजमेर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिले की चिट्ठी और फिर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।

0: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हमसफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल, जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर, यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ, हमेशा, देश और दुनिया भर में, कहीं भी।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: TLI है ना?
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 9.5 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 18,880 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जयपुर में बीएलओ संवाद कार्यक्रम में शिरकत की, देश की चुनावी प्रक्रिया को विश्वसनीय और पारदर्शी बताया। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल होगी, पुख्ता इंतजामों के लिए आज देशभर में मॉक ड्रिल की गई। और 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल, राज्य स्तरीय कार्यक्रम आबूराज में होगा। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के 9.44 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की। किसानों को 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की गई। पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर में आयोजित कार्यक्रम से प्रधानमंत्री ने ये सौगात दी। इस अवसर पर उन्होंने किसान कल्याण की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
1: स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। जहां स्वच्छता होगी, वही विकास भी उतना ही सुंदर दिखेगा। सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं, रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है।
0: पीएम किसान सम्मान निधि का राज्य स्तरीय समारोह पाली के सुमेरपुर में हुआ। पीएम किसान उत्सव से प्रदेश के 66,000 से ज्यादा किसान लाभान्वित हुए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में से एक पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक किसानों को 4,28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि प्राप्त हो चुकी है। योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में शामिल हुए। इससे पहले मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने पाली के नेत्रा में ग्रामीण सेवा शिविर का जायजा लिया। उन्होंने विभिन्न स्टॉल्स का निरीक्षण कर लाभार्थियों से फीडबैक लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने लोगों से ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की।
2: ग्रामीण सेवा शिविर ये आपकी सुविधा के लिए है, क्योंकि किसान, मजदूर, दिव्यांग, हमारी माता बहने, हमारे बुजुर्ग, उनको किसी तरह की परेशानी नहीं आए, इसलिए हमने शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविर लगातार हमारे पूरे राजस्थान के अंदर चल रहे हैं। इन सेवा शिविरों में ऐसे काम, चाहे वो शुद्धिकरण के हो, नामांतरण के हो, बंटवारे के हो, रास्ते के हो, पेंशन मिलती हमारे बुजुर्गों को, वो किसी कारण से रुकी हुई हो, ऐसे कई तरह के काम हमारे इन शिविरों में होते हैं। हमारी सरकार चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं हो।
0: देश में बने नौसेना के 3 जहाज आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रह का कल अनावरण होगा। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा, सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। नौसेना के अनुसार इन जहाजों के निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ने योगदान दिया है। देश की रक्षा और जहाज निर्माण क्षमता में इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कोलकाता में इनका अनावरण करेंगे। केंद्र सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर विशेषज्ञ समिति की ओर से की गई समीक्षा के

0: बाद ये फैसला लिया गया है। समिति के अनुसार इन दवाओं के उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। इन प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा रोग, दर्द निवारक और कुछ एंटीबायोटिक शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत की पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर हर नागरिक गौरवान्वित है। आज जयपुर में मीडिया से बातचीत में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि देश के विश्वसनीय और नवोन्मेषी चुनाव प्रबंधन को वैश्विक मान्यता मिली है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान IDEA ने भारत को अध्यक्षता दी है।
1: भारत का हर नागरिक इस बात पर गौरव महसूस करता है कि भारत न केवल विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि सबसे अधिक पारदर्शी, कुशल और सक्षम लोकतंत्र भी है। भारत की चुनावी प्रक्रिया में न केवल मतदाता सूची बल्कि मतदान, मतगणना, इन सभी प्रक्रियाओं में राजनीतिक दलों का या चुनावी उम्मीदवारों का कॉन्करेंट ऑडिट अर्थात भागीदारी रहती है। हमने BLOs और BLO सुपरवाइजर्स के साथ संवाद किया, प्रश्नोत्तर हुए, जो हमने उनसे बात चुनाव आयोग की तरफ से कहनी थी, जो अपेक्षाएं थी वो बताई, जो उन्होंने विगत SIR में इतना अच्छा काम किया है उसके लिए उनको प्रोत्साहित भी किया और उनके प्रश्न और उत्तरों का जवाब भी दिया।
0: मुख्य चुनाव आयुक्त ने आज सीतापुर स्थित JECC में प्रदेश के बूथ स्तरीय अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने 12 राज्यों में हुई SIR प्रक्रिया में राजस्थान को पहले नंबर पर लाने में BLO की भूमिका की सराहना की। उन्होंने जमीनी स्तर पर आने वाली चुनौतियों पर BLO और सुपरवाइजर्स के सुझाव और अनुभव भी सुने। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। नीट UG 2026 परीक्षा कल दोबारा होगी। इसे देखते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से आज मॉक ड्रिल की गई। परीक्षा को सुचारू, निष्पक्ष और सुरक्षित तरीके से संपन्न करवाने के लिए ये अभ्यास किया गया। सुबह 9 बजे से शुरू हुए ड्रिल में 2.5 लाख से ज्यादा सुरक्षाकर्मी शामिल हुए। ATA के अनुसार नीट UG पुनर्परीक्षा देश के 551 शहरों और 14 विदेशी शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा के मद्देनजर टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर लगाई गई रोक 22 जून तक प्रभावी रहेगी। इधर प्रदेश में री नीट पुनर्परीक्षा के लिए 25 जिलों में 577 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर करीब 2,09,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए पुलिस प्रशासन, SOG और IB पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। साथ ही CRPF की ओर से सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। प्रदेश में स्वच्छ, सुरक्षित और सुगम सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए पहली बार इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर से 47 ई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अमर जवान ज्योति पर हुए इस कार्यक्रम में 29 बसें राजधानी जयपुर और 18 बसों की सौगात भीलवाड़ा को मिली है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ई बसों से प्रदूषण में कमी आएगी। श्री शर्मा ने ई बस में अमर जवान ज्योति से स्टेट हैंगर तक का सफर भी किया। गौरतलब है कि PM ई बस योजना के तहत राजस्थान को 1,150 बसें मिलेंगी। योजना के पहले चरण में प्रदेश के 8 जिलों में 675 ई बसें चलाई जाएंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कल बीकानेर दौरे का कार्यक्रम है। श्री वैष्णव लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इससे गुजरात और राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री दोपहर में जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जहां वे जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। ये ट्रेन राजस्थान और बिहार के बीच संपर्क को नई गति देगी। श्री वैष्णव खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी करेंगे। श्री वैष्णव 41 छोटे और मध्यम स्टेशनों पर नए प्लेटफॉर्म विस्तार तथा 16 स्टेशनों पर एकीकृत यात्री सूचना प्रणाली का भी लोकार्पण करेंगे। साथ ही राज्य के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर विकसित की गई यात्री सुविधाओं का भी लोकार्पण करेंगे। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल

0: जाएगा। इस वर्ष की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रखी गई है। दुनिया भर में स्वास्थ्य और खुशहाली के माध्यम के रूप में योग एक उत्सव के साथ ही जन आंदोलन बन चुका है। इस बार 200 से अधिक भारतीय दूतावासों पर योग सत्र होंगे। राष्ट्रीय कार्यक्रम कोलकाता में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शिरकत करेंगे। इस बीच आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने बताया कि सरकार ने कार्यस्थलों पर योग ब्रेक के लिए वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है। आयुष मंत्रालय की ओर से विकसित इस मोबाइल एप्लीकेशन से काम के बीच 5 मिनट का योग ब्रेक लेकर लोग खुद को तरोताजा और तनाव मुक्त कर सकते हैं।
1: लोग दिन भर चेयर पे बैठे काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
0: प्रदेश में सभी जिलों, ब्लॉक और ग्राम पंचायतों, शैक्षणिक संस्थानों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर योग कार्यक्रम होंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय समारोह सिरोही के आबूराज में रखा गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस समारोह में भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बीकानेर के करणी सिंह स्टेडियम में होने वाले योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आयुष मंत्रालय की ओर से राजधानी जयपुर के जंतर मंतर पर सामूहिक योगाभ्यास किया जाएगा। साथ ही एसएमएस स्टेडियम, एल्बर्ट हॉल, जलमहल सहित शहर के प्रमुख स्थलों पर भी योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नई दिल्ली से 13 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 100 दिन के काउंटडाउन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, जिसके तहत प्रदेश भर में लगातार जागरूकता कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज डीग और जैसलमेर में योग जागरूकता रैली निकालकर निरोग रहने का संदेश दिया गया। सलूम्बर जिले में सरनी नदी को साफ करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। जिला कलेक्टर मोहम्मद जुनैद पीपी ने बताया कि सफाई अभियान में अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ सामाजिक संगठनों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने नदी को साफ रखने और भविष्य में गंदगी नहीं फैलाने का भी संकल्प लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 9.5 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 18,880 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जयपुर में बीएलओ संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। देश की चुनावी प्रक्रिया को विश्वसनीय और पारदर्शी बताया। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल होगी। पुख्ता इंतजामों के लिए आज देशभर में मॉक ड्रिल की गई। और 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल राज्य स्तरीय कार्यक्रम आबूराज में होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से 12 जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका लेख लक्ष्मीचंद नागर ने तैयार किया है। वराह नगरी के नाम से प्रसिद्ध और राज्य के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित 12 जिले में कल 2 महत्वपूर्ण आयोजन होने जा रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा नीट यूजी पुनर्परीक्षा आयोजित की जाएगी, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी कल मनाया जाएगा। इन्हें लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए जिला मुख्यालय में 3, अंता में 2 और अटरू में 1 परीक्षा केंद्र बनाया गया है, यानी कुल 6 केंद्र बनाए गए हैं। जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा ने परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर भवरलाल जनागल को, नोडल अधिकारी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ कमल कुमार जांगिड़ को पुलिस नोडल अधिकारी बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की भी तैयारियां व्यापक तौर पर की जा रही हैं। सभी ब्लॉक्स में सामूहिक योगाभ्यास होंगे, इसे लेकर जिला कलेक्टर ने बीते दिनों बैठक की। इस अवसर पर योग दिवस के आधिकारिक पोस्टर का विमोचन भी किया गया। बैठक में योग स्थलों पर पेयजल, चिकित्सा सुविधा, छाया और साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। जिले में इन दिनों ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर ने अंता तहसील की ठीकरिया ग्राम पंचायत में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का निरीक्षण

0: किया। उन्होंने आमजन की समस्याएं सुनी और विभिन्न विभागों के कामों की समीक्षा की। शिविर में आवासीय पट्टे वितरित किए गए, मंगला पशु बीमा पॉलिसियां सौंपी गई तथा विभिन्न प्रकरणों के तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए गए। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के अवसर पर प्रदर्शनी में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी प्रदर्शित की गई। आगामी मॉनसून के मद्देनजर जिला कलेक्टर ने आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को अतिवृष्टि, जलभराव और बाढ़ जैसी स्थितियों से निपटने के लिए पहले से तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राहत और बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ गंगा दशमी के अवसर पर मनिहारा तालाब पर हुआ। अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन को जन भागीदारी के माध्यम से आगे बढ़ाना रहा। इसके तहत जल स्रोतों की सफाई, पारंपरिक जल संरचनाओं के संरक्षण और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने की गतिविधियां शुरू की गई। इससे पहले श्रीराम स्टेडियम से प्रभात फेरी निकाली गई। इसमें विद्यार्थियों, अधिकारियों और आमजन ने भाग लिया। हाथों में तख्तियां लेकर प्रतिभागियों ने पानी बचाने का संदेश दिया। इस दौरान जिला प्रभारी सचिव हरि मोहन मीणा ने कहा कि जल जीवन का आधार है और इसके संरक्षण में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने लोगों से जल स्रोतों की रक्षा करने, भूजल स्तर बढ़ाने और अधिक से अधिक पौधे लगाने का आह्वान किया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस अभियान का समापन हुआ। वहीं इसी दिन से हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत हुई। इसके लिए जगह जगह विभिन्न कार्यक्रम रखे गए और पौधरोपण किया गया। साथ ही एक पेड़ लोकतंत्र के नाम कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों, मतदान केंद्रों और सार्वजनिक स्थानों पर पौधे लगाए गए। इसके साथ ही प्रतियोगिताओं और जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। बीते दिनों जिला स्तरीय पर्यटन विकास समिति की बैठक हुई। जिले में पर्यटन की संभावनाओं पर चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने संबंधित विभागों को मिलकर योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रामगढ़ क्रेटर और सोरसन क्षेत्र के अमलसरा स्थित टूरिस्ट क्षेत्रों को पर्यटन के दृष्टिकोण से और अधिक विकसित करने की दिशा में प्रयास करने चाहिए। जिला परिषद सभागार में बीते दिनों नारी चौपाल और नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। इन सब गतिविधियों के बीच जिले में मौसम का भी मिला जुला रूप देखने को मिला। कहीं तेज गर्मी से लोगों को परेशानी हुई तो वहीं आंधी और तूफान ने भी जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। हालांकि इससे भीषण गर्मी से राहत मिली है और इस बारिश के बाद किसान अपने खेतों में खरीफ की बुआई में जुट गए हैं। 12 जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश रा 9,44,00,000 बत्ता किसाना रा खाता माए पीएम किसान सम्मान निधि रा तेत 18,880 करोड़ रुपया भेजा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार देशवी चुनावी प्रक्रिया ने भरोसेमंद और साफ सुथरी बताई। जयपुर माए बीएलओ संवाद कार्यक्रम माए शामिल भया। नीट यूजी 2026 परीक्षा काल ओ जुली जावेला। देश भर में आज पुख्ता इंतजामात्री परख करीची। और 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काल मनायो जावेला। राज्य स्तर रो कार्यक्रम आबू राज माए भेला। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश रा 9,44,00,000 बत्ता किसाना रा बैंक खाता माए पीएम किसान सम्मान निधि री 23वीं किस्त रा तौर 18,880 करोड़ रुपया बत्ती रकम भेजी। पश्चिम बंगाल रा तारकेश्वर माए राखी जा कार्यक्रम माए प्रधानमंत्री आ रकम भेजी। ई मौके व किसाना रा भला रो सरकार रो संकल्प दोहरायो।
2: स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। जहां स्वच्छता होगी वही विकास भी उतना ही सुंदर दिखेगा। सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से।

0: काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं, रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है।
1: पीएम किसान सम्मान निधि रा तहत रकम जारीकरण रो राज्य स्तर रो कार्यक्रम पाली जिला रा सुमेरपुर में राखी छियो। पीएम किसान उत्सव रे जरिए प्रदेश रा 66,000 बत्ता किसाना रा खाता माए रकम भेजी छी। पात्र जनता रा बैंक खाता माए रकम भेजण री दुनिया री मोटी योजनावां माए शामिल पीएम किसान सम्मान निधि रा तहत हाल ताई किसाना रा खाता माए 4,28,000 करोड़ रूपयाऊ बत्ती रकम भेजी जा चुकी है। पीएम किसान सम्मान निधि रा तहत पात्र किसाना ने हर साल 6,000 रूपया री मदद दी जावे है। राज्य स्तर रा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ही शामिल थिया। इनु पहले मुख्यमंत्री पाली जिला रा नेत्रा माई लगाई चिया ग्रामीण सेवा शिविर रो जायजो लीनो। ई मौके वे कहो कि राज्य सरकार गांवाई हलका माए विकास सारू लगातार काम कर रही है। श्री शर्मा जनताओं ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों रो बत्तों बत्तो फायदो लेवन री अरज कीनी।
2: ग्रामीण सेवा शिविर ये आपकी सुविधा के लिए है, क्योंकि किसान मजदूर दिव्यांग हमारी माता बहने हमारे बुजुर्ग उनको किसी तरह की परेशानी नहीं आए, इसलिए हमने शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविर लगातार हमारे पूरे राजस्थान के अंदर चल रहे हैं। इन सेवा शिविरों में ऐसे काम चाहे वो शुद्धिकरण के हो, नामांतरण के हो, बंटवारे के हो, रास्ते के हो, पेंशन मिलती हमारे बुजुर्गों को वो किसी कारण से रुकी हुई हो, ऐसे कई तरह के काम हमारे इन शिविरों में होते हैं। हमारी सरकार चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं हो।
1: मुख्यमंत्री न्यारी न्यारी स्टॉल्स माथे सरकारी योजनावां रो फायदो लेवन वाला सागे बातचीत कीनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो काल कोलकाता माए नौ सेना सारू देश माए बनाई जा तीन जहाज आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय ने पानी माए उतारण रो कार्यक्रम है। आने समुद्री हिफाजत सर्वे और पनडुब्बियां रे खिलाफ न्यारा न्यारा अभियान माए काम लिया जावेला। नौसेना रे मुजब ए जंगी जहाज बनावन रा काम माए 232 MSME इकाई योगदान दीनो। केंद्र सरकार 16 भांतरी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाइयां बनावन और बेचण माथे तुरंत रोक लगातीनी है। सुप्रीम कोर्ट रा हुक्म पाछे जानकारां री समिति कान्यू करी जी सिफारिशों ओ फैसलो करी चियो। समिति रे मुजब आ दवाइयां स्वास्थ्य संबंधी जोखिम वेवन री शंका है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यां रा औषधि नियामकां और संबंधित एजेंसियां ने करडायूं रोक लगावन रा हुक्म दीना है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कहो है कि भारत री साफ गोई सागर निपक्ष चुनाव प्रक्रिया माथे देश रा हर रहवासी ने नाज है। वे आज जयपुर में खबर नवी सागे बातचीत कर रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त कहो कि देश रा भरोसेमंद चुनाव प्रबंधन ने दुनियाई मान्यो है।
3: भारत का हर नागरिक इस बात पर गौरव महसूस करता है कि भारत न केवल विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि सबसे अधिक पारदर्शी, कुशल और सक्षम लोकतंत्र भी है। भारत की चुनावी प्रक्रिया में न केवल मतदाता सूची बल्कि मतदान, मतगणना, इन सभी प्रक्रियाओं में राजनीतिक दलों का या चुनावी उम्मीदवारों का कॉन्करेंट ऑडिट अर्थात भागीदारी रहती। हमने BLOs और BLO सुपरवाइजर्स के साथ संवाद किया, प्रश्नोत्तर हुए, जो हमने उनसे बात चुनाव आयोग की तरफ से कहनी थी, जो अपेक्षाएं थी वो बताई, जो उन्होंने विगत SIR में इतना अच्छा काम किया है उसके लिए उनको प्रोत्साहित भी किया और उनके प्रश्न और उत्तरों का जवाब भी दिया।
1: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। NEET UG 2026 परीक्षा काल ओजू हैला। इन ठीक तरीकाओं और साफ कोई सागर करावन सारू राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज तैयारियां री परख कीनी। इनमें 2.5 लाख बत्ता सुरक्षा कर्मचारी शामिल फिया। NTA रे मुजब NEET UG री परीक्षा देश रा 551 शहरा और प्रदेश माए 14 ठौड़ा ओजू ली जावेला, जिनमें 22,79,000 बत्ता विद्यार्थी शामिल फैला। परीक्षा ने ध्यान रखता थका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम माथे 22 जून तक रोक रहवेला।

0: जा रही नीट यूजी परीक्षा स्वरूप प्रदेश माए 25 जिला माए 577 सेंटर बनाई चिया है। राज्य माए करीब 2,09,000 उम्मीदवार आ परीक्षा देवेला। परीक्षा साफ कोई सागे करावन सारू पुलिस प्रशासन एसओजी और आईबी पूरी तरह सावचेत है और सीआरपीएफ री ओरों हिफाजत रा पुख्ता बंदोबस्त करी चिया है। प्रदेश माए साफ सुरक्षित और सुगम सार्वजनिक परिवहन न बधावो देवन सारू पहली दफा बिजली चालन वाली बसा चलाई जावेला। प्रधानमंत्री ई बस सेवा रा तहत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज जयपुर 47 ई बसा ने हरी झंडी बतार रवाना कीनी। अमर जवान ज्योति माथे राखी जिया ई कार्यक्रम माए 29 बसा राजधानी जयपुर और 18 बसा भीलवाड़ा ने दीरी ची। ई मौके मुख्यमंत्री कहो के ई बसाऊ हवा माए गंदगी कम घुड़ेला। श्री शर्मा ई बस माए अमर जवान ज्योति स्टेट हैंगर ताई सफरी कीनो। ध्यान जोग है कि पीएम ई बस योजना रा तहत प्रदेश ने 1,150 बसा दी जावेला। योजना रा पहला दौर माए प्रदेश रा 8 जिला माए 675 ई बसा चलाई जावेला। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रो काल बीकानेर रा दौरा रो कार्यक्रम है। वे लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस रेलगाड़ी ने हरी झंडी बतार रवाना करेला। ई गाड़ियों गुजरात और राजस्थान माए सैर सपाटारी खास खास ठोड़ा सीधो संपर्क फै सकेला। ई पाछे केंद्रीय मंत्री जयपुर पूगर खातीपुरा रेलवे स्टेशन जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी ने रवाना करेला। श्री वैष्णव रो खातीपुरा स्टेशन माथे मेगा कोचिंग टर्मिनल रो उद्घाटन करण रो ई कार्यक्रम है। वे 41 नाना और मझोला टेसना माथे प्लेटफॉर्म ने मोटा बनावन रा काम और 16 टेसना माथे एकीकृत यात्री सूचना प्रणाली जनता ने सौंपेला। मानव प्रदेश रा न्यारा न्यारा रेलवे टेसना माथे मुसाफिरा सारू विकसित करी जा सुबिता जनता ने सौंपण रोई कार्यक्रम है। 12वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काल मनायो जावेला। इनरो ई साल रो मुद्दो स्वस्थ आयु के लिए योग राखी जियो है। भारत सागे आखी दुनिया माए योग दिवस मनावन रे दौरान प्रदेश माए भारत रा 232 दूतावासा माए योग सत्र राख्या जावेला। राष्ट्रीय स्तर रो कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई माए कोलकाता माए राख्यो जावेला। ई विचे आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव कहो के सरकार काम रे थोड़ा माथा योग करण बाबत थोड़ी देर री छुट्टी सारू वाई ब्रेक एप ही शुरू कीनो है। आयुष मंत्रालय री ओर विकसित करी जाई मोबाइल एप्लीकेशन काम बीचे 5 मिनट री छुट्टी लेर योग कर लोग खुद न तरोताजा और तनाव मुक्त रख सके है।
1: लोग दिन भर चेयर पे बैठ के काम करना पड़ता है। वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
0: प्रदेश में आए सगला जिला ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्कूल कॉलेज और आयुष्मान आरोग्य मंदिर माए योग कार्यक्रम रखा जावेला। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रे मौके राज्य स्तर रो जलसो सिरोही जिला रा अबू राज माए राख्यो जावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रोई इन माए शामिल भेवन रो कार्यक्रम है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बीकानेर रा करणी सिंह स्टेडियम माए राख्या जावन वाला योग दिवस कार्यक्रम माए शामिल भेला। आयुष मंत्रालय री ओर राजधानी जयपुर रा जंतर मंतर माए भेड़ो योगाभ्यास कार्यक्रम राख्यो जावेला। इस आगे एसएमएस स्टेडियम अल्बर्ट हॉल और जल महल समेत शहर री खास खास ठोणा योगाभ्यास कार्यक्रम रख्या जावेला। ई बीचे नई दिल्ली शुरू करी जिया 100 दिन रा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंट डाउन कार्यक्रम रा तहत आखर राज्य माए योग जागरूकता कार्यक्रम रख्या जा रहा है। आज डीगर जैसलमेर माए योग जागरूकता रैली निकाल और निरोगा रेवन रो संदेश दियो चियो। आखिर माए खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश रा 9,44,00,000 बत्ता किसाना रा खाता माए पीएम किसान सम्मान निधि रा तहत 18,880 करोड़ रुपया भेजा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार देश री चुनावी प्रक्रिया ने भरोसेमंद और साफ सुथरी बताई। जयपुर माए बीएलओ संवाद कार्यक्रम माए शामिल भया। नीट यूजी 2026 परीक्षा काल ओजू ली जावेला। देश भर माए आज पुख्ता इंतजाम री परख करी ची। और 12वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काल मनायो जावेला। राज्य स्तर रो कार्यक्रम आबू राज माए फैला। इस आगे प्रादेशिक समाचार।

0: पूरो भयो मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल समारे 9 बजे हिंदी माय प्रसारित करियो जावेला नमस्कार।
1: FM 102 FM 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। अब किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम चौपाल।

चौपाल कार्यक्रम सुनबा वाला संदा किसान बेण भाया का ताई संतोष बना की घनी घनी राम राम। किसान बेण भायों जैसा कि आपन जाने छा खाल 21 जून न आपन अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मना रहा छा। और योग को आपना जीवन में घणो महत्व होवे छे। अगर आपन रोजाना योग करा तो आपनो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहवे छे। योग आत्मविश्वास के ताई बढ़ावे छे। योगा करवा सु शरीर लचीलो और मजबूत बने छे। रक्त संचार भी बढ़िया रहवे छे। किसान बहन भाइयों योग मन शरीर और भावनाओं के बीच में संतुलन बनाए रखे छे। योग करवा सु तनाव चिंता दूर होवे छे। साथ ही नींद भी बढ़िया आवे छे। मन के ताई शांत और स्थिर रखे छे। सकारात्मक सोच को विकास होवे छे। ध्यान और प्राणायाम से एकाग्रता बढ़े छे। अगर आपन के ताई सुखी और स्वस्थ जीवन जीनो छे तो योग के ताई दैनिक दिनचर्या को हिस्सों बनानी चाहिए। कई योगासन छे जिसे आपन छोटी मोटी बीमारियां के ताई ठीक कर सके छा। जैसा अनुलोम विलोम प्राणायाम भुजंगासन त्रिकोणासन भ्रामरी ताड़ासन व्रजरासन ध्यान मेडिटेशन और भी घना ऐसा योगासन छे जिसे आपन कर सके छा जिसे आपनो स्वास्थ्य बढ़िया रहेगो। तो बहन भाइयों आपन कहते हैं सुबह थोड़ा सो समय आपने ले जरूर निकालनी चाहिए। खुद के लिए आपन आधो घंटो जरूर खाड़ा और अपना शरीर कहते हैं स्वस्थ और मजबूत रखा। योग कहते हैं जीवन शैली में आपन जरूर शामिल करा। किसान बहन भाइयों हर दिन आपन कोई न कोई दिवस मनावा छा। तो आज आपन मना रहा छा विश्व शरणार्थी दिवस। यो दिवस हर साल 20 जून न मनाया जावे छे। शरणार्थी वो लोग होवे छे जो किसी न किसी कारण सु जैसा युद्ध हिंसा उत्पीड़न का डर सु अपना देश कदाई छोड़कर दूसरा देश में शरण लेवे छे। यो दिवस मां लोगों के लिए सम्मान देवा के लिए मनाया जावे छे जाने मजबूरी में अपनो घर और अपनो देश छोड़ियो। ये दिवस कताई मनाबा को उद्देश्य जो शरणार्थी छे मां कताई वहां का अधिकार और सुरक्षा का प्रतीक जागरूक करबो छे। विश्व शरणार्थी दिवस आपन कताई याद दिलाओ छे कि हर व्यक्ति कताई सुरक्षा और सम्मान के साथ जीवन जीबा को अधिकार छे। किसान बहन भाइयों आज शनिवार छे और आपन आज कोई न कोई गांव में चले छा और आज आपन आया छा गांव नागदा की झोपड़ियां तहसील अंता जिला बारा का गांव में जो कोटा मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर दूरी पर छे। गांव बहुत ही सुंदर विकसित और हरे भरे लाग रहे छे। तो चला और करा यहां का किसानों से बातचीत।

0: तो आपन जैसे गांव में घूम रहे छा तो यहाँ पे एक रामदेव जी को मंदिर नजर आयो छे, यहाँ पे बातचीत करेंगा। राम राम साहब।
1: राम राम साहब। राम
0: काय नाम छे आपको?
1: मेरा नाम रामदेव जी साहब।
0: खेती बाड़ी करो छो?
1: खेती बाड़ी तो बच्चा करे छे।
0: काय काय लगाओ छो उमा?
1: सोयाबीन गेहूं सरसों चढ़ाई छे करे छे।
0: अच्छा, तो काय तैयारी कर रखी छे खेती बाड़ी में?
1: अब खेती बाड़ी में इस साल तो बरखा कम छे तो सोयाबीन तो होगो ना।
0: अच्छा,
1: उड़तली बागोगा कुछ जाओगे, बरखा बढ़िया हो तो सोयाबीन पाल जाओगे।
0: हाँ, तो गांव का बारा में आप मांगता है बताओ कि गांव को नाम झोपड़िया कसा पड़ियो?
1: भाई गांव तो नागदोज है।
0: हाँ,
1: यहाँ तो जब रेलवे निकली ना, जब कोई कहाँ से आया और कोई कहाँ से आया, यहाँ बसी है।
0: हाँ,
1: रेलवे में काम करता रहा, उसे बसी फिर नागदा की झोपड़िया पड़ गया।
0: और यहाँ पर काय काय देख बागो?
1: यहाँ तो शिव मंदिर है, ठाकुर जी को मंदिर जी बस हो गए।
0: कितना पुराना मंदिर है?
1: 100 साल पुराना है, अब नया बन रहा है।
0: पशुपालन भी करो जोगा आप?
1: हाँ, गाय है ना।
0: कितनी गाय है आपका?
1: 2 गाय है।
0: तो दूध वगैरह फिर घर के ले हो जाओगे बाहर बेचो?
1: नहीं, आपने बेचा हो?
0: घर के ले हो?
1: घर के ले हो।
0: क्या बताओ कि यहाँ पर जो आपने गाँव में विकास काय काय हो, रोड लाइट पानी की काय व्यवस्था है?

0: ਸਾਰੀ ਰਸਤਾ ਜਾਂ ਲਾਈਟ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਮੋਟਰਾਂ ਲਾ ਰਹੀ
1: ਔਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਕੱਲੇ ਪਾਣੀ ਕੀ ਕਾਈ ਚ
0: ਕਿਹੜਾ ਮੁੜ ਜੀ
1: ਅੱਛਾ ਔਰ ਖੇਤੀ ਕੱਲੇ ਸਿੰਚਾਈ ਕੀ ਕਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਚ
0: ਸਿੰਚਾਈ ਕੀ ਤੋ ਨਹਿਰ ਹੀ
1: ਨਹਿਰ ਆ ਰਹੀ ਜੇ ਯਹਾਂ ਪਰ
0: ਨਹਿਰ ਆ ਰਹੀ
1: ਚਿਕਿਤਸਾ ਕੀ ਕਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਚ ਸਵਾਸਥ ਕੇਂਦਰ ਵਗੈਰਾ ਛੇ ਯਹਾਂ ਪਰ ਹਾਂ
0: ਸਵਾਸਥ ਕੇਂਦਰ
1: ਹਾਂ ਪਰ ਜੀ
0: ਵਹੀਂ ਜਿਸ ਕੋ ਰੁਪਾਸ
1: ਤੋ ਕੋਈ ਹਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਓ ਤੋ ਵਹੀਂ ਜਾਤਾ ਹੋਗਾ
0: ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਦਵਾਈ ਗੋਲਾ ਦੇ ਜੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
1: ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋ ਅੰਤਾ ਜਾਤਾ ਹੋਗਾ
0: ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋ ਫਿਰ ਅੰਤਾ ਜੀ
1: ਸੋਚਾ ਲੈ ਕਿ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ
0: ਸੋਚਾ ਲੈ ਸਭ ਦੇ ਬਣ ਗਿਆ
1: ਗਾਉਂ ਮਾ ਬੜਿਆ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਚ
0: ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਾੜੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾ ਰੱਖੀ
1: ਕਚਰਾ ਕੀ ਗਾੜੀਆਂ ਆਉਂ ਚ ਸੋਚਾ ਲੈ ਬਣਾ ਵਸ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਓ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ
0: ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ
2: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
3: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
2: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: राम राम
5: राम राम
1: काय नाम है आपको?
5: राम जानी।
1: तो खेती बाड़ी करो जो आप
5: पहले तो करो जो
1: काय काय काम करो जो पहले
5: कोई माल मजा सब कर जा पहली तो
1: पहली तो जैसा हाथ से काम करनी पड़ो जो खेती में नरो काम रह जो
5: ये गांव में काई कोई जा पहली तो पहली की कथा और मन गणी मुसीबत ही बगती जे तो आप उस पानी आने से मन पीसना बावड़ा मारा सास जी ने पीसिया जी मन भी पीसनी पड़ी चक्की भी कोई नहीं जी यहाँ तो काई कोई जा पहली
1: अरे गाय भैंसा जो था गजे को मालूम पालन ताई कर जा
5: मैं कर जा दूध न काटे मना पण गेरा जेरी तो करी
1: और ये जैसा गाय को गोबर ओबर एको काय करो जो था
5: गोबर न तो था पचे कर रेवड़ा में पट गया
1: दंगिया भी बीणी होगी
5: खलाड़ी दंगिया बीणी जे मार सास जी जोड़ी मार दी मार मन मार ले नाव जी जी जोड़ी मार के खेतान में जन दंगिया बनाओ जा के
1: हां
5: पावणा पीरा हो जा जे कसन रोटी पानी बनानी पड़े जी मार के तुम रोटी बनानी कूड़ी बोल जा पहली 4 बोल जा जी
1: बच्चा बच्ची कता चा आपका
5: बच्चा बच्ची तो चाहिए 4 भैया जी
1: पोता पोती होगा
5: सभी जो
1: तो सब एक साथ ही रोजो
5: एक साथ ही रोज
1: पहले को जो खान पान जो और अबार को जो खान पान जो मैं काय बदलाव देखो जो
5: पहले वही से रोटी मिले जी गर्म दिनो रोज तो उन खाता रह जा पहले मर जा यार बट्टा खूब पर जा मैं
1: हाँ
5: खराब न कर मसालो जो ना जी नीचे ही मैं बाटा बांट जा पहले पट गए पहली काम स्वाद चो ज्यादा
1: है ना स्वाद भी जो ताकत भी चाहिए
5: ताकत भी चाहिए
1: यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र भी जगह तो फिर ये बच्चा बच्चा का टीकाकरण वगैरह होता होगा आपसे बात करके बड़े लगी राम राम
5: राम राम।

0: यहाँ पर कुछ बाहर है आपने साथ में बैठी हुई चे जो ये आपन कहता है भजन सुनाओगी। राम राम
1: राम राम, राम, राम साहब
0: राम राम, राम, राम। का नाम चे आपको?
1: राधा।
0: और आपको?
2: संतोष।
0: सुनाओ आप
2: जी।

0: बोलो भैजे बोलो, भोलेनाथ की जय।
1: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
2: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: किसान बहन भाइयों, जैसे ही अपन झोपड़िया गांव में आगे बढ़िया, यहाँ पर बैठे हुए ऐसे किसान भाई यहाँ से बातचीत करेगा। राम राम साहब।
5: राम राम साहब। राम राम।
4: क्या नाम था आपको?
5: प्रभुलाल जी कुशवाहा।
4: आप खेती करो जो?
5: हाँ, खेती करते हैं। अभी सोयाबीन करेंगे। हाँ। इसके बाद गेहूँ करते हैं, थोड़ा बहुत लहसुन भी करेंगे।
4: तो आपने पहली में और अबार में क्या क्या बदलाव देखा खेती बाड़ी?
5: बदलाव तो फल कुल से बैलों से जो होता था। अब आजकल मशीनरी युग आ गया, ट्रैक्टर चल रहे हैं, बोरिंग मशीन अलग आ रही है, खाद भी उसे हो रहे हैं। पहले हम लोग नाव में खाद बोते थे, दाना डालते थे, बुआई करते थे। अब आजकल पूरा एक मतलब मशीनरी युग हो गया टोटल मिला। हर काम मशीन से होता है, थ्रेशरिंग होता है, तुम गेहूँ भी उसमें निकालते हैं, कंबाइन मशीन आती है, मशीन भी उसे कट रही है, गेहूँ काट रहे हैं, उसमें सोयाबीन भी काट रहे हैं, चने भी उसे कट रहे हैं, सभी दलडा भी कट, दलहन सब भी कट रहे हैं, हर फसल मतलब मशीन द्वारा कट रही है, ज्यादातर सब मशीन काम कर। अब पहले तो क्या जी 2-3 क्विंटल निकलता था बाहर, अब बाहर कम से कम 6-7 क्विंटल निकलती है। भाई पहले से दुगना मानो आप, पहले 3-4-6 मानो मुनाफा नहीं बढ़ा पाए। भाई पैदावार कम निकल जा रही है, अब मुनाफा कैसे निकले? जब एक बार सोयाबीन 3-4 क्विंटल बीघा निकले तो मुनाफा है हमारा। अब एक बोरी या डेढ़ बोरी खरीदेगा तो मुनाफा कहाँ से आएगा? खर्चा उसमें घुस गया। अब इसका कारण क्या है जी? मतलब पहले जमीन नई नई थी ना, बीज भी अलग थी उसके, तो पैदावार में अच्छा निकलता था। अभी नए नए विरोधी के बीज आ गए ना, अब इसमें मतलब सोयाबीन बैठ नहीं पा रहे सारी, या तो फिर मतलब इसमें कैसी खाद करनी? अब क्या है जैसे फर्टिलाइजर देते हैं अपन, जमीन पूरी सीमेंटेड हो गई, जो मतलब पानी उसमें छिपता नहीं है।
4: हाँ।
5: पानी ऊपर से निकल जाता है, जबकि जमीन अगर पूरी रहे सीमेंटेड नहीं रहेगी।
4: हाँ।
5: खाद कम डालेंगे।
4: हाँ।
5: तो पानी की सौदी करेगी
4: बिल्कुल
5: पैदावार अच्छा को।
4: हाँ।
5: ये रेवाड़ी जो मारवाड़ शहर के होते हैं, एक गाड़ रहे और बकरियां लाते हैं।
4: हाँ।
5: तो हर साल मेरे खेत में उठाते हैं।
4: हाँ।
5: वहाँ पर पानी सुविधा है, एयर पंप कराए और खेत सर मेरे तार की बाउंड्री बना रखे जब उठाते हैं। इसके बाद खेत मैंने गाड़े बढ़ाए, धन्यवाद भैया। अब एक दूसरा से नहीं आ रही हुई ना, तो मीना उसमें बजे
4: अब जो ये सरकार द्वारा योजनाएं चल रही है, जैसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, तो यहाँ को फायदा उठा चुका आप?
5: देखो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना सबको फायदा हो रहा है, सबको पैसे आ रहे हैं, पेंशन है, वो पेंशन सुख मिल रही है।
4: साढ़ी लाख वाली
5: ये पानी बरस रहा है ना, तो सोयाबीन भी जल्दी है, जब तक जुलाई नहीं लगेगी जब तक सोयाबीन नहीं उड़ेंगे। मिलो जब पहले वाली जो फसल ओढ़ते है ना, वह पैदावार में कम निकलती है। अब जो बाद में अच्छे ढंग से बरसात हो जाए, जिसके बाद में

0: सोयाबीन का अभी भाई लोगों ने मतलब दांत सूखे में बांधे दांत और ऊपर से पानी पिला रहे उसको मारा।
1: आपका अनुभव का आधार पर आप मांग रहे या बताओ कि आप मुनाफा के तहत कसम बढ़ा सका जहाँ पर
0: अब मुनाफा नहीं बड़वा कारण एक ही चीज फसल चक्र करना पड़ेगा जब तक जमीन में फसल चक्र नहीं करेंगे जब तक जमीन उपजाऊपन नहीं
1: मिट्टी की जांच वगैरह कराओ जो हर साल कराओ काय फायदा मिला था मिट्टी की जांच
0: में फायदा क्या है इसमें आ जाते इसमें मिट्टी के अंदर थोड़ा कमी है कि इसमें ये मिट्टी में डाला जाए नहीं समझा जैसे हमारी मिट्टी में जिप्सम कम बचा अब जिप्सम मुझे कटता है डाल देंगे उसके खेती तो उसकी जिप्सम बढ़ जाएगी।
1: आपसे बातचीत करके बहुत बढ़िया लगी राम राम सर
0: राम राम सर
1: साथ में काकी जी भी बैठे हुए थे यहाँ से बातचीत करेंगे राम राम
2: राम राम
1: काय नाम सर
2: कांति भाई
1: काय करो छो आप
2: मत खेती करा
1: बार काय लगाओगा मतलब
2: अब तो यशवाबीन बाबा की तैयारी कर रहे हैं
1: खेती कछु कर रहे हैं
2: जो जसमा की उम्र हुई जिसमें
1: पहले आज कसो ज्यादा खाओ
2: पहले तो चना खा ले जा जो खा ले जा मक्का खा ले ज्वार खा ले अब तो गेहूं गेहूं खाओ
1: पर खर्चा का भाई मोटो अनाज खानी चाहिए
2: अब तो वही गेहूं गेहूं खाओ ज्वार खा ले कोई शोक मापक बाजरो अब और मैं चार धाम यात्रा की तुम्हारा देख रहा है मूठ बाजरो और मक्का पदौर से उसका अरे नाम कहाँ
1: पहले घणो काम रहे जो
2: बदल लो भाई बाप ने डाला ले ले जाओ ची कभी मत मत करे जवाब काहे ना घर में चक्की लाग रही घर में सब आटो पी दे और गैस पर रोटी बोलेगी मैंने सब काम करा ता का जे काम करवा ले मार वाले और कुली कुली वाले ता ता काय में काम करवाओ
1: अच्छा सब कर रहे
2: सब काम कर रहे मैंने
1: फिर घर को काम भी कर
2: घर को काम भी कर जमरी कर जे काम न करी मां का खेती हो छे 10 10 बीघा अबार मरचा और छे जि 4 लाख की मरचा बेचियो गन पर मजदूर वे तीज वा रात सो कोन बावड़ा चालता रे
1: भजन वगैरह आओ सा आता
2: सब आओ तो
1: कसो भजन थोड़ा
2: होगा या तो पापण रह गई सूते लुट गया रे राम।

0: बहुत बड़ा लगी। राम राम
1: राम राम।
2: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
3: जब एक परिवार को अपना घर मिलता तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: राम राम साहब।
1: राम राम साहब।
0: काय नाम से आपको?
1: लक्ष्मी नारायण।
0: काय करो जो आप?
1: खेती बाड़ी करो।
0: कितनी बीघा जमीन है?
1: साढ़े पाँच बीघा।
0: काय लगाओगा आप?
1: सोयाबीन ही लगाऊंगा।
0: यहाँ सभी सोयाबीन ही लगाओगे? काय तैयारी कर मिले?
1: तैयारी कर मिले जब
0: गहरी जुताई कराई गर्मी
1: की। बढ़िया जुताई कर कम्प्लीट जब और भाव काम।
0: मिट्टी की जाँच वगैरह?
1: मिट्टी की जाँच सब करा ली।
0: आज बारिश आ गई तो तैयारी कर
1: रखी थी
0: फिर
1: फुल तैयारी थी और बाकी
0: के बाद ही हो
1: रहा
0: है। जैसा यो गाँव जो झोंपड़ी तो कसी ग्राम पंचायत
1: में पंचायत तो नागदाई बन गई फिर चोट की पाची पंचायत पाचो ठीक रहा चल गई। यहाँ जनसंख्या कम थी दोनों गाँव में और गाँव मलबा में चार कौन पंचायत ये पाची टूटी ठीक रहा चल गई।
0: कितनी जनसंख्या थी
1: यहाँ की? 2000।
0: यहाँ पे जाया कर व्यक्ति से काय काम करे?
1: खेती बाड़ी।
0: और जो ये फड़ वाला बच्चा जो बड़ा फड़ लिख गया होगा वो काय करेगा?
1: एनटीपीसी में चल जाओ, गड्डे पान में चल जाओ, फिर काम
0: यहाँ पास में
1: प्राइवेट नौकरी वाला तो बहुत।

0: पंचायण अनुसार
1: तो जैसा हमारा रासायनिक खाद अपन डाला जा और पहले गोबर की खाद वगैरह डाला जा तो कैसी खाद ज्यादा डालनी चाहिए?
0: गोबर की गोबर की खाद बढ़िया रहे, आड़ी मिट्टी होगी तो डीएपी
1: रासायनिक
0: बटा की मिट्टी होगी और गोबर से मुलायम मिट्टी रहे।
1: बीज उपचार करो जो करो जो बीज उपचार फायदा
0: बीज उपचार तो मिट्टी में दाणो पटका जाऊ जो सड़क हुई ना
1: बढ़िया हो गया होता है
0: पिताजी करे जा रहे मानव समाज यही परंपरा
1: पहली जो करा जा खेती और अबार जो खेती करे जो काई बदलाव देखो आपने
0: पहले तो बल्ला कोड़िया करा जा खेती अब ट्रेक्टर चल गया खर्चा बढ़ गया अब खर्चा ज्यादा हो गया
1: मुनाफो
0: तो वही है 3,000 रुपया बीघा का तो ट्रेक्टर का चल जाओ।
1: अब ठंड में कसी कसी फसला लीजिए आप
0: दो ही लिया जाए लसन
1: का हिसाब से करो लसन हो गया
0: लसन 10 क्विंटल का आसपास बीघा हो
1: तो फिर बेच बा के ले आप कहाँ जाओ जो
0: कोटा
1: अच्छा तो भंडारण कसा करो तो आप लसन को गेहूं को यहाँ को भंडारण
0: लसन को तो पूछा सही अच्छा उसे जमीन सूखा खराब न हो बढ़िया कूलर वगैरह लगा
1: बढ़िया
0: हुआ
1: गेहूँ को भंडारण कसा करो
0: गेहूं को तो कहीं ना भेज देता छोटा छोटा खाद दुकान है खबा खान दुकान ले जाए कोटिया उठिया बन जाए
1: गाय भी शादी से था आपका
0: एक गाय
1: तो दूध वगैरह घर के ले हो जाए
0: हाँ घर में खावा पीवा मुझे
1: अगर 2-5 गाय भी जा रख ला तो दूध वगैरह भी बेच सकता जा
0: ज्यादा रख सकता जा पर आप जैसे बेटा पू आ गया वो तो कहीं काम न करेगा तो बेतिया रखना
1: साग सब्जी
0: प्याज सब्जी न करा
1: फूला की खेती भी तो कर सकता जा
0: फूला की भी कर सकते
1: उम्र तो फायदा
0: रहे गुलाब का फूल से बाहर 1,00,000 रुपया बीघा का साल भर में बच जाओ
1: राम राम।

0: एक बालिका और आपना साथ में छ, काय नाम छ आपको?
1: माही चौहान।
0: माही, कसी कक्षा में पढ़ो जो आप?
1: छठी।
0: कविता आओ छ आपके टाइम?
1: हाँ।
0: कसी कविता सुनाओगा?
1: चेतक की वीरता।
0: हाँ सुनाओ।
1: रण बीच चौकड़ी भर भर चेतक बन गया, निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया, हवा का पाला था। जो तनिक हवा से भाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चलों में, उड़ गया भयानक भलों में। निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। हे यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा वहाँ नहीं। थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहा नहीं। बढ़ते नदसा वह लहर गया, वह गया गया फिर टहर गया। विकराल ब्रज में बादल सा, अरि की सेना पर गहर गया। भाला गिर गया गिरा निशंग, हाय टापों से खन गया अंग। वेरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग।
0: वाह बहुत बढ़िया कविता आपने माँ कथा सुनाई। आपने माँ से बातचीत करी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।
1: राम राम।

0: झोपड़ा गांव में जैसा आगे बढ़िया एक किसान साथी और आपने साथ चे राम राम
1: राम राम।
0: क्या नाम चे आपको?
1: धनराज कुशवाहा।
0: धनराज जी का लगाओगा आप?
1: सोयाबीन हो रहे हैं
0: यहाँ पर, सभी सोयाबीन लगाओ जे। तो ये धान और गड़ो या क्यों न करा आप लोग?
1: गड़ो भी करा जाना
0: करो जो आप
1: माँ तो न करा माँ वोल कोई न। बाकी यो आपने फाचे वो उचे थे आस पास वो उचे गड़ो करे जे ना।
0: हाँ पोल
1: तैयार कर मी
0: कदे टाइम बुआई करेगा?
1: बस यो और जुलाई का फर्स्ट सप्ताह से ही शुरू है।
0: जैसा हमारे बारिश आ गई तो अब काय तैयारी कर रखी थी आपने?
1: बस आग जो उतर कम्प्लीट थी खेत सोयाबीन हो रहेगा।
0: गर्मी की गहरी जुताई करवाई आपने?
1: हाँ।
0: काय फायदा हो गहरी जुताई को?
1: ऊसू कहे जो अंदर का कीटाणु वो खत्म हो जाओ। दूसरी बात गहरी जुताई से बढ़िया पानी ले लीजिए जमीन।
0: हाँ पानी लेवा की क्षमता बढ़िया हो जाओ। और जैसा आपने गेहूँ वगैरह तरिया होगा फैली तो को भंडारण वगैरह कैसा करो चो आप?
1: मान बेचे साथ के साथ।
0: हाँ लेकिन अगर भंडारण करनी पड़े तो कैसा करो चो?
1: जैसे कोई कमरा में भरे तो चारों बेर पन्नी लगा दीजिए।
0: हाँ
1: और फिर पैक कर दीजिए उन्हें तो उमकाई कीड़ो न लगे।
0: आलू भी करो चो?
1: आलू भी करे जा।
0: कितना बीघा में करे जा?
1: थोड़ा सा करे जा खावा के लिए।
0: अच्छा खावा के लिए करे जा
1: जी। यहाँ में चने जो जल से रोग लागू जो ज्यादा मोटा न हो बारीक रह।

0: गर्मी में। तो जैसा हमारे कोई भी फसल करो जो, तो अगर उन्हें कोई रोग लग जाओ जो, तो उनको निदान कैसा करो जो आप?
1: दवाई छिड़कनी पड़ेगी, कीड़ा लग गया तो कीटनाशक छिड़क दीजा।
0: हाँ, तो जैसा कीटनाशक के लिए आप कहाँ से जाकर पता करो जो?
1: कृषि विज्ञान केंद्र में चल जाओ तो, या कोई ग्राम सेवक से पूछ ले जा। तो ग्राम सेवक बता
0: फिर वो, तो दवा को छिड़काव करते समय काय बातों को ध्यान रखनी चाहिए?
1: एक तो बीड़ी ने पीनी चाहिए जी, पानी ने पीनी चाहिए जी, और शरीर पर पूरा कपड़ो रहनी चाहिए जी, तन के मतलब चमड़ी के तू दवा न लगनी चाहिए जी, और मास्क लगानी चाहिए जी, ऊंचो रखनी चाहिए जी उन्हें। बच्चा बच्ची पहुँच न सके, मतलब हवा को पूरा ध्यान रखनी पड़े जी।
0: जो सरकार द्वारा योजनाएं चला मिली जो भारत सरकार ने अपने, तो फसल बीमा वगैरह करवाओ जो आप?
1: फसल बीमा बैंक में हो जाओ जी, बैंक में केसीसी लेम दीजिए ना।
0: हाँ।
1: तो मैं फसल बीमा भी हो जाए।
0: हाँ। तो काय फायदा हो जाए फसल बीमा को?
1: हर साल एक टाइम से जमा कर दे जा तो वो 2,500-3,000 रुपया मा का छूट मिल जाओ जी।
0: फसल खराब हो तब?
1: फसल खराब हो तो उनको मुआवजा मिले जी।
0: फसल चक्र अपना।

0: बैंक में हो जाओ जे बैंक में केसीसी लेम दीजे ना
1: हां
0: तो मैं फसल बीमा भी हो जे हां
1: तो काय फायदा हो जे फसल बीमा को
0: हर साल एक टाइम से जमा कर दे जा तो वो 2-3 हजार रुपया मां का छूट मिल जाओ जे
1: फसल खराब हो तब
0: फसल खराब हो तो को मुआवजो मिले जे
1: फसल चक्र अपनावा का काय फायदा
0: फसल चक्र से तो बहुत फायदा जे एक तो खरपतवार कम हो जे उमे और फसल भी अच्छी हो जे
1: तो यहां उत्पादन का सोच जे
0: उत्पादन तो कमी छे जी सोयाबीन को नबट जाता यहां काहे जी जंगल पास में पड़े छे ना तो वो जंगली जानवर आ जाओ छे यहां जी मक्का आलू और मूंगफली शकरकंद ये ऐसा का खा करा मां का तो बाउंड्री कोई नहीं जी मां तो लगाओ लगाओ छे यहां सब जे भी लगाओ छे
1: तार बंदी वगैरह करवा सको जो
0: तार बंदी मां का तो नो रही बाकी तार बंदी निरा को रही जी हां
1: ज्यादा फायदा की मचे
0: सब्जी में ही ज्यादा तो
1: है ना कशा
0: सब्जी भी बक जाओ छे
1: नगद
0: पीस आ जाओ खर्चा में परेशान न हो
1: आपसे बातचीत करके बहुत बड़ा लगी राम राम
0: राम राम।

किसान बहन भाइयों, गांव नागदा की झोपड़ियां, तहसील अंता, जिला बारा, यहां का किसान आंसर अपन बातचीत करी और जानियो गांव का विकास, संस्कृति और खेती बाड़ी का बारा में। अगला शनिवार ने फिर कोई नया गांव में चलेंगा और जानेगा वहां की लोक संस्कृति, विकास और खेती बाड़ी का बारा में। किसान बहन भाइयों, सरकार ने आपने लिए घनी सारी योजना चला मिली है, जैसा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये योजना के तहत दुर्घटना बीमो करो जावे छे। दुर्घटना से मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर 2 लाख तक को बीमा कवर मिले छे। इमें वार्षिक प्रीमियम भी घणो कम होवे छे। दूसरो छे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इम किसी भी कारण से मृत्यु होवा पर 2 लाख को बीमो कवर दियो जावे छे। तीसरो छे अटल पेंशन योजना। इम 60 वर्ष की आयु के बाद मासिक पेंशन को प्रावधान छे। ये योजना को उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तहत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करबो छे। दुर्घटना, मृत्यु और वृद्धावस्था के समय वित्तीय सहायता उपलब्ध करावो छे। तो बहन भाइयों, किसी भी योजना हो उके प्रति आपन के तहत जागरूक रहनो छे और ये योजनाओं को लाभ आपन के तहत समय समय पर लेनो छे। अब घड़ी की सुइयां झाला दे रही है कि समय कतई न रहो, फिर मिलेंगा नई नई बातों, मीठा मीठा गीता के साथ। अब संतोष बनाने दो आ गया, चल चा, राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल।
1: अब दुनिया के किसी भी हिस्से में सुनिए आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
2: ओ पिव जी, ओ ढोला जी, ओ पिव जी थोड़ी सी नचा दे।
1: प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर गूंज रहा है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन एआईआर। इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद रेडियो आइकन का चुनाव करिए और अब आकाशवाणी कोटा को अपने मोबाइल पर सुनने का आनंद लीजिए।

0: परिचर्चा में प्रतिभागी हैं डॉक्टर अंजना शर्मा, डॉक्टर हरिओम मीणा और पवन सोनी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं रामनारायण मीणा।
1: सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज यानी कि 20 जून 2026 को हम एक विशेष परिचर्चा लेकर आए हैं और ये परिचर्चा निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संदर्भ में ही है और कल पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि इस साल योग की जो थीम रखी गई है, अंतर्राष्ट्रीय थीम, हर साल कोई ना कोई थीम इसकी रखी जाती है, वह है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। आज इस परिचर्चा में हमारे जो प्रतिभागी भाग ले रहे हैं उनका परिचय मैं आपको करा देता हूं। डॉक्टर अंजना शर्मा, आप अतिरिक्त निदेशक हैं आयुर्वेद विभाग कोटा संभाग में। डॉक्टर अंजना जी, बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में आपका। नमस्कार।
2: नमस्कार सर। नमस्कार।
1: डॉक्टर पवन सोनी जी, जो सहायक निदेशक हैं आयुर्वेद विभाग जिला कोटा में। पवन सोनी साहब, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार।
3: नमस्कार सर।
1: और डॉक्टर हरिओम मीणा जी हैं, जो मेडिकल ऑफिसर हैं ब्लॉक आयुष चिकित्सालय सुल्तानपुर से। मीणा जी, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार।
4: नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत।
1: तो आइए इस परिचर्चा में हम आगे बढ़ते हैं और मैं डॉक्टर पवन सोनी जी आपसे जानना चाहता हूं कि जो थीम रखी गई है इस साल की, यानी स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, तो इस थीम पर आप कुछ प्रकाश डालेंगे सर?
3: जैसे कि इस बार जो योग की थीम रखी गई है वो ये है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग।
1: जी जी जी।
3: किस प्रकार अपन स्वस्थ रूप से जीवन व्यतीत कर सकते हैं, सुखायु। आयुर्वेद में सुखायु का महत्व बताया गया है। इसमें क्या होता है कि जीवन लंबा रहे परंतु वो हेल्दी रहे।
1: जी।
3: इसलिए इसी थीम पर अपन हेल्दी एजिंग सिद्धांत के हिसाब से इस थीम पे योग दिवस आयोजित किया जा रहा है।
1: तो आप बता सकते हैं कि इन दिनों वृद्धावस्था में या जो हमारे समाज में जो वृद्ध हैं वो किस किस तरह की जटिल बीमारियों से ग्रसित हैं, इसकी वजह से ये थीम रखी गई होगी?
3: जैसे कि वृद्धावस्था में क्या है कि अधिकतर अनिद्रा, मानसिक संतरास, जैसे कि उसमें टेंशन, इस तरह से तनाव की स्थिति रहती है। और दूसरी जो उनके हाथ पैरों में दर्द, घोड़ों में दर्द, इस तरह की प्रॉब्लम होती है। पेट से संबंधित दर्द होता है, पेट से संबंधित बीमारियां हैं। इसके अलावा कब्जी, कॉन्स्टिपेशन रेगुलर रहता है, इसमें भी उसका
1: जी
3: विशेष रूप से इसमें ध्यान,
1: इस पर ध्यान दिया जाएगा, बल्कि यूं कहना चाहिए। जी जी। अच्छा डॉक्टर अंजना जी, आप बताइए कि ये जो इस साल हम योग दिवस मना रहे हैं, कल 21 जून को हम मनाएंगे, तो इस योग दिवस के बारे में जो समाज में चेतना आई है योग के बारे में पिछले कुछ सालों से, जब से ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने लगा है, तो किस तरह की चेतना या जागरूकता आप देखती हैं समाज में?
2: जी, जब से 21 जून 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शुरू हुआ है, तब से हम समाज में जागरूकता आई है। आए दिन हम देखते हैं कि प्रातःकाल हमारे जो भी आसपास पार्क हैं, पर्यटन स्थल हैं, वहां पर युवा से लेके वृद्ध तक सभी लोग कुछ न कुछ योगाभ्यास करते हुए नजर आते हैं। तो ये इसी का ही परिणाम है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये शुरुआत की है, ये देश और समाज को बिना दवा के योग से स्वस्थ रखने के लिए जागरूकता अभियान चलाया है, जो कि हमें आम जन में देखने को मिलता है। और जो इस बार की थीम रखी गई है,
1: जी जी,
2: स्वस्थ सक्रिय वृद्धावस्था के लिए योग। तो जो वृद्धावस्था में हम देखते हैं कि बार बार भूलना, नींद नहीं आना और कंपवात, यानी कि वृद्धावस्था में वायु की वृद्धि होती है तो शरीर में कंपन होता है।
1: अच्छा।
2: और डिमेंशिया, जिसमें कि रोगी याद करता है लेकिन उसको याद नहीं आता, इन सब चीजों के लिए जो योग में कुछ आसन और प्राणायाम बताए हैं, तो क्योंकि व्यक्ति दुखी रहता है
1: जी, जी,
2: तो
1: जी,
2: शरीर में कोर्टिसोल नाम का हार्मोन स्रवित होता है।
1: अच्छा।
2: जब ये ब्लड के साथ सर्कुलेट होता है तो ये सभी बीमारियां शरीर में आती हैं। तो इसी के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए एक योग शुरू किया गया है। इससे क्या है कि हम देखते हैं कि वृद्धावस्था ही नहीं, आज युवा लोग भी अवसाद, चिंता, अनिद्रा, इससे ग्रसित होते हैं। तो योग करने से शरीर में, जिसको कि हम हैप्पी हार्मोन बोलते हैं, उससे सेरोटोनिन नामक स्राव हम ग्रंथियों से स्राव होता है,
1: स्रावित होता है।
2: जब ये स्राव हार्मोन रक्त के साथ मिलके शरीर में जाता है
1: जी, जी, जी।
2: तो हमें ये सब बीमारियां नहीं होती और व्यक्ति योग से ही बिना दवा के स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करता है।
1: अच्छा डॉक्टर हरिओम मीणा जी, आप ग्रामीण क्षेत्र से संबद्ध हैं और आप जहां काम करते हैं वहां आसपास बहुत

FM 102, FM 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही न्यूज़ ऑन AIRF पर। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। आइए श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं परिचर्चा, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग।

0: ग्रामीणों के संपर्क में आप आते होंगे, तो योग दिवस पर ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह की चेतना आप देखते हैं और इस साल क्या आप लोग करने वाले हैं वहाँ?
1: बिल्कुल सर, सबसे पहले तो मैं आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को कोटा का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे
0: जी, जी,
1: और
0: जी।
1: सरकार का भी यही उद्देश्य है योग का, योग से शरीर को स्वस्थ कैसे रखा जाए। मेन तो स्वस्थ जो जीवन शैली उसी के ऊपर आयुर्वेद में स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण,
0: जी जी जी जी,
1: स्वस्थ व्यक्ति के शरीर की रक्षा करना। तो स्वस्थ कैसे रहे उसमें हमारे आयुर्वेद के अंदर है स्वस्थ सम धातु सम मल सम दोष सम अग्नि सम धातु मल क्रिय प्रश्नात्मित। अगर आपके दोष सम है, आपके अग्नि सम है, आपके धातु सम है, आपके मल, तो इस अगर सभी क्रियाएं अगर सम है
0: जी
1: तो शरीर स्वस्थ माना जाता है। तो इसी को देखते हुए आदि अनादि काल से चला आ रहा है योग, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको पूरे वर्ल्ड में बता दिया कि योग क्या चीज है और उससे कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है।
0: जी जी।
1: और इस बार जो थीम है वृद्ध अवस्थाओं के लिए, जो वृद्ध जन है हमारे, वरिष्ठ जन नागरिक है, उनको सूक्ष्म व्यायाम के रूप में योग करना।
0: मैं अपना सवाल एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मेरे ख्याल से वो सवाल अब तक ठीक से कम्युनिकेट हो नहीं पाया। मैंने ये पूछा था कि आप ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं और ग्रामीण मरीज आपके पास आते होंगे, बहुत सारे जटिल रोगों से ग्रसित लोग आयुर्वेद में अपना समाधान ढूंढने आते होंगे, तो गाँव में किस तरह का योग के प्रति रुझान है या वहां पर क्या और करने की जरूरत आप मानते हैं?
1: बिल्कुल, योग के प्रति ग्रामीण क्षेत्र का बहुत अच्छा रुझान है
0: जी।
1: हमारे डिपार्टमेंट ने ग्रामीण क्षेत्र पे, हर ब्लॉक स्तर पे, ग्राम पंचायत स्तर पे योगा जो हमारे ट्रेनर है वो लगा रखे हैं।
0: अच्छा।
1: और वहाँ हमने देखने को, हमारे को देखने को मिल रहा है कि सुबह सुबह सभी योग करने आते हैं, बस छोटों से लेके बड़े तक, और उसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमारे औषधालय डिस्पेंसरी है, ब्लॉक स्तर पे चिकित्सालय हॉस्पिटल है, वहाँ भी आयुर्वेद के प्रति इतना समर्पित भाव है, तो उससे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है लोगों को।
0: तो कौन कौन सा योग की आप सलाह देंगे लोगों को कि एक जैसे मान ली बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इस साल हम बुजुर्गों पर ज्यादा हम फोकस कर रहे हैं, तो बुजुर्गों को क्या क्या योग करना चाहिए ताकि वो, जैसे मैडम ने बताया था अभी कि अनिद्रा डिमेंशिया इस तरह की परेशानियां उनके साथ हैं, तो इनसे वो निजात पा सकें?
1: जैसे प्रोटोकॉल के अंदर है,
0: अच्छा,
1: सरकार का जो प्रोटोकॉल है उसके अंदर सूक्ष्म व्यायाम है। सबसे पहले तो अपन इसको प्रार्थना के रूप से स्टार्ट करेंगे, फिर इसका ग्रीवा संचालन है, और उसके बाद नेक्स्ट ऊपर से टॉप से लेके बॉटम तक स्कंद, फिर कटी और फिर घुटने का संचालन, जो प्रोटोकॉल के अंदर जो आता है जो उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ। जिससे सूक्ष्म व्यायाम हो जाते हैं बुजुर्गों के लिए, ज्यादा हार्ड भी नहीं है, सूक्ष्म व्यायाम से उनके जो ज्वाइंट पेन है या किसी प्रकार का और भी मसल्स वो पेन है, तो वो इससे धीरे धीरे धीरे लाभ होने उनको लगता है।
0: तो ये किसी ट्रेनर के देखरेख में होना चाहिए, और वो ट्रेनर कहाँ मिल सकते हैं, किन कैसे संपर्क किया जा सकता है?
1: ट्रेनर हमारे जो आयुर्वेद डिस्पेंसरी है उसमें सरकार ने
0: जी
1: हर जगह ट्रेनर लगा रखे हैं, ग्राम पंचायत पे भी ट्रेनर मिल जाते हैं, वैसे लोकल ट्रेनर भी है, वो से लोग इसमें रुचि रखते हैं तो एक दूसरे से कम्युनिकेशन करके उसको लाभ ग्रामीण क्षेत्र में दे रहे हैं, और इसके प्रति बहुत बड़ा रुझान वर्तमान में योग के प्रति।
0: अगर कोई आदमी योग करना चाहता है, किसी की रुचि है, तो वो आपके आयुर्वेदिक जो चिकित्सालय हैं वहां जाकर और योग ट्रेनर के बारे में पता कर सकते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, सुबह का जो टाइम
0: आप उनको मतलब सलाह देंगे, उनको बताएंगे?
1: बिल्कुल।
0: अच्छा अच्छा, डॉक्टर सोनी साहब आप बताइए कि अभी जो हम ये योग मनाएंगे 21 तारीख को, पूरे हमारे जिले में भी मनाया जाएगा, संभाग में भी मनाया जाएगा, और ग्रामीण क्षेत्र भी उसमें सब आते हैं, तो क्या क्या गतिविधियां होने वाली हैं 21 तारीख को, किस तरह से कोटा शहर में मनाया जाएगा, मुख्य जो योग स्थल है वो कहाँ होगा, इस बारे में जानकारियां दीजिए।
2: जैसा कि कल 21 जून को
0: जी
2: योग दिवस का जो सभी ग्राम पंचायत स्तर पे, सभी ब्लॉक स्तर पे
0: जी
2: और जिला स्तर पे कार्यक्रम होगा, इसमें कोटा जिले में जो मुख्य कार्यक्रम है वो रिवर फ्रंट के सोरे घाट पे होगा, वेस्ट साइड में, और इसके अलावा कोटा की जो प्रमुख 11 स्थल है वहां पर भी योग आयोजित किया जाएगा।
0: अच्छा, वो 11 स्थल कौन कौन से होंगे सर?
2: इसमें बीत्रे कुंड है, गोदावरी धाम है, सेवन वंडर है, ऑक्सीजन पार्क है, शिवाजी पार्क है, और अपन का थेकड़ा काशीपुरी धाम है, और इसके अलावा के

0: एसटीए जग मंदिर है,
1: अच्छा,
0: इस जगह पर अपन की
1: यहाँ पर ये योग
0: योग रहेगा,
1: होगा।
0: ऑक्सीजन पार्क में रहेगा वो।
1: अच्छा, अगर मान लीजिए कोई आम आदमी यहाँ पर जाना चाहता है, इस योग की क्रिया में वो शामिल होना चाहता है, तो उसकी क्या व्यवस्थाएं होती हैं?
0: इसके लिए जैसे सुबह प्रातः 6 से 8 इसका योग कार्यक्रम रहेगा,
1: 21 तारीख को सवेरे 6 बजे से 8 बजे
0: आठ
1: तक,
0: बजे
1: ठीक
0: वो
1: है।
0: पहले जैसे अपनी जगह के लिए अगर वो 5:30 बजे अगर वहां पर आ जाए जल्दी, तो वो सुव्यवस्थित 6 बजे कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा, ऐसा रहेगा। और
1: अच्छा।
0: इसके लिए जहां भी समीपस्थ स्थल हो वहां पर वो जा सकते हैं। मुख्य जिला कार्यक्रम स्थल पर रिवर फ्रंट में सब निःशुल्क रहेगा, वहां पर वो आकर के योग अभ्यास कर सकते हैं।
1: अच्छा मैम, आप क्या बताना चाहेंगे, किस तारीख के लिए, क्या जानकारियां आपके पास हैं?
2: जैसा कि पवन जी सोनी ने बताया कि हमारी कोटा में अभी 2 दिन पहले कलेक्टर साहब की मीटिंग हुई थी, उसमें हमने एडीएम सिटी को नोडल अधिकारी बनाया है। सबसे नोडल अधिकारी हमारे डीडी साहब हैं, और प्रतिदिन जो हमारे 12 स्थान हमने चिन्हित किए हैं वहाँ हमने पूरी टीम लगाई हुई है।
1: अच्छा।
2: उसमें हमारे एक डॉक्टर है, एक योगा ट्रेनर है और एक नर्स है। तो प्रतिदिन वहाँ योगाभ्यास होगा, और जिसके भी जिस नागरिक के जो समीप का केंद्र है वो वहां जाके योगाभ्यास कर सकते हैं, और अगर वो रिवर फ्रंट पे आना चाहते हैं तो वहां पे भी वो उनका स्वागत है, वो आ सकते हैं, समय पर आए, समय पे स्थान पाए और योगाभ्यास
1: अच्छा,
2: प्रारंभ करें।
1: रिवर फ्रंट पर किस तरफ होगा, नयापुरा या कुनाड़ी की तरफ?
2: कुनाड़ी साइड में,
1: अच्छा उधर होगा।
2: शौर्य घाट पे।
1: अच्छा, उस दिन निःशुल्क रहेगा प्रवेश
2: निःशुल्क
1: लोगों का?
2: जी सर, जी सर,
1: अच्छा
2: निःशुल्क
1: अच्छा
2: रहेगा सभी के लिए।
1: वाह।
2: कोटा की आम जनता से मैं यही कहना चाहूंगी कि सभी समय पर आए, और स्वास्थ्य ही है सबसे बड़ा धन है, तो सभी आके समय पे योग करें, क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि आम जन बिना दवा के स्वस्थ हो, और स्वस्थ रहेगा तो वो अपने शतायु उम्र को प्राप्त करेगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं,
1: जी
2: धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन सबको जोड़ने की जो विद्या है वो योग है।
1: अच्छा, आप महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं,
2: जी सर।
1: तो हमने देखा है कि महिलाएं बहुत सारे जटिल रोगों से पीड़ित हो जाती हैं,
2: जी सर।
1: और उम्र भी ज्यादा नहीं होती, उसके बावजूद भी वो लोग, कभी थायराइड की परेशानी है, कभी बीपी हो गया उनको, कभी शुगर हो गया, कम उम्र में ये सारी चीजें बहुत देखने को मिल रही
2: जी
1: हैं।
2: सर।
1: तो आप योग के माध्यम से ऐसे रोगों से लड़ने के लिए या उनसे पार पाने के लिए महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी आप?
2: जी सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, और ये आज की ज्वलंत समस्या है महिलाओं के लिए, क्योंकि इनके कारण देखने में आया है कि महिलाओं में कम उम्र में इनफर्टिलिटी, जिसको भी हम बंधत्व कहते हैं,
1: जी जी
2: तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा दुख का कारण है। उसके लिए हमने महिलाओं को जो हम ट्रीटमेंट तो देते ही हैं, लेकिन उसके साथ में स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए उनको आहार विहार और योग, योग में जैसे कि आपने बताया थायराइड,
1: जी
2: क्योंकि बंध्यत्व में थायराइड भी एक कारण है, उसके लिए हम महिलाओं को उज्जायी प्राणायाम है, भुजंगासन है, सेतु बंधासन है, कटी चक्रासन है, इसी प्रकार से मधुमेह यानी शुगर,
1: जी
2: तो ये भी इसके कारण भी बंध्यत्व आता है। और जिस महिला में अगर शुगर है तो कई बार उसके बच्चे में भी शुगर आने के चांस होते हैं, तो हम चाहते हैं कि उसका बच्चा स्वस्थ हो, इसके लिए हम उसको शुगर से बचने के लिए जो भी कमर के खिंचाव के आसन है जिसमें पेनक्रियाज की मसाज होती है वो आसन हम उनको बताते हैं, जैसे वृक्षासन है और ये कटी चक्रासन है,
1: जी
2: तितली आसन है, इसी के साथ में एक बहुत बड़ी बीमारी है पीसीओडी।
1: अच्छा।
2: जो कि आजकल हर व्यक्ति आता है तो ये कहता है मुझे पीसीओडी, यानी कि रोगी
1: अच्छा।
2: भी इस नाम को जानता है। तो
1: हुँ।
2: इसमें क्या होता है कि पीरियड इरेगुलर होते हैं और आगे जाके उसको बंध्यत्व का शिकार होना पड़ता है। तो उसके लिए हमारे यहाँ पे जहाँ जिला चिकित्सालय तलवंडी है वहाँ पे नियमित योगा क्लास होती है 12 महीने।
1: अच्छा।
2: सुबह 7 से 8 योगा क्लास होती है वहाँ, हमारे एक महिला योग टीचर मैडम भी हैं, डॉक्टर और एक सर भी हैं।
1: जी।
2: तो उसमें पीसीओडी से बचाने के लिए जो हम जनरल योगासन है वो तो हम सभी को कराते हैं, लेकिन पर्टिकुलर जिस रोगी को, जिस रोग से वो पीड़ित है उसके हटके वो आसन भी कराते हैं। तो जैसे पीसीओडी है तो उसमें हम सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म प्राणायाम के अलावा वज्रासन में बिठाना, सेतु बंधासन, पवन मुक्तासन,
1: जी
2: और कटी चक्रासन, और दूसरा कि स्ट्रेस नहीं हो उसके लिए हम ध्यान मेडिटेशन भी करवाते हैं। और हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो

0: महिला है या जो बालिकाएं इस रोग से ग्रसित हैं और जो नियमित आ रही है उनको 3 महीने में इस रोग से निजात भी मिली है, इसका हमारे पास डाटा भी है।
1: अच्छा अच्छा, अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने। अच्छा मीना जी, आप बताइए कि हम अपने युवाओं में योग की आदत कैसे डाल सकते हैं, हमें स्कूल लेवल पर, घर के स्तर पर, यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए कि योग उनके जीवन का एक हिस्सा बन जाए, उन्हें बताना नहीं पड़ेगा आपको करना है। आपके मन में इसको लेकर क्या विचार आता है, क्या किया जाना चाहिए?
2: बिल्कुल, युवाओं में भी जैसे ये प्रोट चल रहा है अभी, और वैसे आजकल युवा भी मैंने देखा है स्टेडियम वगैरह में सुबह सुबह जाते हैं, योग जिम भी करते हैं, लेकिन जिम के साथ साथ योगा में भी के प्रति युवाओं का बहुत ज्यादा रुझान हो रहा है। तो इसके प्रति जो चेतना ही है पूरे देश में ही, पूरे देश में क्या पूरे संसार में मानो आप इस चीज को, तो ये बहुत बढ़िया चेतना चल रही है युवाओं में, और युवा इसको लगातार अपने स्वस्थ जीवन शैली के लिए अपना रहे।
1: अच्छा, आप कौन सा योग की आप जो है आप हमारे जो सुनने वाले हैं उनको बताना चाहेंगे कि उन्हें ऐसा करना चाहिए तो वो स्वस्थ रह सकते हैं या किन बीमारियों से वो दूर रह सकते हैं?
2: जैसे ताड़ासन है।
1: अच्छा,
2: ताड़ासन है, वृक्षासन, जो भी खड़े होकर जो किए जाने वाले,
1: इनसे क्या फायदा होता है ताड़ासन से?
2: ताड़ासन से अपना कॉन्सेंट्रेशन एक है, हाइट भी बढ़ती है।
1: अच्छा,
2: तो उससे और कॉन्सेंट्रेशन पे अपना बढ़ता है, उससे
1: ध्यान बढ़ता है, उससे
2: जिसकी हाइट कम है उसे हाइट का भी उसको बेनिफिट मिलता है।
1: तो आप जैसे सुल्तानपुर में वहाँ ब्लॉक में हैं आप, तो वहाँ पर आप किस तरह योग करवाएंगे, क्या रहेगा ग्रामीण क्षेत्र में व्यवस्थाएं किस तरह की रहेंगी?
2: हम ब्लॉक स्तर पे जो वहाँ का स्टेडियम है
1: जी,
2: ब्लॉक का, उसमें करवाएंगे।
1: अच्छा,
2: पूरी पंचायत समिति के माध्यम से सभी अधिकारी
1: कौन शामिल होंगे उनमें?
2: उसमें हमारे सब जनप्रतिनिधि है वहाँ के।
1: अच्छा,
2: ब्लॉक के स्तर जो एसडी वगैरह साहब है, वो प्रधान साहब है, सभी प्रशासनिक जो अधिकारी है वहाँ के और आम जन।
1: अच्छा,
2: वो सभी शामिल होंगे इसमें।
1: अच्छा सोनी जी, हम योग इतने सालों से मना रहे हैं और काफी चेतना भी, जिस तरह से भी आप सब लोग बता रहे हैं कि योग के प्रति काफी चेतना लोगों में आई है, आपको क्या लगता है कि इसे एक जन आंदोलन बना दिया जाए और योग के बारे में कहना नहीं पड़े कि भई यहाँ आज योग दिवस है, सब योग करने चलिए, वो जीवन का एक हिस्सा माना जाता है कि वो योग है, तो वो जिस तरह से आपकी स्वस्थ जीवन शैली का एक हिस्सा है वो चीजें उसमें शामिल है, तो योग में क्या क्या चीजें शामिल हैं और उसे किस तरह हम जन आंदोलन बना सकते हैं?
3: योग स्वस्थ जीवन शैली के लिए महत्वपूर्ण अंग बन चुका
1: जी,
3: है।
1: जी जी,
3: आज सभी योग के प्रति सचेत है, सभी योग करना चाहते हैं और बहुत से जो प्रातः काल सुबह प्रातः उद्यान में गार्डन में घूमने जाते हैं तो वहाँ पर बहुत से योग क्लब बने हुए हैं, वहाँ पर योगासन करते हैं। इसके अलावा अनुलोम प्राणायाम और भ्रामरी, इस तरह के जो विद्यार्थी है, जो विद्यार्थी क्या है कि अपनी एकाग्रता बढ़ाने के लिए और तनाव को कम करने के लिए इस तरह के योग करते हैं, और जितने भी जो आम जन है वो भी क्या नाम है अपने क्षमता अनुरूप योगासन करते हैं।
1: तो इसमें क्या क्या शामिल होता है योग में? यूं कहते हैं कि भाई ये कोई एक केवल व्यायाम नहीं है, ये इसमें कई चीजें शामिल होती हैं, तो वो क्या क्या अंग हैं योग के, इसके बारे में बताएं?
3: योग के अष्टांग योग बताए गए।
1: अच्छा,
3: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, समाधि, तो इस तरह से अष्टांग योग है। योग क्या है कि योग कर्मसु कौशलम।
1: अच्छा,
3: और योग समत्व उच्चते, शरीर और मन और इंद्रियों का योग ही जीवन में अपन महत्वपूर्ण होता है, उससे व्यक्ति स्वस्थ होता है, इसलिए स्वस्थ हेल्दी रहने के लिए योग का महत्वपूर्ण करना आवश्यक है।
1: डॉक्टर अंजना जी, आप बताएं इसमें कि एक संपूर्ण योग किस तरह होता है, उसके लिए हमें किस किस तरह से मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से क्या क्या करना होता है इसमें?
0: जी सर, क्योंकि आजकल ये देखने में आया है कि जब हम आपस में बात करते हैं तो सब कहते हैं कि योग तो हम करते हैं, तो हमें उनको ये बताना पड़ता है कि ये योग नहीं है।
1: अच्छा,
0: मतलब व्यायाम कर लिया आपने, हाथ पैर हिला लिए, ये योग नहीं है, है ना? योग व्यायाम नहीं होके स्वस्थ संतुलित और सुखी जीवन जीने की कला है, ये हम उनको बताते हैं कि इसके लिए आपको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? पहले शरीर का वार्म अप होना चाहिए।
1: अच्छा।
0: ऐसा नहीं है कि सीधा आप आसन पे आ गए। इसके लिए हमें, क्योंकि आम आदमी ये बोलता है कि साहब मैं ये करता हूँ तो मैं योग करता हूँ, तो उन्हें हम बता दें कि योग ऐसे नहीं करना, और योग के साथ साथ आपको अपनी लाइफ स्टाइल भी सही करनी है। सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, एक गिलास पानी पीजिए, थोड़ा टहलिए, उसके बाद में आपकी

0: जो भी दिनचर्या है वो करके फिर आप खुली हवा में जहां तक हो सके, अगर छत है तो छत पे या पास में पार्क है, गार्डन है, ग्रीनरी है, वहां योगा मैट बिछाइए, क्योंकि कभी भी बिना योगा मैट के, दरी चटाई के योगाभ्यास नहीं करना चाहिए।
1: अच्छा, योगा मैट आती है अलग से?
0: योगा मैट आती है।
1: अच्छा,
0: अगर आपके पास योगा मैट नहीं है तो हमारे घर में दरी चद्दर होता है, तो उसको बिछा के योग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जितनी भी योग से एनर्जी लेते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण अगर हम कोई चीज नीचे नहीं बिछाएंगे तो हमारी पृथ्वी पे जाएगी, वो हमें हमारे अंदर समाहित नहीं होगी। तो एक तो ये उनको बताना है,
1: अच्छा,
0: और फिर उनको ये भी बताना है कि अगर आप नियमित योग करेंगे, क्योंकि एक दिन के योग करने से तो आपको फायदा होगा नहीं, तो आपको नियमित योग करना है। और फिर उनको योग के बारे में जानकारी बताते हैं कि योग करने से आपको क्या क्या फायदा होगा। जैसे कि आप नियमित योग करेंगे तो आपके जितने भी जटिल रोग हैं, जैसे हमारे यहाँ कहा गया है गठिया है, शुगर है, बीपी है, थायराइड है,
1: जी,
0: अवसाद है, तो उसके लिए हम उनको बताते हैं कि अगर आप नियमित योग करेंगे तो आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, जोड़ लचीले बनेंगे, मजबूत होंगे, आपकी जो श्वास और हृदय की गति है
1: जी,
0: उसको बल मिलेगा, हमारा जो पाचन तंत्र है वो मजबूत होगा,
1: वाह,
0: आपको निद्रा अच्छी आएगी, और आप समय पे भोजन करो, समय पे उठो, समय पे सो। तो ये दिनचर्या जीवन शैली भी एक योग का पार्ट है। तो वो योग करेंगे उसको 100% फायदा होगा। और मैं क्योंकि चिकित्सक भी हूँ
1: जी जी
0: और
1: जी
0: मेरे यहाँ योग भी होता है, मैं करवाती भी हूँ, तो ऐसे जटिल रोगी, एक उदाहरण है अपने यहाँ कोटा के पास में केशवराय पाटन है, वहां का एक रोगी है, वो उसके परिवार में आनुवंशिक की गठिया है सर,
1: ओहो
0: उसको हमने योगा सिखाया 3 महीने तक,
1: जी
0: तो वो योग का इतना फैन हो गया कि उनके जयपुर में दवाई चल रही थी तो सर ने उनको बुलाया।
1: अच्छा,
0: जब वो अपने पैरों से सीढ़ी चढ़ के उनके पास गया, उन्होंने कैमरे में देखा तो उन्होंने बताया कि साहब मैंने तो कोटा में योग किया है,
1: अच्छा,
0: और आज वो योग का इतना फैन है कि अपने गांव में निशुल्क सभी को योग सिखाता है। तो योग के तो आश्चर्यजनक फायदे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी यही चाहते हैं
1: जी,
0: कि हमारे देश में जागरूकता हो और छोटे बच्चे, युवा और वृद्ध सभी योग करें, क्योंकि सुबह की वॉक हर बीमारी के खिलाफ सबसे सस्ती दवा योग। फिट है तो हिट है।
1: अच्छा मीना जी, आप बताइए योग में खान पान का किस तरह से ध्यान रखा जाता है, क्या खाना चाहिए, योग करने से पहले कुछ खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, किस तरह करना चाहिए योग?
2: सर, योग करने से पहले
1: जी
2: हल्का अल्पार आप ले सकते हो, वैसे तो
1: अच्छा
2: खाली पेट ही होता है, फिर
1: अच्छा
2: एक आपके कपड़े लूज हो, कॉटन के कपड़े हो, तो उससे क्या आपको योग करने में सुविधा रहेगी। और खान पान अल्पार आप ले सकते हो, लेना चाहिए तो वैसा नहीं पर ले सकते हो, ये खान पान की विशेषता
1: अच्छा
2: है।
1: सोनी जी, आप बताइए कि आज की परिचर्चा में क्या संदेश अपने श्रोताओं को दे सकते हैं?
3: आज की परिचर्चा
1: जी,
3: कल के जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है,
1: जी
3: सभी उसमें आमंत्रित है, सभी अपने समीपस्थ योग स्थलों पे जाएं, और कोटा जिला के जो मुख्य कार्यक्रम है
1: जी
3: वहाँ पर रिवर फ्रंट में वहाँ पर आकर के समय पर उपस्थित होकर के और योग क्रियाएं करें। वो सामूहिक योगाभ्यास से जो जो उनको भविष्य के लिए भी एक प्रेरणा मिलेगी, और वो नियमित योगा करेंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे।
1: जी, तो श्रोताओं ये थी आज की हमारी परिचर्चा, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। हमारे जो वृद्ध हैं, जो बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ जन हैं, वो हमारे लिए अनुभव का खजाना है और हमारे लिए एक बरगद की तरह छत्र छाया है, तो उनका स्वस्थ रहना पूरे परिवार के लिए और समाज के लिए बहुत जरूरी है। तो आज की इस परिचर्चा में हमने कल यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो 12वां योग दिवस मनाया जाएगा और इसका मुख्य समारोह कलकत्ता में आयोजित किया जाएगा, इसके संबंध में कोटा में किस तरह से आयोजन हो रहे हैं कल 21 जून को, इसके बारे में हमने चर्चा की। आप सबसे हमारा अनुरोध है कि जहां भी आप योग करने जाएं जरूर जाएं, क्योंकि इसमें भागीदारी करना ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि और गर्व का विषय है। तो इसके लिए हम सबको ज्यादा से ज्यादा लोगों को योग करना चाहिए। और इस परिचर्चा में जो आज भाग लेने के लिए हमारे स्टूडियो में पधारे डॉक्टर अंजना शर्मा जी, जो अतिरिक्त निदेशक हैं कोटा संभाग आयुर्वेद विभाग में, आप और डॉक्टर पवन सोनी जी जो सहायक निदेशक हैं आयुर्वेदिक विभाग जिला कोटा में, डॉक्टर हरिओम मीणा जी मेडिकल ऑफिसर ब्लॉक आयुष चिकित्सालय सुल्तानपुर में, आप तीनों का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: か。
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: अभी आप सुन रहे थे परिचर्चा, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। इस परिचर्चा में प्रतिभागी थे डॉक्टर अंजना शर्मा, डॉक्टर हरिओम मीणा और पवन सोनी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे रामनारायण मीणा।
3: अब दुनिया के किसी भी हिस्से में सुनिए आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
4: ओ ढोला जी, ओ पिव जी, थोड़ी सी ना जा दे।
3: प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर गूंज रहा है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन एआईआर। इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद रेडियो आइकन का चुनाव करिए और अब आकाशवाणी कोटा को अपने मोबाइल पर सुनने का आनंद लीजिए।

0: अपनी बोली, अपना संगीत, कभी भी, कहीं भी, आकाशवाणी कोटा के चंबल चैनल पर।
1: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
2: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद यानी 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रपट संगीत। उसके पश्चात 8:45 पर आप हमारे चैनल से सुन दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार संध्या, और फिर रात्रि 9:00 से 10:00 तक आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम, और 11:05 पर दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में और फिर अंग्रेजी में समाचार। 11:10 पर आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला, जिसकी थीम होगी संस्कृति। यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। FM 102, FM 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 KHz पर, साथ ही न्यूज जोन AIR एप पर। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। आइए श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म मैंने प्यार किया से सुनिए। आवाज है लता मंगेशकर की, शब्द असद भोपाली के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अभिजीत और अलका याग्निक के स्वरों में अनवर सागर का लिखा गीत आपने सुना। संगीत जतिन ललित का। फिल्म का नाम खिलाड़ी।

कुमार सानू की आवाज में फिल्म परदेस का ये गीत आपने सुना। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत दिया नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं, यह प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से, FM 102, FM 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। आइए श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं अगली फिल्म धड़कन का गीत। आवाजें हैं अलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार सानू की। गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म बाजीगर से सुनिए, आशा भोंसले और विनोद राठौड़ की आवाजों में, शब्द जफर गोरखपुरी के और संगीत अनु मलिक का।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं, FM 102, FM 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करें।

0: नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देशर प्रधानमंत्री भाव्य दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
1: यह मोर आंतरिक कामना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रूपये जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
3: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं। और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है, आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
0: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: हमेशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं

0: को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2,500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1,500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
2: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेइचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
3: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल

0: मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
1: We have been able to achieve that in the first...
2: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया के सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
0: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
3: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
0: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। ये फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम की खबरों के कुछ ही घंटों बाद हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: FM 102, FM 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 KHz पर यह प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। आयुष श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

0: एक फिल्म संगीत के टेलीफोनिक प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आप सभी के फोन कॉल स्वीकार करके एक कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत करने के लिए मैं हूं राजेश महावर और अब हाजिर हूं पहले फोन कॉल के साथ। नमस्कार, कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी में स्वागत करते हैं आपका।
1: जी नमस्कार सर,
0: नाम बताएं।
1: जी मैं अर्जुन जाट बोल रहा हूँ बूंदी से।
0: अर्जुन जाट जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: जी बूंदी जिले से।
0: अच्छा, क्या करते हैं अर्जुन जी?
1: जी मैं कुछ नहीं करता, करते रहता हूँ दिव्यांगों को।
0: अच्छा अच्छा, लेकिन कुछ तो करते होंगे आप, गीत संगीत सुनना?
1: बस एक यही शौक है संगीत सुनने का ही।
0: गीत संगीत का है ना?
1: जी।
0: अच्छा अच्छा, अर्जुन जी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है आपने?
1: जी पढ़ाई तो मैंने 5वीं पास की।
0: 5वीं पास हो गई आपकी?
1: जी।
0: अच्छा अच्छा, आप बता रहे हैं कि आप, आपकी दृष्टि बाधित हैं आप, तो ये क्या जन्म से या फिर बाद में कोई हादसा हुआ?
1: जी ये 2016 में हुई है, अपने आप दिखना बंद हो गया एक ही रात
0: में। एक ही रात में?
1: जी।
0: तो कारण इसका पता लगाया?
1: जी दिखाया था, मैंने दिल्ली तक इलाज करवा लिया तो कुछ समझ में नहीं आया, बीमारी नहीं आई आंखों में,
0: कोई पता नहीं लगा।
1: जी
0: तो फिर अर्जुन जी किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं आप?
1: निकाल रहे हैं ऐसे टाइम पास करके।
0: ठीक है, परिवार का सहयोग लीजिएगा है ना, और स्नेह बांटिएगा, अच्छी अच्छी बातें सुन आप सकते हैं तो उनका विस्तार कीजिएगा। ठीक है, और जो ये कोई इस तरह की समस्या नहीं है, ऐसा कहते हैं कि ईश्वर कुछ रास्ते बंद करता है तो अनेक रास्ते खोल देता है ना। बहुत से ऐसे उदाहरण होंगे आपके सामने कि इस तरह के जो लोग हैं जिनकी दृष्टि ने उनका साथ नहीं दिया, उन्होंने भी बहुत नाम कमाया है ना। हाँ जी, पुरानी बातें करें तो भी हम जानते हैं कई महात्माओं को, और हाल ही की बात करें इन्हीं समय की, तो फिर आपने रविंद्र जैन का नाम तो सुना ही होगा।
1: जी, जी, जी।
0: है ना साहब, तो आप उसी तरह से अपनी महानता प्राप्त करें और अपना ज्ञान अर्जन करें।
1: रविंद्र जैन जी तो बहुत बड़े संगीतकार हैं।
0: हाँ जी, बहुत बड़े संगीतकार हैं, और केवल संगीत के क्षेत्र में नहीं, अनेक क्षेत्रों में काम किया जा सकता है।
1: हाँ जी।
0: ठीक है, तो अर्जुन जी बताइए, आप चंबल चैनल पर आपने फोन किया, कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, कौन सा गीत आप सुनेंगे?
1: पिक्चर है साथी और गाना है जिंदगी की तलाश में हम,
0: मौत के कितने पास आ गए।
1: जी
0: तो ये गाना आपको पसंद है?
1: जी मेरा फेवरेट गाना है ये।
0: अच्छा, कब से फेवरेट हुआ ये गाना?
1: ये तब से, पहली बार सुना था तब से ही।
0: अच्छा अच्छा अच्छा जी, चंबल चैनल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे अर्जुन जी?
1: जी चंबल चैनल से तो बहुत अच्छी सीखें मिलती है हमको, पूरी जानकारी मिलती रहती है।
0: अर्जुन
1: चंबल
0: जी
1: ये तो क्या है ना, पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है चंबल चैनल तो।
0: क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, आपने कितना अंतराल रखा, पिछली बार कब कॉल किया था?
1: मैंने कम से कम 4 से 5 महीने के आसपास हो गए सर।
0: तो अर्जुन जी हम तो केवल 2 महीने का आग्रह करते हैं, क्या आप नाराज हो गए हमसे?
1: नहीं नहीं, नाराज नहीं हुए।
0: ठीक है ठीक है, अर्जुन जी आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत, और आप अपने जीवन में प्रसन्नता के हर रास्ते अपने साथ में अपनाने का प्रयास कीजिएगा, ऐसी शुभकामनाएं हैं हमारी।
1: जी
0: बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए।
1: धन्यवाद सर।

0: रशीद खान फ्रॉम तालेड़ा।
1: रशीद खान जी, स्वागत करते हैं आपका, कैसे हैं?
0: बस दुआएं आपकी कर रहे हैं, टाइम पास। रिटायरमेंट कर्मचारी है राजस्थान रोडवेज से।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
0: टाइम पास होता नहीं है, इधर उधर घूमते रहते हैं, क्या करें। आपका प्रोग्राम सुनते रहते हैं, इसमें गाने वाला प्रोग्राम ज्यादा सुनता हूँ मैं।
1: जी,
0: दिल
1: जी,
0: की
1: जी।
0: धड़कन में मजा आया, दिल का मजा आया था।
1: क्या बात है, क्या बात है। तो उसका मतलब गाने ही सुनने का आपका हमेशा शौक रहा है?
0: हाँ, सन 64 से सुन रहे साहब। आप तो रामनारायण जी मिलते रहते हैं, आप तो शायद पहली दफा है, महावर साहब है क्या?
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, राजेश महावर।
0: आपसे भी एक बार होगी बोला था, सन 64 से ही है, मैं तो 75 साल का हूँ।
1: वाह,
0: तो खूब सुने,
1: बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत।
0: आप तो गाने वाने से थोड़ा दिल को सुकून वकून मिलता है, अच्छे अच्छे पुराने गाने आते हैं ना।
1: हाँ जी,
0: 9 बजे से 11 बजे तक, 8 से 9 से वो शायद तकी सहेलियन के प्रोग्राम आते हैं आपके, अच्छे अच्छे।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप,
0: टाइम पास कर लेते हैं, क्या करें।
1: और जब आप रोडवेज चलाते थे, आप ड्राइवर थे?
0: कंडक्टर था, कोटा

0: रिजर्वेशन काउंटर पे बैठता था।
1: अच्छा अच्छा।
0: पहले फर्स्ट टाइम कंडक्टर था।
1: अच्छा अच्छा।
0: दो तीन जयपुर जोधपुर के ट्रांसफर होते रहते थे
1: जी।
0: करीब 11-15 साल तक रिजर्वेशन काउंटर पे कोटा बैठा करता था पुराना बस स्टैंड पे सर।
1: अच्छा,
0: बढ़िया जान पहचान थी, अच्छे अच्छे।
1: तो लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाने में आप भी सहयोगी रहे हैं। तो कब ज्वाइन किया था आपने रोडवेज? 1975 में ज्वाइन किया था।
0: 2011 में रिटायर हुआ था।
1: 2011 में रिटायर हो गए आप। कैसा रहा आपका कामकाज का वक्त?
0: बस मजा आया, ईमानदारी से काम करा, इसलिए 36 साल निकल गए रोडवेज में।
1: बहुत,
0: वरना एक महीना दो महीने में नहीं निकाल सकता। खतरे का डिपार्टमेंट
1: खतरे का डिपार्टमेंट ऐसे कैसे
0: बनाते बनाते चलना पड़ता है। टिकट आपको खड़ी रख के बनाओ तो टाइम पे नहीं पहुंच पाती थी। बस ये
1: खतरा खतरा
0: पहले
1: रहता है।
0: बाल पेन अभी चलते हैं, पहले पेन से चलती थी वो।
1: जी जी जी।
0: वो नट टूट जाया करता था जल्दी हड़बड़ाहट के अंदर।
1: बिल्कुल,
0: पेंसिल चीरते थे फिर टिकट बनाते थे।
1: तो चलती बस में ऐसे लिख करके टिकट बनाना है तो बहुत ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको।
0: बनाना पड़ता था टिकट,
1: है ना
0: साहब? आजकल तो मशीन वाले आगे खटखट कर रहे, तो बहुत सारे टिकट बना लो।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको पहली बार कितनी तकलीफ आई होगी टिकट बनाने में चलती बस में?
0: बहुत आई साहब, ऊपर नीचे बस आती थी, सवारी कंप्लीट नहीं होती थी, ऊपर नीचे चलती थी बसें।
1: जी
0: अभी
1: जी,
0: तो सवारियां ढूंढना पड़ती है।
1: क्योंकि अभी साधन और भी हो गए ना। अच्छा, आपने एक जिक्र किया कि ईमानदारी से हमने काम किया
0: जी।
1: इस ईमानदारी का कुछ वर्णन आप करेंगे?
0: अब ईमानदारी का तो यही है, हम तो पूरे
1: जी।
0: हमारे फादर हमसे कहते थे बचपन में,
1: हाँ जी,
0: कि नौकरी दांतों से दबा के रखना भैया।
1: बिल्कुल,
0: ये तो 110 रुपए में लगे थे।
1: अरे वाह, क्या बात है।
0: 27,000 में रिटायरमेंट वालों को। पहले तो कवे की कहानी में नौकरी लगी साहब, इतनी नौकरी थी, इतनी नौकरी में 10 जगह नौकरी कर ली। प्रेम चपड़ा थी
1: जी,
0: पटवारी दे गया, मजे MSW दे गया 12 में, पर कंडक्टरी शौक था, हम क्या करें।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: मतलब नौकरियां लगा रहा करते थे लोग।
1: बिल्कुल बिल्कुल, कहने को बहुत कुछ है आपके पास, है ना?
0: हाँ, वो क्या करें, कभी मिलो, लड्डू बाटी खिलाऊं।
1: क्या बात है।
0: दाल हमारी वाइफ ऐसी बनाती है
1: जी,
0: जब मेरे ख्याल से मैं तोवा बड़ा बोल नहीं बोल सकता।
1: बहुत अच्छी बात है, आपके घर में ये स्वाद हमेशा बना रहे रशीद जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और अभी बताइए, इस कार्यक्रम में कौन सा स्वाद हम आप तक पहुँचाए?
0: अब मेरे, मैं जहाँ बैठता हूँ दो चार का नाम ले दूंगा। मेरे पड़ोस के अंदर महावीर जी,
1: हाँ,
0: सेन है, मुकेश सेन है, मैं टाइम पास मेरा डेरी पे होता हूँ उनके।
1: जी, बहुत सुंदर।
0: टाइम पास हो जाता है उनके साथ में, गाना सुनता हूँ, सुख के साथ ही, दुख में ना कोई।
1: क्या बात,
0: सब में है, अपन तो कण कण में भगवान है।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया गाना।
0: वो गाना उनको सुनाया था, उनकी फैमिली को वहाँ बैठता रहता हूँ उनकी डेरी पे रात को।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
0: मैं तो गाना सुनता हूँ तो हार्ट के हिसाब से सुनता हूँ।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपने जो बातें कही वो लोगों के सुनने के लिए है। और भारत में जो अनेकता के बावजूद भी जो एकता है उसका भी प्रमाण
0: मजा आ जाए। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, सब बेकार है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: सब अपना अपने मतलब के साथ ही, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, काटा कूटा कर रहे हैं। मैं अपना तो पड़ोसी रिश्तेदार है साहब, है ना
1: जी,
0: कौन सी समाज का।
1: बहुत
0: सुंदर।
1: रशीद जी, ये रहा आपकी पसंद का गाना, सुनिए आप अपने दोस्तों के साथ, सुख के सब साथी। बहुत शुक्रिया।

0: नमस्कार, हेलो, आकाशवाणी कार्यक्रम में स्वागत करते हैं आपका।
1: हाँ नमस्कार जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन साहब?
1: बड़वा से मंजूर अली बोल रहा हूँ।
0: मंजूर अली जी, कैसे हैं?
1: हाँ बढ़िया है सब, ठीक है।
0: क्या बात है, क्या बात है। आपको सुनकर अच्छा लगता है। बताइए कैसा चल रहा है इस मौसम?

0: मौसम में कैसा काम चल रहा है?
1: हाँ, मौसम में कर रहे हैं खेती बाड़ी का काम, तैयारी कर रहे हैं, मतलब सोयाबीन मक्का वगैरह की बुआई की तैयारी चल रही है।
0: अच्छा,
1: खेतों को तैयार कर रहे हैं।
0: अच्छा
1: अब बारिश हो जाएगी तो बुआई चालू होगी फिर।
0: बिल्कुल। अच्छा, ट्रैक्टर वगैरह अपने ही पास है या किराए पर लिए जाते हैं?
1: नहीं, किराए पे
0: लिए जाते हैं।
1: अपने
0: अच्छा,
1: नहीं है।
0: हाँ,
1: किराए से अगवा लेते हैं किसी से।
0: अच्छा, जमीन कितनी है?
1: जमीन है अपने पास 27 बीघा।
0: 27 बीघा। और कितना वक्त लग जाता है ट्रैक्टर से उसकी कार्य करने में?
1: और ट्रैक्टर से तो बहुत कम समय में हो जाता है, मतलब 2 घंटे में हाँक देता है वो तो पूरी
0: पूरा।
1: जमीन। हाँ
0: अच्छा, आपको वो वक्त याद है जब आप बैलों से भी जुताई किया करते हो?
1: हाँ, बैलों से करते थे ना, हमारे पिताजी करते थे पहले।
0: अच्छा,
1: हमने तो नहीं की।
0: अच्छा,
1: लेकिन पिताजी करते थे।
0: अच्छा, तो वो
1: और देखा था, बैलगाड़ी देखी थी, बैल देखे थे, वो कूली वगैरह उससे ओढ़ते थे, हाँकते थे।
0: उसमें समय बहुत लगता था।
1: समय बहुत लगता था।
0: हाँ, लेकिन ऐसा कहते हैं कि बैलों से जब जुताई की जाती थी तब फसलों की बात कुछ और होती थी।
1: हाँ, वो तो पहले की तो फसल ही अलग थी, वो शुद्ध खाना मिलता था, शुद्ध देसी खाद का अनाज होते थे, ज्वार होती थी, बाजरा होता था,
0: है ना,
1: चने होते थे, तो वो तो उसका तो मजा ही अलग था।
0: हाँ,
1: और बैलों से जो हकाई जुताई होती थी उससे अच्छा वो मिलता था, मतलब खेती भी अच्छी रहती थी उससे।
0: खेती भी अच्छी होती थी, है ना, और
1: उपजाऊ क्षमता अच्छी रहती थी उससे।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: हाँ,
0: तो आप इस बात को महसूस करते हैं कि काश वैसा ही होता।
1: हाँ, वो समय वैसा ही होता तो बढ़िया रहता, लेकिन अब समय के अनुसार बदलना भी पड़ता है।
0: हाँ जी, समय के अनुसार बदलना पड़ता है जी। पहले बैलों के खुर जमीन पर चला करते थे, अब ट्रैक्टर के टायर जो रबड़ वाले होते हैं वो उसमें चलते हैं, तो इन सबको बहुत फर्क पड़ता है ना?
1: फर्क पड़ता है उससे।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ,
0: तो आपने तैयारी करी ही ली है, अब आपको इंतजार है, प्रतीक्षा है कि कब मेघ आए और बारिश बरसाएं।
1: हाँ, बारिश हो जाए अब तो,
0: है ना। जी, तो फिर गीतों की कौन सी बारिश करें?
1: और ये मतलब ऐसा ही गीत सुना दो कोई आपकी पसंद का आज।
0: ऐसा?
1: हाँ,
0: चलो ठीक
1: है।
0: जो
1: बारिश हो जाए, इंद्र राजा इंद्र देव प्रसन्न हो जाए और बारिश हो जाए अपने खेतों के अंदर, हरियाली छा जाए।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी, ठीक है। तो फिर सुनिए ये गाना हमारी ओर से, आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। है ना जी, ये रहा आपके लिए हमारी पसंद का गाना।
1: हाँ,
0: बहुत धन्यवाद मंजूर अली जी। हाँ जी।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार, कौन साहब?
1: इशाक मोहम्मद मंसूरी।
0: इशाक जी कैसे हैं?
1: बहुत धीरे साहब बोलता है, ठीक है। मुझे
0: अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। चलिए इशाक जी, अपनी जगह का नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: सिसवाली के पास 3 किलोमीटर है।
0: तो आप जब सिसवाली उतरते हैं तो मोटरसाइकिल से जाते हैं कहीं से? जी अच्छा, ये बताइए कि रेडियो आप कब से सुन रहे हैं इशाक जी?
1: तो मैं बचपन से सुनता हूँ रेडियो सब, बजेशन क्रॉस से मैं ही बजाने लग गया।
0: अच्छा,
1: तो रेडियो था पहले बाजीते बोले भाई साहब की दुकान थी ना, रेडियो चलता था।
0: बहुत बढ़िया। अच्छा, अब जो जमाना बदल गया है, इतने सारे मनोरंजन के साधन हो गए, फिर भी रेडियो आप सुन रहे हैं?
1: रेडियो अच्छा लगता है सर, मोबाइल अभी लिया है।
0: अच्छा, अब जब रेडियो मोबाइल में भी आने लगा है तो कैसा लगा?
1: कभी कभी सही नहीं बोलता है ना, उतना जानकारी नहीं लगाने जैसे लगा, जैसे लगा मैं पूछ जाता हूँ।
0: अच्छा, लेकिन रेडियो है अभी भी आपके पास?
1: हाँ, रेडियो है ना, सब ऑनलाइन मंगवाया था 3-4 साल पहले।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया। तो कैसा चल रहा है रेडियो?
1: ठीक चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है,
0: है ना? ठीक है जी। तो ऑनलाइन रेडियो जो आपने मंगाया है उसको आप सुनते हैं, कितने सेल लगते हैं उसमें, या चार्जिंग वाला है?
1: नहीं, 2 सेल वाला है सर, वो लाइट भी है, तो बैटरी सिस्टम भी है, बैटरी भी है, जो चार्ज करती है।
0: हाँ हाँ, अच्छा। एक समय था जब रेडियो लेकर के गलियों में निकल जाते थे, हाथ में रेडियो होता था।
1: क्या दिव्याओं में मार्केट में जो काम करने जाते थे, जो बहुत रेडियो थे हमारे गांव में सर, हमारा एक चाचा था जो जंगल में जाता था काम वाम करने, तो साथ में जाता।
0: अब आप बताइए कौन सा गाना लगाएं?
1: फिल्म बेताब का लगा देना सर।
0: कौन सा गाना?
1: जब हमारे बच्चे बहुत दिनों से कह रही थी, हमारी इनकी पोतियां ना लाडियां, वो रोज कहती थी मैं भी दुकान पे आ गया था, तो वहाँ चला था बाल जल्दी चल गया था। फिल्म आए एक ठंडो है बच्चा वारिस पोता, वारिस वो क्या नाम है, नाम है।
0: कोई नहीं, आप आकाशवाणी को अपने मन में रखिएगा, याद में रखिएगा,
1: है ना? तो लेने के चलते बाबा, कब लगाओगे, कब लगाओगे, तो बात करो, मैं करेंगे बात।
0: सही बात है। और अब वो गाना सुनिए जब आपने अपने बचपन में सुना होगा, ये रहा गाना आपके लिए फिल्म बेताब से।
1: हाँ ठीक है सर, धन्यवाद।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।

0: हेलो, हमने कहा जी नमस्कार।
1: जी हाँ नमस्कार
0: कौन साहब?
1: जी, मैं दशरथ सेन बोल रहा हूँ। बस स्टैंड नाटाराम, जिला मंदसौर, पशुपतिनाथ की नगरी, मालवा क्षेत्र।
0: आपने तो इतने शब्दों में हमें पुरानी याद ताजा करा दी।
1: जी
0: जी दशरथ जी, कैसे हैं?
1: बढ़िया है, मस्त है, बैठे हैं दुकान पर और पानी का इंतजार है। इंद्र राजा की घर से किसान भाइयों को काफी इंतजार हो रहा है कि हमारी जो बरसात होने का जो समय चल रहा है, वो ऐसा सुनने में आया है कि जुलाई में ही हमारे पास ये बहुमूल्य हो पाएगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और अब जुलाई भी आने को ही है ना जी।
1: बिल्कुल नजदीक है, 18-20 तारीख तो हो गई है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और अब ये बताएं कि वो मेघ तो बरस ही जाएगा, लेकिन लेकिन इस मेघ से कौन सी वर्षा करें?
1: जी हाँ, मौसम के हिसाब से ही आकाशवाणी में गीत सुने जाएंगे।
0: अच्छा।

0: आज एक फिल्म याद आ रही है। वैसे भी हमारे आकाशवाणी मौसम के साथ ही गीत संगीत का हमारे लिए समय समय के साथ प्रसारित करती है। कुछ शुद्ध संगीत निकल के आता है, कभी पुराने गीत निकल के आते हैं, कभी समसामयिक जो बातें रहते हैं वो निकल के आती हैं। कुछ अच्छी बातें, ज्ञानवर्धक बातें घर बैठे मिलती हैं आकाशवाणी के जरिए।
1: क्या बात है। तो फिर आज दशरथ जी क्या सुनना चाहते हैं?
0: अंधा कानून ये फिल्म का नाम है
1: और गाना
0: मौसम का तकाजा है, एसपी बालसुब्रमण्यम और आशा भोसले की आवाज।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है साहब, क्या बात है। आपने बहुत ही सुरीला बोला है और उतना ही सुरीला ये भी गाना है।
0: जी बिल्कुल, और सुरीला बोलना तो हमारा भी अनुभव रहा है कि आकाशवाणी से जुड़े हुए आपको अगर 20 साल हो गए हैं, अगर अभी तक आपको बोलना सीखा नहीं है तो क्या सीखा है।
1: सही कह रहे हैं आप। तो फिर
0: हम तो लोगों से उनके हाव भाव से जान जाते हैं कि ये किस टाइप के इंसान है, क्या इनको नए गाने पसंद। अगर हम किसी पुराने बुजुर्ग को नए गाने सुनाएंगे तो वो क्या खुश रहेंगे, या फिर नई पीढ़ी की कुछ जनरेशन, कोई लड़का आज का जो बेटा है बाल दाढ़ी चल रही है उसकी, अगर उसको वो 1966 का फिल्म का गाना सुनाएंगे बाहर फूल बरसा हो मेरा महबूब आया, तो वो क्या सुनेगा।
1: लेकिन दशरथ जी वाकई में एक बात तो हम कहेंगे आपसे कि आप तो जानते हैं जो कोटा शहर है वो अब शिक्षा नगरी भी है, देश दुनिया से यहाँ पढ़ने आते हैं बच्चे। एक बालक का जब फोन आता है तब वो पुराने गाने सुनता है और हमने हमने यही कहा उन्हें कि आपको ये गाने क्यों पसंद हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे परिवार में ऐसे ही गाने चलते हैं और हमें ये गाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो परिवार के संस्कार भी हमारे साथ होते हैं, है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ दिन पहले एक बच्चा आया था तो हमारे जो शर्ट है उस शर्ट पर ये कभी लाल कभी काली के कलर के धब्बे लगे हुए थे, तो उन्होंने मुझे देखकर उन्होंने गाना बोला कि रंग भरे मौसम से रंग चुरा के। मैंने कहा कि तो मैंने कहा कि भैया आपकी उम्र बेटा जी आपकी उम्र तो बहुत कम है, 12 साल की उम्र है आपकी, और आपने ये गाना कहाँ से सीखा। तो उन्होंने बोला कि गाना सीखा नहीं है, आपकी दुकान पर जब भी आते हैं तो हमें हमारी जनरेशन के हिसाब से आपके यहाँ पर गाने चलते हैं, कभी नए गाने मिलते हैं कभी पुराने मिलते हैं।
1: जी जी जी, क्या बात है क्या बात है।
0: पर आकाशवाणी ने हमें बहुत कुछ दिखाया है, बहुत कुछ पाया है, लेकिन ऐसा समझ में आता है कि दुनिया में भी इधर उधर जाते हैं तो कुछ सीखने को जरूर मिलता है।
1: जी जी जी, ये दुनिया ही बड़ी सबसे बड़ी किताब है। और अब आप ये बताएं दशरथ जी, मौसम का तकाजा ही रहने दें या रंगों की कुछ बात करें।
0: नहीं नहीं, मौसम का तकाजा ही रहने दो।
1: ठीक है, तो फिर ये रहा आपके लिए मौसम का तकाजा। बहुत शुक्रिया दशरथ जी।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद राजेश सर जी।
1: अच्छा, आपको याद है।
0: बिल्कुल, आप और हमारी सबकी आकाशवाणी जितने भी लोग बैठे हैं सभी की आवाज ही पहचान है ना।
1: तो सही कह रहे हैं आप। तो फिर ये रहा आपकी पसंद का गाना दशरथ जी, बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए।
0: बहुत बहुत नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो आकाशवाणी। तो
1: जी, ब्रजेश सिंह नाम है, ग्राम चंदुआ, जिला संबल, उत्तर प्रदेश के। जी,
0: ब्रजेश जी क्या करते हैं आप?
1: सिलाई का काम है और चिनाई का भी कर लेते हैं।
0: सिलाई और चुनाई?
1: चिनाई राजगिरी,
0: राजगिरी भी करते हैं और सिलाई भी कर लेते हैं।
1: जी जी,
0: क्या बात है साहब, बड़े हुनर हैं आपके हाथ में।
1: जी, और खेती भी है अपनी।
0: अरे वाह, क्या बात है। और आगे बात करें तो शायद और भी बात समझ सामने आएगी।
1: जी जी बिल्कुल।
0: इसके अलावा और क्या करते हैं?
1: जी, और तो खेती का काम है लगातार अपना।
0: अच्छा, और रेडियो इन सब के बीच में आप सुन लेते हैं ना?
1: रेडियो तो हमारी ऐसे मान लो एक तरह से जान बनी हुई है।
0: अरे साहब क्या बात है, कब से है आपकी जान?
1: पानी से तो हम बचपन से जुड़े हैं और आज तक जुड़े ही हैं और लगातार जुड़े ही रहे।
0: अच्छा, तो इस समय क्या अवस्था है आपकी, क्या उम्र है?
1: जी, हमारी उम्र इस टाइम 34-35 वर्ष हो रही है।
0: 34 वर्ष है, ठीक है जी। आप,
1: आपका नंबर देखा यूट्यूब पे, फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं आपकी तरफ, पहली बार बात हो रही है आपसे।
0: ठीक है जी।
1: और राजस्थान में भी हम घूमे हैं थोड़े जिलों में, जैसे कोटा जिला गए हैं, भीलवाड़ा है, पूंछ है। ये टावर लगते थे ना पहले, जो अब भी चल रहे हैं टावर काम, काफी दिन करा था हमने वहाँ। जो ये इंटरनेट वाले लगते हैं वो ऐसे जो लगते थे, ये खाली वो ऑफिस में ये कंप्यूटर चलाते हैं।
0: अच्छा, इंटरनेट वाले टावर्स।
1: जी,
0: तो आपने
1: 120-100 फीट इसकी हाइट पे लगते थे।
0: अच्छा, तो ऊपर चढ़ा करते थे आप?
1: जी, चढ़ना भी था, उतरना भी था।
0: ओ।
1: और जो काम जैसा साथ में होता वैसे सारे करने पड़ते।
0: अच्छा, तो जब ऊपर इतनी ऊंचाई पर चढ़ते हैं तब सिक्योरिटी का क्या ख्याल रखते हैं आप?
1: ये बेल्ट मिलती थी वो बस लगाने के लिए।
0: उससे आप सुरक्षित रहते थे?
1: लेकिन मानते हैं हम सभी सुरक्षित
0: मानते हैं कि सुरक्षित है।
1: कभी कभी क्या है कि कुछ लोग बिना उसके ही चढ़ जाते हैं, बिना बेल्ट लगाए।
0: जी,
1: लापरवाही खुद से भी है, एक दो जगह हादसा होने से बचे हमारे तरफ।
0: जी,
1: लेकिन थोड़ा मन बदला हमारा, से सिलाई सीख ली हमने।
0: अच्छा, पहले आप ये काम करते थे उसके बाद सिलाई करने लगे आप? तो क्या क्या सिलाई करते हैं? क्या क्या सिलाई करते हैं?
1: सिलाई में तो जैसे ये टॉप हो गया।
0: अच्छा, लेडीज आइटम्स?
1: जी, लेडीज और विदेशी आइटम ज्यादा बनते थे।
0: और फिर चुनाई कब सीखी आपने?
1: चुनाई ऐसे लगभग 2 साल पहले से।
0: चुनाई?
1: जी, सिलाई तो हम 2008 से करनी चालू कर दी थी। और सिलाई, ये चुनाई तो आप गांव में रुके कुछ दिन, तब चुनाई भी सीख गए।
0: बहुत बढ़िया। तो किस किस तरह के मकान बना लिए आपने?
1: अब तो यहाँ ज्यादातर सिल्ली गाटर वाले मकान हैं और लेंटर के आरसी वाले।
0: अच्छा, और खेती अपने घर की है?
1: जी, घर की है अपने, 1 एकड़ जमीन है हमारे पास।
0: 1 एकड़ जमीन? जी, 1 एकड़ जमीन। तो अभी खेती में क्या चल रहा है?
1: जी, इस टाइम तो मक्का बोई हुई थी।
0: जी,
1: मक्का का समय चल रहा है, टूट रही है।
0: अच्छा, तो अब ये बताएं हमें कि जब आप खेती कर लेते हैं, बीज डाल के आते हैं खेतों में, उसके बाद में खेत आपसे कितनी रखवाली चाहता है?

0: हमारे यहाँ अब से पहले तो इतनी रखवाली थी खेत की, जो कि हम खेत पे सोए करते थे। ये वही तो है ना, आप सारा काम निकल जाता तो उसने फिर छोड़ दे।
1: जी, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो भी हम काम करें उसे हम उसी तरह से काम करें जो काम चाहता है ना। ब्रिजेश जी, आप बताएं, आपने बहुत, ये लगभग पहली बार ही फोन किया आपने आकाशवाणी में। ब्रिजेश जी, कौन सा गीत आप सुनेंगे इस कार्यक्रम में?
0: फिल्म का नाम रहेगा दिल।
1: और गाना?
0: गाना मुझे चैन ना आए, जाए जरा झूम के लाए, ना जाने कहां दिल खो गया, जो कि उदित नारायण अलका आवाज।
1: आज क्योंकि आप अपनी पसंद का गाना सुन लेंगे, उसके बाद हमें लगता है कि आपको बिल्कुल चैन से नींद आ जाएगी।
0: और जी, हम नाम बोलना चाहेंगे कुछ।
1: हाँ जी,
0: जैसे बीबी का नाम है कविता, बेटी का नाम वैष्णवी, बेटे का नाम दिव्यांश, भाई किशन व सोमपाल, सह परिवार
1: जी,
0: आकाशवाणी कोटा से अपनी फरमाइश सुनना चाहेंगे। और मिसिस से बात कर लो हमारे।
2: हेलो।
1: हाँ जी, नमस्कार।
2: हाँ नमस्कार
1: जी, कैसे हैं आप?
2: बढ़िया है, आप कैसे हैं?
1: हम बिल्कुल ठीक हैं। और आपकी पसंद का गाना आपको सुनवाते हैं हम, जो ब्रिजेश जी ने चाहा। आप
2: सुनवा दीजिएगा।
1: हाँ जी, ठीक है। तो ये आपकी भी पसंद वही है?
2: हाँ जी, वही पसंद है।
1: ठीक है जी, ठीक है। तो ये रहा आपकी पसंद का गाना, सब परिवार आप सुनिए। बहुत धन्यवाद। मुझे

0: नमस्कार, हेलो आकाशवाणी।
1: नमस्कार बंधु।
0: नमस्कार, कौन और कहां से?
1: आपका शुभ चिंतक बाहुबली छत्रपति संभाजीनगर से वार्तालाप कर रहा हूँ।
0: क्या बात है साहब, क्या बात है। अच्छा लगता है जब आप इतना मधुर बोलते हैं।
1: ये तो आपका बड़प्पन है भाई साहब, अभी ये तो बुढ़ापे की आवाज है,
0: ये दृढ़ता की आवाज है।
1: चलो आपका सराहने का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी जी जी, बताएं कैसे हैं आप?
1: मैं तो मस्त हूँ, आनंद में हूँ, आपकी मंगल कामना और प्रभु की छत्र छाया में 84 साल के उम्र में जीवन यापन मस्त और

0: रूप से चल रहा है भैया जी।
1: जी, तो 84 वर्ष तो अभी तो बहुत कम है, शतायु में तो बहुत समय बाकी है अभी।
0: चलो
1: है
0: ये
1: ना
0: तो ऊपर वाले के ऊपर है, अपने हाथ में तो नहीं है,
1: जी।
0: मगर अपनी मनोकामना इतनी है जब तक सांस है तब तक तंदुरुस्त और मस्त रहूं।
1: जी
0: ज्यादा जीने की तमन्ना नहीं है ना मरने की तमन्ना है, जो है ये वर्तमान में जो भी हमें मिला है क्षण, इसका सदुपयोग और इसका आनंद उठाना चाहिए।
1: बहुत सुंदर। तो आप अपने जीवन के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए हमें, आप क्या
0: मैं
1: किया करते थे।
0: तो वैसा तो भाई साहब मैं कहना नहीं चाहता हूँ, मगर आपने पूछा है तो बताना पड़ेगा कि मैं बीकॉम LLB आधे कोर्ट हूँ। मैं कुछ साल कोर्ट में जाके चक्कर मारा, देखा वहां का माहौल, तो मेरी अंतर आत्मा ने कहा कि तू गलत फील्ड में आ गया है, ये तेरी लाइन नहीं है
1: जी।
0: तो मैंने वो उसका रिजाइन करके अपना छोटा सा बुक सेलर और स्टेशनरी की दुकान खोला
1: जी।
0: और उसमें मेरा आज तक जीवन निर्वाह बड़े आनंद के साथ और सफलता से और बड़ी संतुष्टि के साथ हो गया है भैया जी।
1: क्या बात है, आपने वो काम किया जिसका रिटायरमेंट नहीं होता। जी,
0: जी।
1: किताबें बेच भी दी और पढ़ भी ली, है ना
0: जी जी और ये फिर अभी तो बच्चे लोग संभालते हैं सब कारोबार, घर में पत्नी है
1: जी,
0: दो बेटे हैं, दो बहुएं हैं, दो पोते हैं, ऐसा एक छोटा सा परिवार में मैं रहता हूँ
1: बहुत
0: और
1: सुंदर।
0: किसी बात की चिंता नहीं है मुझे।
1: क्या बात है, तो आपने जो संस्कार अर्जित किए हैं वो अब आपको बांटने का समय चल रहा है ना।
0: जी जी ये तो सब भगवान की छत्र छाया में सब सुचारू रूप से चल रहा है भैया जी।
1: जी, तो आकाशवाणी से कौन से संस्कार अब लेना चाहेंगे आप?
0: अरे आकाशवाणी ने तो हमें जीवन में मनोरंजन के साथ ज्ञान आनंद और कला विज्ञान और दुनिया में जो भी हलचल मस्ती है उसके बारे में हमें परिचित कराया है
1: जी।
0: वैसे तो मैं 1952 से जुड़ा हूँ अपने आकाशवाणी से, 1957 में विविध भारती की स्थापना नरेंद्र शर्मा जी ने की, तब से मैं विविध केंद्रों से जुड़ा हूँ और अपने विचार और आदान प्रदान विचारों का होता है भैया जी।
1: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो अब इस कार्यक्रम में कौन सा गीत आपको सुनवाएं?
0: तो फिल्म सन ऑफ इंडिया में प्रेमिका की विरह वेदना को कवि ने बड़े ही सुंदर और अंतस की प्रेरणा से व्यक्त किया है। गीत के बोले जल्दी दे के गम ये न सोचा के हम इस जहां में अकेले किधर जाएंगे।
1: वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, कितनी मधुर गायकी है आपकी। आपको अपने समय में कौन से गायक पसंद थे?
0: अरे गायक तो सभी पसंद है।
1: हाँ।
0: आपने तो ऐसा सवाल पूछा पांचों उंगलियों में से कौन सी उंगली पसंद है। सभी अपनी प्रतिष्ठा रखते हैं, अपनी खूबी रखते हैं।
1: बिल्कुल,
0: और सभी के आवाज में अपना निजी बोले तो उनकी प्रतिभा का आभास होता है।
1: बिल्कुल, तो केवल हाथ और उंगलियां नहीं, आप पूरे के पूरे संगीत में डूबे रहे, ऐसी हमारी अभिलाषा है। आपके पसंद का गीत सुनवाते हैं आपको, सब परिवार आप सुनिए ये गीत सन ऑफ इंडिया फिल्म से।
0: मुझे बहुत आनंद आया आपसे संभाषण करते वक्त।
1: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।

तो श्रोता, ये था आपके फोन कॉल्स पर आधारित फिल्म संगीत का वो कार्यक्रम जिसमें आप सभी श्रोता बड़े आनंद के साथ शिरकत करते हैं। उम्र चाहे कोई भी हो, लेकिन फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम सभी के लिए एक साझा मंच है। जब परिवार एक साथ मिलकर सुनता है आकाशवाणी, तब भारत के प्राचीन संस्कार हमें नई पीढ़ी के साथ जोड़ देते हैं। इस कार्यक्रम के लिए आपको बताएं, इसका संयोजन हिमांशु नामा का, प्रस्तुति तेजराम मीना की, और अब राजेश महावर को भी अपने इस कार्यक्रम से दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम।

नमस्कार साथियों, मैं हूँ आरती श्रीवास्तव। प्रस्तुत है छाया गीत। हवा के साथ नींद करवटें बदलती है, आंखों आंखों में बात करती है, जर्द पत्तों के बीच ढूंढती है खुशबू वो, फूल तो सूख गए वो कहाँ समझती है, मन की दहलीज पर रखकर चराग यादों के, खत वो चुपके से अंधेरे में रोज पढ़ती।

लगती है। वो कोई शोक हसीना नहीं है, पर यूं ही कभी कभी उदासियों के बीच हंसती है। ये अभी कौन सा मौसम जगा गया उसको, गुलाबो इत्र की खुशबू से वो महकती है। दर्द से इश्क लड़ाने की उसको आदत है, गम के सहरा में खड़ी तितलियां पकड़ती है।

है मुलाकातों का ये मौसम, तेरी आंखों में डूब जाने का मौसम, रंगों में सिमटी हुई तू जब आती है मेरे सामने, तो कायनात में बिखर जाता है बहारों का मौसम। और जब दिल की वीरानियां तेरे ख्यालों से गुलजार होती हैं, तो बहुत भाता है तेरी यादों का मौसम। मेरे इश्क के तमाम रंगों को ओढ़कर जब तू आती है सामने, तो मेरी नजर का ख्वाब बन जाता है तेरी खूबसूरती का मौसम।

अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है छाया गीत में। कुछ कहानियां अधूरी सी, चंद मुलाकातें पूरी सी, बड़े हसीन दिन थे वो, खूबसूरत सी थी वो रातें, हाथों में हाथ डाले करते थे हम जब ढेर सारी बातें। चांद का नूर तुम्हारी आंखों में झलकता था, काली घटाएं लहराती थी जुल्फों में, ढलते ढलते शाम कुछ यूं तुमसे लिपट जाती थी, जैसे रात की आगोश में कोई कली सी।

0: अदाएं भी हैं तुझ में, है अंदाज भी सबसे जुदा। हुस्न की मूरत है तू, तू ही है मेरा जहां। कभी बेमौसम बरसात सी तू मेरे वजूद को भिगो जाती है, कभी अनकही किसी बात सी तू मुझे मदहोश कर जाती है। खामोशी की भी जुबां होती है, ये सुना था मैंने, तेरी आंखों को पढ़ा जब इस बात को माना मैंने। तेरे होने से ही है फूलों में खुशबू, तेरे होने से ही है हवा में जादू। तू है जैसे एक हसीन गजल या फिर कोई एक महकता सा कंवल।
1: तुम भी

सुबह हो तुम धुली धुली, एक शाम हो तुम मदहोश सी, एक कतरा हो तुम शबनम का, एक सितारा हो कहकशा के दामन का, एक मुकम्मल हुस्न तुम्हारा परंपरा में सिमटा हुआ सा, कुछ कुछ हया की चांदनी में लिपटा हुआ सा, दिल लुभा रही है तुम्हारी हर

अदा, इश्क को जैसे दे रही हो सदा। फूलों की खुशबू हो तुम या कोई फूल ही है मेरे रूबरू। चांद की किरण कहूँ या चांद हो तुम हूबहू।

0: स्थानीय फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारत।

0: भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। FM 102, FM 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी में और फिर अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देशर प्रधानमंत्री भव्य दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
1: यह मोर आंतरिक कामना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को

0: कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मनवथ तालुका में आज एक निर्माणाधीन मंदिर का एक हिस्सा गिरने से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 दिनों तक असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए सशक्तिकरण से समृद्धि की ओर बढ़ते भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन और सर्जना शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: 12 वर्षों के कार्यकाल में वर्तमान सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी को भागीदार बनाकर राष्ट्र विकास का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उसके तहत उन्होंने जो एक लक्ष्य रखा है 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का भारत को, उसमें उन्होंने 4 जो स्तंभ है उनकी पहचान की है, जिसे ज्ञान भी कहा जाता है, गरीब, युवा और अन्नदाता यानी कि हमारे किसान और नारियां। तो इन 4 जो वर्ग हैं उनके सशक्तिकरण पर सरकार ने लगातार बल दिया है। अगर हम हर बजट में देखें, जो भी प्रमुख संबोधन होता है प्रधानमंत्री जी का, उसमें इन वर्गों को सशक्त करने की बात की जाती है। और आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सर्जना शर्मा जी और नीलू रंजन जी जुड़े हैं। इनसे हम समझना चाहेंगे कि इन 12 वर्षों में जो ये 4 वर्ग है, इनको सशक्त करके कैसे जो देश को समृद्ध करने का सपना है उसको साकार करने की तरफ हम बढ़े हैं। सो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम।
2: थैंक यू सोनी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सर्जना जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, लेडीज फर्स्ट कहा जाता है। सो आपसे मैं महिलाओं की ही बात करना चाहूंगी। जिस तरह का विकास महिलाओं का हुआ है और जो सरकार का मूल मंत्र रहा है कि विमेन्स डेवलपमेंट से आगे बढ़कर हमें विमेन्स लेड डेवलपमेंट यानी महिलाओं के नेतृत्व में विकास जो है उसकी ओर बढ़ना है, हमें बताएं कि इन 12 वर्षों में कौन से ऐसे परिवर्तनकारी रिफॉर्म्स हैं जो महिलाओं के लिए लाए गए हैं, जिनको आप सबसे महत्वपूर्ण मानती हैं।
2: सोनू जी, देखिए, महिला जो है वो

0: कोई भी परिवार है, परिवार की धुरी महिला है, और जो एक अच्छा परिवार है वो एक अच्छे समाज का, और एक अच्छा समाज अच्छे राष्ट्र का निर्माण करता है। अगर महिला सशक्त है, अगर महिला समृद्ध, मेरा मतलब खाली पैसे से नहीं, और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसको समावेशी विकास कहते हैं, अगर महिला उस तरह की है तो वो पूरे अपने परिवार को बढ़िया करेगी, समाज को अच्छा बनाएगी और फिर राष्ट्र को। तो इसका मतलब धुरी जो है परिवार से लेकर राष्ट्र तक महिला के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता। भले ही आज से कुछ साल पहले तक महिलाएं बहुत घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन घर में रहते हुए भी जो उनकी अर्थव्यवस्था है, जो उनका मनी मैनेजमेंट है, जो उनका रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, पुरुषों को तो शायद बहुत चीजें घर की पता भी नहीं होती जितना वो खुद सब मैनेज कर लेती हैं। आपने देखा होगा कि कोविड में पूरी दुनिया की इकोनॉमी ध्वस्त हुई, लेकिन भारतीय महिलाओं को जिस तरह की ट्रेनिंग है पैसे को जोड़ने की और आत्मनिर्भरता का, जो उनका मूल मंत्र है, तो उसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी रही, क्योंकि सेविंग की बहुत आदत है हमारी महिलाओं को। तो मोदी जी ने जो ये सोचा, तो उसमें देखिए दो तीन चीजें तो मैं कहूंगी कि जो सबसे अच्छी रही, एक है उज्ज्वला योजना और एक है हर घर नल हर घर जल। तो ये जो दो चीजें सुलभ हुई है महिलाओं को, उससे उनकी जो फिजिकल लेबर है वो कम हुई है, उनकी एफिशिएंसी इम्प्रूव हुई है। आपको लकड़ियां बिनने जंगल में नहीं जाना और धुएं में काम नहीं करना। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आपको सब्सिडाइज सिलेंडर मिल रहा है, तो आप सोचिए उसकी कितनी मेहनत कम हुई। खाना अच्छा बनेगा, वो भी खुद भी रिलैक्स रहेगी। दूसरा है, अगर हम देखें कि हमारे भारत में बहुत सी ऐसी जगहें थी जहां पे महिलाओं की आधे से ज्यादा एनर्जी पानी लाने में भी लगती थी, तो ये जल मंत्रालय ने जो काम किया है, हर घर नल जो पहुंचाया है, हर घर जल पहुंचाया है, उसका भी बहुत लाभ हुआ है। फिर आपने इनको कहा है कि जरूरी नहीं कि आप 10 से 5 की जॉब करने जाओ, अगर आपके घर के आसपास या अपने घर में बैठे आप क्रोशिया भी बुनते हैं, आप स्वेटर भी बुनते हैं, आपको सिलाई भी आती है, या आपके आसपास जैसे कि मखाना की खेती में आपने देखा होगा, मशरूम खेती, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो लखपति दीदी बनी है उन्हीं चीजों से। जरूरी नहीं कि आपके पास बीए एमए की डिग्री हो, ऐसा भी नहीं है। तो जो इस तरह की योजनाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनाए जिसमें कि लगभग 91 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है और 10 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन गई हैं।
1: जी।
0: तो इस तरह की जो योजना, और दूसरा मुद्रा योजना जो है कि अगर अपने घर में मुझे कोई काम शुरू करना है, मुझे लगा कि मुझे एक सिलाई स्कूल खोलना है, मुझे लगा कि मुझे क्रोशिया सेंटर बनाना है अपने घर में, मुझे लगा कि मेरे पास जो स्किल है जो मुझे किसी स्कूल से नहीं अपनी फैमिली से ट्रेडिशनल मिली है, अगर मैं उसी को आगे विकसित कर, कौशल हुनर जो कि परंपरागत हमारे यहाँ आपने देखा कि कोई साड़ी बनाता है तो कोई लकड़ी का सामान बनाता है, तरह तरह की चीजें हैं, मतलब गिनाना मुश्किल है क्योंकि भारत में इतनी विविधता है। अब कुछ तो महिलाएं जैसे हल्दी उगा रही है, कोई मशरूम उगा रहे हैं, तो उनको जो लोन मिल रहा है सस्ती किश्तों में, मतलब कि उनको बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी, और मुद्रा लोन जो मिल रहा है इससे भी उनका जो लाइफ है वो बहुत आसान हुई है। दूसरा है शिक्षा को लेकर भी बहुत काम हुए हैं, केजी टू पीजी जो है कि आप केजी से लेके पीजी तक बच्चियां जो हैं वो पढ़ेंगी। और फिर ये है कि सुरक्षा का वातावरण, आप देखेंगे कि कई राज्यों में तो ऐसा था कि 6 बजे के बाद लड़कियां घर से नहीं निकलती। उत्तर प्रदेश का मैं आपको एक उदाहरण दूं जैसे कि, तो अब देखिए वहां बेखौफ लड़कियां रात को 2-2.5 बजे तक भी आराम से घूम सकती हैं क्योंकि सुरक्षा इतनी ज्यादा। जब तक माँ और बेटी को नहीं लगेगा कि वो सुरक्षित है तो बेटी बाहर काम करने उसको कोई जाने नहीं देगा।
1: बहुत इम्पोर्टेंट ये सशक्तिकरण,
0: ये बहुत, हाँ, सुरक्षा की भावना, वो जो इस सरकार ने सुरक्षा की भावना दी, महिला थाने खोले, महिला हेल्पलाइन खोली कि आप तुरंत फोन कीजिए आपको मदद मिलेगी। और एक और देखिए कि महिलाओं को मैटरनिटी लीव में डबल किया है, 3 महीने से 6 महीने किया, ये भी एक बहुत बड़ा सशक्तिकरण है महिला का।
1: बिल्कुल।
0: मातृत्व सुरक्षा योजना है, शिशु योजना है, इन सब योजनाओं ने महिलाओं के जीवन को आसान किया है, सुविधा दी है। मैं बात कर रही हूँ उन महिलाओं की जो की अभी तक बहुत बाहर निकल के काम नहीं करती। अब हम बात करते हैं उन महिलाओं की जो पढ़ लिख के आगे, जैसे कि आपने सैनिक स्कूल लड़कियों के लिए खोल दिया गया, जैसे कि एनडीए खोल दिया गया लड़कियों के लिए, लड़कियां फाइटर पायलट हैं। तो ये जो इस तरह की चीजें भी आई है ना, उससे पूरे देश में बाकी लड़कियों को भी एक प्रेरणा मिली। 26 जनवरी परेड का आपने जो स्वरूप बदलते हुए देखा होगा, आप देखिए कैसे स्वरूप बदला है। पहले आप देखिए किसी भी कंटिजेंट में लेडी नहीं लीड करते,
1: एकदम गर्व से सर ऊंचा हो जाता।
0: अब आप देखिए, अब 26 जनवरी परेड का रूप बदल गया है। तो मुझे लगता है बहुत सारे, और इसका सबका कारण मैं एक समझती हूँ, क्योंकि इस सरकार का जो है अंत्योदय, जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, शुरू से ही भाजपा का ये

0: मूल नियम रहा है अंत्योदय, अंत से उदय करना है। तो ये बहुत सी योजनाएं जो है जो सबसे वंचित वर्ग है वहां से शुरू होती है, और जैसे कि जो अफोर्ड कर सकते हैं एलपीजी तो उनको अब आप देखिए सबका हटा दिया, हमने भी सरेंडर किया और वो उन वर्गों तक पहुंचा जिनको उसकी आवश्यकता थी।
1: सो बिल्कुल टारगेटेड जो है फोकस्ड इम्प्लीमेंटेशन भी हुई है रिफॉर्म्स की। नीलू जी, अगर हम एक बहुत बड़ी जो शक्ति मानी जाती है भारत की कि भारत एक युवा देश है, यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तो जिस तरह से जो युवा पीढ़ी है उस पर जो ध्यान दिया है सरकार ने और जिस तरह से उनका सशक्तिकरण हुआ है, आप किन पहलों को इन 12 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? अगर आप टॉप 2-3 हमें बताएं कि कौन सी आपको पॉलिसी डिसीजंस जो है वो सबसे आपको लगता है कि परिवर्तनकारी सिद्ध हुए हैं या हो सकते हैं।
2: देखिए, सबसे बड़ी बात है युवाओं के लिए कि युवाओं में अपनी ऊर्जा बहुत होती है, शक्ति उनकी अपनी बहुत है
1: जी।
2: उस ऊर्जा को अवसर देने की जरूरत है, उसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको
1: जी।
2: ये पहली बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। और समस्या ये थी कि युवाओं को अवसर नहीं मिलता था, और वो जीवन के हर फील्ड में, चाहे वो अर्थव्यवस्था के किसी भी फील्ड में चले जाएं, शिक्षा में चले जाएं, खेल में चले जाएं, हर फील्ड में वो काम कर सकते हैं, उनकी एनर्जी है और सबके अपने अपने खासियत है। तो जो उनकी रुचि है, जो वो कर सकते हैं, उसमें अवसर कैसे दिए जाएं, तो मैं ये कह सकता हूं कि युवाओं के लिए अवसर के ऐसी अनंत संभावनाओं के दरवाजे खुल गए हैं कि हर युवा जो है वो अपने अपने कौशल के विकास में, अपने अपने क्षेत्र में जिसमें करना चाहता है वो कर रहा है। और इसलिए आप देखें, खेल हो, शिक्षा हो, चाहे वो स्वरोजगार हो, चाहे वो साइंटिफिक चीजें डेवलपमेंट हो, नई टेक्नोलॉजी हो, जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, आईटी से रिलेटेड है, आप युवाओं को देखेंगे पूरी दुनिया में छा रहे हैं भारत के युवा। इसमें 2-3 चीजें महत्वपूर्ण है जो देखने की बात है कि जैसे युवाओं के लिए अवसर की जब मैं बात करता हूं, तो पहले मेडिकल की सीटें जो थी, अगर एमबीबीएस के देख लें तो 55,000-56,000 की होती थी, 140 करोड़ के देश में केवल 56,000 एमबीबीएस आप बना रहे थे, आज वो 1,25,000 की सीटें हो गई हैं, डबल से भी ज्यादा हो गई हैं। जो पोस्ट ग्रेजुएट थी वो लगभग 30-32,000 के आसपास थी, वो लगभग 65-70,000 हो गई, डबल से ज्यादा वहां भी हुई हैं। ये यूथ पहले बाहर जाता था, यूक्रेन से कर रहा है, चीन से कर रहा है, नेपाल से कर रहा है, वहां जो यूक्रेन की आपदा में कैसे फंस गए थे सब देख रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे। वैसे यूनिवर्सिटीज जो है, मेडिकल कॉलेजों की संख्या जो है, सीटें बढ़ी है, तो मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ी है, वो लगभग 380 के आसपास थी आजादी के बाद, 2014 खोली गई थी, वो लगभग 750 के आसपास हो गई है। 50-60 और मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, जो सिटी जो है एमबीबीएस की वो 50,000 और बढ़ने वाली है। ये युवाओं को अवसर दिया देश के भीतर कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपके लिए है। ऐसे यूनिवर्सिटीज, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में एडमिशन आप देखते थे कितना मारामारी है, एडमिशन नहीं मिलता था, लोग जो है वो ओपन स्कूलिंग करते थे। ओपन स्कूलिंग अभी भी खुला है और वो एक बढ़िया विकल्प है कि उसमें हम कैसे कर सकते हैं, क्या हम और कोई काम करते हुए भी हम ओपन स्कूलिंग से कोई शिक्षा ले सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटीज की संख्या लगभग 800 से बढ़ करके और 1300-1400 हो गई हैं, वो डबल हो गई हैं, ये तो उन्हीं के लिए हुआ है। और खेल में प्रतिभाओं को निखारने के लिए सरकार ने पैसे दिए हैं, जो स्कीमें लाई हैं, जो युवा खेल जो प्रतिभाएं हैं उनको कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है। तो आप देखें कि ओलंपिक खेल हो, चाहे एशियाड खेल हो, चाहे कोई भी खेल हो, जो भारतीय युवा, जो कहा जाता था कि खेलों के लिए भारत में युवाओं का जो शारीरिक संरचना है वो ऐसे खेलों में कंपटीशन के लिए नहीं है, वो कहीं ना कहीं कम है, वो गलत थी बात, वो कहा जाता था।
1: और ये अपॉर्चुनिटी दी खेलो इंडिया जैसे आयोजनों के,
2: खेलो इंडिया वही मैं कह रहा हूँ, खेलो इंडिया आयोजन वो तो एक आयोजन है, लेकिन आप जो साई के सेंटर्स हैं, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो सेंटर्स हैं, वहां पे युवाओं पे जो इन्वेस्ट किया जा रहा है, उनको जो ट्रेनिंग दी जा रही है, उनपे जो खर्च हो रहे हैं, इंटरनेशनल कोचेज अगर युवा को अच्छा कर रहा है, ओलंपिक के और एशियाड के लाइक कर रहा हो, तो जर्मनी हो चाहे कहीं भी, सरकार के खर्चे पे ट्रेनिंग हो रही है। तो ये एक बड़ा अवसर जो है युवाओं के लिए है। निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि सारे युवाओं को जो है वो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, सारे युवा इस तरफ नहीं जाएंगे, तो वोकेशनल स्टडीज का जो है एक बड़ा उन्होंने किया है ट्रेनिंग, और जो आईटीआई हमारा जो ट्रेनिंग का जो था उसका मॉड्यूल को पूरा चेंज किया है। पहले युवाओं को होता था कि वहीं पे है आईटीआई करो, जो कोर्सेज है वही करो, वो सब पुराने कोर्सेज हो गए, अब उसको रीडिजाइन किया जा रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में अगर आईटीआई है तो उस डिस्ट्रिक्ट में कौन से उद्योग हैं, वहां कहां प्रशिक्षित युवाओं की मांग है, तो ऐसे वहां पे उसी लेवल पे उनको ट्रेनिंग दें, वहां फैसिलिटीज दें। अब कितने ट्रेनर हैं, किस किस फील्ड में हैं, ये नहीं पता था, अब सरकार एक नया बना रही है डायरेक्टरी जिसमें कि किस फील्ड के कितने अच्छे ट्रेनर हमारे कहां कहां हैं, कहां कहां गैप है।

0: है, कहाँ क्या डिमांड है दे सकते हैं, तो एक बड़ा चीज है। और सबसे बड़ी चीज जो है वो सबसे बड़ी चीज जो सबसे ऊपर जाती है वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। वो तो बिल्कुल विशुद्ध युवाओं के लिए है
1: और बदलते परिवेश के अनुसार जो जरूरतें हैं उसके अनुकूल है।
0: उसने जो 10+2+3+2 का जो पूरा का पूरा शिक्षा मॉडल था उसका शिकंजे से युवाओं को मुक्त कर दिया है कि आपको 12th करना है, फिर 3 साल जो है आपको BA करना है, फिर 2 साल PG करना है, फिर MPhil करना है, ये करना है, उसके बाद कम्पिटेटिव एग्जाम देना है। अगर बीच में आपकी पढ़ाई छूट गई तो छूट गई, आपकी सारी मेहनत खत्म। अब उसमें बिल्कुल फ्लेक्सी कर दिया है कि क्रेडिट सिस्टम होगा, आपने 1 साल पढ़ा, 1 साल के बाद आपकी जरूरत पड़ गई, घर में कोई समस्या हो गई, कुछ कहीं नौकरी आपको करनी पड़ रही है या आपको कहीं कोई अच्छी नौकरी मिल गई, आप वहां चले गए, आपको लगा कि वो पढ़ लेते तो मेरा हो जाता, तो जो आपने 1 साल पढ़ा हो 2 साल पढ़ा हो वो आपके क्रेडिट में है, वो आप कर सकते हैं। जो सिलेबस चुनने में जो था, जो समस्याएं थी कि बच्चा क्या करेगा, साइंस लेगा तो बायोलॉजी लेगा, केमिस्ट्री लेगा, जब वो क्या होता है मैथमेटिक्स लेगा, फिजिक्स लेगा, मतलब एक था कि आप सेट हैं उसी में हैं। अब कोई बच्चा जो है वो हिस्ट्री में पढ़ना चाहता है और मैथमेटिक्स में अच्छा हो, वो क्यों नहीं ले।
1: तो युवाओं के लिए बहुत सारे जो
0: मतलब जितने शिकंजे थे, जो अनंत संभावनाएं, जो अवसर उसके युवाओं के लिए है, वो अवसर के दरवाजे सरकार ने खोले हैं।
1: बिल्कुल,
0: कि आप जो करना चाहे करो, युवाओं में इतनी ऊर्जा है कि वो बाकी सब कुछ कर लेंगे, उनको करने के लिए आपको कुछ सपोर्ट की जरूरत नहीं है, केवल अवसर देने की जरूरत है। और पिछले 12 सालों में वो अवसर मैंने इतने गिनाए आपको कि जो जो करना चाहे, जहाँ करना चाहे, इस देश में अवसर है, आपको देश छोड़ के जाने की जरूरत
1: तो सरकार का जो ये एक सोच है कि आप जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बने, आत्मनिर्भर उद्यमी, जिस तरह से अगर हम स्टार्टअप्स की अगर हम जब स्टैटिस्टिक्स देखते हैं कि 350 स्टार्टअप्स थे 2014 में और अब वो बढ़कर जो संख्या है 2.2 लाख हो गई है, आपको लगता है कि ये जो एक इनोवेशन की स्पिरिट, एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट, इसको बहुत बढ़ावा दिया गया है इन 12 वर्षों में?
0: बिल्कुल निश्चित रूप से। स्टार्टअप्स जब शुरू शुरू आया था तो लोग कह रहे थे कि भाई युवाओं को नौकरी चाहिए, स्टार्टअप में क्या कर लेंगे, कैसे कर लेंगे। अब आप देखें कि उसमें जो स्टार्टअप्स हैं वह बड़े बड़े बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के रूप में हो रहे हैं, 8,000-10,000 करोड़ का उनका टर्नओवर वो तत्काल हो रहा है। 150-200 स्टार्टअप ऐसे हो गए हैं जिनका टर्नओवर जो आप देखें तो अच्छी अच्छी कंपनियों से बेहतर है वो, तो वो एक अवसर। और स्टार्टअप में सरकार का जो मदद है
1: स्टार्टअप
0: इंडिया द्वारा कि उसमें आपको ये टैक्स में छूट है और इसमें आपके जो पुराने इंस्टीट्यूट हैं, IIT हैं, IIM, उन्होंने जिस ढंग से उनको आगे बढ़ाया है, वहाँ उनके टीचर जो मेंटोर हैं, वहाँ पे एक इकोसिस्टम बन रहा है, वो चल रहा है। और अगर स्टार्टअप में देखेंगे तो टेक के क्षेत्र में जो कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में ज्यादातर वो काम कर रहे हैं, बाकी तो नए नए जो वेंचर्स उसमें भी आ रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि पेटेंट की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी, यानी कि जो हमारे यूथ जो कहीं रिसर्च में लगे हुए हैं, कुछ नई चीज ढूंढ रहे हैं, पहले पेटेंट नहीं होता था, पूरा पेटेंट के जो रजिस्ट्री जो पूरे मैकेनिज्म है वो चेंज किया जा रहा है, लाखों यूथ जो हैं वो अब नए नए पेटेंट के लिए हर साल लाखों अप्लाई हो रहे हैं और पेटेंट मिल रहा है। पेटेंट मिलने का मतलब यह है कि बिल्कुल नई चीज, नए इनोवेशन करके आप दे रहे हैं। तो ये हर क्षेत्र में यूथ के लिए उन्होंने, चाहे खेल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, अगर आप रोजगार देने वाला स्टार्टअप जैसे अगर आप उद्यमी बनना चाहते हैं तो वो अवसर भी है जो पहले नहीं मिलता था।
1: बिल्कुल। और अगर हम तीसरे स्तंभ की बात करें किसानों की, तो किसानों के सशक्तिकरण का रंजन जी जो एक क्रांतिकारी हमने बदलाव देखा है प्रोडक्शन फिगर्स में, अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो हम 10 एक्सपोर्टर्स ऑफ द वर्ल्ड में अब शामिल हो गए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, और जिस तरह से नई मिनिस्ट्रीज का गठन हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, एलाइड सेक्टर्स के लिए एक अलग मिनिस्ट्री, किसानों के सशक्तिकरण को आप कैसे देखते हैं पिछले 12 सालों में, और इसका आधुनिकीकरण जो हुआ है उसके प्रमुख पहलू आप क्या मानते हैं?
0: देखिए, उसमें पहले आपको समझना पड़ेगा कि जब खेती में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है, एक तो होता है इनपुट कॉस्ट कि आप जब खेती करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या उसमें लगाना पड़ेगा, और अगर खराब हो गई फसल, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, कुछ भी हो गया, आपदा आ गई, तो आपका क्या होगा। पहले जो समस्या थी कि इनपुट कॉस्ट की तुलना में जो हम मिनिमम जो गारंटी सरकार देती भी थी कि हम खरीदेंगे तो कुछ फसलों पे थी, चावल था, गेहूं था, एक दो फसलें और थी, वो नहीं थी कि ये हम आपको खरीदेंगे। अगर आप देखेंगे 12 सालों में तो जो उर्वरक है, जो फर्टिलाइजर है, कीमत उसकी लगभग सेम है, 12 साल में नहीं बढ़ा है। सरकार को सब्सिडी बढ़ रही है, लेकिन वो लगभग 250-300 रुपए की बोरी जो 45 किलो की जो यूरिया की थी आज भी वही है।
1: बहुत बड़ा समर्थन है।
0: इसका मतलब कि

0: जो कॉस्ट आपका है वो उर्वरक वाला वो नहीं बढ़ा है, वो सेम है। दूसरा कि पूरे देश में बिजली जो है वो 24 घंटे उपलब्ध है लगभग, मतलब ग्रामीण इलाकों में कहते हैं कि एवरेज 22-23 घंटे बिजली आज है, पहले नहीं होती। या और किसान अधिकांश जो राज्य है उसमें किसानों की बिजली फ्री है, तो सिंचाई के लिए आपको कोई अलग से कोई कॉस्ट नहीं आ रहा है। और आपके खाद्यान्न की कीमत अगर आप देखेंगे तो कुछ बढ़ा ही है। दूसरी इससे भी बड़ी बात यह है कि सरकार जो सहायता दे रही है 2,000 रुपए का,
1: 6,000 प्रति वर्ष तीन इंस्टॉलमेंट में
0: 2,000 के, तीन इंस्टॉलमेंट में 6,000 के हैं, तो वो उसका अगर आप समय देखेंगे कि वो उस वक्त दिया जाता है। और छोटे किसान, आपके अधिकांश जो देश में किसान हैं 12 करोड़ छोटे किसान हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं। जिस वक्त उनको बुआई करनी होती है, जो खेत लगाना होता है, कुछ करना होता है, बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं, उनके लिए उस वक्त उनको पैसे दिए जाते हैं, वो मदद उनको दी जा रही है। किसान क्रेडिट कार्ड उनको दिया जा रहा है कि 1,00,000 रुपए तक आपका खर्च कोई करना हो तो बहुत सस्ते में कुछ

0: नहीं होते हैं, जिस वक्त उनको बुआई करनी होती है, जो खेत लगाना होता है, कुछ करना होता है, बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं, उनके लिए उस वक्त उनको पैसे दिए जाते हैं
1: जी।
0: वो मदद उनको दी जा रही है, किसान क्रेडिट कार्ड उनको दिया जा रहा है कि लाख रुपए तक अगर आपका खर्च कोई करना हो तो बहुत सस्ते में, कुछ नहीं देना है आपको, आप उसमें खर्च कर सकते हैं। जो फिशरीज का जो अलग से मिनिस्ट्री बना करके उनका जो ब्लू रेवोल्यूशन जो उनका किया है और जो एक्सपोर्ट बढ़ा है वो आप देखिए, हॉर्टिकल्चर में जो भारत का एक्सपोर्ट जो मेनली जो आपको दिख रहा है एक्सपोर्ट जो कृषि क्षेत्र में, वो उसमें दिख रहा है, क्योंकि उसमें 10% 12% का ग्रोथ है, वो एक बड़ी ताकत के रूप में भारत उभर रहा है। तो किसान एज ए होल कह लें आप, बड़ा परिवर्तन हुआ है। और किसान अगर आप कहते हैं ना सिर्फ, तो किसान नहीं होता है सिर्फ, उसी घर में महिलाएं भी, महिलाओं का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बन रहा है,
1: जैसे अभी सर्जना जी बता रही हैं,
0: तो वो भी तो वही बन रही हैं, जो 10 करोड़ महिलाएं हैं वो भी तो किसान परिवारों से ही आती हैं, वो किसान परिवार सशक्त हो रहा है। जो मार्केट का डेवलपमेंट, जो आपकी सड़कें बन रही हैं, तो उन सड़कों के बनने से किसान का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट तक आसानी से पहुंच रहा है। और आपने आज 20-25 फसलें ऐसी हो गई हैं जिनकी गारंटी सरकार दे रही है खरीदने के लिए कि हम उसको खरीदेंगे, है ना, आप उपजाओ और गारंटी है इस कीमत पे हम करेंगे। कई राज्य सरकारों ने इधर भावांतरण योजना शुरू कर दी है कि अगर आपको मार्केट से कम कीमत आपको बेचना पड़ रहा है, मार्केट में बेच रहे हैं, तो वो उस कीमत का पैसा हम आपको देंगे, यानी किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। तो जो अन्नदाता है उसके लिए उन्होंने खोला है, सारी चीजें व्यवस्था हो रही है, जो मतलब जो जो सीधे से किसान से नहीं जुड़ा है, किसान से लगता है कि जुड़ा हुआ नहीं है। अब मान ले कि जो सरोवर बनाने का था कि जीर्णोद्धार करना है, तमाम तालाबों का सब भर गए थे, सब कुछ है, वो किसका पानी का लेवल बढ़ रहा है, वहां सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, किसको जा रहा है फायदा, ये कई चीजें सीधे उनसे जुड़ी हुई नहीं है। जो ग्रामीण इलाकों में जो गरीब परिवार है उनका जो फ्री में इलाज जो 5 लाख का हो रहा है, उसमें बहुत सारे परिवार ऐसे गरीब है जो आयुष्मान भारत योजना के तहत, वो किसान परिवार से आते हैं। जो 55-60 करोड़ लोग हैं, वो कहां से 55-60 करोड़ लोग हैं, बहुत सारे वहां से भी हैं। इसीलिए किसानों पे जो इनपुट कॉस्ट है, उनके जो जीवन के लिए जरूरी चीजें हैं, जो खर्चे हैं, सरकार ने उसे कम किया है, उनकी उत्पादकता बढ़ाई है, और अब कोऑपरेशन मिनिस्ट्री अलग से बना करके उनका कैसे वो जो फार्मर का जो प्राथमिक जो है वो संघ बने, कोऑपरेटिव बने, उसकी 1 लाख के आसपास हो गया है, उसमें है कि 2-3 लाख कोऑपरेटिव बनाने हैं, कोऑपरेटिव बना करके सिर्फ कोऑपरेटिव नहीं करना है, इंटरनेशनल कैसे उनका ऑर्गेनिक खेती करें, कैसे वो विदेश में एक्सपोर्ट हो, इसके लिए अलग से कोऑपरेटिव बना दिया है।
1: बिल्कुल,
0: तो हर तरफ से किसानों को सशक्त, किसान सशक्त मतलब देश सशक्त।
1: बिल्कुल सर्जना जी, अगर आपके पास आए, जैसा कि अभी नीलू जी कह रहे थे कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, जो सारे चारों स्तंभ हैं ये भी आपस में जुड़े हुए हैं, अगर हम खास तौर से वंचितों की बात करें, जो इन्हें मार्जिनलाइज्ड कहते हैं या आर्थिक रूप से कमजोर, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इनके जैसे जो जनजातीय समूह के लिए जो स्टेप्स उठाए गए हैं या जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए स्टेप्स उठाए गए हैं, ये मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए आप हमें बताएं कि किस तरह के परिवर्तनकारी उपाय हुए हैं।
2: वर्ग में तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, वो ऐसे आया है कि एक तो सबसे पहले उस वर्ग में आत्म सम्मान, आत्म गौरव की भावना पैदा करना, जो हमारे शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जिनको पहले आदिवासी बोला जाता है, अभी वनवास जनजाति जैसे हैं, तो इनके लिए आप देखें कि जो उनके हीरो रहे हैं, बिरसा मुंडा हैं और बहुत सारे, उन सबको इन्होंने निकाला और जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा जी के नाम से। फिर आदि मेले लगने शुरू हुए और एकलव्य स्कूल बनाए गए हैं इन बच्चों के लिए, उसका नाम है एकलव्य स्कूल, कि जितने ट्राइबल बच्चे हैं, क्योंकि अगर वो रेगुलर स्कूल में नहीं जा पा रहे तो आप उनको, बोर्डिंग स्कूल है ये, उसमें आप उनको पूरी तरह से एक आधुनिक शिक्षा भी दे रहे हैं, आप उनको शिक्षा से जोड़ रहे हैं। दूसरा, जो ट्राइबल्स हैं वो हमारे जल वन के रक्षक और संस्कृति के रक्षक सबसे ज्यादा वो हैं। हम जो पढ़े लिखे शहरी हैं, हम पर्यावरण की उतनी रक्षा नहीं कर सकते जितना वो लोग करते हैं, तो उनके लिए जो वन धन योजना है उससे बहुत लाभ है। उनको कहीं नहीं जाना, नौकरी के लिए एप्लीकेशन नहीं देना, क्योंकि उन लोगों को ये भी मालूम है कि कौन सी जड़ी बूटी का क्या असर है। उन पत्तों को हम नीलू जी या आप जंगल में जाके नहीं पहचान सकते, उनको पता है कि कौन सा फूल जब खिलेगा तो उसके बाद कब बारिश होगी, कब आंधी आएगी, तो वो लोग प्रकृति के साथ सहचर हैं प्रकृति के। ये जो मंत्रालय है ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है, तो ये भी आप देखिए कि वैसे तो अटल जी के समय में बना था, लेकिन अब इसमें बहुत सारे

0: परिवर्तन आए हैं
1: और ये खेलने में बहुत अच्छे हैं, ये हॉकी में है, स्पेशली तीरंदाजी में, कुश्ती में, तो उस पर भी ध्यान दिया गया है। इनके लिए बोर्डिंग खोले गए, इनके लिए कोचेस दिए गए हैं, इनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। और जिस एरिया में जो चीज ज्यादा जो पैदावार हो रही है, अब देखिए कि जैसे मखाना बोर्ड बिहार में बनाया गया, पहले तो नहीं था। दूसरी बात, खाली मखाना बोर्ड बना देने से काम नहीं होगा, ट्रेनिंग है उनकी, फिर उनकी प्रोडक्ट की कीमत है, फिर उनकी प्रोडक्ट को देश में और विदेश में सब जगह पे उनको मंच मिले, ई कॉमर्स जिसको वो भी चला रहे हैं। अभी जब मोदी जी यात्रा पर गए हमारे प्रधानमंत्री जी, फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 में, तो मैं जो लिस्ट देख रही थी, आप सोचिए उसमें वो पिछली बार मखाने लेके गए थे, इस बार वो ठेकुआ भी लेके गए। ठेकुआ भी आप मतलब
2: हाँ, उन्होंने सम्मान दिलाया है पूरे
1: श्री अन्न उसको नाम दिया, जिसको मोटा अनाज सब बोलते थे, अब उसको देखिए मान श्री अन्न, और सब चीजों की कीमतें भी बढ़ी है उसकी वजह से, और उसका किसान को लाभ हो रहा है। आज मखाने का आप रेट देखिए बाजार में, तो वो सारा आप सोचिए कि वो लाभ किसान को जा रहा है। और दूसरा, जैसा अभी नीलू जी ने कहा कि खाली विकास समग्र होना चाहिए, अगर मेरे पास प्रोडक्ट है और मैं मंडी तक ही नहीं पहुंच पाऊं, तो मेरे पास मंडी तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, साधन नहीं है, तो मेरी प्रोडक्ट का क्या होगा, क्योंकि ये तो पेरिशेबल आइटम जो होती है, तो उनको तुरंत बाजार चाहिए, तो ये भी बहुत सुविधा हुई है उसके लिए
2: जी।
1: और जब ये MSP की बात होती है, तो MSP अब कहा कि आप जाके किसान अपनी फसल, जरूरी नहीं कि किसी को, भाई जिसको जो कीमत दे रहा है किसान को, जितनी दे रहा है, और जिसके पास वो जाके खरीद ले,
2: हो जाता है।
1: नहीं, खरीद लीजिए जाके जितना रेट है। तो ये विपक्ष जो कहता रहा, जो किसान आंदोलन हुआ, उन्होंने MSP की बात की, तो वो उससे चार कदम आगे चले। तो वंचित वर्ग में फिर है कि पढ़ाई है उनकी, पहले लोगों को लगता था कि अगर बेटी पैदा हो गई तो क्या होगा, अब किसी को नहीं लगता। सुकन्या समृद्धि योजना है, लड़कियों को वर्दी है, लड़कियों को सब कुछ। और दूसरा, अगर मान लीजिए अब जो असंगठित क्षेत्र था, जहां पर ये वंचित वर्ग जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास कोई स्किल, कोई एजुकेशन कुछ नहीं था, या उसके पास अपना पारंपरिक हुनर भी, कौशल भी नहीं है कोई, तो खैर कौशल विकास मंत्रालय भी खोला गया और कौशल विकसित किया जा रहा है, तो अगर उसके पास कुछ भी नहीं, तो वो किसी मान लो फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो ये भी सरकार ने सुनिश्चित किया, जो नए 4 लेबर कोड आए हैं, कि अगर कोई असंगठित क्षेत्र में है और काम कर रहा है, स्पेशली महिलाएं हैं, तो उनका वेजेस तय कर दिए गए हैं कि आप इससे कब वेज पे बिल्कुल काम नहीं करवाओ
2: जी।
1: तो ये आप देखिए कितनी अच्छी बात है।
2: हाँ।
1: फिर दूसरा, अगर महिला आपके यहाँ काम कर रहे हो, तो आप उसको घर पहुंचाने की व्यवस्था भी करेंगे, फैक्ट्री आपकी करेगी, तो ये भी एक अच्छी बात है। अब सैनिटरी पैड पर देखिए, लड़कियों की जो सबसे बड़ी एक समस्या होती है, कि वैसे इसको कहा गया था कि ये बातचीत करने के, लेकिन ये भी 1 रुपए में जन औषधि केंद्र में सैनिटरी नैपकिन मिल रहा है लड़कियों को, किशोरियों को, तो आप सोचिए महिलाओं को, तो ये भी
2: बहुत बड़ा,
1: हम इसको एक अगर देखें तो एक तरह से ये भी एक सशक्तिकरण की ओर एक बड़ा कदम है। पिंक टॉयलेट्स हैं, महिलाओं के लिए अलग से अच्छे शौचालय बनाए गए हैं, तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपको, अगर हम किसी मैनेजमेंट स्कूल की बुक देखें तो उसमें ये चीजें नहीं दिखेंगी, लेकिन पिछले 12 साल में जो इतनी छोटी छोटी चीजों को सोच के, समझ के, जिनके ऊपर काम किया गया, पिछले 12 साल में जनधन खाते खोले गए, डायरेक्ट बेनिफिट उनको मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उनका कौशल विकसित किया गया,
2: और एक तरह से जो हमारी ट्रेडिशन है हमारे देश की, वो भी अलाइव,
1: मतलब कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो मैकॉले ने जो लाया था, उसने व्हाइट कॉलर जॉब को बहुत प्रेफरेंस दिया था, पर ये जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो सरकार की औद्योगिक नीतियां हैं, जो MSME आप देखिए ना, MSME सेक्टर में कितनी चीजें जो महिलाएं घर में बैठे बैठे शौक शौक में बना लेती हैं, जिनको ये शौक है, जिनके पास स्किल है, अपनी दादी नानी माँ से सीखा है, तो उसके लिए भी सरकार लोन दे रही है।
2: बिल्कुल,
1: तो ये बहुत महिलाओं का सशक्तिकरण। दूसरा, मैं आपसे कहूंगी कि जैसे मातृत्व वंदन है, वो योजना कितनी अच्छी है, जो मातृ शिशु रक्षा योजना है, तो ऐसी योजनाएं पहले था कि हाँ,
2: और एक्चुअली वो फिगर्स में दिखाई दे रहा है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो अस्पतालों में अब हो रही है, उनका संख्या इतनी बढ़ गई है, 98% पे पहुंच गई है, और भी जो मॉर्टेलिटी रेट है,
1: बेसिक मेरी जरूरत है वंचित वर्ग की, अगर हम बात करते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, जी, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिया जा रहा है
2: जी,
1: ठीक है, उनको जो राशन दिया जाता है एक बीपीएल जो है उससे बिलो में जो राशन मिलता है, ठीक है, वो आज नहीं तो कल कमाने लगेगा, वो भी बाकी समाज के साथ पेश मिलेगा, लेकिन जब उसको अपनी बेसिक जरूरतें पूरी हो रही हैं तो उसको उसके लिए नहीं स्ट्रगल।

0: करना, उसने उसका जीवन स्तर आगे बढ़ा और कितने करोड़ लोग नीलू जी गरीबी रेखा से ऊपर उठे,
1: 25 करोड़
0: गरीबी रेखा से ऊपर उठे। और डिजिटल पेमेंट देखिए, आप सारी दुनिया आज हमसे सीखना चाहती है भारत।
2: और ये जो डिजिटलाइजेशन की आप बात कर रही है वो पूरे देश में है।
0: सब्जी वाला भी कहता है जी यहाँ पे पेमेंट कर दो, जो फूल बेच रहे वो भी कहता है गोलगप्पे वाला
2: जी
0: टिक्की वाला।
2: व्यापक सशक्तिकरण है। अगर हम सामाजिक न्याय की बात करें, समावेशी विकास की बात करें, तो कुछ ऐसे आंकड़े हैं जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 71% बेनिफिशियरीज जो हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी फार्मर्स हैं। और मुद्रा योजना की अगर हम बात करें या जनधन योजना की बात करें तो 70% से अधिक जो अकाउंट्स हैं वो महिलाओं के हैं। सो आपको लगता है कि जो स्कीम्स हैं वो अच्छी भी हैं, लेकिन वो ज्यादा जरूरी है कि वो इम्प्लीमेंट बहुत कहें कि सिंसियरिटी से हुई है।
3: निश्चित रूप से मैं ये अनुभव अपना बताता हूँ, जहाँ मैं अभी गया था पिछले दिनों, जगदलपुर गया था। जगदलपुर का नाम सुनते ही बस्तर सोचते हैं लोग नक्सली प्रभावित था, नक्सली इलाके में कोई सरकारी कर्मचारी जा ही नहीं सकता था, स्कूल जला दिए थे, जो जंगल में जो लोग थे उनको सारी चीजें नहीं मिलती थी। अब वहाँ के जो प्रोडक्ट हैं, जो वहाँ ट्रेनिंग दी जा रही थी और बिल्कुल एक संस्थागत रूप में सब कुछ लाया जा रहा है वहाँ पे, कि जो कैंप लगे थे नक्सल समस्या खत्म हो गई, तो जो सुरक्षा बलों के कैंप थे उसको सेवा केंद्र में बदला जा रहा है। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो खुद हमारे साथ थे, उनके साथ मैं भी था। वहां मैंने देखा कि जो जंगल के प्रोडक्ट हैं, से इमली बहुत होती है, अब इमली वहां पे जो तोड़ा अब वो बिचौलिए सब खाते थे और जैसे थे जाता था, अब वो मशीनें लगी हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि इमली को कैसे आप पैकेजिंग करो, 500 ग्राम के, 1 किलो के छोटे पैकेजिंग बिल्कुल एकदम उसको, और उसके बीज हटने चाहिए, उसका ये होना चाहिए और बिल्कुल शुद्ध ऑर्गेनिक बिना किसी केमिकल के, और उसकी बहुत डिमांड है। एक वहां महुआ बहुत होता है, फ्री में चुनते हैं। अब महुआ और बाकी जो श्री अन्न है मिला करके इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बन रहे हैं उसके, तो मार्केटिंग की एक सोच का अंतर आया है,
2: एक अवेयरनेस क्रिएट हुई।
3: अवेयरनेस नहीं, सोच नहीं का अंतर यह है कि जब देश आजाद हुआ था तो हमने ये मान लिया था कि ये तो ट्राइब्स हैं, ये जैसे हैं वैसे ही खुश हैं, इनमें हमें छेड़छाड़ नहीं करनी, इनको हमारे डेवलपमेंट होते हैं, इनको हमारे स्कूल नहीं चाहिए, इनको हमारी बिल्डिंग नहीं चाहिए, इनको गाड़ी नहीं चाहिए, इनको जहाज नहीं चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको ये जंगल में ही खुश है। अब आपने उनको छोड़ दिया तो उस जंगल में नक्सली घुस गए। अब जो चेंज आया है कि सारी सुविधाएं वो जंगल में रहे, जहां है जैसे जी रहे हैं रहे, लेकिन सारी सुविधाएं हम पहुंचाएं और उनकी जो चीजें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक भी जाए, बाकी जगह भी जाए,
2: विकास और उनके बच्चे पढ़े भी अगर वो चाहे, शिक्षा वहां पे पहुंची।
3: एकलव्य स्कूल का उन्होंने नाम लिया कि आदिवासी बच्चे।
2: अच्छा, आप जो सोच की बात कर रहे हैं नीलू जी, यहाँ पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो टर्मिनोलॉजी भी यूज की गई है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, कितनी खूबसूरत है कि रिकॉग्नाइज कर रही है सरकार की एस्पिरेशंस है उन लोगों की और उनको करने के लिए ये पॉलिसी मेजर्स उठाए जा रहे।
3: वो यही है कि जब आप सिंसियरली देखते हो कि जिले हैं तो कौन कौन से जिले देश में जो है वो पिछड़े, पहले होता था पिछड़े राज्य की बात, लेकिन अगर आप देखोगे केरल में भी तो केरल कहें कि वहाँ बहुत साक्षरता है, वहाँ महिलाओं का सशक्तिकरण है, ये है, तमाम चीजें हैं, लेकिन वहाँ भी कुछ जिले जो है पीछे रह जाते हैं। और जब बिल्कुल आप पिछले जो होगा छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ के कुछ जिले बहुत अच्छे हैं, तो जो जिले पीछे छूट गए हैं वो किन किन मापदंडों पे छूटे हैं, वहां क्या करने की जरूरत है। अब वो जब हो गया तो जिले के भीतर ब्लॉक हैं, तो अब 500 ब्लॉक्स के अलग चल पड़ी है वहां पे। यानी कि जब समग्र और समेकित विकास की आप बात सोचते हो कि अंत्योदय जो उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय जी का था कि कोई छूटे न पीछे, ये जब आपकी सोच होती है तो जितने लोग छूटे हुए हैं सबको आप चुनते हो, क्यों छूट गया, क्या कमी है, क्या हम लगाएं कि यहाँ पे आ जाए, वो चीजें हो रही है।
2: सजना जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगी?
0: देखिए, मुझे जो सबसे अच्छा 2-3 चीजें लगती हैं, एक है विरासत के साथ विकास
2: जी,
0: जो स्लोगन है वो बहुत बढ़िया लगता है मुझे, कि हम अपनी परंपराओं को, अपनी ट्रेडिशंस को बचाते हुए विकास की राह पर चले। ऐसा विकास ना हो जो हमें हमारी जड़ों से अलग कर दे, तो हमारी जड़ों से जोड़ने का जो विकास है वो, ये सोच बहुत अच्छी है। अगर मैं अपनी जड़ से उखड़ कर कहीं बहुत उन्नति करती हूँ, अपने समाज से, अपने रीति रिवाज से, अपनी परंपराओं से, तो वो विकास एक दिन जाकर मुझे दिल को बहुत दुखी करेगा, लेकिन मैं अपनी जड़ों से भी जुड़ी हूँ, अपनी परंपरा से, अपनी संस्कृति से, और उसके साथ मेरा विकास हो रहा है। अब एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि यूनेस्को धरोहर में अब हमारी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल कितनी सारी चीजें

0: आ गई। आप सोचिए हमारा गरबा, हमारी दुर्गा पूजा, हमारी दिवाली, हमारे बहुत सारी चीजें हैं जो अब यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होगी। और एक और सोचिए पर्यावरण की दृष्टि में रामासर जो आर्द्र भूमि जिनको हम बोलते हैं, अब वो 100 होने वाली है, 99 तो हो ही चुकी, हो गई शायद 100 हो गई।
1: और ये सब चीजें युवाओं को भी प्रेरित करती है कि हमारा
0: रामासर लेक जो है पहले हमारे पास 13 या 14 थी, अब आप देखिए कितनी हो गई। तो ये समग्र विकास जो है ना विद मेरे विरासत के साथ, तो ये एक बहुत 12 साल की एक उपलब्धि है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर्जना जी, नीलू जी, आप आए और आपने हमें इतनी खूबसूरती से समझाया कि जो 4 स्तंभ जो माने गए हैं वर्तमान सरकार द्वारा विकास के, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, उनके सशक्तिकरण के लिए क्या क्या किया गया है पिछले 12 सालों में और आगे भी क्या हम उम्मीद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद
0: सोनू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें आमंत्रित करने के लिए।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सशक्तिकरण से समृद्धि की ओर बढ़ते भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन और सर्जना शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
5: अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। FM 102, FM 103.6 मेगाहर्ट्ज, मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:46 हो रहे हैं। अब हमारी ये प्रसारण सभा संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। FM 102, FM 103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:46 हो रहे हैं। अब हमारी ये प्रसारण सभा संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।